मेरी वेव 241.5 मीटर यानी 1242 किलो हर्ट्स, डीटीएच डीआरएम 1233 किलो हर्ट्स, न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप और वेव्स ओटीटी पर आकाशवाणी का ये वाराणसी केंद्र है। आज शुक्रवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की 26वीं तिथि, तदनुसार 17 जुलाई सन 2026। सुबह के 5:56 और 45 सेकंड हो चुके हैं। आरंभ होती है हमारी आज की प्रातःकालीन सभा।

आपके साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब का दौरा करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री हरियाणा में जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के बीच हाइड्रोजन से चलने वाली पहली रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। प्रधानमंत्री जींद के एकलव्य स्टेडियम में लगभग 14,700 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित करेंगे और शिलान्यास करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि हाइड्रोजन ट्रेन के शुभारंभ से भारत उन चुनिंदा देशों के समूह में शामिल हो गया है जिनके पास हाइड्रोजन से चलने वाली रेलगाड़ियां परिचालन में हैं। इनमें जर्मनी, जापान, चीन और संयुक्त

0: राज्य अमेरिका शामिल हैं।
1: इस ट्रेन में कुल 10 डिब्बे हैं और इसकी शुरुआत होने से यह दुनिया की सबसे लंबी हाइड्रोजन से चलने वाली यात्री ट्रेनों में शामिल हो जाएगी। इसमें 3200 हॉर्स पावर का इंजन लगाया गया है, जो इसे दुनिया की सबसे ताकतवर हाइड्रोजन ट्रेनों में से एक बनाता है। यह रेलगाड़ी हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक से चलती है, जो ट्रेन को चलाने के लिए हाइड्रोजन को विद्युत में परिवर्तित करती है। ग्रीन हाइड्रोजन के उपयोग से कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों से बनने वाली बिजली पर निर्भरता भी कम होगी। इससे भारत को स्वच्छ और टिकाऊ परिवहन व्यवस्था विकसित करने में मदद मिलेगी। यात्रियों की सुरक्षा लिए ट्रेन में आधुनिक बहुस्तरीय सुरक्षा प्रणाली लगाई गई है, जो हाइड्रोजन रिसाव, अधिक तापमान, आग की लपटों और धुएं का तुरंत पता लगा सकती है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री इसके बाद चंडीगढ़ में 4,700 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उनका उद्घाटन करेंगे। इसके बाद श्री मोदी जालंधर में 5,470 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाएं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि वे आज हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब के लोगों के बीच विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होने को लेकर उत्साहित हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं का लोगों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। प्रधानमंत्री मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से केरलम में 6 पुनर्निर्मित अमृत रेलवे स्टेशनों के साथ देशभर के 75 अन्य अमृत स्टेशनों का उद्घाटन करेंगे। केरलम के इन स्टेशनों से राज्य में रेलवे के बुनियादी ढांचे और यात्रियों की सुविधाओं में उल्लेखनीय सुधार होने की संभावना है। इन उन्नत स्टेशनों में आधुनिक प्लेटफॉर्म, बेहतर भवन, आधुनिक प्रतीक्षा कक्ष और यात्रियों के लिए उन्नत सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। इनका उद्देश्य यात्रियों को अधिक आरामदायक यात्रा का अनुभव प्रदान करना है। गृहमंत्री अमित शाह आज से पश्चिम बंगाल के 3 दिन के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे सीमा सुरक्षा, शासन, कानून व्यवस्था और विकास से संबंधित कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे। श्री शाह कल सिलीगुड़ी में जुमागाछ सीमा चौकी का दौरा करेंगे और 18वीं बटालियन सीमा चौकी पर सीमा सुरक्षा बल से संबंधित विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हो रहा है। इससे पहले आज राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में वरिष्ठ मंत्रियों की बैठक में सदन में अपनी रणनीति को अंतिम रूप देगा। इस बैठक में NDA के विधायी एजेंडे, गठबंधन के सहयोगियों के बीच समन्वय और सत्र के दौरान विपक्ष का सामना करने के लिए एकीकृत रणनीति पर ध्यान केंद्रित किए जाने की संभावना है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा NEET UG का परिणाम घोषित कर दिया है। 11 लाख से अधिक परीक्षार्थी मेडिकल, दंत चिकित्सा, आयुष और अन्य संबंधित कार्यक्रमों के लिए उत्तीर्ण हुए हैं। सभी उम्मीदवारों के अंक आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in पर उपलब्ध हैं। उत्तर प्रदेश में आज माय भारत राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवक सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इसके बाद अगले 2 दिन चिंतन शिविर का आयोजन होगा। इसका आयोजन युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय कर रहा है। कार्यक्रम का उद्घाटन केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया करेंगे। इंग्लैंड ने दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत को 4 विकेट से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत की पूरी टीम 44 ओवर में 233 रन पर सिमट गई। जवाब में इंग्लैंड ने 6 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। 3 मैचों की श्रृंखला अब 1-1 से बराबरी पर है। श्रृंखला का अंतिम मैच रविवार को लॉर्ड्स में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडिया वेव 241.54 मीटर यानी 1,242 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये वाराणसी केंद्र है। सुबह के 6:05 हो रहे हैं। खेती की बातें कार्यक्रम में आइए सुनते हैं मूंगफली की फसल की देखभाल विषय पर दिनेश कुमार सिंह की जानकारी।
3: किसान भाइयों, आज हम मूंगफली की फसल की देखभाल के बारे में चर्चा करेंगे। इस फसल में नत्रजन, फास्फोरस एवं पोटाश जो भी उर्वरक दिए जाते हैं वह सब बुआई के पहले ही दे दिए जाते हैं। खड़ी फसल में उर्वरक देने की आवश्यकता नहीं होती। एक बात है, यदि फास्फोरस का प्रयोग सुपर फास्फेट के रूप में नहीं किए हैं तो 100 किलोग्राम जिप्सम तथा 4 किलोग्राम बोरेक्स को 3 सप्ताह की अवस्था में टॉप ड्रेस

0: सिंह के रूप में बिखेर देना चाहिए तथा हल्की गुड़ाई करके 3-4 सेंटीमीटर की गहराई तक मिट्टी में भली भांति मिला देना चाहिए। उर्वरकों के प्रयोग के बाद दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वह है सिंचाई एवं जल निकास। मूंगफली की फसल खरीफ ऋतु की फसल है, इसलिए इसमें सिंचाई वर्षा पर ही आधारित होती है। अगर समय समय पर बारिश हो रही है तब तो सिंचाई करने की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन वर्षा के अभाव में खेत में नमी की कमी हो तो 2 सिंचाइयों की आवश्यकता होती है। ये 2 सिंचाइयाँ एक तो खूंटियाँ बनते समय करनी चाहिए, जिसे पेगिंग अवस्था कहते हैं, और दूसरी सिंचाई उस समय करते हैं जब फलियाँ बनने लगें। अब बात आती है इसमें निकाई गुड़ाई की। मूंगफली की फसल में कुल 2 निकाई गुड़ाई की आवश्यकता होती है, एक तो बुआई के 15 से 20 दिन बाद और दूसरी बुआई के 30 से 35 दिन बाद। निकाई गुड़ाई करने में लापरवाही नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे एक तो खरपतवार नष्ट हो जाते हैं, जिससे फसल को दिए गए उर्वरक, सिंचाई, जगह आदि का भरपूर उपयोग होता है और उपज अपने आप बढ़ जाती है। गुड़ाई कर देने से मिट्टी में वायु संचार सही ढंग से होता है और पौधा स्वस्थ रहता है। बरसात के दिनों में अगर ज़्यादा खरपतवार हैं तो बहुत से कीड़े एवं बीमारियां इन खरपतवारों के कारण भी आ जाती हैं। खरपतवार नष्ट होने से इनसे भी बचाव होता है। किसान भाई मूंगफली के साथ अरहर या बाजरा की खेती करते हैं। खड़ी फसल में अरहर में तो कोई उर्वरक नहीं दिया जाता, लेकिन यदि बाजरा बोए हैं तो खड़ी फसल में 15 किलोग्राम नत्रजन यानी लगभग 30 किलोग्राम यूरिया प्रति हेक्टेयर की दर से बुरकाव करना चाहिए। बाजरा में बुआई के 15 से 30 दिन बाद पौधों की आपस की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर निर्धारित करना चाहिए। इसी प्रकार जब अरहर की फसल लगभग 1 माह की हो जाती है तो उसमें भी विरलीकरण किया जाता है और पौधों की आपस की दूरी 25 से 30 सेंटीमीटर कर देनी चाहिए। इस फसल में बीमारियां एवं कीड़े भी लगते हैं, जिनका नियंत्रण आवश्यक है। एक तो टिक्का रोग लगता है, जिसके कारण पत्तियों पर हल्के भूरे रंग के गोल धब्बे बन जाते हैं। इनके चारों तरफ निचली सतह पर पीले घेरे होते हैं। उग्र प्रकोप में तने तथा पुष्प शाखाओं पर भी धब्बे बन जाते हैं। इस रोग के नियंत्रण के लिए खड़ी फसल पर 2 किलोग्राम जिंक मैंगनीज कार्बामेट दवा को 800 से 1000 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति हेक्टेयर की दर से 10-10 दिन के अंतर पर 2-3 छिड़काव करना चाहिए। नमी की कमी की दशा में ड्राई रूट बीमारी भी लग जाती है, जिसमें जड़ें भूरी होकर सड़ने लगती हैं और फिर पौधा सूख जाता है। इसके नियंत्रण के लिए बीज शोधन के अलावा खेत में नमी बनाए रखना आवश्यक होता है। मूंगफली की फसल में मुख्य रूप से सफ़ेद गिडार का प्रकोप हो सकता है। सफ़ेद गिडारें पीलापन लिए हुए सफ़ेद रंग की होती हैं, जिनका सिर भूरा कत्थई या लाल रंग का होता है। ये छूने पर गेंडुल के समान मुड़कर गोल हो जाती हैं। इनकी मादा जड़ों को खाती हैं, जिससे पूरा पौधा सूख जाता है। इसके नियंत्रण के लिए मोनोक्रोटोफास 36 EC की 1 मिलीलीटर मात्रा प्रति 1.5 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए। तो इस तरह से इन सब बातों को ध्यान में रखकर मूंगफली की फसल की देखभाल करनी चाहिए।
1: खेती की बातें कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे मूंगफली की फसल की देखभाल विषय पर दिनेश कुमार सिंह की जानकारी। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। प्रस्तुत है दैनिक भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। मैं आपका छोटा सा बालक हूँ और आप मेरी माँ हैं। ये बात माता और भक्त के बीच के अटूट प्रेम और विश्वास को दर्शाता है।

भगवान शिव हमें स्थिरता और धैर्य का पाठ पढ़ाते हैं, इसलिए शिवालय की शरण में हमें हमेशा रहना चाहिए।

अभी आप सुन रहे थे दैनिक भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। कार्यक्रम में आज शामिल कलाकार थे बाबला मेहता, तुलसी कुमार और महेंद्र कपूर। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुने गांधी चर्चा कार्यक्रम में बापू की आत्मकथा सत्य के प्रयोग का धारावाहिक पाठ। वाचन और प्रस्तुति अरुण पांडे की।

गांधी चर्चा कार्यक्रम में इन दिनों आप सुन रहे हैं बापू की आत्मकथा सत्य के प्रयोग का धारावाहिक पाठ। आज सुनिए इसकी 138वीं कड़ी।

ब्रजकिशोर बाबू और राजेंद्र बाबू की तो एक अद्वितीय जोड़ी थी। उन्होंने अपने प्रेम से मुझे इतना पंगु बना दिया था कि उनके बिना मैं एक कदम भी आगे नहीं जा सकता था। उनके शिष्य कहिए अथवा साथी शंभु बाबू, अनुग्रह बाबू, धरणी बाबू और रामनवमी बाबू, ये वकील लगभग निरंतर मेरे साथ रहते थे। विंध्या बाबू और जनकधारी बाबू भी समय समय पर साथ रहते ही थे। ये तो बिहारियों का संग हुआ। उनका मुख्य काम था लोगों के बयान लेना। अध्यापक कृपलानी इसमें सम्मिलित हुए बिना कैसे रह सकते थे। स्वयं सिंधी होते हुए भी वे बिहारी से भी बढ़कर बिहारी थे। मैंने ऐसे सेवक कम देखे हैं जिनमें वे जिस प्रांत में जाएं उसमें पूरी तरह घुल मिल जाने की शक्ति हो और जो किसी को ये मालूम न होने दें कि वे दूसरे प्रांत के हैं। इनमें कृपलानी एक हैं। उनका मुख्य काम द्वारपाल का था। दर्शन करने वालों से मुझे बचा लेने में उन्होंने इस समय अपने जीवन की सार्थकता समझ ली थी। किसी को वे विनोद करके मेरे पास आने से रोकते तो किसी को अहिंसक धमकी से। रात होने पर अध्यापक का धंधा शुरू करते और सब साथियों को हंसाते थे और कोई डरपोक पहुंच जाए तो वे उसे हिम्मत बंधाते थे। मौलाना मजहरुल हक ने मेरे सहायक के रूप में हक दर्ज करा रखा था और वे महीने में एक दो बार दर्शन दे जाते थे। उस समय के उनके ठाट बाट और दबदबे से आज की उनकी सादगी में जमीन आसमान का अंतर है। हमारे बीच वे आकर अपने हृदय की एकता साध जाते थे, पर अपनी साहबी के कारण बाहर के आदमी को वे हमसे अलग जैसे जान पड़ते थे। जैसे जैसे मुझे अनुभव प्राप्त होता गया वैसे वैसे देखा कि चंपारण में ठीक से काम करना हो तो गांव में शिक्षा का प्रवेश होना चाहिए। लोगों का अज्ञान दयनीय था। गांव के बच्चे मारे मारे फिरते थे अथवा माता पिता दो या तीन पैसे की आमदनी के लिए उन्हें सारे दिन नील के खेतों में मजदूरी करवाते थे। उन दिनों वहां पुरुषों की मजदूरी 10 पैसे से अधिक नहीं थी, स्त्रियों की 6 पैसे और बालकों की 3 पैसे। चारणे की मजदूरी पाने वाला किसान भाग्यशाली समझा जाता था। साथियों से सलाह करके पहले तो 6 गांवों में बालकों के लिए पाठशालाएं खोलने का निश्चय किया। शर्त यह थी कि उन गांवों के मुखिया मकान और शिक्षक का भोजन व्यय दें, उसके दूसरे खर्चे की व्यवस्था हम करेंगे। वहां के गांव में पैसे की विपुलता नहीं थी, पर अनाज वगैरह देने की शक्ति लोगों में थी, इसलिए लोग कच्चा अनाज देने को तैयार हो गए। महान प्रश्न ये था कि शिक्षक कहां से लाए जाएं। बिहार में थोड़ा वेतन लेने वाले अथवा कुछ न लेने वाले शिक्षकों का मिलना कठिन था। मेरी कल्पना ये थी कि साधारण शिक्षक के हाथ में बच्चों को कभी न छोड़ना चाहिए। शिक्षक को अक्षर ज्ञान चाहे थोड़ा हो, पर उसमें चरित्र बल तो होना ही चाहिए। इस काम के लिए मैंने सार्वजनिक रूप से स्वयं सेवकों की मांग की। इसके उत्तर में गंगाधर राव देशपांडे ने बाबा साहब सोमण और पुंडलिक को भेजा। बंबई से अवंतिकाबाई गोखले आईं, दक्षिण से आनंदीबाई आईं। मैंने छोटे लाल सुरेंद्रनाथ तथा अपने लड़के देवदास को बुला लिया। इसी बीच महादेव देसाई और नरहरि पुरीख मुझे मिल गए थे। महादेव देसाई की पत्नी दुर्गा बहन और नरहरि पारीख की पत्नी मणि बहन भी आईं। मैंने कस्तूरबाई को बुला लिया था। शिक्षकों और शिक्षिकाओं का इतना संघ

काफी था। श्रीमती अवंतिका बाई और आनंदीबाई की गिनती तो शिक्षितों में हो सकती थी, पर मड़ी बहन पारिख और दुर्गा बहन देसाई को सिर्फ थोड़ी सी गुजराती आती थी। कस्तूरबाई की पढ़ाई तो नहीं के बराबर ही थी। ये बहनें हिंदी भाषी बच्चों को किस प्रकार पढ़ाती? चर्चा करके मैंने बहनों को समझाया कि उन्हें बच्चों को व्याकरण नहीं बल्कि रहन सहन का तौर तरीका सिखाना है। पढ़ना लिखना सिखाने की अपेक्षा उन्हें स्वच्छता के नियम सिखाने हैं। उन्हें यह भी बताया कि हिंदी गुजराती मराठी के बीच कोई बड़ा भेद नहीं है और पहले दर्जे में तो मुश्किल से अंक लिखना सिखाया जाता है, अतः उन्हें कोई कठिनाई होगी ही नहीं। परिणाम ये निकला कि बहनों की कक्षाएं बहुत अच्छी तरह चली, बहनों में आत्मविश्वास उत्पन्न हो गया और उन्हें अपने काम में रस आने लगा। अवंतिका बाई की पाठशाला आदर्श पाठशाला बन गई। उन्होंने अपनी पाठशाला में प्राण फूंक दिए। उनकी योग्यता भी काफी थी। इन बहनों के द्वारा गांव के स्त्री समाज में भी हमारा प्रवेश हो सका था। पर मुझे पढ़ाई की व्यवस्था करके ही रुकना नहीं था। गांव में गंदगी की कोई सीमा न थी। गलियों में कचरा, कुओं के आसपास कीचड़ और बदबू, आंगन इतने गंदे कि देखे न जा सके। बड़ों को स्वच्छता की शिक्षा की जरूरत थी। चंपारण के लोग रोगों से पीड़ित देखे जाते थे। जितना हो सके उतना सफाई काम करके लोगों के जीवन के प्रत्येक विभाग में प्रवेश करने की हमारी वृत्ति थी। इस काम में डॉक्टरों की सहायता की जरूरत थी, अतः मैंने गोखले की सोसाइटी से डॉक्टर देवकी की मांग की। उनके साथ मेरी स्नेह गांठ तो बन ही चुकी थी। 6 महीनों के लिए उनकी सेवा का लाभ मिला। उनकी देखरेख में शिक्षकों और शिक्षिकाओं को काम करना था। सबको ये समझा दिया गया था कि कोई भी निलहों के विरुद्ध की जाने वाली शिकायतों में न पड़े, राजनीति को न छुए, शिकायत करने वालों को मेरे पास भेज दें। कोई अपने क्षेत्र के बाहर एक कदम भी न रखे। चंपारण के इन साथियों का नियम पालन अद्भुत था। मुझे ऐसा कोई अवसर याद नहीं आता जब किसी ने दी हुई सूचनाओं का उल्लंघन किया हो।

गांधी चर्चा कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे बापू की आत्मकथा सत्य के प्रयोग का धारावाहिक पाठ। वाचन और प्रस्तुति थी अरुण पांडे की। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ।

वियोग की कल्पना ने महाराज दशरथ से मानो उनकी वाक शक्ति छीन ली है। उनके मन में एक ही विचार उमड़ घुमड़ रहा है कि जगत में चाहे उनका सुयश नष्ट हो जाए, पूर्व पुण्यों द्वारा अर्जित स्वर्ग भले ही ना मिले, बस राम किसी भी तरह उनकी आंखों से दूर ना हो। किंतु श्री राम को पिता के वचन के मर्यादा का पालन करने के लिए अपने वन गमन की बात अत्यंत तुच्छ सी लगती है। पिता से उनका अनुरोध है कि वे पुत्र स्नेह के कारण दुखी ना हों। इस पृथ्वी पर उस पुत्र का जीवन धन्य है जिसके आचरण से पिता को आनंद की प्राप्ति हो। वे पिता को धीरज बंधाते हैं कि उनकी आज्ञा का पालन कर शीघ्र ही लौट आवेंगे। उधर राम वन गमन के समाचार से अयोध्या नगरी में विषाद छा गया है। उसकी दशा ऐसी हो गई है जो जंगल की आग में झुलस गए पेड़ पौधों की होती है। जो भी ये समाचार सुनता है सिर धुनने लगता है। लोग कैकई के लिए अपशब्द कह रहे हैं जिसने भरे पूरे घर में आग लगा दी है, जिसने पत्ते पर बैठकर पेड़ को ही काट डाला है। कवि शायद सत्य ही कहते हैं कि स्त्री के मन की गति पकड़ में नहीं आती। जैसे आग सब कुछ भस्म कर सकती है, समुद्र में सब कुछ समा सकता है, उसी प्रकार अबला कहलाने वाली प्रबल स्त्री क्या कुछ नहीं कर सकती।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ। मानस पाठ की इस कड़ी के कलाकार थे वाणी जयराम और रविंद्र साठे। मीडियम वेव के मीटर पर आपने अपने रेडियो सेट पर ट्यून किया है आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र को। सुबह के 6:50 हो रहे हैं। आइए एक नजर डालते हैं आज केंद्र से प्रसारित प्रमुख कार्यक्रमों पर। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में रात्रि 10:30 पर और दिन में 12:45 पर सुनेगा अंशुमन महाराज का सरोद वादन और सुबह 7:31 पर सुनेगा उस्ताद मुस्ताक अली खां का सितार वादन। स्वास्थ्य पत्रिका कार्यक्रम सुनेगा रात्रि 10 बजे से। गैर फिल्मी गीतों और गजलों का कार्यक्रम अंजुमन सुनेगा रात्रि 9:30 पर। सुगम संगीत के कार्यक्रम में मिताली सिंह और भूपेंद्र सिंह के गाए चंद गजलों का लुत्फ उठाइएगा रात 8 बजे से और स्मृति शुक्ला के गाए भजन सुनेगा दिन में 12:30 पर।

किसान भाई रोजाना की तरह सुनेंगे कृषि जगत शाम 6:30 पर। कार्यक्रम में चर्चा के अलावा सुनेगा खरीफ की फसल में होने वाले बीमारियां विषय पर डॉक्टर संतोष कुमार के साथ सुधीर श्रीवास्तव की बातचीत। अलावा इसके महंगी राम प्रजापति और साथी का गाया सुनेगा लोकगीत। इनके गाए लोकगीतों को आप दिन में 1:45 पर और सुबह 9:50 पर लोक संगीत के कार्यक्रम में सुन सकेंगे। युवा साथियों का कार्यक्रम युवाणी सुनेगा शाम 5:15 से। कार्यक्रम में होगी आज की बात अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस और दक्षिणायन दिवस पर। अलावा इसके कार्यक्रम में सिने दर्पण होगा संजीव कुमार पर। इसके अलावा कार्यक्रम में सुनेगा साथ ही साथ इतिहास में आज का दिन, रोजगार सूचना और फिल्म संगीत। बहने सुनेंगे अपना कार्यक्रम गृहलक्ष्मी दिन में 1:15 पर। कार्यक्रम में चर्चा के अलावा सुनेगा फोन इन कार्यक्रम श्री अन्न स्वास्थ्य और स्वाद का संतुलन पर सखियों संग बातचीत। और साथ ही साथ कार्यक्रम में होगा गीत संगीत।

एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम होगा दिन में 12 बजे से। फिल्म संगीत के कार्यक्रम में रसमाधुरी सुनिएगा रात 8:15 पर, रस रंग शाम 7:31 पर, फिल्म संगीत शाम 7 बजे, शाम 6:10 पर और शाम 5 बजे। एक ही कलाकार सुनिएगा दिन में 2:30 पर। व्हाट्सएप पर आधारित फरमाइशी गीत एक्सप्रेस सुनिएगा दिन में 11 बजे से। झंकार का समय होगा सुबह 10 बजे से और मधुरिमा कार्यक्रम सुनेगा सुबह 8:45 पर। अब से थोड़ी ही देर में यानी सुबह 7 बजे से सुनेगा आपका अपना फेवरेट प्रोग्राम शो गुड मॉर्निंग बनारस। आपको एक बार फिर से बता दें, शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में रात्रि 10:30 पर और दिन में 12:45 पर सुनेगा अंशुमन महाराज का सरोद वादन और सुबह 7:31 पर सुनेगा उस्ताद मुस्ताक अली खां का सितार वादन। स्वास्थ्य पत्रिका होगा सुबह रात्रि 10 बजे। सुगम संगीत के कार्यक्रम में मिताली सिंह और भूपेंद्र सिंह की गजलों को सुनेगा रात 8 बजे और स्मृति शुक्ला के गाए भजन सुनेगा दिन में 12:30 पर। कार्यक्रम विवरण के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे आज केंद्र से प्रसारित प्रमुख कार्यक्रमों की रूपरेखा। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। सुबह के 6:55 होने वाले हैं, सुनेंगे संस्कृत में समाचार बस कुछ ही पलों में।

0: गुड मॉर्निंग बनारस।
1: हेलो एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग बनारस। मैं स्तुति एक बार फिर हाजिर हूँ आप सभी का फेवरेट शो लेकर, जिसका नाम है गुड मॉर्निंग बनारस। कहते हैं हर शहर सुबह उठता है, लेकिन बनारस सुबह को जीता है। यहाँ सूरज की पहली किरण से पहले ही आस्था जग जाती है, घाटों पर कदमों की आहट सुनाई देने लगती है और मंदिरों की घंटियाँ एक नए दिन का स्वागत करती हैं। बनारस आज का दिन अपने शहर के लिए बेहद खास है, क्योंकि भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा का दूसरा दिन जो है, काशी की ऐतिहासिक रथ यात्रा में आज भी श्रद्धालुओं का उत्साह

देखने ही बनता है। सुबह से ही भक्त भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा जी के दर्शन के लिए उमड़ रहे हैं। मान्यता है कि रथ यात्रा में श्रद्धा के साथ शामिल होने और रथ के दर्शन करने से भगवान जगन्नाथ की विशेष कृपा प्राप्त होती है। रथ यात्रा सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि ये हमें एक खूबसूरत संदेश भी देता है कि भगवान स्वयं अपने भक्तों के बीच आते हैं। ये हमें याद दिलाती है कि जीवन की यात्रा में प्रेम, सेवा, विनम्रता और सबको साथ लेकर चलने का भाव सबसे बड़ा है। हाँ जी बनारस, अगर आप ध्यान देंगे तो समझेंगे कि जिंदगी भी तो एक रथ यात्रा के समान ही है। कभी रास्ते आसान होते हैं, कभी थोड़े कठिन, कहीं भीड़ होती है, कहीं सन्नाटा। लेकिन अगर मन में विश्वास हो, परिवार का साथ हो और अपने कर्म सही हो तो मंजिल तक पहुंचना मुश्किल नहीं होता। साथ ही बनारस, अगर आज आप रथ यात्रा में जा रहे हैं तो कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान जरूर रखें, जैसे कि भीड़ में अपने बच्चों और बुजुर्गों का हाथ थामे रखें, पर्याप्त पानी पीते रहें, धूप से बचाव करें और प्रशासन द्वारा बनाए गए यातायात नियमों का पालन जरूर करें। आपका सुरक्षित रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारी संस्कृति हमें त्योहार मनाना तो सिखाती है, साथ ही हमें ये भी सिखाती है कि हर उत्सव में अनुशासन, संवेदनशीलता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। जब हम एक दूसरे का ध्यान रखते हैं, तभी किसी भी पर्व की खुशी और बढ़ जाती है। तो बनारस, इसके साथ ही आपको बता दें कि आज है 17 जुलाई और आज मनाया जाता है वर्ल्ड डे ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस, जिसका मुख्य उद्देश्य वैश्विक स्तर पर गंभीर अपराधों के लिए अपराधियों की जवाबदेही तय करना, मानवाधिकारों की रक्षा करना और पीड़ितों को न्याय दिलाना है। आपको बता दें कि इस दिवस की शुरुआत 1998 में रोम संवेदी को अपनाने की ऐतिहासिक घटना की याद में की गई थी। इसी संबंधी के तहत अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय की स्थापना का मार्ग भी प्रशस्त हुआ था। तो बनारस, न्याय केवल अदालतों तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में भी दिखाई देता है। जब हम किसी के साथ भेदभाव नहीं करते, सच का साथ देते हैं, ईमानदारी से अपने कर्तव्य निभाते हैं और जब हम दूसरों के अधिकारों का सम्मान करते हैं, तो इसी तरह करेंगे और भी बहुत सारी बातें। कहीं जाइएगा मत, बने रहिए मेरे साथ और साथ ही सुनिए ये प्यारा सा ट्रैक ओनली ऑन आपकी वाणी आकाशवाणी

वेलकम बैक बनारस। तो बढ़ते हैं आगे और आपको बताते हैं अपने शहर बनारस का हाल समाचार। ऐतिहासिक 3 दिवसीय रथ यात्रा मेले को स्वच्छ और पर्यावरण अनुकूल बनाने के लिए नगर निगम ने पूरे मेला क्षेत्र को प्लास्टिक मुक्त क्षेत्र घोषित कर दिया है। प्रतिबंधित पॉलिथीन और सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल पर पूरी तरह से रोक लगाई गई है। नियमों का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों के खिलाफ चालान कर जुर्माना भी वसूला जा रहा है। नगर निगम ने श्रद्धालुओं की सुविधा और स्वच्छता को प्राथमिकता देते हुए मेला क्षेत्र में विशेष सफाई व्यवस्था लागू की है। पूरे मेले के दौरान 3 शिफ्टों में 24 घंटे सफाई अभियान चलाया जाएगा ताकि सड़कें, सार्वजनिक स्थल और धार्मिक परिसर साफ सुथरे बने रहें। सफाई कर्मियों की विशेष टीमें लगातार निगरानी करेंगी और कूड़ा निस्तारण की व्यवस्था भी सुचारू रूप से संचालित की जाएगी। नगर निगम की विशेष टीम स्थायी और अस्थायी दुकानदारों से संपर्क कर उन्हें स्वच्छता संबंधी दिशा निर्देशों का पालन करने के लिए जागरूक कर रही है। सभी दुकानदारों को अपनी दुकान के सामने डस्टबिन रखना अनिवार्य है। साथ ही उन्हें प्रतिबंधित पॉलिथीन का उपयोग न करने और ग्राहकों को केवल कपड़े या अन्य पर्यावरण अनुकूल थैले उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। चेतावनी के बावजूद नियमों की अनदेखी करने वाले दुकानदारों के खिलाफ मौके पर कार्रवाई करते हुए जुर्माना लगाया जा रहा है। जोनल स्वास्थ्य अधिकारी के नेतृत्व में IEC टीम लाउड स्पीकर के माध्यम से दुकानदारों और श्रद्धालुओं को सिंगल यूज प्लास्टिक के दुष्प्रभाव के प्रति जागरूक कर रही है। मेला क्षेत्र में स्वच्छ काशी, सुंदर काशी और थैला अपना साथ लाएं, प्लास्टिक को दूर भगाएं जैसे संदेशों वाले पोस्टर भी लगाए गए हैं। नगर निगम ने श्रद्धालुओं और व्यापारियों से अपील की है कि वे प्लास्टिक मुक्त रथ यात्रा मेले के संकल्प को सफल बनाने में सहयोग करें और स्वच्छ, सुरक्षित और पर्यावरण संरक्षण के इस अभियान में सक्रिय भागीदारी निभाएं। साथ ही आपको बता दें कि इस ऐतिहासिक रथ यात्रा मेले को शांतिपूर्ण, सुरक्षित और सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के उद्देश्य से कमिश्नरेट पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर व्यापक तैयारियां पूरी कर ली हैं। गुरुवार को अपर पुलिस आयुक्त शिवहरी मीणा ने पुलिस उपायुक्त काशी जोन, अपर पुलिस उपायुक्त, सहायक पुलिस आयुक्तों और संबंधित थाना प्रभारियों के साथ रथयात्रा मेला

क्षेत्र का विस्तृत निरीक्षण किया। उन्होंने सुरक्षा यातायात, भीड़ नियंत्रण और श्रद्धालुओं की सुविधा का जायजा भी लिया। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने मेला क्षेत्र में स्थापित सुरक्षा व्यवस्था, बैरिकेडिंग, सीसीटीवी कैमरास, कंट्रोल रूम और यातायात प्रबंधन की समीक्षा की। अपर पुलिस आयुक्त ने बताया कि इस वर्ष श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए पहले की अपेक्षा अधिक व्यवस्थित और वैज्ञानिक ढंग से बैरिकेडिंग की गई है, जिससे दर्शनार्थियों का प्रवेश सुचारू रूप से संचालित हो सके। महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगजनों और बच्चों के लिए अलग और सुरक्षित मार्ग भी बनाए गए हैं। मेले की सुरक्षा को हाईटेक बनाने के लिए पूरे क्षेत्र की निगरानी ड्रोन और उच्च गुणवत्ता वाली सीसीटीवी कैमरा से की जाएगी। सभी कैमरास और ड्रोन की लाइव मॉनिटरिंग कंट्रोल रूम में 24 घंटा होगी, ताकि किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तत्काल कार्रवाई की जा सके। ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी बॉडी वॉर्म कैमरा पहनकर अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करेंगे, जिससे पुलिस कार्रवाई में पारदर्शिता और जवाबदेही बनी रहे। इसके साथ ही बनारस आपको बता दें कि एक चर्चित वेब सीरीज के प्रमुख कलाकार निकितिन धीर और क्रांति प्रकाश झा गुरुवार को काशी पहुंचे। वाराणसी आगमन के बाद दोनों कलाकारों ने श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में विधि विधान से बाबा विश्वनाथ का दर्शन पूजन किया और आगामी सीजन की सफलता के साथ देशवासियों के सुख शांति और समृद्धि की कामना की। सुबह मंदिर पहुंचने पर दोनों कलाकार पारंपरिक परिधान में नजर आए। उन्होंने बाबा विश्वनाथ के दरबार में माथा टेक कर विशेष पूजन अर्चन किया और कुछ समय मंदिर परिसर में बिताया। दर्शन के बाद उन्होंने काशी की आध्यात्मिक ऊर्जा और सांस्कृतिक विरासत की मुक्त कंठ से सराहना की। कलाकारों ने कहा कि बाबा विश्वनाथ के दरबार में आकर उन्हें आत्मिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव हुआ। उनका मानना है कि काशी की आध्यात्मिक शक्ति कलाकारों और श्रद्धालुओं दोनों के लिए प्रेरणा प्रदान करती है। मंदिर परिसर में मौजूद श्रद्धालुओं और प्रशंसकों ने दोनों कलाकारों का गर्मजोशी से स्वागत किया। उनके पहुंचते ही प्रशंसकों की भीड़ जुट गई और लोगों ने उनके साथ तस्वीरें खिंचवाई। निकितन धीर और क्रांति प्रकाश झा ने भी प्रशंसकों का अभिवादन करते हुए उनके स्नेह और समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया। तो चलिए अब आपको बताते हैं क्या है आज सेहत के पिटारे से। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मॉनसून का सीजन शुरू हो चुका है और मॉनसून में अन्य मौसमों की तुलना में आहार और दिनचर्या का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इस मौसम में ना जठराग्नि धीमी पड़ने से पाचन कमजोर हो जाता है। ऐसे में हल्का ताजा और सुपाच्य भोजन और पेय लेने की सलाह दी जाती है। आइए जानते हैं इस मौसम में कैसे जीवन शैली अपनानी चाहिए। आयुर्वेद में वर्षा ऋतु को ऐसा समय माना गया है जब शरीर की पाचन शक्ति अर्थात जठराग्नि कमजोर हो जाती है। वातावरण में नमी, बादल, दूषित जल और तापमान में अचानक परिवर्तन के कारण वात दोष बढ़ने की प्रवृत्ति रहती है। इसलिए इस मौसम में उचित आहार और संतुलित जीवन शैली का पालन स्वास्थ्य की रक्षा और रोगों की रोकथाम के लिए अत्यंत आवश्यक माना गया है। बरसात में भारी भोजन की बजाय हल्का और सुपाच्य भोजन लेने से पाचन बेहतर रहता है, जैसे पुराने अनाज, गेहूं, जौ, पुराने चावल, मूंग दाल, लौकी, शहद और गुड़। हल्के खट्टे, मीठे और नमकीन स्वाद वाली चीजें लाभकारी मानी जाती हैं। मसालों में सेंधा नमक, काली मिर्च, दालचीनी और अदरक का सेवन लाभदायक है। हल्दी और हींग जैसे पाचन सहायक मसालों का सीमित मात्रा में उपयोग भूख और पाचन शक्ति बनाए रखने में मदद करता है। तो जिन लोगों को भूख कम लगती है, वो भोजन से पहले अदरक के छोटे टुकड़े के साथ थोड़ा सेंधा नमक ले सकते हैं, बशर्ते उन्हें अम्लपित्त, जलन और स्वास्थ्य से जुड़ी कोई अन्य समस्या ना हो। पाचन कमजोर होने के कारण इस मौसम में कच्चा भोजन खाने से परहेज करना चाहिए, जैसे कि सलाद, कच्ची सब्जियां और स्प्राउट्स से बचे। इसके अलावा पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, पत्ता गोभी और मेथी भी कम खानी चाहिए, क्योंकि बरसात में इनमें कीड़े लगने की आशंका अधिक रहती है। साथ ही भारी और तले हुए खाद्य पदार्थ जैसे राजमा, छोले, जंक फूड, उड़द की दाल,
पनीर और बासी भोजन से भी

थोड़ी दूरी बनाए रखें तो आप सभी के लिए बेहतर होगा। इसी के साथ बनारस आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे यानी स्तुति को दीजिए अब अनुमति, मिलूंगी आप सभी से फिर एक नए दिन फिर एक नई सोच के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने आसपास वालों को भी खुश रखिए। टाटा बाय बाय।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गुड मॉर्निंग बनारस। ये आकाशवाणी वाराणसी केंद्र है। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार हमारे लखनऊ केंद्र से।

0: चलिए सुबह का पहला संकल्प ये लें कि मैं दुनिया में किसी से नहीं डरूंगा, केवल भगवान से डरूं। मैं किसी के प्रति बुरा भाव न रखूं, मैं किसी के अन्याय के समक्ष झुकूं नहीं, मैं असत्य को सत्य से जीतूं और असत्य का विरोध करते हुए मैं सभी कष्टों को सह सकूं। महात्मा गांधी।
1: मन का धर्म है मनन करना, मनन में ही उसे आनंद है, मनन में बाधा प्राप्त होने से उसे पीड़ा होती है। रविंद्रनाथ ठाकुर।
0: अपने ज्ञान पर जरूरत से ज्यादा यकीन करना मूर्ख है। सबसे मजबूत कमजोर हो सकता है और सबसे बुद्धिमान गलती कर सकता है। APJ अब्दुल कलाम।
1: जैसे सूर्य सबको एक सा प्रकाश देता है, बरसात सबके लिए बरसती है, उसी तरह विद्या वृष्टि सब पर बरकरार होनी चाहिए। महात्मा गांधी।
0: आकाश की तरफ देखिए, हम अकेले नहीं हैं, सारा ब्रह्मांड हमारे लिए अनुकूल है और जो सपने देखते हैं, मेहनत करते हैं, उन्हें प्रतिफल देने की साजिश करता है। APJ अब्दुल कलाम। निरंतर विकास जीवन का नियम है और जो व्यक्ति खुद को सही दिखाने के लिए हमेशा अपनी रूढ़िवादिता को बरकरार रखने की कोशिश करता है, वे खुद को गलत स्थिति में पहुंचा देता है। महात्मा गांधी।
1: मानव का दानव होना उसकी हार है, मानव का महामानव होना उसका चमत्कार है और मनुष्य का मानव होना उसकी जीत है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन।
0: कोई त्रुटि तर्क वितर्क करने से सत्य नहीं बन सकती और ना ही कोई सत्य इसलिए त्रुटि बन सकता है क्योंकि कोई उसे नहीं देख रहा है। महात्मा गांधी।
2: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं सोनी निगम। पहले मुख्य समाचार। देश की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को आज रवाना करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लखनऊ के ऐशबाग सहित 75 पुनर्निर्मित रेलवे स्टेशनों का वर्चुअल माध्यम से करेंगे उद्घाटन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के कार्यों की समीक्षा की। उत्तर प्रदेश को देश का अग्रणी IT डिजिटल सेवाओं और नवाचार का केंद्र बनाने के लक्ष्य पर दिया जोर। विकसित भारत जी रामजी अधिनियम के तहत वाराणसी में आयोजित हुआ पहला पंच सम्मेलन। उत्तर प्रदेश सहित 4 राज्यों के 500 ग्राम प्रधान हुए शामिल और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA ने घोषित किए NEET UG 2026 के परीक्षा परिणाम। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र

0: नरेंद्र मोदी आज हरियाणा में जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से विकसित ये रेलगाड़ी उन्नत रेलवे इंजीनियरिंग में देश की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है।
1: इस ट्रेन में कुल 10 डिब्बे हैं और इसकी शुरुआत होने से यह दुनिया की सबसे लंबी हाइड्रोजन से चलने वाली यात्री ट्रेनों में शामिल हो जाएगी। इसमें 3200 हॉर्स पावर का इंजन लगाया गया है, जो इसे दुनिया की सबसे ताकतवर हाइड्रोजन ट्रेनों में से एक बनाता है। यह रेलगाड़ी हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक से चलती है, जो ट्रेन को चलाने के लिए हाइड्रोजन को विद्युत में परिवर्तित करती है। ग्रीन हाइड्रोजन के उपयोग से कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों से बनने वाली बिजली पर निर्भरता भी कम होगी। यात्रियों की सुरक्षा के लिए ट्रेन में आधुनिक बहुस्तरीय सुरक्षा प्रणाली लगाई गई है, जो हाइड्रोजन रिसाव, अधिक तापमान, आग की लपटों और धुएं का तुरंत पता लगा सकती है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री जालंधर से 5,470 करोड़ रुपए से अधिक की रेल और सड़क अवसंरचना परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इनमें उत्तर प्रदेश से जुड़ी परियोजना भी शामिल है।
2: प्रधानमंत्री अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत 1,570 करोड़ रुपए की लागत से लखनऊ के ऐशबाग जंक्शन स्टेशन सहित 20 राज्यों में 75 पुनर्निर्मित रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन करेंगे। पूर्वोत्तर रेलवे लखनऊ मंडल द्वारा लगभग 24 करोड़ 13 लाख रुपए की लागत से ऐशबाग जंक्शन स्टेशन का अपग्रेडेशन किया गया है। इस आधुनिकीकरण से हजारों यात्रियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होंगी। स्टेशन के सभी प्लेटफॉर्मों पर यात्रियों की बैठने की क्षमता बढ़ाने, सर्कुलेटिंग एरिया बढ़ाने, वेटिंग हॉल को आधुनिक रूप देने सहित कई अन्य सुविधाओं में भी बढ़ोतरी की गई है। समाचार कक्ष से वेद प्रकाश पाठक।
0: रेल मंत्रालय ने टिकट बुकिंग आसान और अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए भारतीय रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कारपोरेशन IRCTC की वेबसाइट का एक नया स्वरूप जारी किया है। हमारे संवाददाता ने बताया कि IRCTC ने इसमें 4 बड़े सुधार किए हैं।
3: इन सुधारों में पहला सुधार है कि इसमें कैप्चा, पॉपअप या ध्यान भटकाने वाली दूसरी चीजें नहीं हैं। दूसरा, यात्री सभी क्लास में सीट की उपलब्धता देख सकते हैं। तीसरा, इसमें टिकट बुक करने के लिए जरूरी स्टेप्स की संख्या कम है और वेबसाइट अब यात्रियों की जानकारी सेव कर लेगी, जिससे दोबारा बुकिंग करना आसान हो जाएगा। मौजूदा वेबसाइट के होम पेज पर भी इस नए बीटा वर्जन का लिंक उपलब्ध है। मंत्रालय ने उपयोगकर्ताओं से इसके आसान फीचर्स पर फीडबैक देने का अनुरोध किया है। सकलेन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश को रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग, सेमीकंडक्टर तथा अन्य उभरती प्रौद्योगिकियों का राष्ट्रीय नेतृत्वकर्ता बनाने के लिए व्यापक कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने उत्तर प्रदेश को देश का अग्रणी आईटी, डिजिटल सेवाओं और नवाचार केंद्र बनाने के लक्ष्य के साथ कार्य करने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी नीति को बदलती वैश्विक आवश्यकताओं के अनुरूप अधिक व्यवहारिक, निवेशक अनुकूल और रोजगारोन्मुख बनाया जाए। श्री राम जन्मभूमि मंदिर के चढ़ावे में अनियमितता मामले में पुलिस ने कल एंटी करप्शन कोर्ट में रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव और मनीष यादव की एक हफ्ते की कस्टडी रिमांड के लिए आवेदन दिया है। रिमांड पर आज सुनवाई होगी। इससे पहले विवेचक आशुतोष तिवारी ने कोर्ट से अनुमति लेकर कल सुबह ही दोनों से लगभग एक घंटे की पूछताछ भी की। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR News गोरखपुर और X हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान ने कल वाराणसी में विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 2025 के अंतर्गत आयोजित पहले पंच सम्मेलन में हिस्सा लिया।
4: सम्मेलन में उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और उत्तराखंड के लगभग 500 ग्राम पंचायत प्रधानों ने भाग लिया और ग्रामीण विकास, सुशासन और सशक्त पंचायतों के निर्माण पर व्यापक विचार विमर्श किया। सम्मेलन में पंचायतों की संस्थागत तैयारी, विकास योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और ग्राम स्तर पर पारदर्शी एवं उत्तरदायी शासन व्यवस्था को मजबूत बनाने पर भी विस्तार से चर्चा हुई। समाचार कक्ष से प्रेमचंद्र गुप्ता।
0: कार्यक्रम को संबोधित करते उप मुख्यमंत्री ने कहा कि विकसित भारत जी

0: रामजी अधिनियम के तहत पारदर्शिता के साथ पात्र व्यक्ति को काम भी मिलेगा और गांव का विकास भी होगा।
1: विकसित भारत जी राम जी है, इसमें पीएम गति शक्ति के नाम का एक पोर्टल है, जो सड़क पहले लोग बनाते थे गांव की, कच्ची बनावे चाहे पक्की बनावे, जो तालाब पहले खोदते थे चाहे वह खोद के फिर से उसको भरे और फिर खोदने का काम करें, अब यह डुप्लीकेसी नहीं होगी। पीएम गति शक्ति का मतलब है कि अगर आपने गांव के हर घर तक आप आवागमन और जल निकासी की अस्थायी व्यवस्था करना चाहते हैं तो उसकी कार्य योजना आपको बनाना पड़ेगा।
0: केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान ने कहा कि विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 2025 का उद्देश्य ग्राम पंचायतों को अधिक सक्षम, जवाबदेह और विकास परक बनाना है।
2: विकसित भारत जी राम जी जो 1 जुलाई से पूरे देश में एक साथ लागू हुआ आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, जब इसकी कल्पना की गई तो सिर्फ ये कल्पना नहीं था, प्रधानमंत्री मोदी जी का यही सपना था कि हमारा जो श्रमिक है 12 करोड़ से ऊपर के लोग इस देश में एक घंटा भी बिना काम के वो न रहे। ये हमारी सरकार की इच्छा शक्ति ही नहीं है, पारदर्शिता का एक बहुत बड़ा माध्यम है। अपने गांव को कैसे विकसित भारत के सपनों को पूरा करने के लिए आप कितना खड़े हैं यह आपके ऊपर।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने सीबीएसई पाठ्यक्रम के तहत 9वीं कक्षा में तीसरी भाषा शुरू करने पर चिंता जताई और कहा कि इससे विद्यार्थियों में तनाव बढ़ेगा। न्यायालय ने सुझाव दिया है कि इसे 5वीं या 6ठी कक्षा में शुरू किया जाना चाहिए ताकि विद्यार्थी इसे आसानी से अपना सकें। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने नीट यूजी 2026 के परीक्षा परिणाम बीती रात घोषित कर दिए। परीक्षा में 11,21,000 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। एनटीए के अनुसार सफल अभ्यर्थियों में 58% से अधिक महिला अभ्यर्थी शामिल हैं। 21 जून को आयोजित इस परीक्षा में करीब 20 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए थे। प्रदेश के विभिन्न जिलों में रुक रुक कर हो रही बारिश और बांधों से पानी छोड़े जाने के कारण कई नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। बाराबंकी में घाघरा और कुशीनगर में गंडक नदी खतरे के निशान के पास बह रही है। अयोध्या में सरयू नदी का जलस्तर भी चेतावनी बिंदु के करीब पहुंच चुका है। केंद्रीय जल आयोग के जूनियर इंजीनियर आकाश प्रताप ने बताया कि प्रशासन जलस्तर पर नजर रख रहा है और जरूरत पड़ने पर आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।
3: पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश हो रही है जिसकी वजह से जल स्तर बढ़ रहा है। पिछले एक दिन में जो है लगभग 40 सेंटीमीटर पानी बढ़ा है और अगर बारिश ऊपरी क्षेत्रों में लगातार होती रहेगी तो जल स्तर इसी तरह से बढ़ेगा। वार्निंग लेवल जैसे ही क्रॉस करेगा तो जितने भी कंसर्न डिपार्टमेंट है उनको जल स्तर की सूचना दे दी जाएगी।
0: मौसम विभाग ने आज राज्य के पश्चिमी जनपदों में बौछारें पड़ने और पूर्वी क्षेत्र में भारी बारिश और बिजली गिरने का येलो अलर्ट जारी किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को आज रवाना करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लखनऊ के ऐशबाग सहित 75 पुनर्निर्मित रेलवे स्टेशनों का वर्चुअल माध्यम से करेंगे उद्घाटन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के कार्यों की समीक्षा की। उत्तर प्रदेश को देश का अग्रणी आईटी, डिजिटल सेवाओं और नवाचार का केंद्र बनाने के लक्ष्य पर दिया जोर। विकसित भारत जी रामजी अधिनियम के तहत वाराणसी में आयोजित हुआ पहला पंच सम्मेलन। उत्तर प्रदेश सहित 4 राज्यों के 500 ग्राम प्रधान हुए शामिल। और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने घोषित किए नीट यूजी 2026 के परीक्षा परिणाम। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
4: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो यह दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। एपीजे अब्दुल कलाम। असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। एपीजे अब्दुल कलाम।
5: बढ़ते हुए यह धुएं से है सब परेशान, शुद्ध वायु दुर्लभ, खतरे में है मनुष्य की जान। कूड़ा और प्लास्टिक जो लोग जलाएं, प्रदूषण के कारण बन जाएं, सांस लेने में तकलीफ आए, आरोग्य को हानि पहुंचाए।
6: मीडियम वेव 241.5 चार मीटर यानी 1242 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये वाराणसी केंद्र है। प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत। इस कार्यक्रम में सुनिए उस्ताद मुस्ताक अली खां का सितार वादन। आपके साथ तबला संगत की है पंडित जेरी मेसी ने।

0: अभी आप सुन रहे थे उस्ताद मुश्ताक अली खां का सितार वादन, राग था अहिर भैरव। आपके साथ तबला संगत की थी पंडित जेरी मेसी ने। इसी के साथ शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। सुबह के 8 बजने वाले हैं, सुनेंगे समाचार प्रभात हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
2: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं, रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा के जींद और सोनीपत के बीच भारत की पहली हाइड्रोजन चालित रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। दिल्ली सरकार ने नवाचार और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए 400 करोड़ रुपए के स्टार्टअप और इसके नीतिगत ढांचे को मंजूरी दी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने नीट यूजी पुनर्परीक्षा के परिणाम घोषित किए। गुजरात आतंकरोधी दस्ते ने आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े 5 लोगों को पाटन जिले से गिरफ्तार किया। और क्रिकेट में इंग्लैंड ने दूसरे एक दिवसीय मैच में भारत को 4 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला 1-1 से बराबर की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब का दौरा करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री हरियाणा में जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के बीच हाइड्रोजन से चलने वाली पहली रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: इस प्रोजेक्ट के साथ भारत ने एक नया वैश्विक कीर्तिमान स्थापित किया है और उन कई देशों से आगे निकल गया है जो अभी इस तकनीक का परीक्षण कर रहे हैं। जहां जर्मनी और चीन जैसे देश आमतौर पर 2 या 3 कोच वाली छोटी हाइड्रोजन ट्रेन चलाते हैं, वहीं भारत ने 10 कोच वाली ट्रेन विकसित की है। इस ट्रेन की क्षमता लगभग 2600 यात्रियों को ले जाने की है, जो दुनिया भर की अन्य हाइड्रोजन ट्रेनों की तुलना में सबसे ज्यादा है। 3200 हॉर्स पावर की क्षमता के साथ यह दुनिया की सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन

0: ट्रेनों में से एक है। यह ट्रेन हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक से चलती है, जो हाइड्रोजन को विद्युत में परिवर्तित करके ट्रेन को आगे बढ़ाती है। इस प्रक्रिया में केवल जल वाष्प उप उत्पाद के रूप में उत्पन्न होता है, जिसके परिणाम स्वरूप रेल संचालन के दौरान कार्बन उत्सर्जन शून्य होता है। यात्रियों की सुरक्षा के लिए ट्रेन में आधुनिक बहुस्तरीय सुरक्षा प्रणाली लगाई गई है, जो हाइड्रोजन रिसाव, अधिक तापमान, आग की लपटों और धुएं का तुरंत पता लगा सकती है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, जींद।
1: प्रधानमंत्री जींद के एकलव्य स्टेडियम में लगभग 14,700 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। जींद के बाद वे चंडीगढ़ में 4,700 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पंजाब के जालंधर से 5,470 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली रेल और सड़क बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री जलंधर कैंट रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करने के बाद SCS नगर मोहाली रेलवे स्टेशन, श्री मुक्तसर साहिब और श्री अनंतपुर साहिब रेलवे स्टेशनों सहित 20 राज्यों के 74 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का जलंधर से ही वर्चुअली उद्घाटन करेंगे। इन स्टेशनों का पुनर्निर्माण दुनिया के सबसे बड़े स्टेशन पुनर्विकास प्रोग्राम में से एक अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत किया गया है। वह जलंधर कैंट रेलवे स्टेशन से संत रविदास एक्सप्रेस ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाएंगे। यह भारत के दो सबसे पवित्र आध्यात्मिक और सांस्कृतिक केंद्रों अमृतसर और वाराणसी को जोड़ने वाली पहली डायरेक्ट रेलगाड़ी है, जो हफ्ते में 3 बार चलेगी। प्रधानमंत्री नंगल डैम, तलवाड़ा, मुकेरियां नई रेल लाइन प्रोजेक्ट के हिस्से के तौर पर दौलतपुर चौक करतौली नई रेल लाइन का भी उद्घाटन करेंगे और करतौली अंबाला ट्रेन सर्विस को हरी झंडी दिखाएंगे। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर।
1: प्रधानमंत्री ने कहा है कि वे आज तीनों राज्यों के लोगों के बीच विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होने को लेकर उत्साहित हैं। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं का लोगों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने कहा कि इनका सबसे अधिक लाभ देश की युवा शक्ति को मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश भर के 75 पुनर्विकसित अमृत रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन करेंगे। इनमें केरल के 6 रेलवे स्टेशन शामिल हैं। इन स्टेशनों के पुनर्विकास से राज्य में रेल बुनियादी ढांचे और यात्री सुविधाओं में उल्लेखनीय सुधार होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे News on AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
3: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली सरकार ने स्टार्टअप नीति और इसके कार्यान्वयन के लिए नीतिगत ढांचे को मंजूरी दे दी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस नीति के तहत नवाचार और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए अगले 5 वर्षों में 400 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया जाएगा।
4: नवाचार, अनुसंधान और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए इस नीति के अंतर्गत दिल्ली सरकार वार्षिक दिल्ली स्टार्टअप युवा महोत्सव का आयोजन करेगी। इसमें नवाचार करने वाले युवा, शैक्षणिक संस्थान, स्टार्टअप, निवेशक, उद्योग जगत और नीति निर्माता एक मंच पर आकर नए विचारों का प्रदर्शन करेंगे, साझेदारियां

0: विकसित करेंगे और युवाओं को उद्यमिता के लिए प्रेरित करेंगे। शुरुआत में यह नीति 11 राज्य विश्वविद्यालयों, 13 सरकारी वित्त पोषित कॉलेजों, पॉलिटेक्निक संस्थानों, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों और सरकारी स्कूलों में लागू की जाएगी। सरकार पात्र शैक्षणिक संस्थानों में इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित करने और उन्हें मजबूत बनाने के लिए एक मुश्त वित्तीय सहायता भी प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि इसका उद्देश्य राजधानी को देश के अग्रणी नवाचार और उद्यमिता केंद्र के रूप में विकसित करना है। दीपेंद्र के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी का परिणाम घोषित कर दिया है। 11 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी मेडिकल, दंत चिकित्सा, आयुष और अन्य संबंधित कार्यक्रमों के लिए उत्तीर्ण हुए हैं। सभी उम्मीदवारों के अंक आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in पर उपलब्ध हैं। एजेंसी ने कहा है कि परिणाम समय पर घोषित किए गए हैं ताकि उम्मीदवारों के लिए प्रवेश और काउंसलिंग कार्यक्रम सुचारू रूप से चलता रहे। इस वर्ष भारत के 551 शहरों और विदेशों के 14 शहरों में स्थित 5,440 केंद्रों पर लगभग 20 लाख उम्मीदवारों ने पुनर्परीक्षा दी थी। गुजरात आतंकरोधी दस्ते एटीएस ने प्रतिबंधित पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े एक कथित आतंकी मॉड्यूल की जांच के सिलसिले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। एटीएस के अनुसार इन आरोपियों को पाटन जिले के खड़ियाल गांव से गिरफ्तार किया गया। इन लोगों के नाम इस महीने की शुरुआत में गिरफ्तार किए गए जैश ए मोहम्मद के 8 कथित सदस्यों से पूछताछ के दौरान सामने आए थे। जिला न्यायालय ने सभी आरोपियों को 24 जुलाई तक एटीएस की हिरासत में भेज दिया है। गृहमंत्री अमित शाह आज से पश्चिम बंगाल के 3 दिन के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे सीमा सुरक्षा, शासन, कानून व्यवस्था और विकास से संबंधित कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे। श्री शाह कल सिलीगुड़ी में जुमाकांच सीमा चौकी का दौरा करेंगे और 18वीं बटालियन सीमा चौकी पर सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ से संबंधित विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। गृहमंत्री पश्चिम बंगाल में सीमा संबंधी मुद्दों पर एक बैठक की भी अध्यक्षता करेंगे। उत्तर प्रदेश में आज माई भारत राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवक सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इसके बाद अगले 2 दिन चिंतन शिविर का आयोजन होगा। इसका आयोजन युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय कर रहा है। कार्यक्रम का उद्घाटन केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया करेंगे। केरलम में आज से रमाण मास का शुभारंभ हुआ। केरलम में मलयालम पंचांग के कंगिंडम महीने को रमाण मास के रूप में मनाया जाता है। इस दौरान श्रद्धालु आध्यात्मिक शक्ति और मानसिक शांति के लिए रामायण का पाठ करते हैं। आज से कंगिंडम महीने की शुरुआत हो गई है। इसके साथ ही आज से राज्य के अनेक घरों और मंदिरों में प्रतिदिन रामायण पाठ होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अस्सानी से बात की और उनके और पिता अमीर शेख हमद बिन खलीफा अस्सानी के निधन पर शोक व्यक्त किया। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि कतर के अमीर की अमर विरासत दोनों देशों को उनकी रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने में मार्गदर्शन करती रहेगी। उन्होंने भारत और कतर में भारतीय समुदाय के प्रति स्नेह और भारत कतर संबंधों के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता को भी याद किया। ब्रिटेन के ब्रैडफोर्ड में पाकिस्तानी वाणिज्य दूतावास के बाहर कश्मीरी प्रवासियों ने पाकिस्तान के विरोध प्रदर्शन किया। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के नेतृत्व में बुधवार को प्रदर्शनकारियों ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में दमन की ओर ध्यान देने की अपील की। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि सुरक्षा बलों ने लोगों की हत्या, जबरन हिरासत, घरों पर छापेमारी और आम नागरिकों, महिलाओं तथा बच्चों के खिलाफ हिंसा की है। अमेरिका में ट्रंप प्रशासन ने वामपंथी चरमपंथी आतंकवादियों को देश में प्रवेश करने से रोकने के लिए नई वीजा प्रतिबंध नीति लागू की है। अमेरिकी प्रशासन का कहना है कि ये नीति ऐसे तत्वों को रोकने के लिए है जो हिंसक गतिविधियों के जरिए लोगों की सुरक्षा, आर्थिक स्थिरता और राजनीतिक प्रक्रियाओं को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल देखने के लिए रविवार को न्यूयॉर्क न्यू जर्सी स्टेडियम में मौजूद रहेंगे। फाइनल मुकाबला मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना और स्पेन के बीच खेला जाएगा। फुटबॉल विश्व कप संयुक्त रूप से राज्य अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया और न्यू जर्सी में होने वाले फाइनल के साथ इसका समापन होगा। फुटबॉल में भारत की महिला टीम को एएफसी अंडर 17 अगले वर्ष होने वाले एशियन कप क्वालिफायर के ग्रुप ई में मलेशिया, सीरिया और इराक के साथ रखा गया है। भारत लगातार दूसरी बार महिला एशियन कप के लिए क्वालिफाई करने की कोशिश करेगा। इंग्लैंड ने दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत को 4 विकेट से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत की पूरी टीम 44 ओवर में 233 रन पर सिमट गई। जवाब में इंग्लैंड ने 6 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। 3 मैचों की श्रृंखला अब 1-1 की

0: बराबरी पर है। श्रृंखला का अंतिम मैच रविवार को लॉर्ड्स में खेला जाएगा। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
1: धन्यवाद फरहत। नीट पेपर लीक के बाद अभूतपूर्व सुरक्षा के बीच आयोजित नीट यूजी 2026 का परिणाम घोषित होने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों की सुर्खी है। हिंदुस्तान लिखता है, नीट यूजी का परिणाम जारी, सफल होने वालों में 58% छात्राएं। अमर उजाला के शब्द हैं, पंजाब के आर्यन और हरियाणा के पंशुल अव्वल, 19 बच्चों को 700 से अधिक अंक। अमेरिका और ईरान के बीच ताजा सैन्य संघर्ष को देखते हुए भारत ने अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए सख्त कदम उठाया। जनसत्ता ने इस खबर को अपनी सुर्खी बनाते हुए लिखा है, होर्मुज पर जहाजों में भारतीय नागरिकों की तैनाती पर रोक, नौवहन प्रशासन महानिदेशालय का निर्देश। पुरी जगन्नाथ रथ यात्रा में भगदड़, एक श्रद्धालु की मौत, लोकसत्ते की सुर्खी है। पत्र लिखता है, खराब मौसम और बारिश के बाद उमड़ी 10 लाख की भीड़। राजधानी में 16 साल के बाद सबसे लंबा मानसून ब्रेक। दिल्ली में अगले 4-5 दिन और अच्छी बारिश होने की उम्मीद बेहद कम, हिंदुस्तान की सुर्खी है। दैनिक भास्कर ने अनुमान शीर्षक से खबर दी है, दो नए सिस्टम से रफ्तार पकड़ेगा मानसून, 20 से उत्तर और मध्य भारत में तेज बारिश। 40 से अधिक देशों के साथ साझा समुद्री अभ्यास, 20 जुलाई से होगा, नवभारत टाइम्स की खबर है। पत्र लिखता है, कोची स्थित सदर्न नेवल कमांड में होगी ऑपरेशन की शुरुआत। लोकसत्ते ने साइबर अपराध पर अपना संपादकीय प्रकाशित किया है, शीर्षक दिया है, डिजिटल भारत पर साइबर अपराध का साया। पत्र लिखता है, साइबर अपराध की सबसे चिंताजनक बात है कि इसकी कोई भौगोलिक सीमा नहीं होती। दुनिया के कई देशों में बैठे अपराधी भारत के नागरिकों को अपना निशाना बना रहे हैं, ऐसे में सभी को सावधान रहना जरूरी है।
0: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा के जींद और सोनीपत के बीच भारत की पहली हाइड्रोजन चालित रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। दिल्ली सरकार ने नवाचार और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए 400 करोड़ रुपए के स्टार्टअप और इसके नीतिगत ढांचे को मंजूरी दी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने नीट यूजी पुनर्परीक्षा के परिणाम घोषित किए। गुजरात आतंकरोधी दस्ते ने आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े 5 लोगों को पाटन जिले से गिरफ्तार किया। और क्रिकेट में इंग्लैंड ने दूसरे एक दिवसीय मैच में भारत को 4 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला 1-1 से बराबर की। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम शगुन चोपड़ा। द हेडलाइंस। Prime Minister Narendra Modi to flag off India's first hydrogen-powered train from Jind Railway Station in Haryana this morning. Delhi government approves 400 crore rupees startup and incubation policy to promote innovation and self-employment. National Testing Agency declares results of NEET UG 2026 re-examination. Gujarat ATS arrests 5 persons from Patan district in connection with its probe into Jaish-e-Mohammed terror module. And in men's cricket, hosts England beat India by 4 wickets in second ODI to level 3 match series 1-1. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi will visit Haryana, Chandigarh and Punjab today. During his visit to Haryana, the Prime Minister will flag off India's first hydrogen train between Jind and Sonipat at Jind Railway Station. He will also lay the foundation stone and dedicate to the nation various development projects worth around 14,700 crore rupees at Eklavya Stadium in Jind and address the gathering on the occasion. The launch of the first hydrogen-powered train marks an important step towards the adoption of clean and sustainable mobility in the railway sector. Designed, engineered and integrated in India, the train has been developed using indigenous technology, reflecting the country's growing capabilities in advanced railway engineering. With its introduction, India joins a select group of countries that have operational hydrogen-powered trains. These include Germany, Japan, China, and the United States. More from our correspondent.
3: India has set a new global benchmark with this project, surpassing many other nations currently testing this technology. While countries like Germany and China usually run two or three coach hydrogen trains, India has developed a 10-coach formation. It

आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं नीतिका त्यागी। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज सुबह हरियाणा में जींद रेलवे स्टेशन से हाइड्रोजन से चलने वाली भारत की पहली रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। दिल्ली सरकार ने इख्तिरा और खुद रोजगार को बढ़ावा देने की खातिर 400 करोड़ रुपए मालियत की स्टार्टअप और इंक्यूबेशन पॉलिसी को मंजूरी दे दी है। इम्तिहानात के निकाद से मुतालिक एजेंसी ने नीट यूजी 2026 के दोबारा कराए गए इम्तिहान के नतीजों का ऐलान कर दिया है। गुजरात एटीएस ने जैश ए मोहम्मद तंजीम के दहशतगर्द गिरोह की अपनी तहकीकात के सिलसिले में पाटन जिले से 5 अफराद को गिरफ्तार किया है। और मर्दों के क्रिकेट में दूसरे एक रोजा मैच में इंग्लैंड ने भारत को 4 विकेट से हराकर 3 मैचों की सीरीज में 1-1 से बराबरी हासिल कर ली है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब के दौरे पर जा रहे हैं। हरियाणा के अपने दौरे में वजीर आजम जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के दरमियान हाइड्रोजन से चलने वाली भारत की पहली रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। जनाब मोदी जींद के एकलव्य स्टेडियम में तकरीबन 14,700 करोड़ रुपए मालियत के मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखेंगे और मुल्क के नाम वक्फ करेंगे। साथ ही वो इस मौके पर मौजूद लोगों से खिताब भी करेंगे। हाइड्रोजन से चलने वाली पहली ट्रेन का आगाज रेलवे के शोबे में माहौलियात के लिए साजगार और पायदार मोबिलिटी इख्तियार करने की सम्त एक अहम कदम है। अंदरूनी मुल्क वसाइल और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए ये रेलगाड़ी बनाई गई है, जिससे जदीद तर्ज की रेलवे इंजीनियरिंग में भारत की बढ़ती हुई सलाहियत की अक्कासी होती है। इस तरह भारत उन चुनिंदा मुल्कों में शामिल हो गया है जहां हाइड्रोजन

0: कार्डिफ के सोफिया गार्डन्स में दूसरे एक रोजा बैन अल-अक़वामी मैच में मेजबान इंग्लैंड ने भारत को 4 विकेट से हरा दिया और 3 मैचों की सीरीज 1-1 से बराबर कर दी। पहले बल्लेबाजी करते हुए शुभमन गिल की कयादत में भारतीय टीम 44 ओवर्स में महज 233 रन ही बना पाई। भारत के लिए श्रेयस अय्यर ने सबसे ज्यादा 66 रन बनाए जबकि विराट कोहली ने 65 रन स्कोर किए। इंग्लैंड के लिए जो रूट ने 99 रन स्कोर किए और वो नॉट आउट रहे, उन्हें मैच का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। अब दोनों टीमें लॉर्ड्स के तारीखी क्रिकेट मैदान पर इतवार के रोज इस सीरीज का आखिरी और फैसलाकुन मैच खेलेंगी। व्हाइट हाउस ने तस्दीक की है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इतवार की रात को न्यूयॉर्क के न्यूजर्सी स्टेडियम में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना और स्पेन के दरमियान फीफा वर्ल्ड कप का फाइनल मैच देखने जाएंगे। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं अर्जुमंद अली खान।
1: शुक्रिया नितिका। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के तकरीबन सभी उर्दू अखबारों ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के आज हरियाणा दौरे से मुतालिक खबर को अपनी शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा प्रताप की शह सुर्खी है, वजीर आजम आज हरियाणा में मुल्क की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। 10 कोच वाली इस ट्रेन में 2600 मुसाफिर सफर कर सकेंगे। वजीर दिफा राजनाथ सिंह के सरहदी सड़क तंजीम BRO की स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्फ्रेंस से खिताब करने से मुतालिक खबर को भी अखबारों में नुमाया तौर पर शाये किया गया है। रोजनामा इनकलाब ने इस दौरान दिए गए उनके इस बयान को शह सुर्खी बनाया है कि जदीद हथियारों के बावजूद स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर की अहमियत बरकरार है। सड़कें, सुरंगें, हवाई अड्डे और बंदरगाहें फौजी मुहिमात और कौमी सलामती के लिए इंतहाई अहम।
0: और अब आखिर में खास खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज सुबह हरियाणा में जींद रेलवे स्टेशन से हाइड्रोजन से चलने वाली भारत की पहली रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। दिल्ली सरकार ने इख्तिरा और खुद रोजगार को बढ़ावा देने की खातिर 400 करोड़ रुपए मालियत की स्टार्टअप और इंक्यूबेशन पॉलिसी को मंजूरी दे दी है। इम्तिहानात के निकात से मुतालिक एजेंसी ने नीट UG 2026 के दोबारा कराए गए इम्तिहान के नतीजों का ऐलान कर दिया है। गुजरात ATS ने जैश ए मोहम्मद तंजीम के दहशतगर्द गिरोह की अपनी तहकीकात के सिलसिले में पाटन जिले से 5 अफराद को गिरफ्तार किया है। और मर्दों के क्रिकेट में दूसरे एक रोजा मैच में इंग्लैंड ने भारत को 4 विकेट से हराकर 3 मैचों की सीरीज में 1-1 से बराबरी हासिल कर ली है। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।

0: मीडिया वेव के मीटर पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र को, सुनेंगे मधुरिमा प्रोग्राम। पहले सुन लेते हैं ये संदेश।
1: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
5: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
4: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
5: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
4: बुकिंग है तो संपर्क करें
6: 0542227658,
7: 0542227658।

मधुरिमा द साउंड ऑफ मेलोडी मधुरिमा मधुरिमा सुनने वाले श्रोताओं को चित्रा का नमस्कार। श्रोताओं, आज बात करेंगे पल क्षण यारी मोमेंट की। यहाँ हर पल एवरी मोमेंट की अहमियत खूबसूरती और जिंदगी जीने के नज़रिए को बयां करता है। जिंदगी का हर पल खूबसूरत है, बस इसे देखने के लिए एक प्यारे नज़रिए की ज़रूरत होती है। जो बीत गया उसे भूल जाओ, जो आने वाला है उसको उम्मीद रखो, लेकिन जो

हर पल अभी तुम्हारे पास है, उसे जी भर के जी लो। हमारी हिंदी फिल्मी गानों में इस शब्द को बहुत खूबसूरती से पिरोया गया है। कभी ये बीते वक्त की याद दिलाता है तो कभी आज में जीने की सीख देता है। ये गीत हर उस इंसान की धड़कन है जो प्यार में है। यहाँ पल पल का मतलब हर एक सेकंड की बेताबी और

जिंदगी के फिलॉसफी को बयां करता ये बहुत ही खूबसूरत गीत है जो हम आपको सुनवाले हैं, जो कहता है, हो सके तो इसमें जिंदगी बिता दो। पल जो ये जाने वाला है हमें सिखाता है कि जो पल अभी हाथ में है उसे खुल करके जी लिया जाए।

प्यार में डूबे दिल की एक मासूम सी गुजारिश, जहां पूरी जिंदगी नहीं बल्कि सिर्फ एक पल की मोहब्बत ही काफी लगती है।

0: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मधुरमा। होंगी और भी बातें और बातों के साथ मधुर गीतों का सिलसिला इस छोटे से अंतराल के बाद।
1: डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसे रोग संचारी रोग होते हैं। इनसे बचने के लिए घर के दरवाजे और खिड़कियों पर जाली लगवाएं, मच्छरदानी का प्रयोग करें, पानी की टंकी को ढक कर रखें, पूरी बांह वाले कपड़े पहने, कूलर की नियमित सफाई करें और अनुपयोगी वस्तुओं में पानी ना जमा होने दें।
2: अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800-1805-145 पर कॉल करें।
1: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
3: आकाशवाणी वाराणसी से प्रत्येक सोमवार से शुक्रवार तक दिन में 12 बजे सुनिए NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम।
0: अपनों के साथ बिताया गया हर पल एक अनमोल खजाना है।

जिसे वक्त भी हमसे कभी छीन नहीं सकता। सच्ची खुशी बड़ी बड़ी चीजों में नहीं, बल्कि अपनों के साथ मुस्कुराते हुए बिताए गए हर एक छोटे से पल में है।

रामायण के प्रसंग पर आधारित ये अगला गीत उस वक्त की बेचैनी को दिखाता है जब इंतजार का एक एक पल सदियों जैसा भारी लगने लगता है।

हर पल में कोई ना कोई कहानी होती है, कुछ अधूरी तो कुछ सुहानी होती है। संभाल कर रखो इन पलों को यादों की किताब में, क्योंकि लौट कर सिर्फ यादें आती हैं, वो पल नहीं। इसी के साथ आज का मधुरिमा बस इतना ही, दीजिए इजाज़त।

मधुरिमा द साउंड ऑफ मेलोडी मधुरिमा अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मधुरिमा। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। सुबह के 9:15 होने वाले हैं, सुनेंगे जिले की हलचल हमारे लखनऊ केंद्र से बस कुछ ही पलों में।

0: आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है।
1: जिले की हलचल, आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए शाहजहांपुर और प्रतापगढ़ जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं शाहजहांपुर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है कौशलेंद्र मिश्रा का।
2: शाहजहांपुर में बीते माह विकास, जन कल्याण, पर्यावरण संरक्षण, कृषि और प्रशासनिक गतिविधियां सुर्खियों में रहीं। राजकीय इंटर कॉलेज खिन्नीबाग मैदान में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत सामूहिक विवाह कार्यक्रम संपन्न हुआ, जहां 177 हिंदू और 28 मुस्लिम सहित कुल 205 जोड़ों का विवाह संपन्न कराया गया। मुख्य अतिथि वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने नव दंपतियों को आशीर्वाद देते हुए कहा कि प्रदेश सरकार बेटियों की शिक्षा, सुरक्षा, आत्मनिर्भरता और विवाह को लेकर पूरी तरह संवेदनशील है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत प्रत्येक जोड़े पर 1,00,000 रुपए खर्च किए जा रहे हैं, जिसमें 64,000 रुपए कन्या के बैंक खाते में, 21,000 रुपए की गृहस्थी सामग्री तथा 15,000 रुपए समारोह के आयोजन पर व्यय किए जाते हैं। उन्होंने नव विवाहित दूल्हों से अपनी पत्नियों का सम्मान करने और उन्हें समान अधिकार देने की अपील भी की। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में वृक्षारोपण महायज्ञ 2026 का आयोजन हुआ। विकास खंड भावलखेड़ा में वन विभाग द्वारा 7,500 पौधों का रोपण कर अभियान की शुरुआत की गई। वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना और सांसद अरुण कुमार सागर ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत हरिशंकरी पौधा लगाकर लोगों को अधिक से अधिक पौधे लगाने और उनकी देखभाल करने का संदेश दिया। इस वर्ष जनपद में 52.55 लाख पौधारोपण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसे जन सहभागिता से पूरा करने का संकल्प लिया गया।
3: बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण इस अतौलिया क्षेत्र में खासतौर से किया गया। ये एक बहुत अच्छा प्रयास है ग्लोबल वार्मिंग को मिनिमाइज करने का और जो गर्मी पड़ रही है उसको भी मिनिमाइज करने का एक बहुत अच्छा प्रयास है। इस साल 37 करोड़ का लक्ष्य रखा गया, इसमें से 35 करोड़ वृक्ष केवल आज लगाने

0: करने का लक्ष्य रखा है। 52,55,000 शाहजहानपुर में लगाने का लक्ष्य है। ये लक्ष्य आज शाम तक हम जरूर पूरा करेंगे।
1: इसी क्रम में जिला गंगा समिति के तत्वावधान में गर्रा नदी स्थित राजघाट पर बृहद स्वच्छता एवं श्रमदान अभियान चलाया गया। विभिन्न सामाजिक संगठनों और स्वयं सेवकों ने घाट और नदी तट की सफाई कर लोगों को स्वच्छ नदी स्वस्थ जीवन का संदेश दिया और नदी और सार्वजनिक स्थलों को स्वच्छ रखने का आह्वान भी किया। सड़क सुरक्षा को लेकर यातायात पुलिस ने थाना पुलिस के साथ संयुक्त अभियान चलाया। ड्रंकन ड्राइविंग, मॉडिफाइड साइलेंसर, प्रेशर हॉर्न और अन्य यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सघन कार्रवाई करते हुए कुल 1,843 वाहनों के चालान किए गए। पुलिस ने लोगों को हेलमेट और सीट बेल्ट का अनिवार्य रूप से प्रयोग करने तथा सुरक्षित वाहन संचालन के प्रति जागरूक भी किया। विकास कार्यों को गति देते हुए वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने हथौड़ा क्षेत्र में 15.44 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले सदर तहसील के नए अनावासीय भवन का शिलान्यास किया। उन्होंने कहा, नए तहसील भवन के निर्माण से आम नागरिकों को बेहतर प्रशासनिक सुविधाएं मिलेंगी तथा सदर और ददरौल क्षेत्र के लोगों को आवागमन में भी काफ़ी सुविधा होगी। उन्होंने निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। प्रमुख सचिव एवं जनपद के नोडल अधिकारी मनीष चौहान ने विकास भवन में CM डैशबोर्ड, कानून व्यवस्था, राजस्व एवं विकास कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण कार्य सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। समीक्षा बैठक में बताया गया कि शाहजहांपुर ने CM डैशबोर्ड पर प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, जिस पर प्रमुख सचिव ने प्रशासनिक टीम की सराहना भी की। अपने भ्रमण के दौरान प्रमुख सचिव ने लगभग 26.33 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे अत्याधुनिक स्पोर्ट्स स्टेडियम का भी निरीक्षण किया। उन्होंने स्विमिंग पूल, बैडमिंटन हॉल, कबड्डी हॉल और 400 मीटर सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक का जायजा लेते हुए निर्माण कार्यों की गुणवत्ता की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि स्टेडियम के तैयार होने से जनपद के खिलाड़ियों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खेल सुविधाएं उपलब्ध होंगी तथा खेल प्रतिभाओं को नई पहचान मिलेगी। जिलाधिकारी धर्मेंद्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में आत्मा गवर्निंग बोर्ड की बैठक आयोजित हुई, जिसमें कृषि एवं किसान कल्याण से जुड़ी विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की गई। जिलाधिकारियों ने अधिकारियों को सभी योजनाओं का 100% एवं पारदर्शी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही किसानों की आय बढ़ाने और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जनपद में फूड फेस्टिवल आयोजित करने के निर्देश भी दिए। शाहजहांपुर में बीते माह जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन, पर्यावरण संरक्षण, कृषि विकास, खेल सुविधाओं के विस्तार और आधारभूत संरक्षण के विकास को लेकर प्रशासनिक गतिविधियां पूरे जोर शोर से जारी रहीं। कौशल मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, शाहजहांपुर।
2: शाहजहांपुर जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं प्रतापगढ़ जिले की हलचल। आलेख और स्वर है अजितेश त्रिपाठी का।
3: प्रतापगढ़ को विकास की सौगात देते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा सदर और विधानसभा विश्वनाथगंज के अंतर्गत 384,71,00,000 रुपए से अधिक की 111 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इनमें प्रतापगढ़ सदर की 42 व विश्वनाथगंज की 13 परियोजनाओं का लोकार्पण एवं प्रतापगढ़ सदर की 45 एवं विश्वनाथगंज विधानसभा की 11 परियोजनाओं का शिलान्यास शामिल है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रतापगढ़ के औला किसानों ने जो अमृत फल दिया, उसके अनेक उत्पाद स्वास्थ्य के लिए लाभदायक हैं, इसी से यहाँ की समृद्धि देखकर अच्छा लगता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में सबका साथ सबका विकास का नारा दिया था। प्रदेश में बिना किसी भेदभाव के सभी गरीबों किसानों को योजनाओं का लाभ मिल रहा है। मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना, मुख्यमंत्री माटी कला रोजगार योजना, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान एवं प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के प्रचार प्रसार के उद्देश्य से तहसील सदर के नगर पंचायत पृथ्वीगंज के पृथ्वीगंज भगेसरा में एक दिवसीय जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के अध्यक्षता कार्यालय पर भाई रहेंद्र कुमार शुक्ला ने की। शिविर में उपस्थित लोगों को विभाग द्वारा संचालित विभिन्न स्वरोजगार परक योजनाओं की जानकारी देते हुए पात्रता आवेदन प्रक्रिया, ऋण संबंधी सुविधा एवं सरकारी सहायता संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं से अवगत कराया गया। साथ ही युवाओं, कारीगरों एवं ग्रामीण उद्यमियों को रोजगार का लाभ उठाकर आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित किया गया। मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर राम मोहन मीणा की अध्यक्षता में संसद विधायक के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में संबंधित कार्यदायी संस्थाओं के साथ त्वरित आर्थिक विकास, पूर्वांचल विकास निधि, संसद निधि, विधायक निधि से कराए जा रहे कार्यों की समीक्षा विकास भवन सभागार में की। समीक्षा में वित्तीय वर्ष 2025-26 एवं 2026-27

0: 26-27 में त्वरित आर्थिक विकास योजना से रुपए 2,926.75 लाख की लागत से स्वीकृत 156 कार्यों में 8 कार्यों की प्रगति तथा अवशेष कार्य निविदा की प्रक्रिया में पाए गए। निविदा की प्रक्रिया से पूर्ण कराते हुए सभी कार्यों को माह नवंबर 2026 तक पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। योजना अंतर्गत भैरवनाथ धाम में कन्वेंशन सेंटर के निर्माण के लिए अब तक भूमि सीमांकन न होने पर संबंधित उप जिला अधिकारी को 2 दिवसीय में सीमांकन कराने के निर्देश दिए गए। सांसद प्रताप गर्ग के वर्ष 2024-25 के सांसद निधि से स्वीकृत अपूर्ण 9 कार्यों के संबंध में अधिशासी अभियंता UPSIC प्रयागराज से जानकारी करने पर उनके द्वारा भूमि विवाद होने की स्थिति से अवगत कराया गया, जिस पर नाराजगी व्यक्त करते हुए राजस्व विभाग से सहयोग प्राप्त कर विवाद निस्तारित कर 15 दिवस के अंदर कार्य पूर्ण कराने के निर्देश दिए गए। जनपद में विशेष संचारी रोग नियंत्रण कार्यक्रम व दस्तक अभियान का शुभारंभ मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर AN प्रसाद द्वारा किया गया। जिला मलेरिया अधिकारी द्वारा बताया गया कि विशेष संचारी नियंत्रण अभियान का वर्ष 2026 तक का यह दूसरा चरण संचालित किया जाएगा। अभियान के अंतर्गत स्वास्थ्य विभाग सहित पंचायती राज, नगर विकास, शिक्षा, बाल विकास एवं पुष्टाहार, कृषि, पशुपालन, सिंचाई तथा अन्य संबंधित विभागों के समन्वय से व्यापक स्वच्छता एवं जागरूकता गतिविधियों संचालित की जाएंगी। उन्होंने बताया कि अभियान के दौरान डेंगू, मलेरिया, चिकुनगुनिया, जापानी इंफ्लुएंजा सिंड्रोम तथा अन्य संचारी रोगों व जल जनित रोगों की रोकथाम के लिए जल भराव समाप्त करने, एंटी लावा का छिड़काव, स्रोतों का समापन, बुखार के रोगियों को शीघ्र पहचान, जांच एवं उपचार, जन जागरूकता तथा मच्छर विकर्षी पौधे जैसे तुलसी, गेंदा, लेमन ग्रास, लेवेंडर, सेटोनेला आदि के रोपण जैसे कार्यक्रम पर विशेष बल दिया जाएगा। इसके उपरांत मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा संचारी रोगों और जल जनित रोगों से बचाव के प्रति सजग रहने के लिए उपस्थित लोगों को शपथ ग्रहण कराई गई। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने जनपद वासियों से अपील की कि वे अपने घरों एवं आसपास स्वच्छता बनाए रखें, पानी के एकत्र न होने दें, कूलर एवं जल पात्रों की नियमित सफाई करें, मच्छरों से बचाव के उपाय अपनाएं तथा बुखार एवं अन्य रोगों के लक्षण दिखने पर निकटतम सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर तत्काल जांच एवं उपचार उपलब्ध कराएं।
1: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।
2: जिले की हलचल में आज आपने सुनी शाहजहांपुर और प्रतापगढ़ जिलों की खबरें।
3: यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। आइए आपको खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचना दे दें। पुलिस अधीक्षक जनपद बलिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार मुनि कुमार पुत्र शंकर रावत निवासी अंबेडकर नगर जगदीशपुर पानी टंकी के पास थाना कोतवाली जिला बलिया उत्तर प्रदेश। मुनि कुमार दिनांक 1 फरवरी 2026 को बाहर घूमने के लिए भोर में 3 बजे घर से निकले थे और लौटकर नहीं आए। इनके बारे में जानकारी की बातें इस प्रकार है। उम्र है 14 वर्ष, कद है 5 फीट, रंगोरा है। लापता होने के दौरान इन्होंने काही कलर की जैकेट और पैंट पहन रखी थी। इनके बारे में यदि किसी भी प्रकार की जानकारी हो तो निकटतम थाना अध्यक्ष या पुलिस अधीक्षक जनपद बलिया को 9450442255 पर सूचित करें। क्षेत्राधिकारी सदर बलिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार नीरज कुमार मिश्रा पुत्र अशोक मिश्रा निवासी बांसडीह कोतवाली जिला बलिया उत्तर प्रदेश। नीरज दिनांक 7 मार्च 2025 को रात्रि 8 बजे अपने घर से अकेले लक्ष्मणपुर शादी में जाने के लिए निकले थे और वापस लौट कर नहीं आए। इनके बारे में जानकारी की बातें इस प्रकार है। उम्र है 36 वर्ष, कद 6 फुट, रंगोरा। लापता होने के समय उन्होंने गुलाबी रंग की शर्ट, नीली जीन्स और सफेद रंग का जूता पहन रखा था। इनके बारे में यदि किसी भी प्रकार की जानकारी हो तो निकटतम थाना अध्यक्ष या क्षेत्राधिकारी सदर बलिया को 9454401307 पर सूचित करें।

प्रभारी निरीक्षक भेलूपुर से प्राप्त जानकारी के अनुसार वेदिका बिंद पुत्री राजकुमार बिंद निवासी हैं B18/194 रेवड़ी तालाब थाना भेलूपुर वाराणसी। वेदिका दिनांक 17 जून 2026 से अपने घर से लापता हो गई हैं। इनके बारे में जानकारी की बातें इस प्रकार है। उम्र है 18 वर्ष, कद 5 फीट लगभग, रंगे हुआ है। लापता होने के समय इन्होंने सफेद लेगिंग और पिंक कुर्ती और सफेद दुपट्टा ले रखा था। इनके बारे में किसी प्रकार की जानकारी हो तो निकटतम थाना अध्यक्ष या प्रभारी निरीक्षक बेलूपुर को 9454043778 पर सूचित करें। थाना गौरवाबाद जनपद जौनपुर से प्राप्त जानकारी के अनुसार सिमरन पुत्री राजेश गौतम निवासी ये हैं गौराबाद शाहपुर जनपद जौनपुर की। ये दिनांक 30 मई 2026 से सुबह 10 बजे से लापता हैं। इनके बारे में जानकारी की बातें इस प्रकार है। उम्र है 16 वर्ष, कद 4 फीट 6 इंच, रंगे हुआ, चेहरा लंबा। लापता होने के समय इन्होंने मटमैले कलर की टी शर्ट और प्लाजो काले रंग की पहन रखी थी। इनके बारे में यदि किसी भी प्रकार की जानकारी हो तो निकटतम थाना अध्यक्ष या थाना गौराबादशाहपुर जनपद जौनपुर को सूचित करें। खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचना समाप्त हुई। यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। सुबह के 9:30 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में सुनेंगे उर्दू कार्यक्रम बस थोड़ी ही देर में, जिसे रिले किया जाएगा हमारे लखनऊ केंद्र से।

0: आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है। प्रस्तुत है उर्दू कार्यक्रम।
1: पेश खिदमत है आज का उर्दू प्रोग्राम शुजाउर रहमान के साथ। पुरखलूस आदाब कबूल फरमाएं। सामाइन, जिंदगी अपने अंदर बेशुमार कहानियां समोए हुए रहती है, ताहम कुछ कहानियां वक्त के शोर में गुम हो जाती हैं और कुछ ऐसी होती हैं जो बरसों बाद भी दिल की दहलीज पर दस्तक देती रहती हैं। अफसाना भी उन्हीं जिंदा हकीकतों का एक खूबसूरत इजहार है। ये महज लफ्जों की तरतीब नहीं बल्कि एहसास, तखय्युल और मुशाहिदे का ऐसा संगम है जो इंसान को खुद उसके बातिन से रोशनास कराता है। अदब की यही खूबी है कि वो बगैर किसी वाज के बहुत कुछ कह जाता है। तो आइए सामईन, लफ्जों के इस दिलकश सफर का आगाज करते हैं और सुनवाते हैं आपको एक ताजा तरीन अफसाना आस, अफसाना निगार दुर्फिशा चांदनी साहिबा से। महसूस फरमाएं।
2: जून का महीना और शुमाल हिंद की तपती गर्मी, ऐसा लगता था जैसे सूरज आग बरसा रहा हो। चरिंद हो, परिंद हो या इंसान, सभी शिद्दत की गर्मी से बेचैन और बेजार हो रहे थे। सभी स्कूल कॉलेज बंद हुए। ईमान डिग्री कॉलेज का आज आखिरी दिन है। सभी तलबा गर्मी की छुट्टी से खुश नजर आ रहे थे। अमर और बहार खुश थे कि गर्मी की छुट्टियों में कहीं सैर पर जाएंगे। कई सालों से उनकी काफी गहरी दोस्ती थी जो अब माँ बाप की रजामंदी से शादी के पाकीजा रिश्ते में बनने वाली थी। एक दिन अंबर के वालिद कासिम साहब बहार के वालिद ताहिर हुसैन के घर उनसे मुलाकात करने उनके घर आए। दोनों की गुफ्तगू बहुत ही अच्छे माहौल में हुई। चाय पानी और नाश्ते के बाद कासिम साहब अपने घर वापस चले गए। इधर कमरे के अंदर से खिड़की की दरार से झांकती बहार पसीना पसीना होकर अपने वालिद की रजामंदी की दुआएं मांग रही थी। आखिर कासिम साहब को रुख्सत करके ताहिर हुसैन घर के अंदर आए, अपनी अहलिया से

0: बस यूं ही कभी आंखों में पानी भर आता है। घर में कुछ ही दूर पर काम में मसरूफ बाहर दादा पोती की बातें सुन रही थी। अचानक उसकी तबीयत बिगड़ी और बिस्तर पर औंधे मुंह गिर कर इतना रोई कि मुंह के नीचे रखा हुआ तकिया आंसुओं से तर बतर हो गया। जब भी बेटी अपने बाप के बारे में कोई सवाल करती तो बाहर बेटी को बहला कर बात को टाल जाती और खुद अकेले में फूट फूट कर रोती तो दिल कुछ हल्का हो जाता। गुजरते वक्त के साथ बेटी धीरे धीरे बड़ी हो रही थी और अब वो माँ के मासूम बहाने से इत्मीनान करने वाली बच्ची नहीं रह गई थी। अब उसको अपने सवालों के वाजिब जवाब चाहिए थे और शायद उसको भी इस दिन का इंतजार था। आज बहार ने बेटी से कुछ भी नहीं छुपाया, शुरू से आज तक की पूरी दास्तान सुना दी। माँ बेटी की बातें हो रही थीं कि तभी किसी ने कॉल बेल बजाई। अंबर दरवाजे तक गई, सामने एक बीमार सा दिखने वाला आदमी खड़ा था। उसने अपनी जेब से एक कागज निकाला और बहार की जानिब बढ़ाते हुए बोला, मैं भी 20 साल से अंदर था, अब घर जा रहा हूँ। आज रिहाई मिली है। मैंने तो जुर्म किया था, मैं मुजरिम था, लेकिन वो अंबर, वो तो बेकसूर है, उसको बचा लो भाभी। अच्छा, मैं चलता हूँ, कहकर वो 30 कदमों से आगे बढ़ गया। बहार खत को बार बार पढ़ती और रोती जाती। तभी पास में आकर खड़ी हुई बेटी घबरा कर बोली, क्या हुआ मम्मी, कौन आया था, आप क्यों इतना रो रही हैं? लो पढ़ लो, तुम्हारे बचपन से लेकर आज तक के सभी सवालों के जवाब। और इस शख्स का लाया हुआ खत उसके सामने बढ़ा दिया। खत पढ़कर उसको एक जबरदस्त झटका लगा, फिर माँ की तरफ देखकर पुर इत्मीनान लहजे में बोली, अम्मी आप परेशान ना हो, मैं सब संभाल लूंगी। और वो तेज कदमों को बढ़ाते हुए अपने चैम्बर की जानिब चल दी। ना जाने कितनी कानून की किताबें पढ़ डाली, आखिर मेहनत रंग लाई और आज अपने वालिद को रिहा करवाने में कामयाब हुई। वैसे भी उसका नाम बहुत ही ईमानदार वकला में शुमार होता था। आज एक बाप को बेटा, बीवी को शौहर और बेटी को उसका बिछड़ा हुआ बाप मिल गया।
1: अभी आप समाप्त फरमा रहे थे एक बेहतरीन अफसाना आस, मोहतरमा दुर्फिशा चांदनी साहिबा से। आइए सामईन, अब आपको ले चलते हैं शायरी की दुनिया में और कलाम शायर के तहत सुनवाते हैं एक ताजा दम कलाम जनाब अतीक अहमद खान साहब से।
2: कि किस कदर अंधेरा है प्यार की बस्ती में, किस कदर अंधेरा है प्यार की बस्ती में, कहाँ गए दीप उल्फत के जलाने वाले, कि कहाँ गए दीप उल्फत की जलाने वाले। और ये शेर समात फरमाए कि उफ ये कैसा निज़ाम है शहर का, तेरे लुट जाते हैं रास्ता बताने वाले। और चार मिसरे और समात फरमा लें कि मुझको पता नहीं था यूं होता है प्यार में, मुझको पता नहीं था यूं होता है प्यार में, पत्थर का बन गया हूं तेरे इंतजार में, मुझको पता नहीं था यूं होता है प्यार में, पत्थर का बन गया हूं तेरे इंतजार में। और मुझ पे शहर के लोगों ने पत्थर उठा लिए, मुझ पर शहर के लोगों ने पत्थर उठा लिए, ऐसी सजा मिली है मुझे तेरे प्यार में। और आईना मुझको देखकर हैरत में पड़ गया, आईना मुझको देखकर हैरत में पड़ गया, मैं इतना अट गया हूँ धूल के गुबार में, आईना मुझको देखकर हैरत में पड़ गया, मैं इतना अट गया हूँ धूल के गुबार में। और टूटा जो दिल हमारा तो कलियाँ सिसक पड़ी, टूटा जो दिल हमारा तो कलियाँ सिसक पड़ी, गुल कोई न खिल सका अब की फसले बहार में, गुल कोई खिल न सका अब की फसले बहार में। कि जिस्मों का कारोबार सरेआम हो गया, जिस्मों का कारोबार सरेआम हो गया, अब जा रही है नस्ल तबाही के गार में, अब जा रही है नस्ल तबाही के गार में। और ये शेर बतौर खास तारीख

उठा कर देख लो हिंदुस्तान की, था तख्त हमारा दोस्तों ताजदार में, था तख्त हमारा दोस्तों ताजदार में। वो मक्ता समात फरमाएं कि हमने अतीक जिसको देखा ना कहीं कभी, हमने अतीक जिसको देखा कभी ना कहीं, ये कौन बस गया है दिले दागदार में, ये कौन बस गया है दिले दागदार में। और एक गजल का मतला और शेर समात फरमा लें कि हुस्न है आहनी तलवार बड़ी मुश्किल है, हुस्न है आहनी तलवार बड़ी मुश्किल है, इश्क है रेत की दीवार बड़ी मुश्किल है, और मैं भी पागल हूँ जो दिल दे दिया परदेसी को, मैं भी पागल हूँ जो दिल दे दिया परदेसी को, उससे मिलना हुआ दुश्वार बड़ी मुश्किल है, उससे मिलना हुआ दुश्वार बड़ी मुश्किल है। और तुमने लिखा है मेरा नाम जो हथेली पे, तुमने लिखा है मेरा नाम जो हथेली पे, दोस्त दुश्मन हुए यार बड़ी मुश्किल है। और मेरी शोहरत की खबर जब पड़ी अखबारों में, मेरी शोहरत की खबर जब पड़ी अखबारों में, हो गए दोस्त भी गद्दार बड़ी मुश्किल है, मेरी शोहरत की खबर जब पड़ी अखबारों में, हो गए दोस्त भी गद्दार बड़ी मुश्किल है। और कहीं हद पार न कर जाऊं मैं पागलपन की, कहीं हद पार न कर जाऊं मैं पागलपन की, उनसे आंखें हुई हैं चार बड़ी मुश्किल है, कहीं हद पार न कर जाऊं मैं पागलपन की, उनसे आंखें हुई हैं चार बड़ी मुश्किल है। और गजल का आखिरी शेर समाप्त फरमाएं कि मेरी बर्बादी का हर शख्स तमाशाई था, मेरी बर्बादी का हर शख्स तमाशाई था, कोई मिलता नहीं गमखार बड़ी मुश्किल है, कोई मिलता नहीं गमखार बड़ी मुश्किल है। और गजल का मक्ता समाप्त फरमाएं कि मैं तो खामोश खड़ा था सरे बाजार अतीक, मैं तो खामोश खड़ा था सरे बाजार अतीक, ना मिला कोई खरीदार बड़ी मुश्किल है, ना मिला कोई खरीदार बड़ी मुश्किल है। एक गजल का मतला और चंद अशार समात फरमा लें। अब

0: गंगा गीत के साथ ही समाप्त होता है लोक संगीत का कार्यक्रम। हमारे आज के कलाकार थे मेहंगीराम प्रजापति और साथी। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। हमारा अगला कार्यक्रम होगा झंकार, बस कुछ ही पलों में।
1: मुझे याद कर कभी श्रद्धा से झुक जाए अगर तुम्हारा सर, तो मान लेना तुम्हारे भीतर ही है मेरा होना। कभी मेरी राह पर चलते हुए चोट खाओ, रुक जाओ, फिर भी चलो, तो मान लेना मैं हूं, मैं था, मैं रहूंगा। आकाशवाणी वाराणसी से प्रत्येक शुक्रवार गांधी चर्चा कार्यक्रम में सुबह 6:25 पर सुनिए बापू की आत्मकथा सत्य के प्रयोग का धारावाहिक पाठ।

हम सभी का एक ही नारा, साफ सुथरा हो देश हमारा, सफाई अपनाएं, बीमारी भगाएं, स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत। हम सब ने ये ठाना है, भारत को स्वच्छ बनाना है। स्वच्छता का दीप जलाएंगे, चारों ओर उजियारा फैलाएंगे। सभी रोगों की एक दवाई, घर में रखो साफ सफाई।

फिर एक बार विविध भारती वाराणसी अब नए अंदाज में FM 100.6 पर सुबह 10 से 11 और शाम 5 से 7 बजे तक स्थानीय कार्यक्रमों के साथ यानी काशी कनेक्ट, बनारस बीट्स, बनारस डायरी और वाराणसी वाइब्स, साथ ही और भी बहुत कुछ जिसमें शामिल होती है आपकी बातें। और साथ ही सुनते रहिए आकाशवाणी वाराणसी मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज़, डीटीएच, डीआरएम, न्यूज ऑन एआईआर ऐप और वेव्स ओटीटी पर। कहीं भी कभी भी आकाशवाणी वाराणसी, जहां है आप वही हमारा साथ।

झंकार कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम पहला गीत आपके लिए लेकर आए हैं फिल्म ऐ दिल है मुश्किल से। अरिजीत सिंह बादशाह और जोनिता गांधी की आवाज़ है, लिखा है नक्श अजीज ने।

अगला गाना है फिल्म यमला पगला दीवाना से नदीम और श्रेया घोषाल की आवाज में, इरशाद कामिल के बोल और संगीत, संदेश शांडिल्य का।

कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म यारियां से, शफाकत अमानत अली की आवाज़ है, गीत और संगीत है आर को पार्वो मुखर्जी का।

सचेत टंडन उज्ज्वल कश्यप की आवाजों में आइए सुनवाते हैं कार्यक्रम में अगला गीत तुलसीदास जूनियर फिल्म से। स्वानंद किरकिरे के बोल है और संगीत है डेनियल बी जॉर्ज का।

टॉयलेट एक प्रेम कहानी इस फिल्म से आइए सुनते हैं ये गीत सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाज में। गरिमा बहल और सिद्धार्थ सेन के बोल हैं और संगीत है विक्की प्रसाद का।

द स्काई इज पिंक इस फिल्म का आइए सुनते हैं अगला गीत, अरिजीत सिंह, निखिल डिसूजा और अंतरा मित्रा की आवाजों में। गुलजार के बोल हैं और संगीत दिया है प्रीतम ने।

रोंगिनी गुप्ता पेपॉन की आवाजों में हमारी अगली पेशकश है फिल्म सुई धागा से, वरुण ग्रोवर के बोल और संगीत अनु मलिक का।

सनम रे फिल्म से आइए सुनते हैं अगला गीत। आवाज है श्रेया घोषाल की, बोल है रश्मि विहा के और संगीत दिया है जीत गांगुली ने।

मिलेट्स यानी श्री अन्न, स्वास्थ्य और स्वाद का संतुलन, इस विषय पर करेंगे हम सखियों संग बात, जानेंगे आपकी राय, मिलेट्स से बने व्यंजनों के बारे में आपकी बातें, 17 जुलाई दिन में 1:15 पर कार्यक्रम गृहलक्ष्मी में। हमें कॉल कीजिए 17 जुलाई दिन में 11 से 11:30 के बीच में। हमारा फोन नंबर है 2221052 और 2221050। वाराणसी का एसटीडी कोड है 0542। तो सखियों, हमें रहेगा इंतजार आपके फोन कॉल्स का 17 जुलाई दिन में 11 से 11:30 के बीच में। तो कॉल करना ना भूलिएगा।

0: मिलेट्स यानी श्री अन्न, स्वास्थ्य और स्वाद का संतुलन, इस विषय पर करेंगे हम सखियों संग बात, जानेंगे आपकी राय। मिलेट्स से बने व्यंजनों के बारे में आपकी बातें 17 जुलाई दिन में 1:15 पर कार्यक्रम गृह लक्ष्मी में। हमें कॉल कीजिए 17 जुलाई दिन में 11 से 11:30 के बीच में। हमारा फोन नंबर है 2221052 और 2221050। वाराणसी का एसटीडी कोड है 0542। तो सखियों, हमें रहेगा इंतजार आपके फोन कॉल्स का 17 जुलाई दिन में 11 से 11:30 के बीच में। तो कॉल करना ना भूलिएगा।
1: कार्यक्रम की ये आखिरी पेशकश है फिल्म कभी अलविदा ना कहना से, सोनू निगम और अलका याग्निक की आवाज में। जावेद अख्तर के बोल हैं और संगीत है शंकर एहसान लॉय का।

0: कभी अलविदा ना कहना। इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। इसके साथ ही आज का झंकार कार्यक्रम समाप्त तो होता है।
1: श्री अन्न, स्वास्थ्य और स्वाद का संतुलन, इस विषय पर करेंगे हम सखियों संग बात, जानेंगे आपकी राय, मिलेट्स से बने व्यंजनों के बारे में आपकी बातें, 17 जुलाई दिन में 1:15 पर कार्यक्रम गृह लक्ष्मी में। हमें कॉल कीजिए 17 जुलाई दिन में 11 से 11:30 के बीच में। हमारा फोन नंबर है 2221052 और 2221050। वाराणसी का
0: 42 किलोहर्ट्ज़, डीटीएच, डीआरएम, वेब, ओटीटी और न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। दिन के 11:01 और 42 सेकंड हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम फरमाइशी गीत एक्सप्रेस।

कार्यक्रम के तमाम सुनने वालों को अरुण पांडे का नमस्कार और श्रोताओं आपको बहुत सारी शुभकामनाएं आज के दिन की। और बहुत सारी जगहों पर मानसून की पर्याप्त आमद हो चुकी है और रथ यात्रा मेला भी चल रहा है, तो इस माहौल में आपका प्रोग्राम में स्वागत है। कार्यक्रम व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित होता है। 7905519981 ये व्हाट्सएप नंबर है। फिल्मों के नाम हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले आपको संदेश में फिल्म का नाम लिखना है, उसके बाद अपना नाम और जगह का नाम। 11:30 तक ही संदेश भेजें ताकि आपके नाम शामिल हो जाएं। एक बार ही संदेश भेजें और फिर कार्यक्रम में हमारे साथ बने रहें। आज की फिल्में हैं आराधना, कोरा कागज, दिलदार, मैं तुलसी तेरे आंगन की, लोफर और सच्चा झूठा। एक बार आपने किसी भी फिल्म के लिए अगर संदेश भेजा है तो इंतजार करें, आपका नाम जरूर शामिल होगा। बार बार संदेश जब आप भेजते हैं तो कई दफे हमने कहा कि आपका नाम और पीछे हो जाता है। और कुछ भी और बात न लिखें, सिर्फ अपनी फरमाइश भेजें और 11:30 तक भेज दें। आराधना, कोरा कागज, दिलदार, मैं तुलसी तेरे आंगन की, लोफर और सच्चा झूठा। आराधना, कोरा कागज, दिलदार, मैं तुलसी तेरे आंगन की, लोफर और सच्चा झूठा, ये आज की फिल्म है। 7905519981 यानी 7905519981 ये कार्यक्रम का नंबर है। आइए कार्यक्रम का आगाज करते हैं यानी शुरुआत करते हैं इस गीत के साथ। फिल्म का नाम है आराधना, किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजें। आनंद बख्शी ने गीत के बोल लिखे हैं, सचिन देव बर्मन का संगीत है।

आराधना फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में। आनंद बख्शी के बोल सचिन देव बर्मन का संगीत और इस गीत के लिए फरमाइशें आई हैं आप सभी सुनने वालों की। चौसा गोला बक्सर से हैं जयराम बिन, सीता मुनि देवी और लालसा कुमारी, साथ में काजल कुमारी। बिरडी से राजेश सोनी, कंचन सोनी और गायत्री ढोमने। मुताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर और रतन माला सुरलकर। उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, की सुता सुवर्णव आनंद और सत्यम आनंद हैं पाकुड़ झारखंड के श्रोता। लोरमी चचेड़ी से कमलकांत मरावी, प्रमिला मरावी, नेहा मरावी और पुष्पराज मरावी। सैयद मसरूर, साइना हसन, नाजिया इब्राहिम और सद्दाम की फरमाइश कुम्हार हेड़ा सहारनपुर से। गांव चोहलदा बागपत से इस गीत को सुनना चाहा संजय ढींगिया, नमन ढींगिया और कमल साहनी ने। बिहारी कॉलोनी शाहदरा दिल्ली के श्रोता हैं तुलसी मस्किन, वीणा मस्किन, आशीष राजा, चैतन्य मस्किन और मेघा मस्किन। बलकरण वर्मा, अंजनी ज्योति वर्मा, प्रहलाद राजेंद्र वर्मा और रेखा धनेश्वरी वर्मा हैं बठेना पाटन दुर्ग छत्तीसगढ़ से। इसरोल बाड़मेर राजस्थान के श्रोता हैं शफी मोहम्मद सोलंकी, शाहरुख खान, मागे खान, अतीक खान और रियाज खान। रविन्द्र मोहन दास, आशा देवी, राघव कुमार, भानुप्रिया और माधुरी किरण ने फरमाइश भेजी किशनगंज बिहार से। आप हैं मोहम्मद यासीन अंजान, साइमा नवाज, हसन नवाज, बाबू अहद, मिफरानाज और बेबी चाहत, साथ में सादिया, दादा बाबू रोड, गिरिडीह, झारखंड से। टैगोर गार्डन नई दिल्ली से रविंद्र सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर छाबड़ा और स्वीटी छाबड़ा। मध्य प्रदेश छिंदवाड़ा के श्रोता हैं नाना लाम से, मीना लाम से, तेजस लाम से और जयलाम से। जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान और कल्पित, साथ में बेबी गर्वी। राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी, पुष्पेंद्र डूडी ने फरमाइश भेजी है फरासी हिसार से। जमानिया गाजीपुर के हमारे श्रोता हैं सुरेश जायसवाल, उर्मिला दीपक और स्वाति जायसवाल। साउथपुर छत्तीसगढ़ से ऋषि सेन, रितेश सेन और कंचन माही सेन। दतरंगी भाटापारा से ये फरमाइश हीरामणि वर्मा और पारसमणि वर्मा की आई है। ऊपरकोट मोहल्ला चखुंटी बुलंदशहर से हैं मोहम्मद सईद अब्बासी, निगत परवीन अब्बासी, शाहनवाज अब्बासी और सरफराज अब्बासी। बाटापारा छत्तीसगढ़ से हिमकेश्वर साहू, करण, राहुल साहू और चंपा साहू। लवई छत्तीसगढ़ से गुलाबदास मानिकपुरी, राजादास मानिकपुरी और रानी मानिकपुरी। बजडिया वाराणसी से हैं ऐनुल हक अंसारी, मल्लू अंसारी, इकबाल अंसारी और सलीम आजाद अंसारी। आर्यनगर कोका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार और अजीत कुमार। शादुल शहर राजस्थान से रामकुमार रिवाड़ और चंद्रकला रिवाड़। विनय प्रजापति, गोविंद प्रजापति, वंदना प्रजापति, राहुल प्रजापति की फरमाइश जलालीपुरा वाराणसी से। महाराणा प्रताप कॉलोनी उदयपुर के श्रोता हैं रमेश नाचानी, भारती नाचानी, विनीत नाचानी और मिथिल नाचानी। गहमर पकड़ी तर हनुमान मंदिर चांदनी चौक से त्रिलोकी जायसवाल, गिरधारी जायसवाल, शांति देवी और शिवनाथ जायसवाल। रामशरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, मंजू, रंजना और वंदना हमीरपुर बुंदेलखंड से। मुजफ्फरपुर बिहार से राजू कुमार, बिट्टू कुमार, अर्चना कुमारी, कल्पना कुमारी और मुन्नी कुमारी। लखनपुर छत्तीसगढ़ से ये फरमाइश रामजी साहू, जीवर लाल रजक, निम्मी, शिवम और सतीश की है। मुसरत जहानाज, तलत जहानाज, फरहत जहानाज और रिफत जहानाज हैं नूर महल महसौल सीतामढ़ी से। ग्राम पजौनिया जालौन से सत्येंद्र कुमार चंदसौलिया, आदर्श सार्थक और अलौकिक चंदसौलिया। छत्रपति संभाजीनगर से हमें सुन रहे हैं राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश और राशि राजेश। रामगढ़ कैंट से महेंद्र मोदी और ठाकुर साहब की फरमाइश ब्रजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी विश्वकर्मा, सोनौली सोनाली विश्वकर्मा और सोनम विश्वकर्मा। बन्ने बुजुर्ग पलेरा टीकमगढ़ से हैं रविंद्र सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर छाबड़ा और स्वीटी छाबड़ा। टैगोर गार्डन नई दिल्ली के श्रोता। और अब गीत बहुत सारे श्रोताओं की फरमाइश पर। फिल्म है कोरा कागज, लता मंगेशकर की आवाज, एम जी हर्षमत के बोल और कल्याण जी आनंद जी का ये संगीत है।

और अब इस गाने के लिए जो फरमाइशें आई हैं उन श्रोताओं के नाम। बदरुद्दीन अंसारी, अनवर अली अंसारी, मुश्ताक सुलेमानी, सलीम आजाद और मल्लू अंसारी हैं हमारे श्रोता अहमदनगर बजटिया वाराणसी से। गमहरिया जमशेदपुर से रोहन और आर्य जायसवाल, मुराहू और देवंती जायसवाल, आर अश्विन, सानू, शोभनाथ अवस्थी और उनके मित्र हैं शिवराजपुर चुनार मिर्जापुर से। नरेंद्र नारंग, राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित नारंग और तानिया नारंग बटिंडा रोड मंडी डबोआली के श्रोता हैं। पूनम यादव, कुसुम यादव मोकलपुर मड़ियाहू जौनपुर से। जौनपुर से ऋषु मौर्य का ये संदेश। पंचकुला चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रजता खुराना, केशुरिधान खुराना। भिलाई छत्तीसगढ़ के श्रोता हैं मुकेश शर्मा और गौरव शर्मा। शबीर हुसैन, शहजाद हुसैन, मुज्जू बाबा और आयजा एनम की फरमाइश। सब्जी मंडी बुलडाना से आई है। इसी गीत को सुनना चाह भाटापारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी, हरविंदर सिंह चावला, लोकेश जोशी और आकाश शर्मा ने। मुबारकपुर आजमगढ़ से ये फरमाइश आई है जावेद अख्तर राही, शमसुल कमर राही, रुखसार और रकीबा शाहीन की। अड़ार नांदघाट छत्तीसगढ़ के हमारे श्रोता हैं माखन वर्मा, चांदनी राहुल, गोपी भूपेश और दीपेश वर्मा। जॉन डिकेस्ट्रो, रोजी डिकेस्ट्रो, पॉल डिकेस्ट्रो और विलिस डिकेस्ट्रो जनकपुरी सहारनपुर से हमें सुन रहे हैं। मुंदीचक भागलपुर बिहार के श्रोता हैं दिलीप कुमार सोनी। सतीश अनेजा, बिमला अनेजा चंडीगढ़ से ये फरमाइश सुमंत कुमार प्रजापति की है हथौज बलिया से। वणिखेड़ा पंजाब से मिंटू टॉमस, पिंकी लवली और आरती अरोड़ा। रायपुर छत्तीसगढ़ से ये संदेश आया है विनोद वंडलकर, वीणा वंडलकर और विविधा वंडलकर का। सहारनपुर से हैं अनु।

मोना, अलका विक्की, आशा, सोनाली और सुरेश नारंग, अमितेश कुमार तिवारी करनई बलिया के श्रोता हैं, पंकज वाड़ोदे, आर्या, प्रियंका और बी टी वाड़ोदे हैं पुणे से, उत्तम कुमार बघेल, रुक्मणी बघेल, साहिल भारती बघेल हैं, लगान पंढरिया छत्तीसगढ़ के श्रोता, और ये फरमाइश मेरठ कैंट से आई है दिग्दर्शन और कविता गौण की। तेलंगाना वारंगल के श्रोता हैं ख्वाजा रिजवानुद्दीन, ख्वाजा फसीउद्दीन और आयशा तबस्सुम, साथ में जुबेरिया, राजेंद्र यादव भारती, उषा देवी भारती, दीपांजलि, अनुराग दीप और भगेलू यादव हैं वलीदपुर मढ़हा मऊ से। मगनपुर से हैं बेबी मुस्कान और मोहम्मद अली। कृष्णा कॉलोनी हासी से सुभाष योगी, सुशील योगी, डब्बू बाबू और राजू मिगलानी, मोहम्मद बुरहानुद्दीन, फैजान लल्ला, फरहान लल्ला, समायरा आजमीन गुड़िया, तेलंगाना भोंगीर से आपने फरमाइश भेजी, शुक्रिया आपका। छोटी बलिया मुंबई करजत से हैं अहमद भाई बागवान, दुखना सदफ, जूही इकबाल और इमरान अहमद बागवान। नाभा पटियाला से सोमदत्त, कैरो, ज्योति रानी, गुरमंत कौर और मनु। श्रोताओं फिल्में बाकी हैं मैं तुलसी तेरे आंगन की, लोफर और सच्चा झूठा। ये गीत दिलदार फिल्म से है किशोर कुमार की आवाज में।

सवाल में क्या रखा है, हाय सवाल का जवाब पढ़ लो।

जी हाँ, और हम अब पढ़ेंगे आपके नाम जो व्हाट्सएप संदेशों के जरिए आपने भेजे हैं। फिल्म थी दिलदार, किशोर कुमार की आवाज, आनंद बख्शी के बोल लक्ष्मीकांत, प्यारेलाल का संगीत, फरमाइशें आप सबकी। अशोक कुमार प्रजापति, मीना प्रजापति, अंजलि और आकाश प्रजापति हैं कुरौता वाराणसी से। मृति यादव ग्राम बरठी, सकलडीहा चंदौली से।

छत्तीसगढ़ चूड़ीलाइन मुंगेली से संदेश आया है मोहम्मद इशाक, खतीजा बेगम, अशफाक, आफरीन कौसर और अल्ताफ का। रमाशंकर यादव राशिपुर बहादुरपुर सिरकौनी और साथ में हैं उमेश पांडे। बबरी बाजार चंदौली से विजय जायसवाल, सरोज सुंदर और सुमन जायसवाल की फरमाइश है। खरगोन सनावत से हैं मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा और अनुज वर्मा। शबीर हुसैन, शहजाद हुसैन, मुज्जू बाबा हमें सुन रहे हैं सब्जी मंडी बुल्ढाना से। ईदगाह रामनगर से सोनू अंसारी और लंबे बाबू। लालमाता सुदामा नगर रटलाई झालावाड़ राजस्थान के श्रोता जिनका ये संदेश आया है, हर्षिता रामेश्वर, परमेश्वर, मीनाक्षी, मनोहर बाई बागरी और प्रभुलाल बागरी। प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा और यशस्वी वर्मा हैं छत्तीसगढ़ पलारी से। मौसी अंसारी, सरताज अंसारी, सद्दाम अंसारी और शाहिद अंसारी कोटवा वाराणसी के श्रोता। जमशेदपुर सुपाही साही गांव के श्रोता हैं देवेंद्र तांती, राकेश तांती, प्रकाश निशा और रेशमा कुमारी। एमजीएम मेडिकल कॉलेज जमशेदपुर से डॉक्टर तस्नीम कौसर और डॉक्टर इशिता साहनी। ये फरमाइश कोटवा कपिलधारा सराय मोहाना वाराणसी से आई है रतिना त्रिपाठी, राखी आर्या, एंद्री, ओमना, सारंग, शिवांग, अदिति और उनकी माताजी निर्मला त्रिपाठी का। अनीश राजभर, मनीष राजभर, आशीष राजभर और आकर्ष राजभर हैं सोनवर्षा खानपुर चुनार के श्रोता। ग्राम जेवरा हिसार से वीरेंद्र भ्याण, सुरेंद्र, शमशेर और मनोज भ्याण की फरमाइश है। हिसार हरियाणा से धर्मेश मौर्य और अंचला मौर्या। डाबकी रोड अकोला के श्रोता हैं सुशीला देवी मंदूरकर, सदानंद मंदूरकर और कुमार गौरव मंदूरकर। छत्तीसगढ़ पुरानी भिलाई तीन चरोदा से ये फरमाइश डॉक्टर नौशाद अहमद सिद्दीकी, बेगम हमीदुन सिद्दीकी, जीशान अहमद और शाहनवाज अहमद की। जमालपुर गोगरी खगड़िया बिहार से सिकंदर गुडलक कुमार, अविनाश कुमार और रितेश, साथ में संजय कुमार। रामगंज खंडवा के श्रोता हैं विजय महोबिया, कविता महोबिया और विशाल और विवेक। प्रवीण सोनी, पूजा पायल और जगदीश जौहरी गुजरात गांधीग्राम के श्रोता हैं। दिनेश काले, वंदना काले, आदेश कुमार काले और प्रोफेसर वसुधा वज्रसेन हैं विदर्भ जलगांव जंक्शन से। धमतरी छत्तीसगढ़ से रामचंद माखीजा, काफिर, सविता माखीजा, बेबी स्वाति और महेश कुमार कुकरेजा। अनिल कुमार घोड़के वैशाली, अनिल प्राजक्ता घोड़के और वैष्णवी घोड़के की फरमाइश संभाजीनगर औरंगाबाद से। आप हैं अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि और ओशिका धमधा ग्राम सुखरी कला के श्रोता। प्रदुम्न और प्रीतम कुमार हैं चौसा गोला बक्सर से।

लल्लल मिश्रा, नूतन मिश्रा, अमन पराशर आराध्या और लल्लू पंडित की फरमाइश, नरहन स्टेट समस्तीपुर बिहार से। बिरडी के हमारे श्रोता हैं अर्जुन गौनेकर, धीरज सव्वाश्रे और चंचल ढोमने। श्रोताओं, आज का ये कार्यक्रम यानी फरमाइशी गीत एक्सप्रेस आप सुन रहे हैं अपने दोस्त अरुण पांडे के साथ। वक्त 11:29:33 का। आपको बता दें कि बुधवार को जो हेलो फोन इन फरमाइश कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग हुई वो आप सुन सकते हैं प्रोग्राम कल दिन में 11 से 12 बजे के बीच और रविवार को 12 से 1 बजे के बीच। और कार्यक्रमों से जुड़ी अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर हमें भेजें पत्र के लिए धन्यवाद कार्यक्रम में। मेल आईडी है pkld@varanasi.gmail.com। उस मेल आईडी पर अपनी फरमाइशें न भेजा करें। मेल आधारित फरमाइशी कार्यक्रम बुधवार और गुरुवार को जो प्रसारित होता है इसी वक्त, उसकी मेल आईडी है airvnsfgexp@gmail.com। और अब इस कार्यक्रम में शामिल है आपकी फरमाइश का ये गीत, मोहम्मद रफी की आवाज, फिल्म है मैं तुलसी तेरे आंगन की।

बेहद मकबूल गीत रफी साहब की आवाज, फिल्म थी मैं तुलसी तेरे आंगन की। फरमाइशें आप सब की हैं। रईस खान, साबिया खान, अनस खान, शकील खान, दानियाल खान हैं, फूले नगर अंबिवली, मुंबई, महाराष्ट्र से। बक्सर बिहार के श्रोता हैं शरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून अंसारी, असलम अंसारी, अकरम अंसारी और अल्ताफ अंसारी। मुरादाबाद से मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश और राजपाल पंकज। कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से हमें सुन रहे हैं ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित कुमार राय और हैप्पी राय। मुजफ्फरपुर बिहार से आर्यन राज, रोहित राज और पीयूष कुमार। शिवपुर वाराणसी से आनंद मिश्रा और ममता मिश्रा की फरमाइश है। बेंजो मास्टर सुनील यादव, शिव कुमार यादव, तनिष्का और नौबत यादव, अमोड़ा केशकाल छत्तीसगढ़ के श्रोता हैं। अजीत कसाना, माया देवी, ऋतिक और आदित्य कसाना लदावली मुरादाबाद से। सदर बाजार मारवाड़ बिलाड़ा राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, जय नारायण चौहान, तरुण और प्रतीक चौहान, शंकरलाल जायसवाल, गणेशलाल जायसवाल, दुर्गेश्वरी जायसवाल, नांदेड़ येताला महाराष्ट्र से। सुखविंदर सिंह जौड़ा और सिटी दीवाना कृष्णा पार्क दिल्ली के श्रोता है। बाजार रोड मुंगीसापुर से हैं मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरू निशा, शबिश्ता और मोहम्मद नसीब। गांव लोहगढ़ ठाकुरा वाला के श्रोता स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरनीर सिंह और गुरलाल सिंह। भिलाई नगर छत्तीसगढ़ से ये फरमाइश अशोक श्याम कुमार, प्रमिला श्याम कुमार और चीनू आसमा की है। गनगोला दातागंज बदायूं से हमें संदेश भेजा है इसरत खान, शायरा बेगम, रहूफ खान और साबरीन बेगम ने। बघेरा दुर्ग से संतोष नामदेव, सार्थक, समर्थ और शौर्य नामदेव। ग्राम भड़गा कोदवा छत्तीसगढ़ से श्याम सिंह, राजकुमारी और रजनी। छत्तीसगढ़ दंतेवाड़ा से बलराम सेन और इंदु सेन, मोहम्मद फरमान, सलमान, इरफान, इसरार और नरगिस खातून हैं मुरादाबाद दुल्हापुर के श्रोता। धाड़ी नांदूरा महाराष्ट्र के श्रोता हैं श्रीकृष्ण बाठे, संदीप बाठे और अमूल्य बाठे। गमहरिया जमशेदपुर से विपिन जायसवाल, स्वाति जायसवाल, देव कुमार और आर्य कुमार जायसवाल। झज्जर हरियाणा से बिट्टू भाटिया, रीटा भाटिया, रजत और मयंक भाटिया ने फरमाइश भेजी। अंबागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से रिजवान खान, आयशा, सबीहा, अनस और रेहान। कंवर कॉलोनी बड़वाह से हैं प्रवीण श्रीमाली और मीना श्रीमाली। ये व्हाट्सएप संदेश जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल प्रिया दिशानी और निमिता हुजा का। शिवा गोप, प्रेम गोप, कपिल गोप, शिवांश गोप हैं पश्चिम सिंहभूम चाईबासा झारखंड से। प्रकाश कुमार पप्पू, नैतिक पीहू कुमार बिमल, आप सब हमें सुन रहे हैं फारबिसगंज बिहार से। अजय सिन्हा, कैलाश सिन्हा, भोले सिन्हा, सचिन और उनके माता पिता हैं। गांव नारी पचदेवरा गाजीपुर से। रघुनाथपुरा श्री गंगानगर राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हीना, हर्षित और खुशी गोस्वामी, हुकुम करमरकर, सुनीता करमरकर, हार्दिक और प्राची। बेरडी छत्तीसगढ़ से आपकी फरमाइश आई है। डोंगर गांव छत्तीसगढ़ से है राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका, अनिष्का और तन्मय गजभिये। गांव कलाना भादरा हनुमानगढ़ राजस्थान से हमें सुन रहे हैं विक्रम कर्णवासरा, सचिन, सतीश, योगेश और युद्धव कर्णवासरा। रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी, कल्पित और बेबी गर्वी जोधपुर राजस्थान से। प्रकाश बोरगांवकर, सुषमा बोरगांवकर, प्रांजलि और सोहम बोरगांवकर हैं सूर्यवाड़ी छत्रपति संभाजीनगर के श्रोता। शास्त्री नगर बीड शहर के श्रोता हैं किशन सपकाल, आशा सपकाल, सोनिया सपकाल और विशाल। आकाश विश्वकर्मा, आभा विश्वकर्मा, ग्राम बरसड़ा करंडा गाजी

नई दिल्ली से रविंद्र सिंह छाबड़ा और उनके परिवार के सदस्य। कटरा मुबारकपुर से जावेद अख्तर अंसारी, निखत परवीन, नुसरत परवीन, सलीम जावेद और शाहिद हसन आजमी। आप हैं बनवारी लाल कुशवाह, मंजुलता कुशवाह, राम और श्याम चनोरा फिरोजाबाद से। आलिया खान, नाजिया खान, सादिया खान, वसीम खान कस्बा कलां शाहजहांपुर से आप हमें सुन रहे हैं। टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक और अनिल शर्मा मोहाली चंडीगढ़ से। शेख मूसा मोहसिन, अशोक वर्मा और राजकुमार बोडाना की फरमाइश आई है सनावत से। अफजाल ताज, शाहिन सुल्ताना, सोनू तस्नीम, निपी साहनी और अफजल मलिक कोल सिटी बरका काना के श्रोता हैं। विनोदपुरी, वीपी रंजू, अशोकपुरी और सुशीलपुरी हैं मोहल्ला फतेहगढ़ लुधियाना से। ग्राम हिंगड़ी आलोट रतलाम से जगदीश धाकड़, नायमा रंजूबाई धाकड़, युवराज सिंह धाकड़ और शिवांगी धाकड़। दादरी गेट भिवानी से कृष्ण मेहरा, कोमल मेहरा, किरण मेहरा, हरजिंदर छिंदा, जसवीर जस्सी, सीता और गीता हैं गांव नथाना पंजाब से। नर्मदा पार्क मंगलबेड़ा से फरमाइश मास्टर अलीम पटेल, मुजाहिद पटेल और नदीम पटेल की आई है। और अब प्रोग्राम की अगली पेशकश, फिल्म का नाम है लोफर, आशा भोसले की आवाज। बहुत सारे श्रोताओं ने इस गाने के लिए फरमाइशें अपनी भेजी हुई हैं।

आशा भोसले की आवाज में आप सुन रहे थे लोफर फिल्म का गीत। फरमाइशें भेजी हमारे इन श्रोताओं ने। पटेल नगर मुगलसराय से हैं सुनील कुमार सिंह। बागरी मोहल्ला रटलाई जिला झालावाड़ राजस्थान से मनभावन, नैना, सत्यनारायण, कपिल, शोभा और फुंदीबाई बागरी। हमारे श्रोता हैं मुरलीधर गुप्ता दुद्धी सोनभद्र से, साथ में अंश कुमार अग्रहरी, गांव नारी पचदेवरा डीह बाबा चौराहा से। इसमें थोड़ा कॉमन फुल स्टॉप लगा देंगे तो ये पता चल पाएगा कि इसमें गांव का नाम कहां तक है और बाकी चीजें कहां हैं। अजय सिन्हा, कैलाश सिन्हा, भोले सिन्हा, सचिन और उनके माता पिता। सोहन जोशी, हरविंदर सिंह चावला, लोकेश जोशी, आकाश शर्मा, मनीष वर्मा, रिहान खान, पायल जोशी और अंकिता जोशी हैं। बाटापारा छत्तीसगढ़ से लसुड़िया पाता, तहसील नरसिंहगढ़ और राजगढ़ मध्य प्रदेश से गोविंद, वैष्णव, दिव्या, सुमन, कोमल, प्ररी और कृतिका। निमनाबाद जिंद हरियाणा से हमें सुन रहे हैं जसवीर सिंह बिजारणिया, जतिंदर कौर, गुरप्रीत सिंह और लवप्रीत कौर। शम्स तबरेज, शाहिद परवेज, अकील अहमद और हबीब अंसारी मखदूम नगर बजडिया के श्रोता हैं। जुनेद मुजावर, सबिहा मुजावर, मिखाइल मुजावर और जैनब मुजावर हैं गोविंदपुरा अहमदनगर से। किदवई नगर सिद्धपुरा टाउन है और वहां के श्रोता हैं जुबैर अली खान, सबिहा जुबैर, अंजुमन खान, मोहम्मद रुकनुद्दीन मंठाल, शबीर बनहट्टी, आसिफ इकबाल की फरमाइश कर्नाटक गुलबर्गा से। भागवत देठे पाटिल और लक्ष्मी देठे पाटिल हैं धामड़ गांव से। स्टेशन रोड देवकली केराकत जौनपुर से डॉक्टर राजेश यादव, भोलानाथ यादव, अनंतु भगत और कमलेश प्रजापति। सोनारी जमशेदपुर से हैं कृष्णा जायसवाल, पूनम जायसवाल, विनोद और पिंकी जायसवाल। कटक उड़ीसा से ये फरमाइश आई है प्रेम जी, भाई भारतीय, बासंती, दिव्य चंदन, विश्व रंजन, श्रद्धांजलि और लक्ष्मी प्रिया की।

आप चूंकि कटक उड़ीसा से हैं, आपने श्री जगन्नाथ प्रभु की रथ यात्रा के बारे में भी अपने विचार भेजे हैं, तो बहुत शुक्रिया। और आपके साथ तीज त्योहारों में हम सब शामिल हैं। देश के कई शहरों में हमारे वाराणसी में भी रथ यात्रा का मेला लगा हुआ है। नारायण हागे, कमल हागे, दिव्या हागे और जय हागे हैं बरबट बकाल बुढ़ाना से। ये फरमाइश आई है दत्ता धोड़के और अनित धोड़के की, आष्टी जालना महाराष्ट्र से। स्टेशन रोड जमानिया के श्रोता हैं एसपी जायसवाल, डिंपल आशुतोष और अभिनव जायसवाल। अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा है खरगोन सनावत से। दारा पंडित संजय शर्मा और प्रियंका शर्मा चौटाला हरियाणा के फरमाइश करने वाले हमारे श्रोता हैं। नगर पंचायत दिनारा से हैं जयराम सिंह, सुषमा सिंह, कंचन मिश्रा, श्वेता रानी पांडे, जयराम बिंद और वीरेंद्र।

भारत भूषण अंजू श्रीवास्तव दिव्यंद भूषण संस्कृति और पौरुष हमें सुन रहे हैं व्हाइटफील्ड बेंगलुरु से, अस्तुपुरा मऊ से मजहर अली अंसारी, रजिया बेगम अंसारी और मोहम्मद सादिक अंसारी, गोपालापुर जौनपुर से अवधेश तिवारी, प्रियंका तिवारी, शिवांगी तिवारी और जयप्रकाश तिवारी, साथ में बाबा यादव। ये जो आप प्रियंका लिखते हैं, थोड़ी सी स्पेलिंग देख लें कि ये

प्रिया का आप लिखते हैं, हर बार यही होता है और पिछली बार भी मैंने कहा कि ये अगर प्रियंका है तो स्पेलिंग देख लें। एकता कॉलोनी रोहतक से सीताराम कांगड़ा, बबीता बोत और निखिल कांगड़ा। नांदेड़ महाराष्ट्र से नारायण गायकवाड़, दयानंद गायकवाड़ और ओमकार गायकवाड़। खैल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा, लक्ष्य मल्होत्रा और कोयल मल्होत्रा। कोटिया कला दुर्ग से संजय साहू, सुजाता साहू, शशांक और सीमा साहू। धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा, ईशान छीपा और पूजा परिहार हैं भोपालगढ़ राजस्थान के श्रोता। कमरिया छत्तीसगढ़ से साबित खान, धर्मेंद्र प्रजापति, सावित्री देवी और प्रतीक कुमार। शेख अल्लाह बख्श, राबिया शेख, रहीम मुन्ना है तेलंगाना निजामाबाद से। गाजीपुर से जनार्दन पांडे, श्याम नारायण सिंह यादव, दीनानाथ सिंह यादव और कयूम शाह। ये फरमाइश है राजेश मिश्रा जवाहरलाल पटेल की अमलई शहडोल से। ग्राम तांगोरी मोहाली पंजाब से हैं गुरप्रीत सिंह तांगोरी, जसवीर कौर, महकप्रीत कौर और सहजप्रीत सिंह। और अब आज के प्रोग्राम की आखिरी पेशकश। सच्चा झूठा है फिल्म का नाम, मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजी। इंदिवर ने गीत के बोल लिखे हैं, कल्याण जी आनंद जी का संगीत है। बहुत सारे श्रोताओं की फरमाइश है हमारे पास।

लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में ये गीत प्रोग्राम की आखिरी पेशकश फिल्म सच्चा झूठा से और फरमाइशें आप सबकी हैं। दुआ सलाम और काले चश्मे वाला इमोजी हमें भेजा है अनिल गुप्ता गौंड और रमा गुप्ता गौंड ने। नाम भी संदेश में तफसील से लिख दिया करें तो सहूलियत होगी, क्योंकि बार बार हर बार नाम तुरंत से याद आ जाएं सारे ये जरूरी नहीं। बालेंद्र कुमार पाल, देवेंद्र कुमार पाल, सुनीता, विनीता और आदर्श हमें सुन रहे हैं। मुड़वारा तहसील लवकुश नगर छतरपुर मध्य प्रदेश से हनुमानपुरा मुगल सराय के श्रोता हैं सोनू जायसवाल, मंजू जायसवाल, डब्लू और माया जायसवाल। मारहरा दरवाजा एटा के श्रोता नबी हसन अब्बासी, सहनाज अब्बासी, नवेद हसन अब्बासी और सुहेल हसन अब्बासी। नारवा इंद्रोका जोधपुर राजस्थान से नरपत सोनी, वैशाली सोनी और गणेश। जमानिया गाजीपुर से सुरेश जायसवाल, उर्मिला दीपक और स्वाति जायसवाल। सनावा से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद और मोहम्मद शाकिर की फरमाइश। दतरंगी से भागवत वर्मा, शांति देवी नीलावती और विनीता वर्मा। छत्तीसगढ़ चूड़ीलाइन मुंगेली से मोहम्मद इशाक, खतीजा बेगम, अशफाक आफरीन को सर, मोहम्मद अल्ताफ और नीलोफर फातमा। आप हैं मुंबई से अनु बड़जात्या, शमसुल खान और अनुराज बेनारा। आशीष कुमार महरेव जौनपुर के हमारे श्रोता हैं। मुजफ्फरपुर बिहार से ये संदेश राजू कुमार, बिट्टू कुमार, अर्चना कुमारी, कल्पना कुमारी, मुन्नी कुमारी, चांदनी कुमारी और नंदिनी कुमारी का। जवाहर नगर उदयपुर से हैं बाबू भाई और भारती देवी। राजेश मिश्रा, जवाहरलाल पटेल, अमलई, शारदा कोयला खदान अमलई से। सिद्धार्थ गोंडाने, अर्चना ताई गोंडाने और हीरामन शेंडे हैं ऑक्सीजन पार्क राहुल नगर से। इरशाद अहमद अंसारी, कामरान इरशाद, अरमान इरशाद, नावेद इरशाद और अजरा तबस्सुम मदरसा गेट भावपुर मड़िया हूं जौनपुर से। हिसार हरियाणा से धर्मेश मौर्या और अंचला मौर्या। गमहरिया जमशेदपुर से रोहन आर्य और मुराहू, साथ में देवंती जायसवाल। दिलदार नगर गांव से जनार्दन पांडे, श्याम नारायण सिंह यादव और कयूम शाह।

तो श्रोताओं, ये थी आपकी तमाम फरमाइशें, और अब तक जो भी फरमाइशें हमारे पास पहुंची वो कार्यक्रम में शामिल हैं। कल आप सुन सकते हैं कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश हमारे साथ दिन में 11 से 12 बजे के बीच और रविवार को 12 से 1 बजे के बीच। और साथ ही कार्यक्रमों से जुड़ी अपनी प्रतिक्रियाएं हमें भेजें। पत्र के लिए धन्यवाद कार्यक्रम में मेल आईडी है उस कार्यक्रम की pkldaiarvaranasi@gmail.com, लेकिन उस मेल आईडी पर फरमाइशें न भेजें, वहां की फरमाइशें पूरी नहीं की जाती। फरमाइशी गीत एक्सप्रेस की मेल आईडी है aiarvnsfgexp@gmail.com पर अपनी फरमाइशें आप कभी भी भेज सकते हैं। और पत्र के लिए धन्यवाद कार्यक्रम आपकी प्रतिक्रियाओं का रविवार शाम 7:30 पर प्रसारित होता है।

और चलते चलते ये एक संदेश अभी आया है 11:58 पर इफ्तिखार अहमद मोहम्मद कैफ मोहम्मद सैफ का नई बाजार चंदौली से। शुरुआत में ही फिल्मों के नाम बताए जाते हैं और उम्मीद करते हैं आप उसी समय फरमाइश हमें भेज देंगे। और ये हमारे श्रोता हैं कुमार देवांशु, अवधेश प्रताप सिंह, आशुतोष सिंह, प्रिया सिंह और सर्वजीत सिंह चंदौली से। सर्वजीत जी, 11 से 12 बजे के बीच ये कार्यक्रम होते हैं और शुरुआत में फिल्मों के नाम हम बताते हैं, तो जरूर शुरू में ही फिल्मों के नाम सुन करके संदेश भेज दिया।

और अब आज का ये प्रोग्राम यानी फरमाइशी गीत एक्सप्रेस समाप्त करने के अपने दोस्त अरुण पांडे को इजाजत दीजिए। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे श्रोताओं के व्हाट्सएप संदेश।

देशों पर आधारित कार्यक्रम फरमाइशी गीत एक्सप्रेस। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। अब प्रस्तुत है एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम।

0: पतंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग, उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं विमलेश।
1: और मैं हूं अजीत। नमस्कार, आइए सुनते हैं आज का सुंदर विचार जिसे हमें भेजा है कस्बा बराड़ा जिला अंबाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका मन्नत, गुरकीरत राहुल और गुरशब्द सिंह राहुल जी ने। लिखते हैं,
2: जीवन में हमेशा ऐसी संगति चुननी चाहिए जो हमें ऊंचाइयों की ओर ले जाए और हमारी सोच को सकारात्मक बनाए। अच्छे लोग वही हैं जिनकी उपस्थिति से हमारे भीतर का श्रेष्ठ गुण प्रकट हो सकता है और जो हमें हर दिन और बेहतर इंसान बनने की प्रेरणा देते हैं।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपको इतने सुंदर विचार के लिए। और आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो सबसे पहला संदेश हमें मिला है भदोही उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार विद्यार्थी और उनकी छोटी बहन कोमल का।
2: शंकर प्रसाद खूंटे जी लिखते हैं, मैं दृष्टि बाधित हूँ और बीएड स्पेशल एजुकेशन की पढ़ाई कर रहा हूँ। मुझे आपका उमंग कार्यक्रम बहुत पसंद है।
1: आपका बहुत बहुत धन्यवाद शंकर प्रसाद खूंटे जी। और अगला संदेश हमें मिला है गाँव फरासी जिला हिसार से राजकुमार डूडी जी का।
2: गांव खिंदासा तहसील कोरायत जिला बीकानेर राजस्थान से कानाराम चौहान जी।
1: और शोभा राणे जी लिखते हैं ठाणे महाराष्ट्र से।
2: गांव ढोडरी घोटिया जिला मोहला मानपुर छत्तीसगढ़ से महेश कुमार निषाद, रम्मा रानी निषाद, निखिल कुमार निषाद और नैतिक कुमार निषाद।
1: आप सभी श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर संदेशों के लिए। तो प्रस्तुत है श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी। श्रोताओं, एक बार फिर से हम प्रस्तुत हैं नई और रोचक जानकारियों के साथ।
2: श्रोताओं, हम चर्चा कर रहे हैं पुस्तकों के क्रमिक उद्भव और विकास की। आज हम चर्चा करेंगे मुद्रण से आधुनिक पुस्तकों तक की यात्रा पर। श्रोताओं, जिस आधुनिक पुस्तक को हम हाथ में लेकर आज पढ़ते हैं उसके पीछे लगभग 600 वर्षों का इतिहास है। हमने अब तक सुना कि मुद्रण कला के आने से पहले पुस्तकें हाथों से लिखी जाती थी। भारत में ताड़पत्र, भोजपत्र और बाद में कागज पर ग्रंथ और साहित्य लिखा जाता था।
1: जी हाँ श्रोताओं, यूरोप में चर्म पत्रों और कागज पर लिखा जाता था, लेकिन धीरे धीरे मानव सभ्यता मुद्रण की ओर बढ़ने लगी। चीन में लगभग 7वीं से 9वीं शताब्दी के बीच लकड़ी के ब्लॉक्स बनाए जा चुके थे जिन पर अक्षरों को उकेर कर और उसमें स्याही लगाकर पूरे पृष्ठ की छपाई की जाती थी।
2: ये तकनीक हस्तलिखित तकनीक से कहीं अधिक तेज और सुविधापूर्ण थी। 11वीं शताब्दी में चीन में धातुओं या लकड़ी से अलग अलग अक्षरों को बनाया जाने लगा और उनसे शब्द और वाक्य बनाए जाने लगे। ये आधुनिक मुद्रण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था।
1: जी श्रोताओं, 15वीं शताब्दी को मुद्रण की दिशा में एक मील का पत्थर माना जाता है जब जर्मनी के ग्यूटेनबर्ग ने 1450 में छापने की मशीन का आविष्कार किया।
2: जी,
1: इसके द्वारा एक ही पुस्तक की सैकड़ों प्रतियां तैयार हो सकती थीं।
2: गुटेनबर्ग ने एक धातु का फार्मा बनाया जिसमें चल अक्षर थे। चल अक्षरों का अर्थ है उनके फार्मे में अक्षरों को वाक्यों के रूप में सजाया जाता था और उनमें स्याही पोतकर कागज पर छापा जाता था। छपाई के बाद उन्हीं धातु के अक्षरों को फिर से नए वाक्यों के अनुसार संयोजित कर लिया जाता था।
1: जी श्रोताओं, गुटेनबर्ग की मशीन से छपने वाली पहली पुस्तक बाइबल थी जिसे गुटेनबर्ग बाइबल कहा जाता है। यही तकनीक आधुनिक मुद्रण कला की नींव बनी।
2: इसके बाद हम सभी जानते हैं कि मानव सभ्यता ने एक शानदार मुद्रण तकनीक को देखा। अब डिजिटल मुद्रण का युग है जिससे कुछ ही समय में हजारों लाखों पृष्ठ छापे जा सकते हैं। इसके बाद आया ई बुक का जमाना जिसमें हम रह रहे हैं। पहले पुस्तकों को रखने के लिए विशाल पुस्तकालय हुआ करते थे, लेकिन अब हजारों पुस्तकें एक छोटे से डिवाइस में ही रखी जा सकती हैं।
1: जी तो श्रोताओं, कहा जा सकता है कि मिट्टी की पुस्तकों से पेपिरस तक, भोज और ताड़ पत्रों से होते हुए चर्म पत्रों तक, वहां से गुटेनबर्ग के छापे खाने और फिर डिजिटल पुस्तकों तक की पुस्तकों की यात्रा सच में अनूठी है।
2: जी बिल्कुल, सच में अनूठी है। तो श्रोताओं, कैसी लगी आपको ये जानकारी जरूर बताइएगा। और अब सुनते हैं आज का प्रश्न। प्रश्न है,
1: गुटेनबर्ग ने छापने की मशीन का आविष्कार कब किया? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
2: गुटेनबर्ग ने छापने की मशीन का आविष्कार कब किया?
1: आप हमारे

0: प्रश्न का उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@ciet.nic.in पर भेज सकते हैं।
1: फेसबुक, इंस्टा, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
0: और अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं सबसे पहले कार्यक्रम कैसे बना हिमालय।
1: कक्षा 7 की समाज का अध्ययन की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में रोचक ढंग से बताया गया है कि हिमालय पर्वत की उत्पत्ति किन भौगोलिक कारणों से हुई और इसे मूड़दार पर्वत श्रृंखला क्यों कहते हैं।
2: साथियों नमस्कार, आइए करते हैं शुरुआत हिंदी के प्रख्यात कवि
3: विनोद कुमार शुक्ल जी की सुंदर कविता से।
2: उच्च हिमालय पर्वतराज, खड़ा पहनकर हिम का ताज,
3: ऊंचा मस्तक रख दिन रात, आसमान से करता बात।
2: हिमालय हमारा गौरव है, ऋषि मुनियों की तपोभूमि होने के कारण इसे देव भूमि भी कहा जाता है। यहाँ अनेक मठों और मंदिरों का निर्माण हुआ है। हिमालय वास्तव में भारत की आत्मा और गौरव का प्रतीक है। लेकिन क्या आपके मन में कभी ये जिज्ञासा उठी कि आखिर कैसे बना हिमालय?
3: तो आइए सुनते हैं एक नाटक,
2: कैसे बना हिमालय।
3: आज रिद्धि,
2: नव्या
3: और रिदित
2: सब बहुत खुश है
3: क्योंकि उनका परिवार
2: हिमालय क्षेत्र के भ्रमण पर दार्जिलिंग जो जा रहा है।
4: चलो चलो, दार्जिलिंग चलना है, बड़ा मजा आएगा, मैं तो खूब एंजॉय करूंगी।
5: मैंने सुना है बहुत सुंदर जगह है।
4: मुझे बहुत इच्छा थी इस टूर पर जाने की।
5: कितना अच्छा लगेगा जब हम हिमालय की गोद में कुछ दिन बिताएंगे,
4: पहाड़ों पर भी चढ़ेंगे, बड़ा मजा आएगा। अरे अरे जल्दी से चलो, पैकिंग भी तो करनी है,
5: बहुत मजा आएगा।
3: जहाँ वे रुके हुए थे वहाँ से दुनिया की सबसे ऊंची चोटी
2: माउंट एवरेस्ट साफ साफ दिखाई पड़ रही थी।
3: वे सुंदर दृश्य का आनंद उठा ही रहे थे
2: कि उनके कमरे के बगल में ठहरे हुए
3: डॉक्टर आदित्य भी वहाँ गए।
2: बातचीत होने लगी। जब सबने अपने परिचय दे ही दिया तो उन्हें पता चला कि डॉक्टर आदित्य जाने माने भूगर्भ शास्त्री है और अपने शोध कार्य के लिए यहाँ आए हुए हैं। चर्चा होने लगी। बस तो रिद्धि ने प्रश्न पूछ ही लिया।
4: सर, हमें कक्षा में टीचर बता रही थी कि हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है, क्या पर्वतों का भी निर्माण होता है?
3: भाई बहुत अच्छा सवाल पूछा है तुमने। भाई ये सच है कि पर्वतों का भी निर्माण होता है। तो सुनो, बहुत समय पहले की बात है, करीब 20 करोड़ साल पहले की बात है।
4: क्या 20 करोड़ साल?
3: तब हमारी धरती नई नई थी। तब हमारे महाद्वीप आज की तरह अलग अलग नहीं थे, सारी धरती एक साथ जुड़ी हुई थी।
4: सारी धरती एक साथ जुड़ी हुई थी मतलब?
3: नव्या अब भाई थोड़ा सा धीरज तो रखो, अब बताता हूँ। लेकिन उससे पहले ये बताओ कि हमारी पृथ्वी पर कितने महादेश हैं? रिदित तुम बताओ।
5: ये तो बहुत आसान है, एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका।
4: रुको रुको, मैं बताती हूँ।
3: तुम बताओ।
4: अफ्रीका, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया भी तो है। ऑस्ट्रेलिया को ओशेनिया भी तो कहते हैं।
3: बिल्कुल सही रिद्धि। उस समय हमारी पृथ्वी पर एक शांत और विशाल महासागर था और महासागर का नाम था टैथिस महासागर। क्या नाम था?
4: टैथिस महासागर।
3: वाह,
4: ये जानना तो बहुत ही रोचक है। फिर क्या हुआ सर?
3: फिर हुआ ये कि पृथ्वी की आंतरिक गतिविधियों के कारण ये जुड़े हुए भूखंड धीरे धीरे एक दूसरे से अलग होकर खिसकने लगे।
4: अलग होकर खिसकने लगे?
3: अरे एक दूसरे से दूर होने लगे, कुछ एक दूसरे के पास भी आने लगे।
4: सर फिर तो वे बहुत तेज गति से खिसक रहे होंगे।
3: अरे नहीं नव्या, हर साल लगभग 3-4 सेंटीमीटर बस।
5: लेकिन सर हम तो बात कर रहे थे कि हिमालय कैसे बना।
4: सर ये बताइए ना हिमालय कैसे बना?
3: बेटा मैं उसी विषय पर

0: करा रहा हूं। अच्छा अब आगे सुनो। उन दिनों हमारा भारत गोंडवाना नामक एक बहुत बड़े भूभाग का हिस्सा था, जहां उसका पड़ोसी अफ्रीका था। हजारों साल इसी तरह से निकल गए। समय के साथ साथ भूमि दो हिस्सों में बट गई। दोनों हिस्से एक दूसरे से दूर हो गए। वे दो हिस्से थे, लॉरेशिया यानी यूरेशियन प्लेट और गोंडवाना यानी इंडियन प्लेट।
1: यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट?
2: सर आप तो टेथिस सागर के बारे में भी तो बता रहे थे।
0: अरे वाह, तुमने तो मुझे बहुत अच्छा याद दिलाया
2: जी।
0: देखो, विशाल और शांत महासागर ये एक प्राचीन महासागर था, जो आज के भूमध्य सागर, अरब सागर और हिमालयी क्षेत्र के बीच फैला हुआ माना जाता है। इसी सागर की तलहटी भूमि की आंतरिक चाल के कारण गोंडवाना और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे की ओर बढ़ने लगी।
2: फिर क्या हुआ सर, जब प्लेट्स एक दूसरे की ओर बढ़ने लगी?
0: बेटा उसके बाद गोंडवाना लैंड यानी भारतीय हिस्सा टैथिस सागर एक दिन यूरेशियन प्लेट के करीब पहुंच गया। इस यात्रा में उसे लाखों साल लगे, लेकिन एक दिन अचानक एक जोरदार आवाज आई। गोंडवाना यानी इंडियन और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकरा गईं।
2: अच्छा?
0: हाँ बच्चों, टक्कर इतनी जोरदार थी कि बीच की धरती की परतें मुड़कर ऊंची हो गईं।
1: सर मैं कुछ बताऊं इसके बारे में?
0: हाँ बेटा क्यों नहीं।
1: ठीक वैसे ही जैसे यदि किसी कालीन या चटाई को दोनों तरफ से धक्का दिया जाए तो बीच का हिस्सा उठ जाता है।
0: बहुत अच्छे। और इसी प्रक्रिया में तुम जानते हो आगे क्या हुआ? इसी प्रक्रिया में जन्मा हिमालय। तुम्हें पता है आज भी हिमालय की ऊंचाई लगातार बढ़ रही है, क्योंकि इंडियन या गोंडवाना प्लेट लगातार यूरेशियन प्लेट की ओर बहुत धीमी गति से खिसकती जा रही हैं। दोनों ओर से दबाव बढ़ने के कारण इस हिस्से यानी हिमालयी क्षेत्र की ऊंचाई बढ़ती जा रही है। इसीलिए तो हिमालय को मोड़दार पर्वत कहते हैं।
2: अब समझ आया सर, इसकी ऊंचाई कितनी बढ़ जाती होगी?
0: भाई बहुत अच्छा सवाल है। हिमालय में अब भी प्रतिदिन बढ़ने की क्षमता है, इसके अलग अलग अनुमान हैं। आम तौर पर कह सकते हैं कि साल भर में लगभग 5 मिलीमीटर और एक सहस्राब्दी यानी 1000 वर्षों में लगभग 5 मीटर।
1: सर एक खास बात तो हम भूल ही गए, टेथिस सागर का क्या हुआ?
0: भाई यही तो सबसे रोचक बात है। सच ये है कि टैथिस सागर का क्षेत्र ही हिमालय पर्वत बन गया।
1: यानी क्या हम कह सकते हैं कि जहाँ कभी महासागर था वहाँ आज हमारा हिमालय है?
0: हाँ हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल कह सकते हैं।
2: लेकिन इसके क्या प्रमाण हैं?
0: भाई बहुत अच्छा सवाल पूछा है बेटी आपने। भूविज्ञानियों को हिमालय की ऊंचाइयों में आज भी समुद्री जीवों के जीवाश्म, शंख, सीप, समुद्री घोंघे और कोरल की चट्टानें मिली हैं। ये सभी जीव समुद्र में ही पाए जाते हैं। इन खोजों से सिद्ध हो जाता है कि कभी न कभी वहाँ समुद्र रहा जरूर होगा। वहाँ की बहुत सी चट्टानें भी ऐसी हैं जो समुद्र में ही पाई जाती हैं, जैसे चूना पत्थर और शेल आदि। ऐसी चट्टानें समुद्र की तलहटी में ही मिलती हैं।
2: अच्छा तो ये बात है।
0: बिल्कुल। एक और खास बात तुम्हें बता दूं, हिमालय कोई एक पर्वत नहीं है, ये बहुत विस्तृत और विशाल पर्वत श्रेणी है। इसकी लगभग 10 चोटियां हैं जो 8000 मीटर से भी अधिक ऊंची हैं। वैसे यदि सभी चोटियों की बात करें तो अलग अलग ऊंचाइयों की कुल 15000 चोटियां हैं, जिनमें सबसे ऊंचा है
2: माउंट एवरेस्ट।
0: सही जवाब। अच्छा बच्चों एक चीज और बताता हूँ, तिब्बती लोग इसे चोमोलुंगमा कहते हैं, जिसका अर्थ है जगत जननी, और पर्वत की उसी रूप

0: में पूजा भी करते हैं। अच्छा बच्चों, नेपाल के निवासी इसे सागर माथा कहते हैं, जिसका अर्थ है आकाश की देवी।
1: सर, मुझे आज की बातचीत से एक बात और समझ में आई।
0: भला वो क्या?
1: वो ये कि दबाव कितना भी पड़े, हिमालय की तरह ऊंचा उठना मत छोड़ो।
0: बिल्कुल सही बात।
2: तो साथियों, अभी आपने सुनी हिमालय के निर्माण की रोचक कहानी। कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। और अब आपके लिए कुछ प्रश्न। पता लगाइए कि हिमालय किस प्रकार का पर्वत है। दूसरा प्रश्न है, हिमालय किन दो प्लेटों के टकराने से बना। कार्यक्रम में आपने सुना कि हिमालय की ऊंचाई प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इस तथ्य से आपको क्या शिक्षा मिलती है? इस पर एक लघु निबंध या कविता लिखिए।
3: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कैसे बना हिमालय। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, ध्वन्यांकन मंजू कुमारी, बाल कलाकार रिद्धि नव्या और रिदित, कलाकार दलजीत सचदेवा और प्रीति मोहन, नाट्य आलेख अजीत होरो, निर्देशन विमलेश चौधरी तथा ध्वनि संपादन एवं निर्माण सुरेंद्र कुमार। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना कार्यक्रम कैसे बना हिमालय।

0: और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। शीर्षक है स्वामी की दादी।
1: इस कार्यक्रम में स्वामीनाथन नामक एक बच्चे की सुंदर कहानी है, जिसमें उसके और उसकी दादी के बीच प्रेम और स्नेह के संबंध को बताते हुए संदेश दिया गया है कि बच्चों को अपने बड़ों और बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए। कार्यक्रम मुख्य रूप से पारिवारिक मूल्यों के महत्व पर बल देता है।
2: बैठक और भोजन कक्ष के बीच कम हवादार अंधेरे गलियारे की बंद सी कोठरी में स्वामीनाथन की दादी अपने सारे सामान के साथ रहती थीं।

0: उनका सामान था 5 दरियों, 3 चादरों, 5 तकियों वाला भारी भरकम बिस्तर, पटसन के रेशे का बना एक वर्गाकार बक्सा और लकड़ी का एक छोटा बक्सा जिसमें तांबे के सिक्के, इलायची, लौंग और सुपारी पड़े रहते थे। रात के भोजन के बाद स्वामीनाथन दादी के पास उनकी गोद में सिर रखे लौंग इलायची की गंध भरे वातावरण में अपने को बहुत प्रसन्न और सुरक्षित महसूस कर रहा था।
1: आजा आजा आजा।
0: बड़ी प्रसन्नता से भरकर वो बोला,
2: ओ दादी, तुम नहीं जानती राजम कितनी ऊंची चीज है।
1: अच्छा?
0: उसने दादी को राजम और मणि की पहले दुश्मनी और फिर दोस्ती की कहानी कह सुनाई।
2: तुम्हें पता है उसके पास सचमुच की पुलिस की वर्दी है,
0: स्वामीनाथन बोला।
1: सच? उसे पुलिस की वर्दी क्यों चाहिए,
0: दादी ने पूछा।
2: उसके पिता पुलिस अधीक्षक हैं, वो यहाँ की पुलिस के सबसे बड़े अफसर हैं।
1: अच्छा?
0: दादी काफी प्रभावित हुई।
1: उनका सच में काफी बड़ा दफ्तर होगा,
0: उन्होंने कहा। फिर उन्होंने उन दिनों की कहानी सुनानी शुरू की जब स्वामीनाथन के दादा रौबदार सब मजिस्ट्रेट थे, जिनके दफ्तर में पुलिस वाले कांपते हुए खड़े रहते थे। उनसे डरकर खूंखार से खूंखार डाकू तक भाग खड़े होते थे। स्वामीनाथन अधीर होकर उनकी कहानी खत्म होने का इंतजार करने लगा, लेकिन दादी बोलती ही गईं, इधर उधर भटकती हुई और अलग अलग समय पर घटी घटनाओं को गडमड करती हुई।
2: बस काफी है दादी,
0: उसने रूखे स्वर में कहा।
2: मैं तुम्हें राजम के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। जानती हो उसे गणित में कितने नंबर मिलते हैं?
1: सारे नंबर मिलते होंगे, है ना,
0: दादी ने पूछा।
2: अरे नहीं, उसे 100 में से 90 मिलते हैं।
1: चलो अच्छा है, लेकिन तुम्हें भी मेहनत करके उसकी तरह नंबर लेने चाहिए। तुम्हें पता है तुम्हारे दादा कभी कभी ऐसे उत्तर लिखते थे कि परीक्षकों को भी चकित कर देते थे। किसी सवाल का जवाब देने में वे दूसरों के मुकाबले 10वां हिस्सा वक्त लेते थे, और फिर उनके जवाब इतने शानदार होते थे कि कभी कभी उनके अध्यापक उन्हें 200 नंबर तक दे देते थे। जब उन्होंने MA किया तो उन्हें इतना बड़ा मेडल मिला था। मैं कई सालों तक उसे गले में पहनती रही। पता नहीं मैंने कब उसे उतारा। हाँ, जब तुम्हारी बुआ पैदा हुई। नहीं, तुम्हारी बुआ नहीं, तुम्हारे पिता। याद आया, तब बच्चा 10 दिन का था। अरे नहीं, मैंने पहले ठीक कहा था, तुम्हारी बुआ ही पैदा हुई थी। पता है वो मेडल अब कहाँ है? मैंने वो तुम्हारी बुआ को दिया, और उस बेवकूफ ने उसे गलवा कर 4 चूड़ियां बनवा ली, और वो भी इतनी मामूली सी चूड़ियां कि मैं हमेशा कहती रही हूँ कि हमारे परिवार में उस जैसा महामूर्ख कोई नहीं। और
2: अब बस भी करो दादी, तुम बेकार की पुरानी कहानियां सुनाती रहती हो। क्या तुम राजम के बारे में नहीं

0: सुनना चाहती।
1: बोलो।
0: दादी, जब राजम छोटा सा लड़का था तो उसने शेर मारा था।
2: सच? बड़ा बहादुर लड़का है।
0: तुम ये बात मुझे खुश करने के लिए कह रही हो?
2: अरे नहीं नहीं,
0: तुम्हें यकीन नहीं हुआ होगा।
3: स्वामीनाथन ने बड़े उत्साह से कहानी शुरू की।
0: राजम के पिता एक जंगल में डेरा डाले हुए थे।
1: अच्छा।
0: राजम उनके साथ था। अचानक दो शेर उन पर झपटे और एक ने पीछे से हमला करके पिता को गिरा दिया। दूसरे ने राजम का पीछा किया। राजम एक झाड़ी के पीछे छुप गया और वहीं से गोली चलाकर शेर को मार डाला। दादी, क्या तुम सो गई?
3: उसने कहानी खत्म होने पर पूछा।
2: नहीं नहीं बेटा, सुन रही हूँ।
0: अच्छा बताओ, कितने शेर आए थे?
2: दो शेर राजम पर झपटे थे।
3: दादी ने जवाब दिया। स्वामीनाथन दादी के गलत जवाब से चिढ़ गया।
0: मैं तुम्हें इतनी जरूरी बातें बता रहा हूँ और तुम नींद में ना जाने क्या क्या ऊल जलूल कल्पना किए जा रही हो। अब मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा। मैं जानता हूँ तुम क्यों ऐसा कर रही हो। तुम राजम को पसंद नहीं करती।
2: अरे नहीं नहीं, वो तो बहुत प्यारा लड़का है।
3: दादी ने बड़े विश्वास से कहा। उन्होंने राजम को देखा तक नहीं था। स्वामीनाथन खुश हो गया। दूसरे ही क्षण उसके मन में एक नया संदेह पैदा हुआ।
0: दादी, शायद तुम्हें शेर की कहानी पर विश्वास नहीं हो रहा है।
2: मैं एक एक शब्द पर विश्वास करती हूँ।
3: दादी ने स्वर में मिठास भरकर कहा। स्वामीनाथन को इससे खुशी हुई, लेकिन उसने चेतावनी के तौर पर जोड़ा,
0: जो भी उसे झूठा कहेगा वो उसे गोली मार देगा।
1: अच्छा।
3: दादी ने इसका समर्थन किया और हरीशचंद्र की कहानी सुनाने की बात कही, जिसने वचन का पालन करने के लिए सिंहासन, पत्नी और बच्चे को खो दिया और अंत में उसे सब कुछ वापस मिल गया। उसने कहानी आधी ही सुनाई थी कि स्वामीनाथन खर्राटे लेने लगा।
2: तो हरीशचंद्र ने अपनी पत्नी और बच्चे को इस तरह से खो दिया, लेकिन बाद में।
3: दादी भी रुक रुक कर बोलने लगी, फिर वो भी सो गई।

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम स्वामी की दादी, और अब इसी के साथ हम आज के कार्यक्रम को विराम देने की आपसे आज्ञा चाहेंगे। तो अपने मित्र अजीत को
1: और उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी कुसुमलता, जगमंधु, चेतना और मंजू कुमारी जी के साथ विमलेश को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: अभी आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित ये कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। अब प्रस्तुत है सुगम संगीत।
4: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
5: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार।

0: विज्ञापनों के माध्यम से
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
0: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए
2: 0542227658।
0: नंबर एक बार फिर नोट करें
3: 0542227658। सुगम संगीत कार्यक्रम में कलाकार हैं स्मृति शुक्ला। पहले आपको सुनवा रहे हैं संत रविदास की रचना।

0: जयशंकर प्रसाद की रचना अभी आप सुन रहे थे। कलाकार थी स्मृति शुक्ला। सुगम संगीत कार्यक्रम समाप्त तो होता है।
1: प्रत्येक रविवार को दिन में 1:30 पर प्रसारित होने वाला कार्यक्रम लोक रंग अब व्हाट्सएप पर आधारित होगा, यानी आप कार्यक्रम के आरंभ में बताए हुए कलाकारों के पसंदीदा लोक गीत व्हाट्सएप के जरिए सुन सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर वही है जो फरमाइशी गीत एक्सप्रेस का है। करना सिर्फ ये है कि मैसेज आपको लोक रंग कार्यक्रम में रविवार को दिन में 1:30 से 2 बजे के बीच ही करना है, यानी कार्यक्रम के प्रसारण के दौरान, और बताए हुए कलाकारों से ही अपनी फरमाइशें हमें भेजें। व्हाट्सएप नंबर हमारा है 7905519981, यानी 7905519981। तो अब प्रत्येक रविवार को दिन में 1:30 पर सुनिए फरमाइशी लोक रंग कार्यक्रम व्हाट्सएप पर आधारित, और बने रहिए आकाशवाणी वाराणसी के साथ, हर पल हर घड़ी आपके साथ।
2: हम गवन मनाही जईबे बिना रे झूलनी, हम गवन मनाही जईबे।
0: हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं।

शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में प्रस्तुत है अंशुमान महाराज का सरोद वादन, राग है मधुवंती, तबले पर संगति की है राम कुमार मिश्र ने।

शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे अंशुमान महाराज का सरोद वादन। राग था मधुवंती, तबले पर संगति की राम कुमार मिश्र ने।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन से सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को रवाना किया। इस रेलगाड़ी का शुभारंभ रेलवे क्षेत्र में स्वच्छ और टिकाऊ परिवहन को अपनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पूरी तरह से स्वदेश में बनाई गई ये रेलगाड़ी उन्नत रेलवे इंजीनियरिंग में भारत की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जींद में लगभग 14,700 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इस अवसर पर एक जनसभा में उन्होंने भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन की शुरुआत को देश के लिए बड़ी उपलब्धि बताया।
1: आज भारतीय रेल ने भी 21वीं सदी की इस टेक्नोलॉजी में एक बड़ा स्टेप लिया है। आज जींद से सोनीपत के बीच हाइड्रोजन ट्रेन चली है। अब ये सफर 90 किलोमीटर का है। हम इस पर रिसर्च करते रहेंगे, लागत कम कैसे हो इसका तरीका ढूंढते रहेंगे, एफिशिएंसी कैसे बढ़े इस पर काम करते रहेंगे और बड़ी जांच पड़ताल करते करते एक के बाद एक कदम उठाते जाएंगे।
0: जींद के बाद प्रधानमंत्री चंडीगढ़ में 4,700 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री आज पंजाब के जालंधर से 5,470 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली रेल और सड़क बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं का उद्देश्य क्षेत्र में संपर्क व्यवस्था को मजबूत करना, यात्रियों की सुविधाएं बढ़ाना और आर्थिक विकास को गति देना है। प्रधानमंत्री आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश भर के 75 पुनर्विकसित अमृत रेलवे स्टेशनों का भी उद्घाटन करेंगे। इनमें केरलम के 6 रेलवे स्टेशन भी शामिल हैं। इन स्टेशनों के पुनर्विकास से राज्य में रेल बुनियादी ढांचे और यात्री सुविधाओं में उल्लेखनीय सुधार होगा। गृहमंत्री अमित शाह आज रात 3 दिन के दौरे पर पश्चिम बंगाल पहुंचेंगे। श्री शाह कल राज्य के जुमागाछ के सीमा चौक स्थित सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ की 18वीं बटालियन का दौरा करेंगे, जहां वे प्रहरी सम्मेलन को संबोधित करेंगे, वृक्षारोपण अभियान में भाग लेंगे तथा कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। श्री शाह का बीएसएफ कर्मियों से बातचीत का भी कार्यक्रम है। गृहमंत्री सिलीगुड़ी के उत्तर कन्या में कई उच्च स्तरीय बैठकें करेंगे। इन बैठकों में विभिन्न प्रशासनिक मामलों, पश्चिम बंगाल में नए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन और जन्म तथा मृत्यु पंजीकरण की स्थिति की समीक्षा की जाएगी। भारतीय पुलिस सेवा के 1994 बैच के वरिष्ठ अधिकारी अनुराग कुमार को दिल्ली का नया पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया है। गृह मंत्रालय के आदेश के अनुसार उनकी नियुक्ति कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होगी और अगले आदेश तक लागू रहेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 19 जुलाई से मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा पर जाएंगे। ये किसी भी भारतीय राष्ट्रपति की पहली यात्रा होगी। विदेश मंत्रालय के अनुसार ये दौरा भारत के इन देशों के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और पूर्वी यूरोपीय क्षेत्र के साथ सहयोग को नई गति देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। समुद्री प्रशासन महानिदेशालय डीजीएमए ने निर्देश दिया है कि अगले आदेश तक होर्मुस जलडमरू मध्य से होकर गुजरने वाले जहाजों पर भारतीय नाविकों की तैनाती न की जाए। इस संबंध में जहाज मालिकों, जहाज प्रबंधकों और भर्ती तथा नियुक्ति सेवा लाइसेंस प्राप्त कंपनियों के लिए नया परामर्श जारी किया गया है। महानिदेशालय ने यह सलाह खाड़ी क्षेत्र में बिगड़ती सुरक्षा स्थिति और हाल के दिनों में व्यापारिक जहाजों पर हुए हमलों को देखते हुए जारी की है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज 1% की वृद्धि दर्ज की गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 790 अंक बढ़कर 77,977 जबकि निफ्टी 205 अंक की बढ़त के साथ 24,277 पर कारोबार कर रहा था। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी का परिणाम घोषित कर दिया है। 11 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी मेडिकल, दंत चिकित्सा, आयुष और अन्य संबंधित कार्यक्रमों के लिए उत्तीर्ण हुए हैं। सभी उम्मीदवारों के अंक आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in पर उपलब्ध हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। 1:05 हुए हैं। लीजिए सुनिए, खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचनाएं और हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष मुख्य कार्यक्रमों की रूपरेखा। पहले सूचनाएं खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में। पुलिस कमिश्नरेट कार्यालय वाराणसी से प्राप्त सूचना के अनुसार अंतिमारा आए पिता का नाम वीरेंद्र राजभर, ये छितौनी लोहता वाराणसी की निवासी हैं और 11 मई 2026 से लापता हैं। अंतिमा राय की आयु है 19 वर्ष, कद 5 फीट 2 इंच, रंग गोरा, चेहरा गोल है। इनके बारे में कोई जानकारी आपको मिले तो पुलिस कमिश्नरेट कार्यालय वाराणसी को सूचित करें। राजकुमारी मोदनवाल, पति का नाम सुमित, ये सरायनंदन दशमी खोजवा की निवासी हैं और 20 मई 2026 की शाम 6 बजे से अपने घर से लापता हैं। राजकुमारी मोदनवाल की आयु है 27 वर्ष, कद 5 फीट 2 इंच, रंग गोरा, चेहरा लंबा है। इनके बारे में कोई जानकारी आपको मिले तो पुलिस कमिश्नरेट कार्यालय वाराणसी को सूचना दें। सहायक पुलिस आयुक्त भैलूपुर वाराणसी से प्राप्त एक सूचना, इसके अनुसार नेहा, पिता का नाम बब्बुन राम, ये किरहिया खोजवा भैलूपुर वाराणसी की निवासी हैं और 18 मई 2026 से किरहिया खोजवा से लापता हैं। नेहा की आयु 19 वर्ष, कद 5 फीट, रंग सांवला, चेहरा गोल है। इनके बारे में कोई जानकारी आपको मिले तो सहायक पुलिस आयुक्त भैलूपुर वाराणसी को सूचित करें। ये थी खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचनाएं और अब जानकारी हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष मुख्य कार्यक्रमों की। शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में रात में 10:30 पर अंशुमान महाराज का सरोद वादन प्रसारित होगा। स्वास्थ्य पत्रिका आप सुनेंगे रात में 10 बजे। रात में 9:30 पर अंजुमन कार्यक्रम आप सुनेंगे। सुगम संगीत कार्यक्रम में रात्रि 8 बजे भूपेंद्र सिंह और मिताली सिंह की गायी गजलें सुनवाई जाएंगी। कृषि जगत कार्यक्रम में शाम 6:30 पर खरीफ की फसल में होने वाली बीमारियां विषय पर डॉक्टर संतोष कुमार से सुधीर श्रीवास्तव की बातचीत आप सुनेंगे। इसी कार्यक्रम में लोकगीत के कलाकार होंगे महंगी राम प्रजापति और उनके साथी। इनके गाए कुछ लोकगीत आप दिन में 1:45 पर लोक संगीत कार्यक्रम में भी सुन सकते हैं। शाम 5:15 पर युवा साथी अपने कार्यक्रम युववाणी में सुनेंगे आज की बात। सिने दर्पण में अभिनेता संजीव कुमार पर जानकारी, यूथ डायरी में आज के शब्द, इतिहास में आज का दिन, रोजगार सूचना और फिल्म संगीत। एक ही कलाकार कार्यक्रम होगा 2:30 पर प्रस्तुति स्तुति मिश्रा की। 1:15 पर गृहलक्ष्मी कार्यक्रम में आज महिलाएं सुनेंगी फोन इन कार्यक्रम श्री अन्न स्वास्थ्य और स्वाद का संतुलन। इसके अलावा चर्चा और गीत संगीत। अभी आप सुन रहे थे हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष मुख्य कार्यक्रमों की रूपरेखा।

0: हम सभी का एक ही नारा, साफ सुथरा हो देश हमारा, सफाई अपनाएं, बीमारी भगाएं।
1: हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में 1:10 पर इलाकाई खबरें लखनऊ केंद्र से रिले की जाएंगी।

0: राजधानी लखनऊ है। अब आप शाइस्ता बानों से इलाकाई खबरें सुनिए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज हरियाणा के जिंद रेलवे स्टेशन पर जिंद और सोनीपत के दरमियान चलने वाली हिंदुस्तान की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मुकम्मल तौर पर देसी टेक्नोलॉजी के साथ तैयार करदा ये ट्रेन जदीद रेलवे इंजीनियरिंग में मुल्क की बढ़ती हुई सलाहियतों को जाहिर करती है। प्रोग्राम से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हिंदुस्तान की हाइड्रोजन ट्रेन मेक इन इंडिया की एक बहुत कामयाब मिसाल है। उन्होंने कहा गुज़िश्ता 12 सालों में रेलवे में होने वाली तब्दीलियों के नतीजे में आलमी अदम इस्तेहकाम के दौर में भी रेलवे के ऑपरेशंस मुतासिर नहीं हुए हैं।
1: आज जिंद का हरियाणा का नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया है। आज यहाँ से देश को पहली हाइड्रोजन ट्रेन मिली है। मैं आप सभी को, पूरे देश को भारतीय रेल की आधुनिकता से जुड़े इस बड़े कदम के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं।
0: इसके अलावा वज़ीर-ए-आज़म आज जलंधर में 5,470 करोड़ रुपए से ज्यादा के रेल और सड़क के बुनियादी ढांचे के मंसूबों का इफ्तिताह और संग बुनियाद भी रखेंगे। इस दौरान 20 रियासतों में 75 तज़ईन और आराई शुदा स्टेशनों का इफ्तिताह किया जाएगा, जिनमें लखनऊ का ऐशबाग जंक्शन स्टेशन भी शामिल है, जिस पर प्रधानमंत्री अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 1,570 करोड़ रुपए की लागत आएगी। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज शामली जिले में खिताब करते हुए कहा कि इससे कबल अफसानवी अहमियत के कैराना में नकल मकानी होती थी और तरक्याती काम ठप होते थे, लेकिन आज ये शामली एक्सप्रेसवे का संगम बन चुका है। उन्होंने कहा कि अगर यहां के नौजवान ताकत का सही इस्तेमाल किया जाए तो आने वाले वक्त में शामली NCR का सबसे खुशहाल इलाका बन जाएगा।
2: ये विकास का वो मॉडल है जो डबल इंजन सरकार आपको दे रही है, और डबल इंजन सरकार आज NDA की डबल इंजन की दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व की सरकार हो या उनके मार्गदर्शन में चलने वाली यूपी की सरकार, दोनों मिलकर के इस गति को शामली की प्रगति में बदल रहे हैं, उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं।
0: वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ आज 3 अजला के दौरे पर हैं। वज़ीर आला शामली, बिजनौर और गाजियाबाद में तकरीबन 2,500 करोड़ रुपए के तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखेंगे। वज़ीर आला तीनों अजलाओं में अवामी बहबूद की स्कीमों से फायदा उठाने वालों को भी एजाज देंगे और गाजियाबाद में साबिक वजीर राजपाल त्यागी के मुजस्मे की नकाब कुशाई करेंगे। इस दौरे के दौरान वो हुकूमत, इंतजामिया, पुलिस और मुतल्लिका महकमों के अहदेदारों के साथ मीटिंग भी करेंगे और कांवड़ यात्रा के इनेकाद के सिलसिले में रहनुमा खतूत फराहम करेंगे। इस दौरान वज़ीर आला मुख्तलिफ अवामी फलाही स्कीमों के मुस्तफदीन को कबूलियतनामा, चाबियां, चेक्स और 9 तैनात आंगनवाड़ी कारकुनों को तकरीरनामे तकसीम करेंगे। जनाब योगी कैराना में रियासती टैक्स महकमे के दफ्तर, कंडीला में वेटनरी अस्पताल, थाना भवन में सरकारी खवातीन के IIT का भी इफ्तिताह करेंगे। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश को रोबोटिक्स, मसनूई ज़हानत, क्वांटम कंप्यूटिंग, सेमी कंडक्टर और दीगर उभरती हुई टेक्नोलॉजीज में कौमी लीडर बनाने के लिए एक जामा एक्शन प्लान तैयार करने की हिदायत दी। कल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट की एक जायजा मीटिंग के दौरान उन्होंने कहा कि रियासत को न सिर्फ नई टेक्नोलॉजीज का सारिफ बनने पर तवज्जो मरकूज करनी चाहिए बल्कि तहकीक, इख्तिराअत और हाईटेक मैनुफैक्चरिंग का आलमी मरकज भी बनना चाहिए। हैवानात और दूध की तरक्की के वजीर मुमलकत कृष्णा पासवान ने कल आगरा महकमे के अफसरान के साथ एक जायजा मीटिंग की। उन्होंने मवेशी पालने से मुतालिक मुख्तलिफ सरकारी स्कीमों के पेशरफ्त का जायजा लिया और अहदेदारों को हिदायत दी कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि बकरी पालन, भेड़ पालन, मिनी नंदनी गाय स्कीम, नंदनी डेयरी स्कीम और नंद बाबा मिशन जैसी स्कीमों का फायदा ज्यादा से ज्यादा किसानों, मवेशी पालने वालों और मुआशी तौर पर कमजोर तबकात तक पहुंच सके। दुनिया भर में आज इंसाफ का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इसका मकसद उन तमाम लोगों को मुत्तहिद करना है जो इंसाफ की हिमायत करने, मुतासरीन के हुकूक को फरोग देने और ऐसे जराइम को रोकने मदद करने के ख्वाह हैं जो दुनिया के अमन, सलामती और फलाह के लिए खतरा है। यह दिन 17 जुलाई 1998 को रोम के आइन को अपनाने की सालगिरह के तौर पर मनाया जाता है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने कल रात NEET UG 2026 इम्तिहान के नतायज का ऐलान कर दिया। 11,21,000 उम्मीदवारों ने इम्तिहान पास किया। NTA के मुताबिक 58% से ज्यादा कामयाब उम्मीदवार खवातीन थी। 21 जून को होने वाले

0: इम्तिहान में तकरीबन 20 लाख उम्मीदवारों ने शिरकत की। रियासत के मुख्तलिफ अजला में वक्फे वक्फे से होने वाली बारिश और डैमों से पानी छोड़ने की वजह से कई नदियों के सतहआब में इजाफा हुआ है। बाराबंकी में दरियाए घाघरा और कुशीनगर में दरियाए गंडक खतरे के निशान के करीब बह रही हैं। अयोध्या में दरियाए सरयू भी वार्निंग लेवल पर पहुंच गई है। सेंट्रल वाटर कमीशन के जूनियर इंजीनियर आकाश प्रताप ने बताया कि इंतजामिया पानी की सतह की निगरानी कर रही है और अगर जरूरी हुआ तो जरूरी कार्रवाई करेगी। गुज़िश्ता चंद दिनों से जारी बारिशों के बाइस पानी की सतह बुलंद हो गई है। गुज़िश्ता रोज पानी की सतह में तकरीबन 40 सेंटीमीटर का इजाफा हुआ है और अगर बालाई इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी रहा तो पानी की सतह में इजाफा जारी रहेगा। वार्निंग लेवल क्रॉस होते ही तमाम मुतल्लिका महकमों को पानी की सतह से आगाह कर दिया जाएगा। महकमा मौसमियात ने आज येलो अलर्ट जारी किया जिसमें रियासत के मगरबी अजला में बारिश और मशरकी इलाकों में तेज बारिश और आसमानी बिजली गिरने की पेशगोई की गई है। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरें खत्म हुई। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नशर किया जाएगा।
1: हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। 1:16 और 14 सेकंड हुए हैं। अब महिलाएं सुनेंगी अपना कार्यक्रम गृहलक्ष्मी। पहले कुछ संदेश।
2: डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसे रोग संचारी रोग होते हैं। इनसे बचने के लिए घर के दरवाजे और खिड़कियों पर जाली लगवाएं, मच्छरदानी का प्रयोग करें, पानी की टंकी को ढक कर रखें, पूरी बांह वाले कपड़े पहने, कूलर की नियमित सफाई करें और अनुपयोगी वस्तुओं में पानी ना जमा होने दें।
3: अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800-1805-145 पर कॉल करें।
2: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
4: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455 पर कॉल करें।
1: आकाशवाणी वाराणसी से प्रत्येक सोमवार से शुक्रवार तक दिन में 12 बजे सुनिए NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम।
2: सुनो ना।
3: हाँ?
2: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
3: तो रोका किसने है? हाँ?
2: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
3: मुझसे।
2: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
3: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
2: पर उससे मेरा क्या फायदा?
3: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
2: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
3: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो
4: 0542227658।
2: ओ 0542227658। लो अभी फोन लगाता हूँ। 0542227658।

0: सखियों के साथ,
1: सखियों की बात,
2: सखियों के जज्बात,
3: गृह लक्ष्मी।
0: श्रोता सखियों को शबनम का प्यार भरा नमस्कार और संध्या जी नमस्कार।
4: शबनम जी आपको भी नमस्कार और हमारी सखियों को भी नमस्कार।
0: संध्या जी देखिए कहते हैं ना कि जितने वार नहीं उतने पर्व त्यौहार और उत्सव होते हैं हमारे यहाँ, और एक ऐसा ही महाउत्सव रथ यात्रा का है जो धर्म और आस्था से जुड़ा हुआ है।
4: बिल्कुल शबनम आपने कहा, और जानती हैं आप ये एक विशाल जो है ना रथ उत्सव है
0: जी।
4: जो मुख्य रूप से हिंदू धर्म में भगवान जगन्नाथ और उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के सम्मान में प्रतिवर्ष आषाढ़ शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को आयोजित किया जाता है। और इस दौरान जो है ना जो रथ होता है वो लकड़ी का ही रथ होता है जो नीम की लकड़ी से बनाया जाता है, और इसी पर तीनों देवताओं की प्रतिमाओं को रख कर जो है पूरे नगर में भ्रमण भी कराया जाता है। और ये जो रथ बनता है ना इसमें हम किसी भी कील या

0: धातु का भी इस्तेमाल नहीं करते हैं और यह उत्सव जो है पूरे 9 दिन चलता है और तीनों देवता इसमें जो है अपने मंदिर से निकलकर जो है ना अपनी जो मौसी हैं
1: जी
0: उनका जो मंदिर है जो घर है उसे बोलते हैं गुड़िचा मंदिर, वहाँ पर जाते हैं और वहाँ विश्राम करते हैं। कहते हैं ना कि क्योंकि जगन्नाथ भगवान जो हैं 108 जो घड़े उससे स्नान करके ना बीमार पड़ जाते हैं
1: जी
0: और
1: और
0: फिर
1: इसीलिए जो बनारस की रथ यात्रा होती है उसमें प्रसाद जो है परवल का सूप दिया जाता
0: हाँ
1: है,
0: बिल्कुल
1: उनके
0: सही
1: स्वास्थ्य का प्रतीक है और सब लोग ग्रहण करते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल, जो भी भक्त जाते हैं ना उनको भी
1: जी
0: प्रसाद के रूप में वही सूप भी दिया जाता है जिससे जो भी बीमारियां हैं वो ठीक हो जाती हैं। और उड़ीसा में पुरी शहर में जो है ना जगन्नाथ मंदिर जो है उस वहाँ पर भी जो है रथ यात्रा निकाली जाती है और इसको जो है ना हजारों लोग 8 इंच जो नारियल की रस्सी होती है ना उतनी मोटी होती है उसी से ही खींचते हैं। और ऐसा भी माना जाता है ना इसको जो भी खींचता है ना उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है।
1: और ये भी है संध्या जी कि ये तो पूरी की बात आप कर रही हैं, वैसे रथ यात्रा मेला सभी शहरों में सभी जगह पे होता है, हमारे शहर बनारस में बहुत सारे मेले ऐसे हैं जिसे लखा मेला कहते हैं,
0: जी जी जी
1: उनमें से रथ यात्रा मेला भी लखा मेला है जिसमें लाखों की संख्या में लोग मेले में शामिल होते हैं। और ये एक स्थानीय जो मिठाई होती है खास करके सजावटी सामान स्थानीय मिठाई ननखटाई,
0: जी जी
1: हमारे रथ यात्रा मेले में ननखटाई लोग ज़रूर खरीदते हैं, आसपास के जो कारीगर हैं उनकी हाथों की बनी हुई चीज़ें मिलती हैं। और ये एक ऐसा मौका होता है जहाँ पे आस्था भी जुड़ी है, धर्म भी जुड़ा है और लोगों के रोजगार भी जुड़े हुए हैं और सारे लोग इसका आनंद उठाते हैं और सभी लोग खुशी खुशी इसमें शामिल होते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल शबनम जी बिल्कुल आपने कहा। और जो लकड़ी के बने सामान होते हैं ना खास करके वो हमारे बनारस में ही मिलते हैं और इस मेले में तो बहुत ही सुंदर सुंदर सामान मिलते हैं और इसको बच्चे जो है ना इस्तेमाल भी करते
1: और
0: हैं।
1: इसके साथ साथ जैसे हमने खाने पीने की चीज़ें कही तो खाने पीने की बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं मेले में, सारी चीज़ें मिलती हैं, लेकिन अगर हम स्वास्थ्य की बात करें, स्वाद के साथ स्वास्थ्य की बात करें तो वो भी बहुत ज़रूरी है।
0: बहुत ज़रूरी है और इसके लिए आप जानती हैं ना मिलेट्स जैसे श्री अन्न भी कहते हैं जैसे ज्वार बाजरा रागी इसके जो होते हैं ना इसका आटा पिसवा के रोटी वगैरह बना के जो है ये स्वास्थ्य में भी हमारे फायदा करता है और हमारे स्वाद में भी रंगत लाता है।
1: बिल्कुल। और देखिए संध्या जी आप बात कर रही हैं श्री अन्न की मिलेट्स की, तो आज हमारी सखियों से भी बात हुई इसी विषय पे, तो वो बातचीत सुन लेते हैं फोन
0: जी
1: पे जो हमारी बात हुई है। हेलो,
2: हेलो
1: हाँ हेलो, आपका गृहलक्ष्मी कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, और किससे मेरी बात हो रही है, अपना नाम बताइए।
2: जी नमस्ते, मेरा नाम गीतांजलि है, मैं सिगरा से बोल रही हूँ।
1: गीतांजलि आपको पता है हम आज बात कर रहे हैं श्री अन्न यानी मिलेट्स के बारे में, कुछ मोटे अनाज हो
2: जी हाँ, मैंने इनका नाम सुना है,
1: सुना है, आप
2: ये
1: खाती
2: मोटे।
1: हैं?
2: हाँ जी हाँ, मैं खाती हूँ,
1: किस तरह से बनाती हैं क्या?
2: घर में मेरी मम्मी बनाती हैं और कभी कभार मैं भी बना लेती हूँ, जैसे कि रागी का चिल्ला हो गया और
1: अच्छा
2: सर्दियों में ज्वार और बाजरे की रोटी बन जाती है।
1: और
2: ये बहुत ज्यादा ही इनमें पोषण होता है तो ये हमारे हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं।
1: हाँ ये तो बहुत अच्छी बात आपने बताई।
2: ज्यादातर मेरी मम्मी बनाती हैं चीला
1: किसका?
2: रागी का,
1: रागी का, रागी के आटे का।
2: हाँ रागी के आटे का बनाती हैं,
1: तो उसमें क्या डालती हैं आप?
2: उसमें मैं और भी सब्जियां डालती हूँ जैसे कि प्याज हो गया गाजर हो गया।
1: और चीला बना लेती हैं
2: हाँ
1: तो आपको अच्छा लगता है?
2: हाँ वो बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट होता है और बहुत ज्यादा उससे सेहत बनती है।
1: हाँ ये तो बहुत अच्छी बात आपने बताई कि सेहत भी बनती है यानी स्वाद भी होता है और पौष्टिक भी होता
2: हाँ
1: है।
2: जी,
1: और बाजरे की रोटी किससे खाती हैं सर्दियों में?
2: वो साग होता है उससे खाती हूँ।
1: साग से खाती हैं बाजरे की रोटी।
2: हाँ
1: और कार्यक्रम आप सुनती हैं गीतांजलि?
2: जी हाँ, मैं ये कार्यक्रम सुनती हूँ और ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसमें बहुत सारी चीजें जानने को मिलती हैं।
1: गीतांजलि आप हमसे बात की, आपने कॉल किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो गृहलक्ष्मी कार्यक्रम
2: हेलो,
1: में आपका बहुत बहुत स्वागत है और हमारी किससे बात हो रही है, अपना नाम बताइए।
2: मेरा नाम जसवीरा चतुर्वेदी
1: जसवीरा,
2: है।
1: जसवीरा आप कहाँ से बात कर रही हैं?
2: मैं पहाड़िया से बात कर रही हूँ।
1: पहाड़िया से बात कर रही हैं।

0: गृहलक्ष्मी कार्यक्रम आप सुनती हैं जसवीरा?
1: जी मैम, बिल्कुल सुनती हूँ मैम।
0: आपको कैसा लगता है कार्यक्रम?
1: कार्यक्रम बहुत ही अच्छा है और हम लोगों को नई नई जानकारियाँ सुनने को मिलती हैं, जिससे हमारे रोज की दिनचर्या जो होती है वो थोड़ा सा आसान हो जाता है काम के प्रेशर में।
0: अच्छा
1: जी मैम।
0: जसवीरा, ये बताइए आपके बच्चे छोटे हैं या बड़े हैं? कितने बड़े बच्चे हैं आपके?
1: मैम, मेरे बच्चे छोटे हैं,
0: अच्छा।
1: एक 4 साल की है, एक 4 साल की है और एक 12 साल की है। दो
0: अच्छा, दो बच्चे हैं
1: बच्चे
0: आपके।
1: हैं।
0: और ये बताइए कि आप अपने बच्चों को कुछ पौष्टिक आहार देना चाहती होंगी, उनके लिए क्या करती हैं आप, उन्हें हेल्दी डाइट देने के लिए?
1: मैम, उनको हेल्दी डाइट देने के लिए पहले उनको दलिया वगैरह देती हूँ, ग्रीन्स, बहुत सारे मल्टी ग्रीन्स दालें आती हैं
0: जी
1: वो देती हूँ, गेहूँ के आटा की रोटी देती हूँ, ज्वार बाजरे की रोटियां देती हूँ,
0: जी
1: ये सारी चीजें देती हूँ।
0: अच्छा, ये जैसे श्री अन्न कहते हैं ना, कि जिसमें ज्वार बाजरा और कोदो सावा, ये सारे जो मिलेट्स हैं, जो पहले मोटे अनाज जो हैं पहले जमाने में लोग खाते थे, अब इसके बारे में लोग ज्यादा कॉन्शियस हो गए हैं, ज्यादा जागरूक हो गए हैं, तो आप इनके बारे में कुछ जानती हैं और किस तरह से उपयोग करती हैं, कुछ अपनी सखियों को बताइए।
1: जी मैम, उससे आपकी जो हेल्थ डाइट होती है बच्चों को, जो संपूर्ण आहार जिसको बोलते हैं, ये सारी चीजें अगर हम अपनी डाइट में रखते हैं, भोजन में, बच्चों के खाने
0: जी
1: की चीजों में, तो उनसे उनको पूर्ण विकास में मदद मिलती है, बच्चों का संपूर्ण विकास होता है। अगर हम ये ग्रीन अनाज हो या दाल हो, जो भी मल्टी ग्रीन होते हैं,
0: जी जी
1: उससे हमारे बच्चों को एनर्जी मिलती है।
0: अच्छा, और ये तो हम कह सकते हैं कि सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, आपके लिए भी बहुत फायदेमंद है, बड़े लोगों के लिए भी फायदेमंद
1: जी,
0: है।
1: बड़े बड़े बड़े लोगों के लिए भी फायदेमंद है मैम। जैसे हमारे घर में बड़े बुजुर्ग जो भी होते हैं, उनके खानों खान पान में भी हम अगर ये आहार सम्मिलित करें तो उनके भी स्वास्थ्य अच्छा सही रहेगा, उनका भी स्वास्थ्य सही रहेगा।
0: अच्छा जसवीरा, आप कुछ ऐसा हमारे साथ डिस्कस करेंगी कि कोई चीज, कोई व्यंजन ऐसा पौष्टिक बनाती है अपने बच्चों के लिए या अपने लिए, जो आप सखियों को भी बताना चाहें, कुछ ऐसा बताएंगी?
1: मैम, मैं कभी कभी कई तरह की दालें हैं
0: जी
1: उनका उपयोग करके घर में मतलब मिक्स दाल बनाती हूँ,
0: जी
1: और
0: जी
1: जो हमारी छोटी बच्ची है उसको बहुत पसंद है। रात के खाने में हल्का अगर एक चपाती बना रही हूँ तो उसमें मल्टी ग्रीन जैसे ज्वार, मक्का, गेहूं का आटा,
0: जी
1: ये सब मिक्स करके पिसवा उसकी रोटियां बनाती हूँ। तो आप अगर उस रोटी को एक या दो भी खा लेते हो तो वो फुल फिल होता है, पेट उससे आपका पूरा भर जाता है। वो बोलते हैं ना, जो संपूर्ण आहार
0: जी
1: आपको
0: जी
1: वो मिलता है, सारा पोषण आपको अपने बच्चों के या बड़ों बड़े बुजुर्ग जो भी
0: जी
1: हैं
0: जी
1: उनको उससे मिलता है ना।
0: बहुत अच्छी बात हुई जसवीरा आपसे, और कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो,
1: हेलो,
0: मेरी किससे बात हो रही है, अपना नाम बताइए।
1: मालती तिवारी,
0: मालती जी, कहाँ से बात कर रही हैं
1: अक्षकुंडा
0: जी?
1: से।
0: अगस्त कुंडा, वाराणसी से। अच्छा मालती जी, आप क्या करती हैं, कुछ करती हैं या घर में रहती हैं?
1: अक्षकुंडा
0: घर में रहती हैं। गृहलक्ष्मी कार्यक्रम सुनती हैं आप? सुनती हैं, कैसा लगता है आपको कार्यक्रम जी? अच्छा, सब सुनती हैं। अच्छा मालती जी, ये बताइए कि जो मोटे अनाज होते हैं, बाजरा, ज्वार, कोदो, सावा, इनके बारे में आप जानती हैं ना?
1: इसके बारे में आपको जानना है इसलिए।
0: हाँ, इनके बारे में जानना है, और इनके बारे में आप ये बताइए कि आप इनका उपयोग करती हैं, कैसे करती हैं, और ये कितना फायदेमंद है हम लोगों के लिए। हाँ बताइए जो जी जी जी
1: कि घी बनता है, नमकीन से बनता
0: जी
1: है, मीठे में गुलगुला है, तो
0: जी
1: गुलगुला बनता है आटे को मीठे में, या तो कूट के कच्चा,
0: जी
1: और फिर इसमें दाल काला लहसुन जो खाता है वो।
0: आप, हमें लग रहा है कि बुजुर्ग हैं और

0: पहले के लोग ज्यादा इस्तेमाल करते थे, अब के लोग ज्यादा इस्तेमाल करना अब जाने हैं?
1: पता ही नहीं था, अब तो मतलब बुराई थी, जहाँ हमारे मायके में बोया जाता था
0: जी,
1: हम लोग तो बचपन से जानते हैं।
0: अच्छा,
1: लेकिन अब तो बहुत लोग कम बोलने लगे, मूंगफली करने लगे, दुनिया भर करने लगे, अब उसके फायदे को नहीं समझते हैं
0: जी।
1: ये है कि भाई शहर में रहने वाले तो जब उसको पाएंगे जानेंगे तभी ना,
0: अब तो हर जगह मिलने लगा है। अच्छा ये बताइए मालती जी, अगर इसे स्वादिष्ट, जैसे एक आपने बताया कि गुलगुला बना सकते हैं और रोटी भी बनती है, और क्या बना सकते हैं?
1: रोटी बना करके उसको मसल करके उसमें मीठा और घी मिला करके कुछ मेवे भी डाल सकते हैं, तो लड्डू की तरह बनाइए चूरमा।
0: हाँ
1: कई चीज बनता है इसका।
0: अच्छा, यानी स्वाद भी है और सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है। अच्छा, आपको गाना सुनना पसंद है?
1: बिल्कुल पसंद है।
0: कोई आपकी
1: पुराने गाने आज
0: कौन सा गाना आपको हम सुनवा दें आज?
1: एक छोटी बहन का गाना है
0: जी,
1: जन्मा तो हमको नहीं याद आ रहा है।
2: बाहू में

0: हेलो
1: हेलो।
0: हेलो।
1: हाँ, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मेरी किससे बात हो रही है, अपना नाम बताइए।
0: मैम नमस्कार, मैं मधु बोल रही हूँ।
1: जी, मधु आप कहाँ से बात कर रही हैं?
0: मैं पांडेपुर से बात कर रही हूँ।
1: पांडेपुर से बात कर रही हैं। अच्छा मधु, आप क्या
0: जी मैम।
1: करती हैं? हाउसवाइफ हैं या कुछ काम करती हैं? वर्किंग हैं?
0: नहीं मैम, मैं हाउसवाइफ हूँ।
1: हाउसवाइफ हैं। अच्छा,
0: जी
1: आपके
0: मैम।
1: बच्चे हैं, बड़े हैं, छोटे हैं? घर में कितने लोग हैं आपके यहाँ?
0: मैम घर में बच्चे चार हैं मेरे,
1: जी
0: और
1: जी
0: दो मेरे बच्चे हैं और दो जैसे कजिन हैं ब्रदर,

0: बच्चे हैं।
1: बड़े बड़े हैं बच्चे या छोटे?
0: छोटे भी बच्चे हैं और बड़े बच्चे भी हैं।
1: अच्छा, मैं तो ये बताइए, आप जैसे कि आजकल श्री अन्न के बारे में, मिलेट्स के बारे में लोग बहुत जागरूक हो गए हैं, मोटे अनाज के बारे में। ये कहते हैं कि इसमें ग्लूटेन नहीं होता है, ये बहुत पौष्टिक होते हैं और इनसे बहुत सारी चीजें बन रही हैं, स्वादिष्ट भी होते हैं। आप कुछ इस्तेमाल करती हैं इस तरह के अनाज?
0: अनाज का तो मतलब बच्चों के हेल्थ के लिए, बड़ों के हेल्थ के लिए, सभी के लिए अच्छा होता है। ये मल्टीग्रीन अनाज तो सभी जनरली अभी मैक्सिमम हर घर में यूज होता है,
1: जी
0: हेल्थ के हिसाब से। खाने में अगर आप मल्टीग्रीन, अगर दाल हो या फिर रोटी वगैरह, आप अनाज, सारे अनाज को मिक्स करके, गेहूं, ज्वार, बाजरा सब मिक्स करके अगर आप बना रहे हो
1: जी
0: तो वो आपके हेल्थ के लिए सही रहता है। आपके बच्चों के लिए हो या बड़े बुजुर्ग हो, सबके स्वास्थ्य के लिए ये अच्छा होता है खाने में।
1: अच्छा, आप कैसे इस्तेमाल करती हैं?
0: उसका रोटियां, रोटी भी बना लेती हूँ, दाल वगैरह सब, ये दाल वगैरह मिक्स करके बना लेती हूँ,
1: अच्छा,
0: चपाती वगैरह, रोटियां। जी मैम, रोटी भी बनाती हूँ।
1: रोटी भी बनाती हैं। और कुछ व्यंजन और कुछ खास बनाती हैं? जैसे कि आजकल तो बिस्किट्स भी मिल रहे हैं और परफ्यूम भी मिल
0: मल्टीग्रीन
1: रहे हैं।
0: बिस्किट्स है
1: जी
0: वगैरह, ये सब भी मार्केट में होता है। आप घर पे भी अपना सारी दालें वगैरह, अनाज वगैरह मिक्स करके घर पे भी बना सकती हैं।
1: अच्छा, मधु आप हमको कॉल की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी कोई फरमाइश है? आप कोई गीत भी सुनना चाहेंगी?
0: जी मैम बिल्कुल, एक मूवी का नाम याद नहीं आ रहा है, दिल में तुझे बिठा के कर लूं मैं बंद आंखें।

0: हेलो,
1: नमस्ते मैम।
0: नमस्ते। गृहलक्ष्मी कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारी किससे बात हो रही है, अपना नाम बताइए।
1: मेरा नाम तृप्ति है और मैं
0: तृप्ति,
1: भोजू से बात कर रही
0: तो गृहलक्ष्मी कार्यक्रम सुनती है,
1: हूँ।
0: कैसा लगता है?
1: बहुत अच्छा लगता है, मैं रोज ही सुनती
0: अच्छा तृप्ति, ये बताइए कि आप हाउसवाइफ हैं या वर्किंग हैं?
1: हूँ। हाँ मैम, मैं हाउसवाइफ हूँ, मेरी बच्ची
0: बच्ची है।
1: है।
0: अच्छा, श्री अन्न, इनके बारे में आपने सुना है?
1: जी मैम, हम लोग मल्टीग्रेन यूज भी करते हैं।
0: और क्या चीज कैसे इस्तेमाल करती हैं, इसके बारे में जरा हमें बताइए।
1: ग्रेन बहुत सारे अनाज हैं मैम, कभी हम लोग मिला के भी यूज

0: अलग अलग भी यूज करते हैं, जैसे हो गया ज्वार, बाजरा, गेहूँ, और दाल में भी कई दालें हम लोग यूज करते हैं।
1: अच्छा, कोदो, सावा, इनके बारे में भी आप जानती हैं कुछ इनके बारे में?
0: हाँ मैम, जानते हैं,
1: क्या
0: ये सब चावल के प्रकार होते हैं।
1: अच्छा, इनका क्या बनाती हैं आप?
0: जैसे आप बात करें, कुछ व्रत में भी यूज करते हैं, तो हम लोग व्रत में ही यूज करते हैं।
1: क्या बनाती हैं व्रत
0: खीर
1: में?
0: बना लेते हैं, खीर बना लेते हैं, आटे का पूरी रोटी बना लेते हैं।
1: किसकी खीर बनाती हैं?
0: सावा, सावा जिसको कहते हैं,
1: सावा के चावल की खीर बनती है ना? और रागी का आटा होता है, कुट्टू का आटा होता है, इनका पुआ वगैरह बनता है ना?
0: मैम कुट्टू के आटा के हम लोग रोटी बनाते हैं, पूड़ियां बनाते हैं व्रत में।
1: अच्छा, तो बस जैसे गेहूं के आटे की बनती वैसे ही?
0: हाँ मैम, सिंघाड़े के आटे में मिक्स करके और हम लोग बनाते हैं, कभी कभी आलू भी मिला लेते हैं।
1: अच्छा, तो ये स्वादिष्ट भी होती है और पौष्टिक भी होती है।
0: हाँ जी मैम, हाँ जी।
1: तो सिर्फ व्रत में बनाती हैं या ऐसे भी खाती हैं?
0: नहीं, ऐसे तो हम लोग व्रत में ही यूजुअली यूज करते हैं मैम। बच्चे के लिए लंच में हम लोग मल्टी ग्रेन का यूज करते हैं, जैसे रोटियां बनाते देते हैं।
1: अच्छा, तो हमें कॉल किए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम सुनती रहिए और अपनी प्रतिक्रिया भी भेजती रहिए। धन्यवाद।
2: सखियों, अभी आप सुन रही थी ना मिलेट्स के विषय में, हमारी सखियां कितनी अच्छी अच्छी जानकारियां दी है ना सुनम जी यहाँ, और देखिए कितना
1: संध्या जी,
2: अच्छा।
1: आप भी कुछ बनाती हैं?
2: हाँ बिल्कुल, मैं भी बनाती हूँ। मुझे तो सबसे अच्छा ना बाजरे की खिचड़ी लगती है।
1: कैसे बनाती
2: बाजरे
1: हैं?
2: को भिगो कर जो है, और उसमें छोटी छोटी सारी तरह जो भी सीजनल सब्जियां मिले ना उनको काट के, और खूब अच्छा मसाला वसाला डाल के, धनिया मिर्च डाल के ना वो थोड़ा सा बनाते हैं, तो बहुत टेस्टी लगती है। इससे पेट भी भरा रहता है और जो है ना स्वाद भी और स्वास्थ्य भी बना रहता है। इसके साथ साथ ना ये वजन कम करने में भी बहुत ही अच्छी चीज है।
1: यानी कि जो सखियां अपना वजन कम करना चाहती हैं वो बाजरे की खिचड़ी खाएं,
2: बिल्कुल
1: चावल की
2: बिल्कुल।
1: नहीं।
2: हाँ चावल की नहीं बल्कि बाजरे की खिचड़ी खाएं, और इससे जो है ना पाचन क्रिया भी बहुत अच्छी रहती है, तो मुझे तो लगता है बहुत ही स्वादिष्ट बन।
1: और ये भी बात है संध्या जी कि देखिए, जो बाजरा है उसकी तासीर जो है गर्म होती है, तो खास करके सर्दियों में बाजरे का इस्तेमाल किया जाता है। और बाजरे की खिचड़ी या कोई भी चीज़ें, जब बहुत सारी सब्जियां आ जाती हैं हरी, यानी कि मटर आ जाए और गोभी और टमाटर और सारी चीज़ें, तब ये सारी चीज़ें बनाइए तो बहुत अच्छा लगता है। वैसे अब भी जब मौसम थोड़ा सा गर्मी वाला है, बारिश वाला है, तो ऐसे में भी बहुत ख्याल रखना है अपने खाने पीने का, क्योंकि इस समय जो है ना जो पाचन क्रियाएं होती हैं वो बड़ी मंद हो जाती हैं, और ऐसे में बहुत तेल मसाले वाली चीज़ें ना खाएं, बल्कि ऐसी चीज़ें खाएं जो जल्दी हजम हो जाए। और इस सीज़न में सखियों, नींबू वगैरह का इस्तेमाल कीजिए, नींबू पानी पीजिए, लेकिन जब पर्व त्यौहार आता है ना तो लोग खाने पीने में थोड़ी सी बदपरहेजी कर देते
2: जी
1: हैं।
2: जी बिल्कुल सनम जी, कहीं कुछ खा लेंगे, मन करेगा मेला घूमने गए तो कुछ खा लिया बाहर का, और जैसे भी ये कुछ ऐसा है देखते ना साफ सफाई नहीं रहती है या पानी शरबत पी लिया, तो इस सब चीजों का बहुत ही जो है हमें ध्यान रखना चाहिए कि अगर हम बाहर कोई भी चीज खा रहे हैं तो साफ सफाई से होनी चाहिए, और प्रयास करना चाहिए ना, मुझे तो लगता है कि अपने घर में ही जो है ना इसको बनाना चाहिए और खाना चाहिए।
1: क्योंकि हर चीज ऐसी है जो आप घर में बना सकती हैं, और अगर थोड़ी सी जागरूक हैं तो बहुत जरूरी है कि आप जागरूक भी रहें। और जब आप खास करके मेले की हम लोग बात कर रहे हैं, तो उत्सव के वक्त या मेले में जब जो सखियां गई हैं उन्हें भी अपना ख्याल रखना है, उन्हें बहुत भीड़ भाड़ वाली जगह से नहीं गुजरना हो तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि अगर आपको उस रास्ते से नहीं जाना है, कोई काम से जाना है तो दूसरा रास्ता पकड़ लीजिए, और अगर आपको मेला ही घूमने जाना है तो बहुत ऐसे जगह से मत जाइए, कहीं पे होता क्या है कि कुछ दुकानों पे बहुत भीड़ होती है,
2: जी,
1: तो लोगों को लगता है कि यहाँ बहुत अच्छी चीज़ मिल रही है, वहीं पर सब इकट्ठा हो जाते हैं, तो वहाँ पर भी आप मत खड़ी हुई है, और अपनी चीजों की बहुत सावधानी से हिफाजत करिए। कि अब तो सबके हाथ में बहुत महंगे महंगे मोबाइल वगैरह हो गए हैं, छोटे बच्चों का बहुत ख्याल रखिए, और अपने सारे सामान का, जैसे बहुत सारी सखियां जो हैं पर्व त्योहार या मेले में बहुत सारे जेवर पहन के चली जाती हैं, तो उनकी भी बहुत सुरक्षा करिए। और हमें घड़ी भी इशारा कर रही है कि समय का भी ख्याल रखिए, तो चलते हैं और सखियों को कहते हैं
2: नमस्कार।
3: सखियों के साथ,
4: सखियों के बाद,
3: सखियों के जज्बात,
4: गृह लक्ष्मी।

0: महिलाएं सुन रही थीं अपना कार्यक्रम गृहलक्ष्मी। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। 1:45 हुए हैं। लोक संगीत कार्यक्रम में कलाकार हैं महंगीराम प्रजापति और उनके साथी। पहले सुनिए इनका गाया एक दादरा।
1: कॉल था, अच्छा था कॉल था, छोटा था और बुरा लगता।

इस खेमटा के बाद आइए सुने कार्यक्रम के अंत में विकास गीत, कलाकार महंगीराम प्रजापति और साथी।

इस विकास गीत के साथ ही आज का लोक संगीत कार्यक्रम समाप्त होता है। कार्यक्रम में कलाकार थे महंगीराम प्रजापति और उनके साथी।

0: हम सभी का एक ही नारा, साफ सुथरा हो देश हमारा, सफाई अपनाएं, बीमारी भगाएं, स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत। हम सब ने ये ठाना है, भारत को स्वच्छ बनाना है। स्वच्छता का दीप जलाएंगे, चारों ओर उजियारा फैलाएंगे। सभी रोगों की एक दवाई, घर में रखो साफ सफाई। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में 2 बजे आप सुनेंगे मिड डे न्यूज, उसके बाद 2:15 पर दोपहर समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: गुड आफ्टरनून, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम वल्सा विलियम्स विद द मिड डे न्यूज। The headlines. Prime Minister Narendra Modi flags off India's first hydrogen train in Jind, Haryana. Also lays foundation stone and dedicates various development projects worth over 14,000 crore rupees. DGMA directs ship owners to avoid deploying Indian seafarers undertaking voyages through Strait of Hormuz. European Union expresses serious concern.

0: व्यक्त करते हुए कहा, व्यापारिक लाभ पाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं का पालन करें। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और उड़ीसा के कुछ हिस्सों में आज तेज बारिश का अनुमान। और भारत की पीवी सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन से सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को रवाना किया। इस रेलगाड़ी का शुभारंभ रेलवे क्षेत्र में स्वच्छ और टिकाऊ परिवहन को अपनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने हरियाणा में 14,000 करोड़ रूपये से अधिक के विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी। श्री मोदी ने 157 किलोमीटर लंबे दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे को राष्ट्र को समर्पित किया। ये ग्रीनफील्ड कॉरिडोर 667 किलोमीटर लंबे दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे का हिस्सा है। इस एक्सप्रेसवे से दिल्ली और कटरा के बीच यात्रा का समय 14 घंटे से घटकर लगभग 6 घंटे हो जाएगा, जबकि दिल्ली अमृतसर की यात्रा का समय लगभग 8 घंटे से घटकर 4 घंटे हो जाएगा। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्ष में भारतीय रेलवे में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा ने हाल के वर्षों में विकास के एक नए चरण को देखा है और प्रगति के पथ पर अग्रसर हुआ है।
1: 2 नए मेडिकल कॉलेज भी हरियाणा की सेवा के लिए समर्पित है। भिवानी में पंडित नेकीराम शर्मा मेडिकल कॉलेज और नारनौल में महर्षि च्यवन मेडिकल कॉलेज और राव तुलाराम अस्पताल, इससे हरियाणा की स्वास्थ्य सेवा और सशक्त होगी। साथ ही इस यहाँ के नौजवानों के लिए डॉक्टर और अन्य मेडिकल प्रोफेशनल्स बनने के नए रास्ते भी बनेंगे।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि जींद भाजपा और एनडीए के सुशासन मॉडल का प्रतीक बनकर उभर रहा है। श्री मोदी ने कहा कि देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन के शुभारंभ ने जींद को भारत के इतिहास में एक विशेष स्थान दिलाया है।
1: आज भारतीय रेल ने भी 21वीं सदी की इस टेक्नोलॉजी में एक बड़ा स्टेप लिया है। आज जींद से सोनीपत के बीच हाइड्रोजन ट्रेन चली है। अब ये सफर 90 किलोमीटर का है। हम इस पर रिसर्च करते रहेंगे, लागत कम कैसे हो इसका तरीका ढूंढते रहेंगे, एफिशिएंसी कैसे बढ़े इस पर काम करते रहेंगे और बड़ी जांच पड़ताल करते करते एक के बाद एक कदम उठाते जाएंगे।
0: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारत की पहली हाइड्रोजन चालित ट्रेन के शुभारंभ को देश की तकनीकी प्रगति में एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। श्री वैष्णव ने कहा कि ये उपलब्धि नरेंद्र मोदी सरकार के व्यापक रेलवे आधुनिकीकरण अभियान का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि ये उपलब्धि स्वदेशी हाइड्रोजन प्रौद्योगिकी के विकास के लिए दृढ़ राष्ट्र संकल्प का परिणाम है।
2: जींद में हाइड्रोजन बनाने का प्लांट लगाया गया है। उस हाइड्रोजन से बिजली बनती है और उस बिजली से ट्रेन चलती है। कोई धुआं नहीं, कोई पेट्रोल या डीजल की रिक्वायरमेंट नहीं, एकदम साफ स्वच्छ और सिर्फ निकलता है पानी की बूंदे। मैं इस बड़ी उपलब्धि के लिए भारत के नेतृत्व को, माननीय प्रधानमंत्री जी को और भारत के इंजीनियर्स की टेक्निकल क्षमता को सल्यूट करता हूँ।
0: भारत में डिजाइन और एकीकृत की गई इस ट्रेन को स्वदेशी तकनीक का उपयोग करके विकसित किया गया है। ये उन्नत रेलवे इंजीनियरिंग में देश की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है। जींद सोनीपत खंड पर 75 किलोमीटर प्रति घंटे की परिचालन गति और 110 किलोमीटर प्रति घंटे की डिजाइन गति के साथ ये ट्रेन न केवल सुरक्षित है बल्कि 89 किलोमीटर के इस खंड पर तेज भी है। एक रिपोर्ट।
3: हाइड्रोजन से चलने वाली इस ट्रेन की शुरुआत होने के साथ ही भारत अब जर्मनी, जापान, चीन और अमेरिका जैसे उन चुनिंदा देशों की सूची में शामिल हो गया है जहां हाइड्रोजन ट्रेनें चल रही हैं। इस समय दुनिया में अभी ज्यादातर हाइड्रोजन ट्रेनें सिर्फ 2 या 3 डिब्बों की होती है और इन्हें छोटी दूरी की क्षेत्रीय मार्गों पर चलाया जाता है। इसके विपरीत भारतीय रेलवे ने हाइड्रोजन से चलने वाली इस 10 डिब्बों की ट्रेन तैयार की है जिसमें करीब 2,600 यात्रियों के सफर करने की क्षमता है। यह रेलगाड़ी हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक से चलती है जो ट्रेनों को चलाने के लिए हाइड्रोजन को विद्युत में परिवर्तित करती है। ग्रीन हाइड्रोजन के उपयोग से कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों से बनने वाली बिजली पर निर्भरता कम होगी। इससे भारत को स्वच्छ और टिकाऊ परिवहन व्यवस्था विकसित करने में मदद मिलेगी। यात्रियों की सुरक्षा के लिए ट्रेन में आधुनिक बहुस्तरीय सुरक्षा प्रणाली लगाई गई है जो हाइड्रोजन रिसाव, आग की लपटों और धुएं का तुरंत पता लगा

0: आ सकती है। जिंद से आनंद कुमार की रिपोर्ट के साथ आकाशवाणी समाचार के लिए दीपेंद्र कुमार।
1: संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के पूर्व कार्यकारी निदेशक और नॉर्वे के पूर्व पर्यावरण मंत्री एरिक सोलहिम ने भारत की पहली हाइड्रोजन चालित रेलगाड़ी के शुभारंभ का स्वागत किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सोलहिम ने इसे भारत के लिए बड़ी उपलब्धि बताया। प्रधानमंत्री आज पंजाब के जालंधर से 5,470 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली रेल और सड़क बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं का उद्देश्य क्षेत्र में संपर्क व्यवस्था को मजबूत करना, यात्रियों की सुविधाएं बढ़ाना और आर्थिक विकास को गति देना है। प्रधानमंत्री आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देशभर के 75 पुनर्विकसित अमृत रेलवे स्टेशनों का भी उद्घाटन करेंगे। इनमें केरलम के 6 रेलवे स्टेशन भी शामिल हैं। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। समुद्री प्रशासन महानिदेशालय डीजीएमए ने निर्देश दिया है कि अगले आदेश तक होर्मुज जलडमरू मध्य से होकर गुजरने वाले जहाजों पर भारतीय नाविकों की तैनाती न की जाए। इस संबंध में जहाज मालिकों, जहाज प्रबंधकों और भर्ती तथा नियुक्ति सेवा लाइसेंस प्राप्त कंपनियों के लिए नया परामर्श जारी किया गया है।
2: यह परामर्श खाड़ी क्षेत्र में बिगड़ती सुरक्षा स्थिति और हाल के दिनों में व्यापारिक जहाजों पर हुए हमलों को देखते हुए जारी किया गया है। महानिदेशालय का कहना है कि इन घटनाओं से संघर्ष प्रभावित क्षेत्र में कार्यरत नाविकों और व्यापारिक जहाजों के लिए जोखिम काफी बढ़ गया है। समुद्री प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि भारतीय नाविकों की सुरक्षा, संरक्षा और कल्याण के साथ साथ भारतीय जहाजों की सुरक्षा उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। आपातकालीन स्थिति में महानिदेशालय ने सभी नाविकों और जहाजों से महानिदेशालय संचार केंद्र या भारतीय नौसेना के सूचना संलयन केंद्र हिंद महासागर क्षेत्र से तत्काल संपर्क करने की सलाह दी है। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
1: गृहमंत्री अमित शाह आज रात 3 दिन के दौरे पर पश्चिम बंगाल पहुंचेंगे। श्री शाह कल राज्य के जुमागाछ के सीमा चौक स्थित सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ की 18वीं बटालियन से मिलेंगे और प्रहरी सम्मेलन को संबोधित करेंगे। वे वृक्षारोपण अभियान में भाग लेंगे तथा कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। एक रिपोर्ट।
3: केंद्रीय गृह मंत्री सिलीगुड़ी स्थित उत्तर कन्या में कई उच्च स्तरीय बैठकों का अध्यक्षता करेंगे। इन बैठकों में विभिन्न प्रशासनिक विषय, पश्चिम बंगाल में नए आपराधिक कानूनों का कार्यान्वयन तथा जन्म मृत्यु पंजीकरण की स्थिति की समीक्षा की जाएगी। शाम को वह कलकत्ता के लिए रवाना होंगे। रविवार श्री शाह पश्चिम बंगाल के कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इसके अलावा वह कलकत्ता में राष्ट्रीय पुस्तकालय में नवनिर्मित वर्ल्ड म्यूजियम का उद्घाटन करेंगे। बाद में वह अमूल बंगाल डायरी का रखेंगे।
1: संसद के मॉनसून सत्र से पहले सरकार ने इस रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक के दौरान सरकार संसद के दोनों सदनों को सुचारू रूप से चलाने के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग मांगेगी। मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और उन्हें पारित करने का कार्यक्रम है। भारत का सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र सम्मेलन भारत टेक्स 2026 आज नई दिल्ली में संपन्न हुआ। इस सम्मेलन में वस्त्र निर्माण, उनकी आदान प्रदान, नवाचार और निवेश के लिए एक प्रमुख वैश्विक गंतव्य के रूप में देश की स्थिति को और मजबूत किया गया है। 4 दिवसीय सम्मेलन का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय साझेदारियों को मजबूत करना, व्यापार और निवेश को बढ़ावा देना तथा संपूर्ण वस्त्र मूल्य श्रृंखला को एक मंच पर प्रदर्शित करना था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 19 जुलाई से मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा पर जाएंगी। ये किसी भी भारतीय राष्ट्रपति की इन देशों की पहली यात्रा होगी। विदेश मंत्रालय के अनुसार ये यात्रा इन देशों के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और पूर्वी यूरोप क्षेत्र के साथ सहयोग को नई गति देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। एक रिपोर्ट।
4: राष्ट्रपति मुर्मू 20 जुलाई को मोल्दोवा पहुंचेंगी, जहां वे राष्ट्रपति माया सैंडू से द्विपक्षीय वार्ता के अलावा संसद के अध्यक्ष इगोर ग्रोसू से मुलाकात कर व्यापार मंच को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति 21 जुलाई को उत्तरी मैसेडोनिया जाएंगी, जहां वे राष्ट्रपति गोर्डोना सिल्जानोवस्का दावकोवा, क्रिस्टिजन मिकोस्की और विधानसभा अध्यक्ष से मुलाकात करेंगी। राष्ट्रपति उत्तरी मैसेडोनिया की संसद और भारत उत्तरी मैसेडोनिया व्यापार मंच को भी संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू 23 जुलाई से दो दिवसीय रोमानिया यात्रा पर रहेंगी। इस दौरान वे राष्ट्रपति

0: निकोसोर डैन सहित वहां के शीर्ष नेताओं से मुलाकात करेंगी। प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। यूरोपीय संघ ने पाकिस्तान में मानवाधिकारों की स्थिति पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। संघ ने पाकिस्तान से कहा है कि व्यापारिक लाभ पाने के लिए उसे अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं का पालन करना होगा। संघ ने कहा है कि जनरलाइज्ड स्कीम ऑफ प्रेफरेंसेस प्लस के अंतर्गत पाकिस्तान को व्यापार लाभ 2027 से संशोधित GSP ढांचे के तहत अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं के अनुपालन पर निर्भर करेगी। ये टिप्पणियां यूरोपीय आयोग और विदेश मामलों तथा सुरक्षा नीति के लिए यूरोपीय संघ के उच्च प्रतिनिधि द्वारा तैयार की गई 2023-2025 अवधि की नवीनतम संयुक्त निगरानी रिपोर्ट में की गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अल्पसंख्यकों को अब भी भेदभाव, व्यक्तिगत हमलों, भीड़ हिंसा और पूजा स्थलों को नुकसान जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। गिलगित बाल्टिस्तान विधानसभा ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया है। इसमें पाकिस्तान की संघीय सरकार से पहाड़ी क्षेत्र के लोगों को अस्थायी प्रांतीय दर्जा और संवैधानिक तथा राजनीतिक अधिकार प्रदान करने का अनुरोध किया गया है। दोनों पक्षों के समर्थन से पारित यह प्रस्ताव कल सत्र के दौरान सांसद जलाल अली शाह ने पेश किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर अमेरिकी चुनावों में हस्तक्षेप करने के लिए एक व्यापक अभियान चलाने का आरोप लगाया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने व्हाइट हाउस से राष्ट्रीय टेलीविजन पर अपने संबोधन में चुनाव सुरक्षा से संबंधित खुफिया रिकॉर्ड को तत्काल सार्वजनिक करने की घोषणा की। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज 1% की वृद्धि दर्ज की गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 771 अंक बढ़कर 77,957 पर, जबकि निफ्टी 195 अंक की बढ़त के साथ 24,268 पर कारोबार कर रहा था। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और उड़ीसा के कुछ भागों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। बिहार, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, उत्तराखंड, विदर्भ, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कुछ हिस्सों में भी आज मध्यम से तेज बारिश की संभावना है। दो बार के ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु को जापान की पूर्व विश्व चैंपियन नोजोमी ओकुहारा के क्वार्टर फाइनल से हटने के बाद वॉकओवर मिला। क्वार्टर फाइनल मैच शुरू होने से पहले ही रद्द कर दिया गया। सेमीफाइनल में सिंधु का मुकाबला चीन की विश्व नंबर 4 चेन युफेई से होगा। ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा आज एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक पड़ाव पर पहुंच गई। भगवान बलभद्र, देवी सुभद्रा और भगवान जगन्नाथ के भव्य रथ ग्रैंड रोड पर अपनी औपचारिक यात्रा पूरी करते हुए श्री गुंडीचा मंदिर के निकट स्थित पवित्र स्थल शारदाबली पहुंच गए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के जींद में भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना किया। 14,000 करोड़ रुपए से अधिक के विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। समुद्री प्रशासन महानिदेशालय ने जहाज मालिकों को होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले जहाजों पर भारतीय नाविकों की तैनाती न करने के निर्देश दिए। यूरोपीय संघ ने पाकिस्तान में मानवाधिकारों की स्थिति पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए कहा, व्यापारिक लाभ पाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं का पालन करें। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और उड़ीसा के कुछ हिस्सों में आज तेज बारिश का अनुमान और भारत की पीवी सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंची। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। 2:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम एक ही कलाकार।
3: कार्यक्रम एक ही कलाकार में मैं स्तुति आप सभी का स्वागत करती हूं। आज हम बात करेंगे हिंदी सिनेमा की उस अभिनेत्री की जिसने भारतीय सिनेमा में ग्लैमर और गहराई दोनों का संतुलन बखूबी साधा। सालों तक जिन्हें सिर्फ ग्लैमरस माना गया पर जिनके किरदारों में थी परतें, इमोशंस और बेमिसाल स्क्रीन प्रेजेंस की। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ जीनत अमान की।

19 नवंबर सन 1951 में बॉम्बे में जन्मी जीनत अमान का फिल्मों में आना जैसे एक ताजी हवा का झोंका था। उनके पिता अमानुल्लाह खान एक मशहूर स्क्रिप्ट राइटर थे जिन्होंने बतौर सहायक मुगले आजम और पाकीजा जैसी फिल्मों की कहानी लिखी थी। जीनत ने लॉस एंजलिस और स्विट्जरलैंड में पढ़ाई की और वापस आकर फेमिना मिस इंडिया में हिस्सा लिया। 1970 में वो बनी मिस एशिया पैसिफिक इंटरनेशनल और इस तरह शुरू हुआ उनका सफर फिल्मों की दुनिया की ओर।

1970 में इंडो फिलिपिनो फिल्म द इविल विदिन से एक्टिंग करियर की शुरुआत करने वाली जीनत अमान ने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। हिंदी सिनेमा में डायरेक्टर ओपी रहलन ने जीनत को 1971 में फिल्म हलचल में ब्रेक दिया, जिसके बाद 1971 में देवानंद की फिल्म हरे राम हरे कृष्णा में जॉनिस के किरदार ने जीनत को रातों रात सुपरस्टार बना दिया। इस फिल्म के लिए उन्हें फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड भी मिला।

सन 1973 में आई फिल्म यादों की बारात और उसमें जीनत का गाना चुरा लिया है तुमने जो दिल को आज भी अमर है। आर डी बर्मन की धुन, आशा भोसले की आवाज और जीनत की स्टाइलिंग, तीनों ने मिलकर इसे आइकॉनिक बना दिया।

जीनेदमान ने 70 और 80 के दशक में कई बड़े डायरेक्टर्स के साथ काम किया, जैसे मनमोहन देसाई, प्रकाश मेहरा, फिरोज खान और यश चोपड़ा। कुछ यादगार फिल्में रहीं जैसे रोटी कपड़ा मकान, धर्मवीर, द ग्रेट गैम्बलर, कुर्बानी, सत्यम शिवम सुंदरम। जीनेदमान सिर्फ एक स्टाइल आइकन नहीं थी, बल्कि उन्होंने अमन इंसाफ का तराजू जैसी फिल्मों में सशक्त और ग्रे किरदार भी निभाए थे।

सन 1990 के बाद जीनत ने फिल्मों से थोड़ा विराम लिया, लेकिन उनका प्रभाव हिंदी सिनेमा पर हमेशा रहा। आज भी वो थिएटर, सोशल मीडिया और फेस्टिवल्स में सक्रिय हैं और युवा पीढ़ी उन्हें फैशन और आत्मविश्वास का प्रतीक मानती है। इसी के साथ आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे यानी स्तुति को दीजिए अब अनुमति। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक ही कलाकार, प्रस्तुति स्तुति मिश्रा की थी। मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्स, डीटीएच डीआरएम वेब्स ओटीटी और न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। अपराह्न के 3 बजे हैं, आज की हमारी पहली सभा अब संपन्न होती है। शाम 5 बजे अपनी दूसरी सभा के कार्यक्रमों के साथ हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए।

मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्ज़। मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR DTS DRM 1233 किलोहर्ट्ज़ और वेब्स OTT पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। इस समय शाम के पाँच बज रहे हैं। आरंभ होती है हमारी आज की सांध्यकालीन सभा। सभा के आरंभ में प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम।

फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम का पहला गीत है फिल्म आखिर क्यों से। आवाज है लता मंगेशकर की, गीतकार हैं इंदिवर और संगीत है राजेश रोशन का।

आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम, और इस कार्यक्रम का अगला गीत है फिल्म एक जिंदगी अरमान भरी से। आवाज है शैलेंद्र सिंह की, गीतकार हैं नवरंग भारती और संगीत है संदीप चक्रवर्ती का। फिल्म एक जिंदगी अरमान भरी।

फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम का आखिरी गीत है फिल्म मेरे हमदम मेरे दोस्त से। आवाज है मोहम्मद रफी की, गीतकार है मजरू सुल्तानपुरी और संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। फिल्म मेरे हमदम मेरे दोस्त।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय शाम के 5:15 हो रहे हैं। युवा साथी सुने अपना कार्यक्रम युववाणी।

0: दोस्तों, हर दौर अपनी एक आवाज़ लेकर आता है और आज के दौर की आवाज़ है युवा। वो युवा जो सवाल भी करता है और जवाब ढूंढने का हौसला भी रखता है।
1: जिसकी आंखों में सपने हैं और दिल में कुछ हर कर गुजरने की जिद भी।
0: कभी गिरकर उठने की कहानी तो कभी जीत की पहली मुस्कान। और आपकी युवाड़ी भी ऐसी ही है दोस्तों, जो आपके ज्ञान और आपके मनोरंजन का पूरा ख्याल रखती है।
1: बिल्कुल, और इसी बात का ध्यान रखते हुए हम फिर हाजिर हैं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम युवाणी लेकर।
0: और आज के कार्यक्रम में आपके साथ मैं हूँ मोनिशा
1: और मैं नेहा।
0: तो स्वीकार करिए हमारा प्यार भरा
1: नमस्कार, नमस्कार।

0: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: आकाशवाणी वाराणसी से प्रत्येक सोमवार से शुक्रवार तक दिन में 12 बजे सुनिए NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम।
4: सुनो ना।
5: हाँ?
4: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
5: तो रोका किसने है? हाँ?
4: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
5: मुझसे।
4: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
5: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
4: पर उससे मेरा क्या फायदा?
5: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
4: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
5: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो,
6: 054-222-7658।
4: ओ
3: 054-222-7658।
4: लो अभी फोन लगाता हूँ।
3: 054-222-7658।

0: दोस्तों, क्या हो अगर किसी निर्दोष को न्याय मिलने में वर्षों लग जाए, अगर किसी पीड़ित की आवाज़ सिर्फ इसलिए दब जाए क्योंकि वह कमज़ोर है। तो सोचिए, क्या सिर्फ कानून होना ही काफ़ी है या ज़रूरी है न्याय का समय पर और सबके लिए समान होना।
1: कहते हैं, जहाँ न्याय होता है वहीं विश्वास जन्म लेता है, और जहाँ विश्वास होता है वहीं एक मजबूत समाज बनता है।
0: किसी ने क्या खूब कहा है कि इंसाफ की राह कठिन सही मगर उजली होती है, सच की हर आवाज़ एक दिन कामयाब होती है। जो अधिकार सभी को सम्मान दिला सके वही न्याय की सबसे सुंदर पहचान होती है।
1: दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि आखिर आज हम हुआ क्या है, आज हम इतनी न्याय की बात कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि आज 17 जुलाई को पूरी दुनिया अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मना रही है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि न्याय केवल अदालतों तक, चार दीवारी तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हर इंसान के सम्मान, अधिकार और समानता से जुड़ा हुआ है।
0: दोस्तों, किसी भी सभ्य समाज की पहचान उसकी न्याय व्यवस्था होती है। जहाँ न्याय होता है वहीं शांति, समानता और विश्वास का वातावरण बनता है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए हर वर्ष 17 जुलाई को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस यानी कि वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस मनाया जाता है। यह दिवस हमें न्याय, मानवाधिकारों की रक्षा तथा कानून के शासन के महत्व का संदेश देता है।
1: दरअसल 17 जुलाई 1998 को इटली की राजधानी रोम में रोम संविधि को अपनाया गया था। इसी ऐतिहासिक समझौते के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ICC की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ।
0: यह न्यायालय मानवता के विरुद्ध अपराध, युद्ध अपराध, नरसंहार तथा आक्रामकता जैसी गंभीर अपराधों के मामले में न्याय सुनिश्चित करने का कार्य करता है। इस दिवस का उद्देश्य केवल अपराधियों को दंडित करना नहीं, बल्कि यह संदेश देना भी है कि दुनिया में कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है।
1: दोस्तों, न्याय केवल अदालतों तक सीमित नहीं है, न्याय हमारे व्यवहार, हमारी सोच और हमारे दैनिक जीवन में भी दिखाई देना चाहिए। जब हम किसी के साथ जाति, धर्म, भाषा, लिंग या आर्थिक स्थिति के आधार पर भेदभाव नहीं करते, जब हम सत्य का साथ देते हैं और दूसरों के अधिकारों का सम्मान करते हैं, तब हम न्याय की भावना को मजबूत बनाते हैं।
0: इस विशेष दिन का उद्देश्य वैश्विक स्तर पर न्याय प्रणाली को मजबूत करना, मानव अधिकारों की रक्षा करना और पीड़ितों को उनका हक दिलाना है। ये दिन हमें याद दिलाता है कि न्याय ही किसी भी सभ्य समाज, स्वतंत्र राष्ट्र और सुरक्षित दुनिया की सबसे अच्छी नींव है।
1: भारत का संविधान भी हमें समानता, स्वतंत्रता और न्याय का अधिकार प्रदान करता है। हमारे संविधान की प्रस्तावना में भी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात कही गई है। यही मूल्य हमारे लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। हमें न केवल अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना चाहिए, बल्कि अपने कर्तव्यों का भी ईमानदारी से पालन करना चाहिए।
0: लेकिन यदि हम अपने आसपास देखें तो पाएंगे कि न्याय की शुरुआत अदालतों से नहीं बल्कि हमारे अपने व्यवहार से होती है। घर में, स्कूल्स में, कार्यस्थल पर या समाज में जब हम सभी के साथ समान व्यवहार करते हैं, किसी की बात धैर्य से सुनते हैं और बिना किसी पूर्वाग्रह के निर्णय लेते हैं, तभी न्याय का वास्तविक स्वरूप दिखाई देता है।
1: आज के समय में युवाओं की भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। युवा देश का वर्तमान भी है और भविष्य भी। यदि युवा ईमानदारी, संवेदनशीलता और निष्पक्षता जैसे मूल्यों के अपनाए तो समाज में न्याय की भावना और अधिक सशक्त होगी।
0: स्कूल, कॉलेज, कार्यस्थल या सोशल मीडिया, हर जगह हमें जिम्मेदारी के साथ व्यवहार करना चाहिए। किसी भी अफवाह, झूठी खबर या बिना सत्यापन की जानकारी को साझा करना कई बार किसी व्यक्ति के साथ अन्याय का कारण बन सकता है। इसलिए डिजिटल नागरिक के रूप में भी हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है।

0: दोस्तों, हर सुबह उगता सूरज हमें एक नई शुरुआत का संदेश देता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, साल में एक समय ऐसा भी आता है जब यही सूरज अपनी आभासी दिशा बदलता हुआ प्रतीत होता है और उसके साथ बदलने लगती है प्रकृति की लय। आज का दिन उसी परिवर्तन का प्रतीक है।
1: आकाश में होने वाला यह परिवर्तन केवल खगोल विज्ञान की घटना नहीं है, बल्कि भारतीय संस्कृति, ऋतु परिवर्तन और प्रकृति के साथ हमारे गहरे संबंध का भी प्रतीक है। और इसी को ध्यान में रखते हुए आज हम मना रहे हैं दक्षिणायन दिवस।
0: अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर ये क्या है, तो चलिए आपके इस जिज्ञासा को दूर करते हैं और आपको बताते हैं कि आखिर ये होता क्या है।
1: दोस्तों, इसका संबंध भारतीय संस्कृति, खगोल विज्ञान और आध्यात्मिकता परंपरा से जुड़ा हुआ है।
0: दोस्तों, दक्षिणायन दो शब्द से मिलकर बना है, दक्षिण यानी दक्षिण दिशा और अयन यानी गमन। सरल शब्दों में कहें तो यह वह काल है जब सूर्य का आभासी मार्ग

0: उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ता हुआ दिखाई देता है।
1: भारतीय परंपरा में दक्षिणायन लगभग 6 महीने का समय माना जाता है। इस अवधि में धीरे धीरे दिन छोटे और रातें लंबी होने लगती हैं। यह परिवर्तन प्रकृति के चक्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और ऋतुओं के बदलाव से भी जुड़ा हुआ है।
0: दोस्तों, भारतीय परंपरा में सूर्य को ऊर्जा, प्रकाश और जीवन का आधार माना गया है। वर्ष भर सूर्य की गति के आधार पर दो प्रमुख काल माने जाते हैं, उत्तरायण और दक्षिणायन। जब सूर्य की प्रतीत होने वाली गति उत्तर से दक्षिण की ओर मानी जाती है, तब उस काल को दक्षिणायन कहा जाता है। इस खगोलीय बदलाव के साथ ही उत्तरी गोलार्ध में दिन छोटे होने लगते हैं और रातें बड़ी होने लगती है। ये समय सामान्यतः जून के उत्तरार्ध से आरंभ होकर लगभग 6 महीने तक माना जाता है।
1: खगोल विज्ञान के अनुसार पृथ्वी अपनी धुरी पर लगभग 23.5 डिग्री झुकी हुई है और सूर्य की परिक्रमा करती है। इसी कारण हमें सूर्य की स्थिति वर्ष भर बदलती हुई दिखाई देती है। ग्रीष्म अयनांत के बाद सूर्य दक्षिण की ओर बढ़ता हुआ प्रतीत होता है और यहीं से दक्षिणायन का आरंभ माना जाता है।
0: भारतीय संस्कृति में दक्षिणायन का विशेष महत्व है। इसे आत्मचिंतन, संयम, साधना और आध्यात्मिक उन्नति का काल माना गया है। अनेक पर्व और धार्मिक अनुष्ठान भी इसी अवधि में आते हैं। यह समय हमें प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर जीवन जीने और अपने भीतर सकारात्मक परिवर्तन लाने की प्रेरणा देता है।
1: दक्षिणायन हमें यह भी सिखाता है कि प्रकृति निरंतर परिवर्तनशील है। जैसे दिन और रात, ऋतुएं और मौसम बदलते रहते हैं, उसी प्रकार जीवन में भी परिवर्तन स्वाभाविक है। इन परिवर्तनों को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ना ही जीवन की सबसे बड़ी सीख है।
0: दोस्तों, आधुनिक विज्ञान और हमारी प्राचीन परंपराएं दोनों ही हमें प्रकृति को समझने और उसका सम्मान करने का संदेश देती है। दक्षिणायन दिवस केवल एक खगोलीय घटना नहीं, बल्कि प्रकृति, समय और जीवन के बीच गहरे संबंध का समझने का अवसर है।
1: दोस्तों, दक्षिणायन हमें एक खूबसूरत संदेश भी देता है। प्रकृति निरंतर बदलती रहती है और परिवर्तन ही जीवन का नियम है। जिस तरह मौसम बदलते हैं, उसी तरह जीवन में आने वाली हर बदलाव को सकारात्मक सोच के साथ अपनाना ही आगे बढ़ने का रास्ता है।

0: दोस्तों, अगर आपको पता चल जाए कि आपकी उम्र सिर्फ कुछ सालों की है, तो आप क्या करेंगे? डर के मारे कोने में बैठ जाएंगे या जिंदगी को दोगुनी रफ्तार से जिएंगे? हिंदी सिनेमा के एक ऐसे कलाकार ने यही सवाल खुद से पूछा था और जवाब दिया अपने काम से। नाम था हरिभाई जेठालाल जरीवाला, फिल्मी दुनिया में जिन्हें आप जानते हैं संजीव कुमार के नाम से।
1: जरा सोचिए, क्या कोई अभिनेता 25 साल की उम्र में 60 साल के बुजुर्ग का किरदार निभाकर दर्शकों को यकीन दिला सकता है? क्या कोई कलाकार बिना ऊंची आवाज, बिना बड़े बड़े संवाद और बिना दिखावे के सिर्फ अपनी आंखों से पूरी कहानी कह सकता है? लेकिन संजीव कुमार ने ये करके दिखाया।
0: बिल्कुल। और आज बात उस अभिनेता की जिसने कभी स्टार बनने की कोशिश नहीं की, लेकिन अपनी अदाकारी से अभिनय का ऐसा मानक स्थापित किया कि आज भी उनका नाम सम्मान के साथ लिया जाता है। 9 जुलाई 1938 को गुजरात के सूरत में जन्मे हरिभाई जरीवाला आगे चलकर पूरी दुनिया के लिए संजीव कुमार बन गए। बचपन से ही अभिनय का शौक था उन्हें। उन्होंने थिएटर से अपने सफर की शुरुआत की और मंच पर अभिनय की बारीकियां भी सीखी।
1: फिल्मों में शुरुआती दौर आसान नहीं था, छोटे छोटे किरदार मिले, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उन्हें भरोसा था कि एक दिन उनकी कला ही उनकी पहचान बनेगी, और वही हुआ दोस्तों।
0: 77 का दशक आया और संजीव कुमार हिंदी सिनेमा के सबसे बेहतरीन अभिनेताओं में गिने जाने लगे। उन्होंने रोमांस किया, कॉमेडी की, खलनायक बने, पिता का किरदार निभाया, पुलिस अधिकारी बने और आम आदमी की पीड़ा भी पर्दे पर उतारी।
1: फिल्म कोशिश में उन्होंने एक मूकबधिर व्यक्ति का किरदार निभाया। बिना शब्दों के केवल हाव भाव और भावनाओं से उन्होंने दर्शकों को रुला दिया। यह अभिनय आज भी भारतीय सिनेमा के श्रेष्ठ प्रदर्शनों में गिना जाता है।
0: फिर आई आंधी, जिसमें उनका शांत और गंभीर अभिनय आज भी लोगों के दिलों में बसता है।

0: में निभाया गया ठाकुर बलदेव सिंह का किरदार तो मानो अमर ही हो गया हो। बिना हाथों वाला एक दृढ़ निश्चय इंसान, दर्द, गुस्सा और आत्मसम्मान, इन सब भावनाओं को उन्होंने जिस सादगी से निभाया वो आज भी अभिनय की पाठशाला में माना जाता है।
1: संजीव कुमार की सबसे बड़ी ताकत थी हर किरदार में पूरी तरह ढल जाना। वे कभी अपने अभिनय को दोहराते नहीं थे, यही वजह था कि उन्होंने कभी उम्र से कहीं बड़े किरदार भी इतनी सहजता से निभाए कि दर्शक भूल जाते थे कि यह सिर्फ अभिनय है।
0: उन्होंने फिल्म दस्तक और कोशिश के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिला, लेकिन उनके लिए सबसे बड़ा सम्मान हमेशा दर्शकों का प्यार रहा। कम लोग जानते हैं कि संजीव कुमार को शास्त्रीय संगीत, कविता, थिएटर से भी गहरा लगाव था। वे बेहद सरल और संकोची स्वभाव के व्यक्ति थे। निजी जीवन में उन्होंने विवाह नहीं किया, लेकिन अपने काम से हमेशा प्रेम किया।
1: दुर्भाग्य से 9 नवंबर 1985 को मात्र 47 वर्ष की आयु में हृदयाघात के कारण उनका निधन हो गया। उनका जाना हिंदी सिनेमा के लिए एक ऐसी क्षति थी जिसकी भरपाई आज तक नहीं हो सकी।
0: लेकिन कलाकार कभी सचमुच विदा नहीं होते। वे अपने किरदारों में, अपने संवादों में और दर्शकों की यादों में हमेशा जीवित रहते हैं। आज भी जब ठाकुर, कोशिश का संवेदनशील पति या आंधी का संजीता चेहरा याद आता है तो एहसास होता है कि अभिनय सिर्फ संवाद बोलना नहीं बल्कि भावनाओं को जीना होता है।
1: संजीव कुमार ने हमें यही सिखाया कि सच्चा कलाकार वही है जो हर किरदार में खुद को भुला दे और सिर्फ चरित्र को यादगार बना दे।
2: ए, ए, ए, ए।

0: दोस्तों, अब वक्त है जानने का कि आज के हमारे यूथ डायरी में कौन से नए शब्द हैं। तो आज का हमारा हिंदी शब्द है औदित्य, जिसका अर्थ है सूर्य का तेज, सूर्य का प्रकाश या सूर्य के समान चमक और ऊर्जा, यानी ऐसा प्रकाश जो अंधकार को दूर कर दे और नई उम्मीद जगाए। अगर इसके कुछ समानार्थी शब्दों की बात करें तो तेजस्विता, प्रभा, सूर्य तेज, दिव्य प्रकाश और दीप्ति इसके निकट अर्थ वाले शब्द हैं। अब इसे एक वाक्य में समझते हैं। सूर्योदय के समय फैला औदित्य पूरे वातावरण को नई ऊर्जा और सकारात्मकता से भर देता है। तो याद रखिए दोस्तों, औदित्य केवल सूर्य के प्रकाश का ही नहीं, बल्कि जीवन में नई शुरुआत, उत्साह और सकारात्मक ऊर्जा का भी प्रतीक है।
1: और हमारा आज का इंग्लिश वर्ड है क्विटेंशियल, जिसकी स्पेलिंग है QUITENTESSIONTIAL, क्विटेंशियल, जिसका अर्थ है किसी व्यक्ति, वस्तु या गुण का सबसे उत्कृष्ट, सबसे विशिष्ट या आदर्श उदाहरण। इसके सिनोनिम्स होंगे वर्ड ऑफ द डे जो होगा वो होगा माफ़ कीजिएगा, इसकी सेंटेंस होगा रिप्रेजेंटिंग द मोस्ट परफेक्ट ऑफ टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ अ पर्टिकुलर क्वालिटी और क्लास। और जो हमने बात किया था सिनोनिम्स का, वो होगा आइडियल, क्लासिक, परफेक्ट, टिपिकल, एग्जाम्पलरी। और अब सेंटेंस की बात करें, शी इज़ द क्विंटेसेंशियल लीडर इंस्पायरिंग एवरीवन विथ हर विजन एंड इंटीग्रिटी। तो दोस्तों, आज हमने सीखा औदित्य जो हमें सूर्य के तेज और सकारात्मक ऊर्जा का संदेश देता है, और क्विंटेसेंशियल जो किसी व्यक्ति या वस्तु के सर्वश्रेष्ठ और आदर्श उदाहरण को दर्शाता है। उम्मीद है आज के दो शब्द आपके काम आए होंगे।
0: शब्दों की इस दिलचस्प दुनिया से अब बढ़ते हैं इतिहास के उन सुनहरे पन्नों की ओर, जहां दर्ज है कुछ ऐसी घटनाएं जिन्होंने समय के साथ अपनी अमिट छाप छोड़ी। तो आइए जानते हैं आज के दिन इतिहास में क्या क्या महत्वपूर्ण हुआ था।
1: दोस्तों, आज ही के दिन 1948 को भारत में महिलाओं के लिए एक ऐतिहासिक दिन था, जब उन्हें भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी कि IAS और भारतीय पुलिस सेवा यानी कि IPS सहित सभी सार्वजनिक सेवाओं में भर्ती होने की पात्रता प्राप्त हुई।
0: 1996 को भारत में दूर संचार क्षेत्र में बड़ा बदलाव किया गया। सरकार ने निजी कंपनियों की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए नई दूर संचार नीतियों पर काम तेज किया, जिससे आगे चलकर मोबाइल क्रांति का रास्ता मजबूत हुआ।
1: और 1945 को BS चंद्रशेखर, महान भारतीय क्रिकेटर का जन्म हुआ था।
0: दोस्तों, अब बारी है उसका जिसका इंतजार आपको बेसब्री से रहता है, यानी कि कलेक्शन ऑफ द डे,
1: क्वेश्चन ऑफ द डे। और होगा क्यों नहीं, आखिर ये हमारे श्रोताओं को मौका देता है सीधे हमसे जुड़ने का, यानी कि हमारे प्रश्नों का सही जवाब देकर विनर्स बनने का।
0: तो चलो बिना देरी के बताते हैं आज का प्रश्न।
1: बताएंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि हमने आपसे जो कल प्रश्न किया था उसका सही जवाब क्या है।
0: तो दोस्तों, कल हमने आपसे प्रश्न किया था कि बांग्लादेश की मुद्रा करेंसी क्या है, जिसका सही जवाब है टका। और जिन साथियों ने सही जवाब दिया है उनके नाम है मुकेश प्रजापति सिग्रा वाराणसी से, रवि मौर्य समरौल आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से, प्रवीण चौहान खरगोन मध्य प्रदेश से।
1: उत्तम कुमार बघेल रुक्मणी साहिल, भारती बघेल लगान पंडरिया छत्तीसगढ़ से, इसके साथ ही ग्राम जसवाड़ी जिला खंडवा मध्य प्रदेश से हैं, दुर्गेश नागनपुरी, राधेश्याम नागनपुरी, वंदना भावना बिंदु गोलू कुसुमबाई बाबू दिव्यांश और सूरज कुमार ढाक से, रिंग रोड नर्मदा नगर से है सूरज वर्मा, ऋषभ कनक और भावना वर्मा, ग्राम खैगांव तहसील महेश्वर से है प्रेमलाल वर्मा और ममता बाई वर्मा, नेपा नगर से है प्रभुदयाल शिवदे, शिवा खुशी जानू मनीषा बसंती बाई और गणेश शिवदे।

0: खंडवा से हैं श्यामाबाई रायकवर, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अब बारी है आज के प्रश्न की। तो हमारा आज का प्रश्न है कि दुनिया का ऐसा कौन सा देश है जिसकी सबसे अधिक टाइम जोन है। प्रश्न एक बार फिर सुन लीजिए, दुनिया का ऐसा कौन सा देश है जिसके सबसे अधिक टाइम जोन है।
1: इस सवाल का जल्दी से उत्तर देकर बन जाइए आप भी विनर। आपके आंसर हमें हमारे इंस्टा हैंडल youth@varanasi पर भेज सकते हैं
0: या फिर हमारे ईमेल आईडी youth@varanasi@gmail.com पर भी भेज सकते हैं। तब तक इंजॉय करिए ये गीत।

दिल से होता है शुरू पर कमबख्त सर पे चढ़ा है, कभी खुद से कभी खुदा से कभी जमाने से लड़ा है। इतना हुआ बदनाम फिर भी

0: दोस्तों अब बारी है रोजगार सूचना की।
1: दोस्तों रेलवे भर्ती बोर्ड ने टेक्नीशियन ग्रेड 1 और टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए 6,557 पदों पर ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया जारी की है। उसके लिए आपकी न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 30 वर्ष और किसी किसी पद के लिए 33 वर्ष होनी चाहिए और आपकी क्वालिफिकेशन 10th पास होनी चाहिए और साथ ही साथ संबंधित ट्रेडों में ITI उत्तीर्ण होना चाहिए।
0: इच्छुक उम्मीदवार इसकी अंतिम तारीख 29 जुलाई तक फॉर्म भर सकते हैं। इसकी अधिक जानकारी के लिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट rrb.apply.gov.in पर विजिट कर सकते हैं। दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपका मोबाइल फ़ोन सिर्फ एक घंटे के लिए भी आपसे दूर हो जाए तो आप कैसा महसूस करते होंगे। आज के समय में स्मार्टफोन और इंटरनेट हमारी ज़िंदगी का अहम हिस्सा बन चुके हैं। पढ़ाई, नौकरी, मनोरंजन और दोस्तों से बातचीत सब कुछ डिजिटल हो चुका है। लेकिन जब यही तकनीक हमारी आदत बनकर हमारे समय, मानसिक शांति और रिश्तों पर असर डालने लगे तब डिजिटल डिटॉक्स की ज़रूरत महसूस होती है।
1: डिजिटल डिटॉक्स का मतलब है कुछ समय के लिए मोबाइल, सोशल मीडिया, गेम्स और अन्य डिजिटल उपकरणों से दूरी बनाना। इससे हमारा मन शांत होता है, तनाव कम होता है और हम अपने परिवार, दोस्तों और खुद के समय साथ बेहतर बिता सकते हैं। लगातार स्क्रीन देखने से आंखों पर दबाव पड़ता है, नींद प्रभावित होती है और ध्यान केंद्रित करने की क्षमता भी कम हो जाती है।

0: डिजिटल डिटॉक्स अपनाने के लिए बड़े बदलाव की ज़रूरत नहीं है। आप दिन में 1 या 2 घंटे मोबाइल से दूरी बनाकर शुरुआत कर सकते हैं। भोजन करते समय फ़ोन का उपयोग ना करें। सोने से कम 1 घंटा पहले स्क्रीन बंद कर दें और खाली समय में किताब पढ़े, टहले या अपने किसी शौक को समय दे।
1: डिजिटल दुनिया में जुड़ना ज़रूरी है, लेकिन वास्तविक दुनिया से जुड़े रहना उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है। इसलिए समय समय पर डिजिटल डिटॉक्स अपनाइए, अपने मन को आराम दीजिए और अपने जीवन में संतुलन बनाए रखिए।
0: और अब समय भी हमसे विदा लेने की अनुमति मांग रहा है, क्योंकि घड़ी की सुइयां अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रही है। जाने से पहले आपसे इतना ही कहेंगे कि अपना और अपनों का रखिए ख्याल और जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहिए। आज के कार्यक्रम में आपके साथ थी मैं मोनिशा
1: और मैं नेहा।
0: मुलाकात होगी कार्यक्रम के किसी अगले अंक में, तब तक दीजिए हमें इजाजत।
1: नमस्कार।
2: इसने वो जला है, दिल से होता है शुरू।

0: अभी युवा साथी सुन रहे थे अपना कार्यक्रम युवाणी। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में आप भोजपुरी में समाचार सुनेंगे, जिसे हमारे गोरखपुर केंद्र से रिले किया जाएगा। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: आकाशवाणी गोरखपुर से भोजपुरी समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ हम वेद प्रकाश पाठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा के जिंद रेलवे स्टेशन से सोनीपत के पीछे चले वाली भारत के पहला हाइड्रोजन ट्रेन के रवाना कैने। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री कहने कि देश का पहला हाइड्रोजन ट्रेन का शुभारंभ जिंद के भारत के इतिहास में एगो खास जगह दियोले हो।
2: आज भारतीय रेल ने भी 21वीं सदी की इस टेक्नोलॉजी में एक बड़ा स्टेप लिया है। आज जिंद से सोनीपत के बीच हाइड्रोजन ट्रेन चली है। अभी ये सफर 90 किलोमीटर का है। हम इस पर रिसर्च करते रहेंगे, लागत कम कैसे हो इसका तरीका ढूंढते रहेंगे, एफिशिएंसी कैसे बढ़े इस पर काम करते रहेंगे और बड़ी जांच पड़ताल करते करते एक के बाद एक कदम उठाते जाएंगे।
1: इस मौका पर प्रधानमंत्री 157 किलोमीटर लम्हर दिल्ली अमृतसर कटरो एक्सप्रेसवे के राष्ट्र के समर्पित करने। यह एक्सप्रेसवे से दिल्ली या कटरा के बीच यात्रा का समय 14 घंटा से घटके करीब 6 घंटा हो जाए। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भारत के पहला हाइड्रोजन से चले वाली ट्रेन के शुभारंभ के देश के तकनीकी प्रगति में एगो ऐतिहासिक उपलब्धि बतौले।
2: कोई धुआं नहीं, कोई पेट्रोल या डीजल की रिक्वायरमेंट नहीं, एकदम साफ स्वच्छ और सिर्फ निकलता है पानी की बूंदे। मैं इस बड़ी उपलब्धि के लिए भारत के नेतृत्व को, माननीय प्रधानमंत्री जी को और भारत के इंजीनियर्स की टेक्निकल क्षमता को सल्यूट करता हूँ।
1: भारत में डिजाइन एकीकृत कर गई हाइड्रोजन से चले वाली यह ट्रेन के स्वदेशी तकनीक का उपयोग करके विकसित कर गई बा। संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हो रहा है, 13 अगस्त ले चली। सत्र से पहले सरकार एतवार के सर्वदलीय बैठकी बोलोले बा। बैठकी के दौरान सरकार संसद के दोनों सदन के सुचारू रूप से चलावे बदे सज्जो राजनीतिक दलन से सहयोग मांगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज शामली में 581 करोड़ रुपया से बेसी के लागत का कई गो परियोजना के लोकार्पण आज शिलान्यास कार्यक्रम में शामिल भेल। यह मौका पर अपने संबोधन में वहां के कहने की उत्तर प्रदेश चीनी गन्ना और एथेनॉल उत्पादन में देश का नंबर एक राज्य हो।
2: आज 122 चीनी मिले चल रही है और जब मेरे सामने प्रस्ताव आया कि गन्ना किसानों के गन्ना मूल्य का

0: भुगतान समय पे हो उसकी व्यवस्था तो कराई गई, दाम भी बढ़ जाता तो अच्छा होता। हमने सीधे उसको 400 रुपए कुंटल किया है, आज के दिन पे हमारे अन्नदाता किसानों को मिल रहा है।
1: मुख्यमंत्री अजय बिजनौर में 1003 करोड़ रुपया से बेसी के लागत का 76 परियोजना का लोकार्पण और शिलान्यास कैले। इस मौका पर वहां के जिला के राजकीय नर्सिंग कॉलेज एवं छात्रावास का सौगात देने। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल लखनऊ में सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के कार्यन को समीक्षा कैले।
2: समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश को रोबोटिक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग, सेमी कंडक्टर तथा अन्य उभरती प्रौद्योगिकियों का राष्ट्रीय नेतृत्वकर्ता बनाने के लिए व्यापक कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि नोएडा में 75 एकड़ क्षेत्रफल में विकसित होने वाली पार्क और रोबोटिक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जीपीयू क्लस्टर्स एंड एडवांस टेक्निकल इनोवेशन परियोजना प्रदेश को विश्व स्तरीय रोबोटिक्स एवं एडवांस मैन्युफैक्चरिंग का आधार प्रदान करेगी। निर्देश दिए कि उद्योग, शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान और स्टार्टअप, निवेशकों और प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों के बीच प्रभावी समन्वय स्थापित कर ऐसा सशक्त डीप टेक इकोसिस्टम विकसित किया जाए जहां नई तकनीकें तेजी से प्रयोगशाला से उद्योग तक पहुंच सके। समाचार कक्ष से प्रेम चंद्र गुप्ता।
1: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा NEET UG का नतीजा काल घोषित कर दिया। इसमें 11 लाख से बेसी परीक्षार्थी मेडिकल, दंत चिकित्सा, आयुष और योग संबंधित कार्यक्रम बदे पास भाई हैं। सभी उम्मीदवारों का नंबर आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in पर उपलब्ध बा। समाचार पूरा भाई, नमस्कार।
3: मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। कार्यक्रम विवरण में सुनिए आज प्रसारित होने वाले शेष प्रमुख कार्यक्रमों का विवरण। शाम 6:30 पर कृषि जगत कार्यक्रम में किसान भाई सुनेंगे खरीफ की फसल में होने वाली बीमारियां। इस विषय पर डॉक्टर संतोष कुमार से सुधीर श्रीवास्तव की बातचीत, साथ में महंगी राम प्रजापति और साथियों का लोकगीत भी किसान भाई सुनेंगे। रात्रि 8 बजे से आप सुनेंगे सुगम संगीत का कार्यक्रम। कलाकार होंगे मिताली सिंह और भूपेंद्र सिंह। कार्यक्रम अंजुमन आप सुनेंगे रात्रि 9:30 पर। रात्रि 10 बजे से सुनिएगा कार्यक्रम स्वास्थ्य पत्रिका में वर्षा ऋतु में आयुर्वेद के अनुसार दिनचर्या और खानपान विषय पर डॉक्टर रवि खत्री से बातचीत। रात्रि 10:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आप सुनेंगे सरोद वादन। कलाकार होंगे अंशुमान महाराज। कार्यक्रम विवरण में अभी आप सुन रहे थे आज प्रसारित होने वाले शेष प्रमुख कार्यक्रमों का विवरण। कार्यक्रम विवरण में अब सुनिए कल के प्रमुख कार्यक्रमों का विवरण। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में कल सुबह 7:31 पर और कल दोपहर 12:45 पर आप सुनेंगे सितार वादन। कलाकार होंगी अंजलि शर्मा। कल रात्रि 10 बजे से आप सुनेंगे संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम जिसे हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। कल सुबह 9:30 पर आप सुनेंगे उर्दू कार्यक्रम जिसे हमारे लखनऊ केंद्र से रिले किया जाएगा। लोक संगीत का कार्यक्रम आप सुनेंगे कल सुबह 9:50 पर और कल दोपहर 1:45 पर। कलाकार होंगे दीपक सिंह और साथी। कल दिन में 11 बजे से सुनिएगा कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश, प्रस्तुति होगी अरुण पांडे की। सुगम संगीत का कार्यक्रम आप सुनेंगे कल दोपहर 12:30 पर। कलाकार होंगी संचिता गोस्वामी और कल रात्रि 8 बजे से कलाकार होंगे राजेंद्र मेहता और नीना मेहता।

0: कल दोपहर 1:15 पर महिलाएं सुनेंगी कार्यक्रम अंगनैया में, महिलाओं में पीसीओएस की समस्या और चिकित्सा के उपाय। इस विषय पर डॉक्टर रुचि सिंह से शिखा श्रीवास्तव की बातचीत। कल शाम 5 बजे से बच्चे सुनेंगे कार्यक्रम नन्ही दुनिया, और कल शाम 5:15 पर युवा साथी सुनेंगे कार्यक्रम युववाणी में यूथ जंक्शन, रोजगार सूचना, यूथ डायरी और अन्य रोचक जानकारियां। कल शाम 6:30 पर कृषि जगत कार्यक्रम में किसान भाई सुनेंगे लोक भाषा कवि गोष्ठी। प्रतिभागी कवि होंगे मिथिलेश गहमरी, ओम प्रकाश लाल श्रीवास्तव, दिनेश कुमार सिंह यादव, और साथ में दीपक सिंह और साथियों का लोकगीत भी किसान भाई सुनेंगे। कल शाम 7:31 पर हिंदी वार्ता कार्यक्रम में सुनिएगा वार्ता हिंदी साहित्य में पावस के विविध रंग। वार्ताकार होंगे देवी प्रसाद तिवारी। कार्यक्रम विवरण में अभी आप सुन रहे थे कल के प्रमुख कार्यक्रमों का विवरण। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए
3: 0542227658।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें
4: 0542227658।
0: हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम, और इस कार्यक्रम का पहला गीत है फिल्म ब्रह्मास्त्र से। आवाजें हैं तुषार जोशी और श्रेया घोषाल की, गीतकार हैं अमिताभ भट्टाचार्य और संगीत है प्रीतम का। फिल्म ब्रह्मास्त्र।

आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम, और इस कार्यक्रम का अगला गीत है फिल्म भाग मिल्खा भाग से। आवाजें हैं जावेद बशीर और श्रेया घोषाल की, गीतकार हैं प्रसून जोशी और संगीत है शंकर एहसान लॉय का।

0: अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम। मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में आप संस्कृत में समाचार सुनेंगे, जिसे हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: एम आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः कृष्णप्रसादोपाध्यायः। आदौ मुख्यवार्ताः। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना हरियाणाराज्यस्य जिन्दनगरे भारतस्य प्रथम हाइड्रोजन रेल यानस्य हरितध्वजप्रदर्शनपूर्वकम् उद्घाटनं कृतम्। 14,000 कोटिरूप्यकाणां विविध विकासपरियोजनानां शिलान्यासञ्चापि विहितम्। DGMA इत्यनेन नौकायानस्वामिभ्यः होर्मुज जलसन्धि इत्यतः यात्रां कुर्वतां भारतीयानां नाविकानां नियुक्तिं परिहरन्त्विति निर्देशो दत्तः। यूरोपीय संघः पाकिस्तानस्य मानवाधिकारस्थितिं प्रति गभीरा चिन्तां प्राकटयत्। पाकिस्तानदेशं व्यापारलाभाय अन्ताराष्ट्रियप्रतिबद्धतायाः अनुपालनं कुर्यादिति च निर्दिष्टम्। अद्य अरुणाचलप्रदेश असम मेघालय ओडिशाराज्यानां च केषुचित् भागेषु प्रचण्डवृष्टिः भविष्यतीति ऋतुविज्ञानविभागस्य पूर्वानुमानमस्ति। अपि च बैडमिंटन क्रीडायां भारतस्य क्रीडिका पीवी सिंधुः टोक्यो नगरे जापान ओपन क्रीडायाः उपान्त्यचक्रं प्रविष्टवती। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना अद्य हरियाणाराज्यस्य जिन्द सोनीपत नगरयोः मध्ये भारतस्य प्रथमं हाइड्रोजन शक्तियुतं रेलयानं जिन्द रेलस्थानकतः हरितध्वजप्रदर्श्य उद्घाटितम्। यद्धि स्वच्छं तथा सुस्थिरं रेलपरिवहनं प्रति प्रमुखं पदक्षेपम् इति च निर्दिष्टम्। प्रधानमन्त्रिणा राष्ट्रियराजमार्गपरियोजनया सह 14,000 कोटिरूप्यकाणां विभिन्नानां विकासपरियोजनानां शिलान्यासं लोकार्पणञ्च कृतम्। प्रधानमन्त्री 75,000 किलोमीटरपरिमितं सुदीर्घं दिल्ली अमृतसर कटरा द्रुतमार्गमपि राष्ट्रार्पितवान्। जनसमूहं सम्बोधयन् प्रधानमन्त्री श्रीमोदी अवदत् यत् भारतीयरेलविभागे विगत द्वादशवर्षेषु महत् परिवर्तनं जातमिति।
2: भविष्य में जब भी

0: ही आएगा। मैं आप सभी को, पूरे देश को, भारतीय रेल की आधुनिकता से जुड़े इस बड़े कदम के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं।
1: अवसरेस्मिन् रेलमन्त्री अश्विनी वैष्णवः देशस्य प्रथमस्य हाइड्रोजन शक्तियुतस्य रेलयानस्य प्रचालनम् ऐतिहासिकं साफल्यं च उक्तवान्।

0: पंचो राम
1: राम।
0: राम।
1: का हो बिरजू भैया
0: हाँ सुधु भैया बताओ
1: भाई,
0: आज।
1: टीका उका लगाए के तुलसी की माला पहिर के लगत है रथ यात्रा का मेला देख के आवत हुआ तू।
0: देखा भैया कह जाला कि पजरे मेला लगल हो आदमी ओके छोड़ दे।
1: अरे भाई देखा, एक तो देखा मेला ठेला, और दूसरा चीज जो धार्मिक भावना हो ये अपन भारत और खास करके जो काशी हो,
0: भैया।
1: देखा अपने देश का जो कला संस्कृति हो पूरे समझ ला कि विश्व में जो प्रचार प्रसार हो है
0: देखा भैया
1: अपने कला संस्कृति का
0: ये भारत देश विविधता में भी एकता है।
1: एकदम सही कहत हुआ। और खास करके जब संस्कृति की बात हो ले ना, तो देखा समय समय पर जौन भी जौन हो आवत रहला तीज त्योहार है ना, कुछ तो ऐसा ना हुआ कि देखा खाली दान करे बदे के देखा मशहूर हो,
0: हाँ भैया।
1: जल्ला ना मुख्य रूप से अब ओके चाहे जौने रूप में मनाए ला
0: सही
1: है
0: बात
1: ना,
0: है।
1: और चाहे देखे खिचड़ी कहला मकर संक्रांति कहला चाहे बसंत पंचमी भल शिवरात्रि भल, भाई ये सब एक अवसर होला ना जिम्मन की दान करे का एक तरह से परंपरा बनल हो।
0: आ ये भैया देखा दान कैले में भी आत्मसंतुष्टि मिले ले हो।
1: बिल्कुल बिल्कुल मिले ले और तबे कैल जाला। और दान के देखा वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दोनों महत्व हो
0: दोनों दोनों भैया।
1: है ना। पहली बात तो ये हो कि आध्यात्मिक रूप से कोनो बात के कोनो काम के यही से जोड़ देवल जाला कि भैया वो विज्ञानी रूप से देखा हमारे तोरे समझ में ना आई कम के पढ़ल लिखल है जानला ना, लेकिन ये कह देवल जाए कि हे देखा यहाँ जौने चीज का दान करब ना जाके स्वर्गे में वह मिली
0: हाँ
1: जानला,
0: ओके।
1: तो
0: भावनात्मक तरह से
1: जोड़
0: आदमी
1: देवल जाला।
0: जोड़ी लगा बनी तबे हो पाई भैया।
1: बिल्कुल, तो भाई वही तरह से ये दान करे के परंपरा में जौन घर जमीन अन्न कपड़ा पैसा रुपया बहुत कुछ दान होला। बाकी एक दान उम्मन भैया बिरजू बताई हम ऐसा हो
0: वही में भैया एक कन्यादान भी बा।
1: बिल्कुल हो कन्यादान कहे के मतलब कि भाई कुल तो हमारे याद ना हो, बाकी तो जौन सबसे बड़का दान हो हमारे याद हो जानत हुआ का रक्तदान
0: रक्तदान।
1: जल्ला ना। ये रक्तदान अगर कह देहला तो भाई स्वर्गे में का मिली का न मिली इतना क्यों देखले बा न जानत हो
0: लेकिन
1: जल्ला
0: केहू के भैया जीवन दान मिल जाए।
1: तोहरे।

0: आखी के सामने जब वो व्यक्ति के जीवन बची जेकरे बदे रक्तदान करत हुआ, और जब हंसी मुस्कियाई ओकरे पीछे ओकर जो परिवार के लोग हुआ, चट्ठे खड़ा बाल बच्चा
1: हाँ,
0: हुआ,
1: वो भैया
0: माता
1: खुशहाल रही
0: पिता
1: हैं।
0: हुआ, कितना जने के जिंदगी समझ ला एक आदमी से जुड़ल होले, और सब जब खुशहाल रही तो तोहरे आत्मा के कितना समझ ला कि
1: अरे भैया,
0: तृप्ति मिली।
1: इतना आत्मसंतुष्टि रही, आ उनके पुण्य प्रताप से तुहार भी बाल बच्चा सुखी रहे हैं।
0: बिल्कुल भाई, देखा पहली बात तो यह हो कि दान निस्वार्थ करे के चाहिए, जानला ना।
1: एकदम
0: हाँ
1: भैया, उसमें कोनो
0: ये,
1: स्वार्थ न रहे।
0: हाँ ये ध्येय से मत करा कि भाई हमार बाल बच्चा सुखी रही है। अब ई तो देखा ईश्वर के कृपा हो के का देना, के सुखी रखा ना, के दुखी रखा ना।
1: सही
0: बाकी
1: बात।
0: तो तू जो दान करा ओके निस्वार्थ रूप से करा, केहू के जावन बचाओ बदे के।
1: लगन से कला।
0: बिल्कुल। और जहां तक रक्त का बात हो ना, देखा एकर आज ले दुनिया में कोनो विकल्प नहीं बनल,
1: कुछ ना भैया।
0: जानला कोनो फैक्ट्री ना बैठल
1: ना।
0: जे मन की रक्त बनाए करके तू जा बाजार से खरीद लिया वा और के चढ़ाए दा, जिंदगी बच जाए।
1: देखा भैया, डॉक्टर भैया भी लोग कहलन कि जे स्वस्थ रही उहे रक्तदान कर सकाला।
0: हाँ एकदम, स्वस्थ का मतलब ई हो ना कि रक्त का एक निश्चित मात्रा होले जौन की जिंदगी बदे शरीर बदे के चलावे बदे के बहुत आवश्यक होले। अगर उसे ज्यादा हो, जितना ज्यादा हो, तो डॉक्टर भैया ओकर जांच करके उतना भाई निकाल सका ना खून, और निकालन अभी ओकरे पहले बड़ी जांच होले कि तुहार खून जो है शुद्ध हो कि नहीं हो, कोनो
1: हाँ
0: तरह का विषाक्तता तो नहीं बा मन, केहू कोनो नशा तो नहीं करत हो, जल्ला
1: हाँ
0: ना
1: हाँ
0: ये
1: भैया।
0: कुल जांच कैले कि बाद डॉक्टर भैया देखा पूरा समझ ला इत्मीनान भइले के बाद तब खून निकालन ना, और उतना निकल ही जितने की जरूरत हो,
1: जरूरत रहे।
0: जल्ला ना। और वो जब दूसरे के चढ़ला तो ओकरे बाद ओकर समझ ला कि जिंदगी बचले। और कबो देखा हो ऐसे चूका के ना चाहिए,
1: ना
0: अगर
1: भैया।
0: जीवन में ये तरह का मौका आवे तो ऐसे चूका के ना चाहिए कि हे देखा अरे हमसे का मतलब हो, हम तो ठीक ठाक है, फटफटैया जना चालू कैला भुर्र से जना चल गईला सड़की पर, भले केहू गिरल बा छटपटात बा, जल्ला ना कि अरे तैसा अपने अंदर झांक के देखा हो, तैसा मानवता की दृष्टि से देखा,
1: सही कला
0: जल्ला
1: भैया।
0: ना। हम कहीं घटना दुर्घटना चाहे रोग बियाद ये कभी भी केहू के संगे हो
1: केहू
0: सकला,
1: के आ सकत भैया।
0: जल्ला
1: हाँ।
0: हम कहे कि पैसा रुपया कितनों धैले रहबा, बाकी तो अगर शरीर में खून का कमी हो गई या कोनो घटना दुर्घटना हो गई, मौके से वहां नहीं केहू बा तो तुम्हें के बचाव वाला नहीं बा,
1: सही
0: जल्ला।
1: बात है।
0: तो ये तरह से ये भाव रखा कि अरे भाई हम घरे जौन हो 10-5 मिनट देर से पहुंचो, आधा घंटा देर से पहुंचो, उससे कोनो नुकसान नहीं बा।
1: कुछ ना भैया,
0: बाकी तो अगर तनी से मदद कर देबा
1: भाई केहू के जान बच जाए।
0: जान बच जाए, है ना। तो ये बात का भावना जन अपने मन में रखे के चाहिए, और अगर ऐसा अवसर मिले तो उसे चूका के भी ना
1: अब देखा
0: चाहिए।
1: भैया, डॉक्टर भैया लोग यो बताओ ना कि रक्तदान कैले से हृदयाघात कम होखे के चांस रहा।
0: भाई ये तो तकनीकी बात बतावत हुआ, ये तो हमारे नहीं समझ में आवत, बाकी तो हमारे देखा जो समझ में आवत हो ना वो यह हो कि अगर रक्तदान करत हुआ तो एक तरह से शरीर में नया रक्त पैदा होकर के अगर तू स्वस्थ हुआ तो कुछ है दिन में समझ लो बराबर हो जाला।
1: एकदम भैया, वो पूरा हो जाला तुरंत।
0: हाँ तो इसे टिराए के ना चाहिए कि
1: ना।
0: अरे हमारे भीतर हम खून दे दे तो खून का कमी हो जाए, और भाई हम कैसे रहब जियब, है ना,
1: ये
0: ऐसा
1: कुल
0: कौनो
1: सोच
0: बात
1: ही
0: ना। ये कुल
1: भैया,
0: तो डॉक्टर भैया लोग का सोचा का काम
1: ये
0: हो
1: कुल
0: हो।
1: पूर्वाग्रह पल ही ना चाहिए भैया।
0: हाँ ये कुल डॉक्टर भैया लोग का सोचा का काम हो। और है देखा खून जन हो ना भाई, अगर जरूरत पड़ गल मौके पर तो कबो कबो देखा तलाशत रहा न मिली, जल्ला ये वजह से अगर मौका मिले तो जा करके पहले से खून अगर निकलवाए करके जो रक्त बैंक होला
1: हाँ भैया।
0: अगर उमन रही तो भाई जौने ग्रुप का तू खून चाहबा वहां जाबा तत्काल उपलब्ध हो जाए,
1: वही ग्रुप मिल जाए।
0: जल्ला ना। तो अगर अच्छा मन यू होला कि जैसे तू जाए करके खून अपन दे देला और वो समय तुहा कोनो जरूरत ना हो, लेकिन अगर कुछ दिन बाद भी केहू के जरूरत पड़ गल और तू जाबा तो के एक लिख के दे देना पुर्जी, आ तू
1: हाँ।
0: जाबा ना तो तोहरे आदमी के जो है ना कहे कि खून दा तो हम जो हो तोह देव, तुरंत उपलब्ध करा दी है,
1: सही कला।
0: जल्ला। तो ई कुल बात का जो हो ध्यान रखे के चाहिए, ई भावना जो हो अपन धार्मिक रखे के चाहिए, और एकरे पीछे जो वैज्ञानिक तथ्य हो स्वस्थ रहे वाला वो भी ध्यान में रखे के चाहिए। तो बिरजू भैया
1: भैया बत कही तब करल जी, लेकिन तनि हई संदेश हो जा।
0: सुनवाई दो, सुनवाई दो।
2: पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: हमन रक्तदान के बात कही करत रहे। तो भाई अगर रक्तदान कैले से ना समझला कि स्वास्थ्य अगर बढ़िया रहा था अपने देश के जन मुखिया हुआ
2: है
1: ना, देखा उहो ये तरह का व्यवस्था कैले हुआ जो आयुष्मान भारत योजना, जिससे कि अपने देश का जो सबसे छोटी इकाई हो, जो सबसे छोटी कड़ी हो, हम है तू हुआ चल, अगर हर व्यक्ति स्वस्थ रही तो अपन पूरा देश स्वस्थ रही
2: एकदम भैया
1: चल। तो हम कही देखा भाई सने सुन ला है ना, भाई उमन ई बात रहल और हम कही के कुछ खेती किसानी की तरफ चल जाए। तो खेती किसानी में हे देखा ये जो खरीफ का फसल चलत हो, कबो कबो भाई देखा है मन समस्या भी आवल
2: है,
1: नुकसान उठावे को होला। तो हम कही अब तू छुपाए जाबा, तब हम डॉक्टर भैया से बतियाए, डॉक्टर भैया पंचायती में आए गल हुआ।
2: हाँ भैया तो सुनवाए दा।
1: हाँ तो डॉक्टर संतोष कुमार भैया देखा आए गल हुआ, डॉक्टर भैया तनी से घुसू किया हुआ आगे, और तू तैसा ओहर खसका तब नहीं है।
2: हाँ भैया बतियावा हम खसक जाते हैं।
1: हाँ तो डॉक्टर भैया आगे आवा तैसे बतकही हो जाए कि जो खरीफ का फसल है ना इमन हो वाली कौन कौन बीमारी है और कैसे एक उपचार कर जा सके।
2: हाँ भैया बतिया।
3: डॉक्टर संतोष कुमार, आप सहायक प्राध्यापक हो म्यूकोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी विभाग कृषि विज्ञान संस्थान काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में। आज हम आपसे ये जानल चाहब कि जौन अपन खरीफ का फसल खेत में है मुख्य रूप से धान का और साथ कुछ दलहनी फसल भी है
2: जी,
3: इमन कौन कौन बीमारी देखे में आवत है, अगर कैसे का लक्षण आवत हो, का उपचार विषय पाँच बात कही हुई
2: जी, जी,
3: तो बतावे कि कौन कौन जौन हो समय समस्या आवत हो फसल में।
4: जी धन्यवाद जी, किसान भाइयों आपका हमारा नमस्कार। जैसा कि किसान भाई बहुत सारी फसलों को उगाते हैं, उनमें धान फसलें होती हैं जो मुख्य रूप से होती हैं। धान फसलों के अलावा कुछ दलहनी फसलें भी खरीफ ऋतु में उगाई जाती हैं। धान फसलों की अगर बात करते हैं तो किसान भाई बृहत रूप से धान और मक्के की खेती करते हैं, और दलहन के रूप में अगर बात करते हैं तो उड़द मूंग की खेती की जाती है
3: जी।
4: तो इसके परिप्रेक्ष्य में जिस तरीके से किसानों को इनकी खेती करने में कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, उनका कैसे किस तरीके से उनका प्रबंध हो सकता है, उसी तरीके से किसान भाइयों को इन फसलों में होने वाले रोग और कीटों का भी प्रकोप आता है, और उनको कैसे वो उपचार करें, कैसे उनका प्रबंधन करें, ये मैं आज आपको इसके संक्षेप में मैं बताना चाहता
3: हूँ। किसान भैया लोगों के
4: तो जैसे धान फसलों की बात की जाए तो हमारा धान अभी जो अभी सीजन आने वाला, किसान भाई कुछ किसान भाई इसकी रुपाई कर चुके हैं और कुछ किसान भाई रुपाई करने जा रहे हैं। जैसे कि धान फसल में मुख्य रूप से 3-4 बीमारियों का प्रकोप बहुत अधिक होता है, खासकर इस ईस्टर्न जोन में, ईस्टर्न यूपी जोन में। अगर इन बीमारियों की बात की जाए तो इसमें मुख्य रूप से एक आवरण झुलसा रोग होता है।
3: अच्छा।
4: हाँ, दूसरी रोग की बात करते हैं तो एक जीवाणु होता है, इसको हम लोग जीवाणु झुलसा रोग वो अच्छा। लगता है। तीसरा रोग जिसको हम बोलते हैं ब्लास्ट या ब्लास्ट रोग बोलते हैं, जो धान में मुख्य रूप से तीसरी बीमारी लेकर यहाँ पे आता है। तो ये तीन मुख्य बीमारियां होती हैं जो हमारे बृहत रूप में पाई जाती हैं।
3: कौन स्तर पे बीमारी देखा में आवत हो?
4: हाँ, पहले तो किसान भाइयों को समस्या आती है इन किसानों की इन बीमारियों कैसे पहचाने
3: जी।
4: तो इनके पहचान करने के लक्षण जो हमारे पौधों पे दिख जाते हैं, धान पे दिख जाएंगे, उसमें अगर हम आवरण झुलसा की बात की जाए, आवरण मतलब जो पहला जो ढकल होता है, सीथ जिसको बोलते हैं, पहला जो लीफ निकलता है
3: जी, जी।
4: ये आवरण झुलसा का प्रकोप वहीं शुरू होता है जो पानी के बिल्कुल नजदीक होता है। जो पानी के नजदीक होगा पहला जो उसका लक्षण बीमारी का रोग का दिखाई देगा वहीं दिखाई देगा, जो भूरे और जैसे सांप की केचुल नहीं होती है सेम कलर आपको वहां पहले आवरण झुलसा से दिखाई देगा।
3: अच्छा, पत्ती पर?
4: पत्ती पर नहीं, पत्ती से नीचे जस्ट जो तने से चिपका हुआ है लीफ,
3: हाँ,
4: वहां दिखाई देगा।
3: अच्छा अच्छा, तो एक देख के समझ जाए कि जनहरमन झुलसा।
4: हाँ, ये आवर झुलसा रोग है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये रोग है, ये नर्सरी से लेके आपके बाल पढ़ने तक कहीं पे भी आ सकता है रोग है। ज्यादातर उस जगह पे आता है जहाँ पे तापमान 30 डिग्री से 32 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान रहता है, और जो हमारी आर्द्रता है वायु आर्द्रता वो लगभग 80-85% रहती है, लगभग 90% तक आर्द्रता रहेगी तो इस रोग का प्रकोप ज्यादा होता है। साथ साथ पानी बहुत समय तक भरा रहेगा, काम एक ही पानी बहुत समय तक भरा रहता है, उसका भी इसका इस पे प्रभाव पड़ता है।
3: तो डॉक्टर साहब कहा जाला कि धान की खेती तो पानी में होबे करे।

0: ये तो आप बताओ थो कि पानी ज्यादा दिन
1: तो
0: लगा
1: वो
0: रहने
1: तो
0: से
1: आपकी
0: बीमारी
1: बात
0: हो
1: सही
0: जा
1: है,
0: रही है।
1: लेकिन कभी कभी क्या होता है पानी बहुत समय तक एक ही पानी भरा रहता है
0: अच्छा
1: और
0: तो
1: धूप ज्यादा रहती है, टेम्परेचर बढ़ जाता है
0: हाँ
1: उस समय रोग, या अगर पानी निकल जाए दूसरा पानी भर जाए तब इस
0: अच्छा
1: रोग का
0: अच्छा
1: प्रकोप कम हो जाता है फिर।
0: तो एक कारण का यह पानी वाला हो कि और कौन
1: नहीं,
0: कारणों
1: इसका
0: की वजह
1: कारण
0: से
1: एक
0: है।
1: फंगस होता है कवक, वो उसको हम लोग राइजोक्टोनिया सोलेनाई बोलते हैं, उसके द्वारा ये रोग होता है। और ये
0: अच्छा
1: रोग प्राय जमीन से आता है, हमारी मृदा मिट्टी में छुपा रहता है, जब किसान भाई धान लगाते हैं उसके बाद ये रोग देखता है कि मेरा मेरा भोजन आ गया है और वो रोग स्टार्ट कर देता है अपनी बीमारी
0: अच्छा
1: करना।
0: तो शोधन वगैरह के माध्यम से कार्यक्रम उपचार
1: हाँ,
0: किया जा
1: तो बहुत
0: सकला।
1: बड़ी बात है। शोधन की बात किया तो पहले मैंने बताया कि 15 या 20 दिन तक पानी हमेशा एक जगह नहीं भरा रहना चाहिए, नंबर एक। नंबर दो, अगर आपको रोग दिखता है शुरुआत में,
0: जी
1: तब चूंकि ये रोग मिट्टी से आता है और जब पौधे पे लक्षण दिखाई देते हैं उस समय एक दवा आती है जिसको हम लोग कवकनाशी बोलते हैं। तो ये शुरुआती लक्षण दिख जाएं तब दो दवा होती है, एक तो कार्बंडाजिम और मैनकोजेब,
0: अच्छा
1: दोनों का मिक्सचर होता है। ये दवा 2 ग्राम दवा 1 लीटर पानी में घोलकर
0: हाँ
1: किसान भाइयों को स्प्रे करना है। ये
0: अच्छा
1: शुरुआती शुरुआत लक्षण दिख
0: दोनों
1: जाए,
0: में से एक दवाई की दोनों
1: नहीं
0: दवाई
1: दोनों को मिक्सचर आते हैं, या
0: दोनों
1: तो
0: मिलाएंगे।
1: किसान भाई उसको अलग अलग ले सकते हैं
0: अच्छा।
1: दवा को, एक दवा कार्बंडाजिम ले लिया,
0: हाँ
1: दूसरा
0: हाँ
1: मैनकोजेब, और
0: अच्छा
1: घर में लाके दोनों को 1 1 ग्राम मिला लें तो
0: हाँ
1: 2 ग्राम का सोल्यूशन हो जाएगा।
0: अच्छा।
1: जैसा कि किसान भाई भी जानते होंगे कि जो एक टंकी होती है वो 15 लीटर की होती है, तो अगर 15 लीटर उस टंकी में घोलना तो 30 ग्राम दवा की जरूरत हमको
0: जी
1: पड़ेगी।
0: जी जी
1: तो लेकिन अगर प्रकोप ज्यादा बढ़ गया, जैसे मान लीजिए प्रकोप 30 से 50% तक दिख जाए, तब एक दूसरी दवा आती है जिसको हम लोग प्रोपिकोनाजोल बोलते हैं।
0: अच्छा
1: हाँ, उसका 1 ग्राम दवा को एक वो उसमें इसमें MLC फाइबर EC में होता है, लिक्विड में होता है, उसकी 1 ML दवा को 1 लीटर पानी में घोलकर स्प्रे किया जाता है।
0: अच्छा।
1: तो ये दो दवा हैं, दोनों का जो यूज करने का तरीका, प्रयोग करने का, वो अलग अलग होता है।
0: वो कैसे।
1: अगर दवा बीमारी कम है, बीमारी मतलब 10 से 15% तक है, तब हमको ये कार्बंडाजिम और मैनकोजेब का घोल का स्प्रे देना है। अगर बीमारी 30 से 50% तक आ जाए तब हमको प्रोपीकोनाजोल का स्प्रे करना है।
0: तो ऐसे बीमारी निर्धारित हो ये।
1: हाँ, इससे बीमारी जो आने वाली आगे जो लक्षण है वो रुक जाएंगे और हमारी फसल उस बीमारी से बच जाएगी।
0: अच्छा और
1: जी
0: दूसरा समस्या
1: हाँ,
0: बताओ
1: दूसरी
0: थोड़ा
1: बात
0: डॉक्टर।
1: बताई, एक जीवाणु जनित रोग होता है,
0: जी जी
1: इसको जीवाणु झुलसा रोग बोलते हैं, वो भी इस एरिया में मैंने कहीं कहीं देखा है। इसके लिए किसान भाइयों को, एक चूंकि बीमारी है जीवाणु से आती है,
0: एकर का लक्षण वाला।
1: हाँ, इसका बैक्टीरिया होता है जीवाणु, उसके द्वारा उसका नाम होता है जैंथोमोनास बैक्टीरिया का। इसके लक्षण आपको इसके भी लक्षण शुरुआत से दिखाई देंगे, जब हम नर्सरी डालेंगे, नर्सरी लगभग 10 दिन की होगी, उसी से वहीं से इसके लक्षण शुरुआत हो जाती है और एक नर्सरी से खेत में भी बीमारी पहुंच जाती है।
0: अच्छा
1: इसके लिए किसान भाइयों को, जैसे ही आपको खेत में लक्षण दिखाई दे तो एक, लेकिन एक कवक होता है, कवक नाशी होता है, जिसका हम लोग कापराक्सी क्लोराइड बोलते हैं,
0: अच्छा
1: जो मार्केट में आसानी से मिल जाता है उसको, और एक दवा और होती है स्ट्रेप्टोसाइक्लिन, जिसको हम लोग एंटीबायोटिक बोलते हैं। ये दोनों दवा एक साथ तो नहीं डालना है, पहले किसान भाई कापराक्सी क्लोराइड का स्प्रे कर लेंगे, इसकी डोज ये होती है कि 2 ग्राम 1 लीटर पानी में घोलकर स्प्रे करना है।
0: अच्छा
1: उसके दूसरे दिन आप एंटीबायोटिक जिसको स्ट्रेप्टोसाइक्लिन बोलते हैं, वो 1 ML दवा को 1 लीटर पानी में घोलकर स्प्रे करना है।
0: अच्छा
1: तो
0: अलग अलग
1: ये
0: दिन में।
1: अलग अलग दिन में अल्टरनेट करना है, ऐसा नहीं एक साथ
0: अच्छा।
1: नहीं करना है। तो ये दोनों दवा को यूज करेंगे तो मुझे लग रहा है कि 10 दिन के अंदर आपको आपका मतलब पता चल जाएगा कि ये रोग हमारा कम हो गया है। तो ये
0: अच्छा
1: तो जीवाणु जनित दूसरा रोग हो गया।
0: जी जी
1: और अगर मक्के की बात करें, इस एरिया में मक्का भी आता है, तो मक्के में इस एरिया में सबसे बड़ा एक रोग होता है बैंडेड एंड सीथ ब्लाइट, जो मतलब जो आवरण में आपको बैंड पैटर्न में धारिया बन जाएंगी, उसके लक्षण है। वो शुरुआती लक्षण आपको लगभग मक्का ग्रो लगाने के 30 से 35 दिन बाद या 30 से 40 दिन बाद इस रोग के लक्षण दिखाई देने लगेंगे। इसके लिए किसान भाई, अगर शुरुआत में कोई एक दो पौधे दिखाई दे तो पौधे को उखाड़ के खेत से फेंक देना है।
0: अच्छा पौधे
1: ठीक
0: उखाड़
1: है,
0: देवे के हो।
1: नहीं, अगर आपको शुरुआत में एक दो लक्षण एक दो पौधों में दिखाई दे, नहीं तो क्या होगा कि उससे आप रोग हमारा पूरे खेत में फैल जाएगा। तो एक दो पौधे दिखाई दें, अगर ज्यादा प्रकोप फैल रहा है तो इसकी भी कुछ कवक नाशी आते हैं, तो ये रोग भी कवक से ही होता है, जिसका नाम है राइजोक्टोनिया सोलेनाई, वो ही मृदा से ही आता है।
0: अच्छा।
1: तो अगर अगर इसके लक्षण हमारे पौधे पे दिखाई दे रहे हैं तो इसके लिए भी एक दवा आती है जिसको हम लोग प्रोपिकोनाजोल बोलते हैं,
0: अच्छा
1: उसका स्प्रे करें, उसका 1 ML दवा को 1 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव देना है, वो भी 15 दिन के अंतराल पे 2 छिड़काव करना है।
0: अच्छा।
1: हाँ, इसके अलावा ये एक और दवा है जिसको हम लोग एजाक्सी एस्ट्रोबिन बोलते हैं, वो वो दवा, इस दवा जो पहले दवा मैंने

0: जाता है, उससे अच्छी मानी जाती है। लेकिन कई कई बार क्या होता है, ये दवा मिलने में मुश्किल हो जाता है।
1: अच्छा
0: अगर एजॉक्सिस्ट्रोबिन किसान भाइयों को आसानी से मार्केट में मिल जाती है तो वो इस दवा का प्रयोग करें। इसकी 1 ml दवा को 1 लीटर पानी में घोलकर आपको स्प्रे करना है खेत में
1: अच्छा
0: जी,
1: उसे नियंत्रण हो सकल है।
0: उससे जो हमारा जो बंडेड शीत ब्लाइट मक्के में उससे रोग हो जाएगा
1: अच्छा,
0: जी।
1: और कुछ मक्खी वगैरह कभी प्रकोप हो
0: हाँ,
1: जाए
0: अब
1: ना?
0: मैं बताता हूँ, उर्द बीन मूंग बीन भी किसान भाई इस हमारे खरीफ सीजन में उगाते हैं। उर्द बीन में मुख्यतः एक रोग लगता है पीला मोज़ेक, जो एक विषाणु के द्वारा होता है। लेकिन हमको पता है कि विषाणु रोग खुद अपने अपने आप से एक पौधे से दूसरे पौधे, एक खेत से दूसरे पौधे में नहीं जाता है।
1: अच्छा
0: एक मक्खी फैलाती है जिसको हम लोग व्हाइट फ्लाई बोलते हैं, ठीक, या एक एक, एक और इंसेक्ट होता है जिसको हम लोग एफिड बोलते हैं। तो इसमें एफिड का रोल बहुत रहता है। इसको इसको हम लोग हिंदी भाषा में माहू बोलते हैं।
1: अच्छा
0: इसके लिए किसान भाइयों को ये करना है, कुछ किसान भाई ऐसे होते हैं जो केमिकल केमिकल की चीजों को यूज नहीं करते खेत में। तो अगर आप शुरुआत में 5% भी इन्फेक्शन दिखाई दे रहा, तो आप नीम ऑयल भी, किसान भाई नीम ऑयल भी यूज करते हैं, वो बहुत अच्छा कारगर माना जाता है। लेकिन ये दवा जब भी कारगर मानी जाएगी जब शुरुआती लक्षण दिखाई दे। नीम ऑयल वो उस वायरस पीला मोज़ेक को नहीं खत्म करेगा, वो वहां पे जो उस एफिड है, जो माहू है, उसको मारेगा, या व्हाइट
1: अच्छा
0: फ्लाई है उसको खत्म कर देगा। अब अगर वो माहू या खत्म हो गया तो हमारा रोग एक खेत से दूसरे खेत जाना बंद
1: बंद
0: हो
1: हो
0: जाएगा
1: जाएगा।
0: और रोग वहीं पर रुक जाएगा। लेकिन अगर प्रकोप 20 से 25-30% तक पहुंच गया है, ज्यादा हो गया है, तब एक दवा आती है इमिडाक्लोपिड। इमिडाक्लोपिड जिसकी 1 ml दवा को 3 लीटर पानी में घोलकर खेत में स्प्रे करना है। एक चीज और मैं किसान भाई को बताना चाहता हूं कि शुरुआती में अगर लक्षण दिखाई दे तो पौधे को उखाड़ के ही या तो जमीन में गड़ा दें या तो जला दें।
1: अच्छा
0: तो ये सबसे बड़ा विषाणु रोग का प्रबंधन माना जाता है शुरुआत में ही।
1: अच्छा
0: अगर एक पौधा भी दिख गया तो ये जल्दी से कीड़ा जो महुआ या सफेद मक्खी पूरे खेत में फैलाने में 2-4 दिन में पूरे खेत में फैला देगी। तो अगर शुरुआत में दिखे तो सबसे अच्छा है कि इसको उखाड़ के जला दें। हाँ, ये तो हमारा उर्द बीन, और दोनों में लगता है, उर्द बीन में भी लगता है और मूंग बीन में भी लगता है जी।
1: और कुछ जड़ से संबंधित भी कुछ समस्या
0: हाँ,
1: वाले
0: जड़ से
1: पौधन में ना?
0: संबंधित एक और रोग अरहर में लगता है, उसको हम लोग उकठा रोग बोलते। उसका सबसे बड़ा प्रबंध, कुछ किसान भाई क्या करते हैं, लक्षण पेड़ में दिखाई देते हैं तो वो पेड़ में स्प्रे करते हैं। लेकिन
1: जी
0: हमको पेड़ में स्प्रे नहीं कर रहा, क्योंकि वो रोग मिट्टी से आ रहा। तो
1: जी जी
0: मिट्टी में हम लोग मृदा ड्रेंचिंग करेंगे।
1: हाँ
0: इसके लिए कापर एक्सीक्लोराइड एक दवा आती है,
1: अच्छा
0: कापर एक्सीक्लोराइड, उसकी 2 ग्राम दवा को 1 लीटर पानी में घोलकर, मान लीजिए टंकी हमारी 15 लीटर की होती है, तो 15 लीटर में 30 ग्राम दवा को घोल लीजिए और पौधे के जड़ के पास आपको मिट्टी में स्प्रे करना है।
1: अच्छा,
0: हाँ, चूंकि वो
1: का कुछ कुड़ाई वगैरह करके कि
0: नहीं
1: ऐसे
0: नहीं
1: ही
0: ऐसे कर
1: मतलब?
0: दीजिए आप,
1: अच्छा
0: थोड़ा
1: जड़
0: सा
1: के
0: हल्का सा
1: पास।
0: नमी रहे, बस सूखा ना पूरा खेत रहे, नमी रहे, और उसके जड़ों के पास हमको स्प्रे करना है। क्योंकि ये जो रोग है ये पौधे के जड़ के पास जो कॉलर रीजन होता है वहां पे रहता है। तो वो वहीं अगर वहां पे खत्म हो जाएगा तो आप रोग जो ऊपर लक्षण दिखाई देते हैं वो बंद हो जाएंगे वहां पर।
1: यह कारण है कि छिड़काव ऊपर कर देना और
0: हाँ,
1: रोग जो जड़ में हो।
0: रोग जड़ में तो कैसे खत्म होगा। तो
1: ये
0: इस तरह,
1: सावधानी रखने की जरूरत
0: हाँ,
1: है।
0: ये सावधानी किसान भाइयों को, या अगर शुरुआत में दिखाई दे तो कुछ पौधे पे अगर रोग आए तो उनको उखाड़ के फेंक दें या तो उनको जला दें। लेकिन उनको ऐसे उखाड़ के फेंके मतलब खेत में ना डालें, या तो गड़ा दें जमीन में या उनको जला दें, अदरवाइज
1: अच्छा
0: वो दूसरी अब वो खुद रोग खेत में पहुंच जाएंगे अपने आप, या कि किसी कीड़े के द्वारा या किसी और के द्वारा।
1: तो ये छिड़काव कई बार करें क्यों डॉक्टर साहब?
0: हाँ, ये आपको 15 दिन अंतराल पे 2 छिड़काव महीने में 2 बार करना है,
1: अच्छा,
0: 15-15 दिन के अंतराल पे,
1: दवा का मात्रा वह अनुपात
0: दवा
1: में
0: की
1: ही लेना
0: मात्रा 2 ग्राम
1: पड़ता
0: 1 लीटर पानी में घोलकर।
1: होगा।
0: लेकिन अगर प्रकोप ज्यादा है रोग का तो दवा को हम 1 महीने में 3 बार भी दे सकते हैं।
1: अच्छा।
0: अगर ज्यादा ज्यादा मतलब कि वो 30% रोग हमारा आ गया हो तो ये इसका।
1: तो डॉक्टर संतोष कुमार, आप पंचायती में ना और इतनी अच्छी जानकारी देना हमारे किसान भैया लोगन के कि खरीफ के फसल में इस समय कौने कौने बीमारी का प्रकोप हो सकला आ होत हो, ओकर अगर लक्षण दिखाई दे तो कैसे ओकर उपचार करें, ये जानकारी देवे बदे आपके बहुत बहुत धन्यवाद।
2: सुधु भैया,
1: हाँ बिरजू भैया,
2: बड़ा फरिया फरिया के डॉक्टर भैया से बतियोला है आप।
1: अरे हमका बतियोली डॉक्टर भैया, बताऊना फरिया फरिया
2: अरे
1: के।
2: तो आप पूछला तब ना, आप पूछला तो बतौला है डॉक्टर संतोष कुमार। तो ये
1: तो
2: भैया
1: बात कही तो बड़ी नगद कर
2: बहुत
1: वाला भाई
2: बहुत
1: देखा
2: भैया।
1: है ना, तो हम कही कि नगद के बात कही जब भाई ले तो अब एक एक गुना का भी जरूरत हो।
2: बहुत बहुत देखा भैया, पंच भैया लोग सुन ले अगर
1: जौन
2: बढ़िया तो
1: तरीका
2: क्या अमल
1: बताऊना
2: करा
1: हो,
2: लो।
1: हाँ जौन तरीका बताऊना हो डॉक्टर भैया ना, ओके वो हिसाब से अगर अमल करब तो निश्चित रूप से जौन फसल हो,
2: लाभ
1: अपन
2: लाभ लाभ मिले
1: उत्पादन
2: भैया।
1: हो, वो भी बढ़िया रही है, गुणवत्ता भी बढ़िया रही
2: बिल्कुल
1: है ना।
2: बिल्कुल
1: और देखा हमार तोहार जौन हो खेती का उद्देश्य भी है, होला कि 4 पैसा भाई बढ़िया आवे, है
2: हाँ
1: ना।
2: भैया
1: इनाई क्यों में परेशान रही,
2: ना ना ना
1: जल्ला।

0: भाई देखा नगद के बाद कही हो गई, अब हम कही कि नगद के गौनही भी हो जाए पंचायती में।
1: हाँ भैया, तो ये मांगे राम प्रजापति और साथी कह, पंच लोग सुने,
0: सुनवा दे पंचन के,
1: हम लोग
0: आनंद ले
1: सुने।
0: भैया।

0: भाई देखा होकर का पूछेगे।
1: सही कला भैया।
0: तो भाई ई महंगी राम प्रजापति उनके साथी भैया लोगों के देखा देशभक्ति गीत रहल है, और हम कही आज का कार्यक्रम देखा जोन खेती किसानी कर रहल है, अगर मन मनसान कर रहा तो हो गल, और काल का सुनवावत हुआ अपने पंच भैया लोगों के बता दा।
1: देखा भैया, बिहाने अपने 6:05 पर खेती के बात में लोबिया के खेती विषय रही, ये पर जानकारी दी है दिनेश कुमार सिंह भैया।
0: अच्छा,
1: आ शाम के टाइम भैया बता दे पंच लोग के।
0: अरे भाई साँझ ही के तो देखा काल दिन जौन होना वो मन मनसायन का ढेर देखा, दुदू बेरी मन मनसायन हुई, लोक भाषा कवि गोष्ठी का दिन हो,
1: अच्छा भैया कविता ही रही।
0: गीत गौने तो होबे कराला। तो भाई एमन जौन भाग ले वाला प्रतिभागी कवि कवि हुआ उन्हें बता दें कि मिथिलेश गहमरी गाजीपुर से, ओम प्रकाश लाल श्रीवास्तव मिर्जापुर से,
1: अच्छा भैया,
0: हाँ, और दिनेश सिंह यादव भैया देखा चंदौली से। ये
1: अच्छा
0: तीनों
1: अच्छा
0: कवि लोग भैया देखा अपने कार्यक्रम में भाग ले हैं, जल्ला ना। तो भाई पंच भैया सुने मन मनसायन होए, और हम कहिए एक
1: भैया
0: साथी अब
1: देखा,
0: चल का बेला
1: हाँ
0: भी हो
1: बेला
0: तो
1: हो गई भैया।
0: पंच भैया लोगों से आज्ञा लेवल जाए। तो पंचो
1: पंचो राम
0: राम
1: राम।
0: राम।

0: सुद्धू
1: पंचो
0: भैया गौनाइत बहुत बढ़िया निमन भइल भैया।
1: पाई देखा देशभक्ति रहल हा। अब बड़े गर्व के बात हो कि हम तू ए देश के निवासी
0: हाँ
1: है।
0: भैया
1: अब बड़े बलिदान के बाद अपने देश के देखा आजादी मिलल हो। और हम तू जब देखा जाड़ा में बरसात में अपन खिड़की दरवाजा बंद कर लीला उसे बचे बदे के तापमान से, वो समय अपने देश के सीमा पर जो जवान हुए ना
0: अरे
1: अपने देश के
0: भैया
1: सुरक्षा करने, उनकर
0: काटकूस
1: कीमत समझा।
0: काटकूस पहाड़ पत्थर पर देखा अपन जीवन
1: बिल्कुल।
0: व्यतीत कह के हमन के समझला कि सुरक्षा देना लो।
1: और अपने देश को देखा जो संस्कृति हो ना।

अभी किसान भाई सुन रहे थे अपना कार्यक्रम कृषि जगत। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम।

हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम, और इस कार्यक्रम का पहला गीत है फिल्म अतरंगी रे से। आवाजें हैं अरिजीत सिंह और शशा तिरुपति की, गीतकार हैं इरशाद कामिल और संगीत है

0: क्षमा कीजिएगा, हम आपको
1: भैया।

फिल्म संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे फिल्म अजब प्रेम की गजब कहानी से ये गीत अवस्थी, आतिफ असलम की, गीतकार थे इरशाद कामिल और संगीत था प्रीतम का। फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में अगला गीत है फिल्म आजा नचले से। आवाज है राहत फतेह अली खां की, गीतकार हैं जयदीप साहनी।

0: अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं।
1: फिर एक बार विविध भारती वाराणसी अब नए अंदाज में FM 100.6 पर सुबह 10 से 11 और शाम 5 से 7 बजे तक स्थानीय कार्यक्रमों के साथ, यानी काशी कनेक्ट, बनारस बीट्स, बनारस डायरी और वाराणसी वाइब्स, साथ ही और भी बहुत कुछ जिसमें शामिल होती है आपकी बातें। और साथ ही सुनते रहिए आकाशवाणी वाराणसी, मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज़, DTH, DRM, न्यूज ऑन AIR ऐप और वेव्स OTT पर। कहीं भी कभी भी आकाशवाणी वाराणसी, जहां है आप वही हमारा साथ। जी हाँ श्रोताओ, आपके मन का रेडियो आकाशवाणी वाराणसी अब आपके और भी नजदीक, आपके मोबाइल सेट पर। जी हाँ, आकाशवाणी वाराणसी अब न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी। तो जहाँ भी हो आप, अब हर पल आपके साथ आकाशवाणी वाराणसी न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी। आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और जुड़े रहें अपने पसंदीदा रेडियो चैनल आकाशवाणी वाराणसी के साथ न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी। और हर पल हर घड़ी बजने दें अपने मन का रेडियो आकाशवाणी वाराणसी। फिर एक बार विविध भारती वाराणसी अब नए अंदाज में FM 100.6 पर सुबह 10 से 11 और शाम 5 से 7 बजे तक स्थानीय कार्यक्रमों के साथ, यानी काशी कनेक्ट, बनारस बीट्स, बनारस डायरी और वाराणसी वाइब्स, साथ ही और भी बहुत कुछ जिसमें शामिल होती हैं आपकी बातें। साथ ही सुनते रहिए आकाशवाणी वाराणसी, मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज़, DTH, DRM, न्यूज ऑन AIR ऐप और वेब्स OTT पर। कहीं भी कभी भी आकाशवाणी वाराणसी, जहां है आप वही हमारा साथ।
2: सुन जा आ ठंडी हवा, आ ठंडी
0: हवा। मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में आप प्रादेशिक समाचार सुनेंगे, जिसे हमारे लखनऊ केंद्र से रिले किया जाएगा। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: प्लेटो का कथन है, बुद्धिमान लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनके पास कहने के लिए कुछ होता है, और मूर्ख व्यक्ति इसलिए बोलते हैं क्योंकि उन्हें कुछ भी बोलना होता है।
1: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा से देश की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को किया रवाना। जालंधर से प्रदेश के 7 रेलवे स्टेशनों सहित 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का किया उद्घाटन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिजनौर में 1000 करोड़ रुपए से अधिक लागत की विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। शामली को दी 581 करोड़ रुपए की 89 परियोजनाओं की सौगात। भारत और यूनाइटेड किंगडम व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के तहत लखनऊ से यूके के लिए आज भेजी गई 64 आमों की पहली खेप। और प्रदेश में उमस से लोगों को कल से मिलेगी राहत। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों के लिए जारी की भारी बारिश की चेतावनी। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं तनवीर फातिमा, और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन से सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को रवाना किया। इस रेलगाड़ी का शुभारंभ रेलवे क्षेत्र में स्वच्छ और टिकाऊ परिवहन को अपनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 12 वर्ष में भारतीय रेलवे में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। श्री मोदी ने कहा कि देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का शुभारंभ भारतीय रेल के इतिहास में बड़ा कदम है।
2: आज भारतीय रेल ने भी 21वीं सदी की इस टेक्नोलॉजी में एक बड़ा स्टेप लिया है। आज जिंद से सोनीपत के बीच हाइड्रोजन ट्रेन चली है। अब ये सफर 90 किलोमीटर का है। हम इस पर रिसर्च करते रहेंगे, लागत कम कैसे हो इसका तरीका ढूंढते रहेंगे, एफिशिएंसी कैसे बढ़े इस पर काम करते रहेंगे, और बड़ी जांच पड़ताल करते करते एक के बाद एक कदम उठाते जाएंगे।
1: इसके बाद प्रधानमंत्री ने पंजाब के जालंधर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत 1570 करोड़ रुपए की लागत से प्रदेश के 7 रेलवे स्टेशनों समेत 20 राज्यों में पुनर्विकसित 75 रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन किया। इनमें लखनऊ के ऐशबाग जंक्शन सहित पनकीधाम, विंध्याचल, फतेहपुर, शामली, मोदीनगर और धामपुर रेलवे स्टेशन शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने अमृतसर वाराणसी रेल सेवा को भी हरी झंडी दिखाई। इस सेवा से भारत के 2 सबसे प्रतिष्ठित आध्यात्मिक और सांस्कृतिक केंद्रों के बीच सीधा रेल संपर्क स्थापित होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहली हाइड्रोजन ट्रेन के शुभारंभ पर प्रधानमंत्री का आभार जताया। एक सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से उन्होंने कहा कि ये पहल प्रधानमंत्री के ग्रीन ग्रोथ के संकल्प को नई गति देने के साथ ही विकसित भारत की यात्रा में मील का पत्थर सिद्ध होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज बिजनौर में 1003 करोड़ रुपए की लागत वाली विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अब बिजनौर की बेटियों को नर्सिंग की पढ़ाई के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा, उन्हें 100% रोजगार के

0: अफसर स्थानीय स्तर पर ही मिलेंगे। उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार बिना किसी भेदभाव के सभी वर्गों के लिए काम कर रही है।
1: आपने डबल इंजन सरकार के कार्य को पिछले 10 वर्ष के अंदर देखा है, आपने देखा होगा पहली बार हो रहा है। विकास और समृद्धि का लाभ कैसे मिलता है, ये डबल इंजन की भाजपा की सरकार ने आने के तत्काल बाद सबसे पहले काम किया था। अन्नदाता किसानों की कर्ज माफी का कार्यक्रम, कृषक दुर्घटना बीमा योजना, भेदभाव कोई नहीं, हर गरीब को फ्री में राशन की सुविधा।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज शामली के कैराना में 581 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 89 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने शामली और कैराना के बदलाव को रेखांकित करते हुए कहा कि डबल इंजन सरकार के सुरक्षा मॉडल, एक्सप्रेसवे की रफ्तार और गन्ने की मिठास से यह क्षेत्र देश दुनिया में चमक रहा है। श्री योगी ने कहा कि प्रदेश का पहला एकीकृत निजी टेक्सटाइल्स पार्क शामली में बनने जा रहा है, जिससे 8,000 युवाओं को रोजगार प्राप्त होगा।
1: यहाँ पे प्रदेश का पहला एकीकृत निजी टेक्सटाइल पार्क यहीं पे बनने जा रहा है और बहनों भाइयों 8,000 नौजवानों को उसमें सीधे सीधे नौकरी और रोजगार प्राप्त होगा। कि ये कार्य इसलिए संभव हो पा रहा है क्योंकि आपका समर्थन हमारी सबसे बड़ी आज की ताकत है।
0: मुख्यमंत्री ने गाजियाबाद में 868 करोड़ रुपए की लागत की 90 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। अयोध्या के श्रीराम जन्मभूमि मंदिर चढ़ावा मामले में पुलिस को आरोपी राम शंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव और मनीष यादव की 39 घंटे की कस्टडी रिमांड मिली है। कल पुलिस लाइन में दोनों का मेडिकल चेकअप होगा, इसके बाद एसओजी कार्यालय में पुलिस इनसे पूछताछ करेगी। भारत और यूनाइटेड किंगडम व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के तहत उत्तर प्रदेश से यूनाइटेड किंगडम के लिए ताजा चौसा आमों की पहली निर्यात खेप को आज लखनऊ से रवाना किया गया। प्रदेश के उद्यान और कृषि निर्यात राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने एक फ्लैग ऑफ समारोह में इस खेप को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस खेप में 1200 किलोग्राम चौसा आमों को यूनाइटेड किंगडम भेजा गया है। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रदेश के किसानों की पहुंच अब विदेशी बाजार तक हो गई है।
2: योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तरोत्तर राज्य की उपज को दुनिया की बाजारों तक पहुंचा करके किसानों का मूल्य संवर्धन किया जा रहा है और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि राज्य के किसानों की आमदनी दोगुनी की जाए। इस दृष्टि से भी उत्तरोत्तर हमारे उद्यान विभाग के द्वारा आम के साथ साथ अनेक फसलों को दुनिया की बाजारों तक पहुँचाया जा रहा है।
0: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने मेरा युवा भारत के माध्यम से आज लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में माई भारत राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवक सम्मेलन का आयोजन किया। केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया इस कार्यक्रम में शामिल हुए। इस सम्मेलन में उत्तर प्रदेश के लगभग 1500 से अधिक माई भारत युवा स्वयंसेवकों ने हिस्सा लिया। सभा को संबोधित करते हुए डॉ. मनसुख मांडविया ने युवाओं से कर्तव्य भाव, सेवा और राष्ट्र सर्वोपरि की भावना से प्रेरित होकर 2047 तक विकसित भारत के निर्माता बनने का आह्वान किया। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की अध्यक्षता में आज उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज का 21वां दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया। दीक्षांत समारोह में मेधावी विद्यार्थियों को 26 पदक प्रदान किए गए। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि बेटियां नए भारत में नारी शक्ति का प्रतीक बन रही हैं।
3: यह सुखद है कि हमारी बेटियां निरंतर उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रही हैं। यह नए भारत की नई तस्वीर, जहां नारी शक्ति भागीदार नहीं बल्कि नेतृत्व का प्रतीक बन रही। मैं सभी पदक विजेताओं, उपाधि प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों के अभिभावकों और उनके टीचर्स को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ।
0: आगामी श्रावण मास में कांवड़ यात्रा को सुरक्षित और सुगम बनाने के लिए प्रदेश के कई जिलों में प्रशासन व्यापक तैयारियां कर रहा है। इसी क्रम में सुल्तानपुर की पुलिस अधीक्षक चारू निगम ने बताया कि कांवड़ मार्गों पर शुद्ध पेयजल, सुचारू यातायात और ढाबों पर स्वच्छता के साथ प्रमुख शिवालयों और घाटों पर कड़े सुरक्षा इंतजाम किए जा रहे हैं।
4: जो तैयारियां उनको हमने 3 से 4 भागों

0: बांट रखा है, जैसे रूट्स की तैयारियां, घाट पे क्या तैयारियां रहेंगी, और जो हमारे मुख्य शिवालय है, शिव मंदिर है, उन सब में किस तरह की व्यवस्था रहेगी, और सोशल मीडिया मॉनिटरिंग इत्यादि में हमें क्या व्यवस्थाएं करनी है, जो सर्वे है उसको करके वर्तमान में अभी सभी थाना क्षेत्रों को, सभी सीओज को अपने अपने एसडीएम के साथ इसमें मीटिंग करने के लिए निर्देशित किया गया है।
1: उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने आज लखनऊ में इंडियन पैरा जूडो अकादमी द्वारा आयोजित जूडो महाकुंभ स्टेट चैंपियनशिप 2026 का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने व्यायाम और खेल के महत्व पर प्रकाश डाला। इस राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में प्रदेश के विभिन्न जिलों से लगभग 1100 जूडो खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। प्रदेश में कल से मॉनसून के और सक्रिय होने का अनुमान है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 4 दिनों में राज्य के अधिकांश हिस्सों में भारी बारिश की संभावना है। इससे अधिकतम तापमान में गिरावट के साथ लोगों को उमस से राहत मिलेगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा से देश की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को किया रवाना। जालंधर से प्रदेश के 7 रेलवे स्टेशनों सहित 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का किया उद्घाटन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिजनौर में 1,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत की विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। शामली को दी 581 करोड़ रुपए की 89 परियोजनाओं की सौगात। भारत और यूनाइटेड किंगडम व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के तहत लखनऊ से यूके के लिए आज भेजी गई 64 आमों की पहली खेप। और प्रदेश में उमस से लोगों को कल से मिलेगी राहत। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों के लिए जारी की भारी बारिश की चेतावनी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: जीवन कठिन प्रतीत हो सकता है, लेकिन आपके करने योग्य हमेशा कुछ न कुछ होता है जिसे करके आप सफल हो सकते हैं। ये विचार है स्टीफन हॉकिंग के।
1: मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
2: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ,
3: ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ। इसके अंतर्गत आज सुनिए तालाबों के संरक्षण और विकास के लिए प्रयासरत पॉन्डमैन के नाम से प्रसिद्ध रामवीर तंवर के साथ विशेष बातचीत। इस संवाद का संचालन कर रही है नीति शुक्ला।
4: जल ही जीवन है, ये कहावत तो हम सब बचपन से सुनते आ रहे हैं, लेकिन इसे सही मायने में समझकर और इसके लिए काफी अच्छा काम किया है आज की हमारी इस शख्सियत ने, जिनसे कि हम आपको मिलवाने वाले हैं। मैं हूँ आरजे नीति और हमारे आज के जो गेस्ट हैं, इन्हें पॉन्डमैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने तालाब के संरक्षण के लिए, उन्हें पुनर्जीवित करने के लिए काफी अच्छा काम किया है। और यहाँ तक कि इनका जिक्र मन की बात प्रोग्राम में हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी किया है। तो आइए स्वागत करते हैं रामवीर तंवर जी। बहुत बहुत स्वागत है।
5: बहुत बहुत धन्यवाद
4: रामवीर जी। आपको पॉन्डमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, लेकिन कब इसकी आपने शुरुआत की? क्या आपने सोचा कि अब तालाबों का संरक्षण करना है, इन्हें पुनर्जीवित करना है?
5: देखिए, ये अचानक से ऐसी कोई घटना नहीं है जिसकी वजह से मैंने काम किया हो। इस तरह की घटनाएं किताबों में अच्छी लगती है, लेकिन ये है, मेरा मानना है कि वो धीरे धीरे धीरे धीरे ना कोई भी इनिशिएटिव आपको अपनी ओर खींच लाता है, और उसके लिए जिम्मेदार होती है कई बार आपकी चाइल्डहुड यादें, बचपन में आपने जो देखा है और जवानी में आप जो नहीं देख पा रहे। मैं 10th क्लास तक अपने गांव में भैंसों को चराने जाता था जंगल में, और मैंने अपना पूरा होमवर्क किसी तालाब के या नहर के किनारे किया। मुझे याद है मेरे गांव से और जंगल जाते समय पे एक नहर पड़ती है बहुत छोटी सी, और हमें वो नहर क्रॉस करनी होती थी, अदरवाइज तो 2-3 किलोमीटर घूम के आना पड़ता था। जब हम जाते थे, मैं 3री-4थी क्लास में जब था तो तैरना नहीं आता था, बहुत छोटा बच्चा था, तो हम भैंस की पूंछ पकड़ के क्रॉस करता था मैं, और कई बार भैंस जो है वो 20 नहर में जाके लेट जाते थे, तो हमें भी लेटना पड़ता था उसके साथ, तो उस वजह से तैरना सीखा। लेकिन आई एम सो सैड टू टेल यू कि वो नहर अब एक नाला है, और वो ऑफिशियली नाला है। वहां पे सिर्फ अभी पूरे शहर का इंडस्ट्रियल वेस्ट और म्युनिसिपल वेस्ट वहां से बहके जाता है। आप वहां किनारे 5 मिनट खड़े नहीं हो सकते, जबकि उस नहर का पानी कई बार हमारे मुंह में चला जाता था, पेट में चला जाता था। मुझे कभी याद नहीं है कि हम बीमार हुए हों।

0: वही नहर, मैं कई बार जब वहां से गुजरता हूँ तो आज अपने रुमाल को नाक पे रख के गुजरता हूँ। दुख होता है जब मैं 11वीं क्लास में गांव से बाहर 20 किलोमीटर दूर पढ़ने के लिए जाता था बस में। डेली मुझे 25-30 किलोमीटर जाना था, 25-30 किलोमीटर आना था। तो वहां जब मैं रास्ते में ये देखता था कि जो भी रोड के किनारे के तालाब है वो धीरे धीरे धीरे धीरे लैंडफिल साइट बनते जा रहे हैं, क्योंकि आदत होती है कि जब भी हम जाते हैं हाथ में जो भी कचरा होता है वो सबसे पहला निशाना हमारी बनती है कोई नाली, नाली नहीं मिले तो नाला, नाला ना मिले तो नहर, नहर नहीं मिली तो तालाब। तो आज भी आप गांव में देखिए तालाब सबसे इजी टारगेट है कचरा फेंकने के लिए। तो जब मैं बाहर निकला गांव से और मैंने देखा कि ये मेरे गांव की समस्या नहीं है, ये तो सब जगह सेम इश्यू होता जा रहा है। जब मैं अपना ग्रेजुएशन में था, कॉलेज डेज में था, तो पॉकेट मनी के लिए मैंने ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। मेरे पास दो स्टूडेंट थे और दोनों भाई थे। उसके पिताजी ने कहा पूरे दिन इधर उधर कंचा खेलते हैं, सारे दिन उधर जाते हैं, तो तुम अगर इनको पास करवा दो 33% तो मैं तुम्हें जो है इनाम दूंगा। मैंने उनको पढ़ाया और उनके 70% आ गए। तो उन्होंने इतना प्रचार किया कि मेरे पास 40-50 बच्चे आ गए। वो ऐसे प्रचार करते थे किसी का बच्चा पास नहीं हो रहा हो तो रामवीर के पास भेजते पास हो जाता क्योंकि मुझे मैथ फिजिक्स से बहुत प्यार था। तो मेरे पास इतने सारे बच्चे हुए। वीकेंड पे हमने एक्टिविटी करना शुरू किया। एक्टिविटी क्या थी कि गांव में नए नए समर सर्विल लगे थे पंप, सबके घर में समर सर्विल पंप है। एक गिलास पानी की जरूरत है तो वो 1000 लीटर पानी निकालेंगे। छोटे बच्चे को नहाना है तो उसको बाल्टी नहीं लाएंगे, उसके लिए बस समर सर्विल का स्विच ऑन कर देंगे, जाओ बेटा नहा लो। अब 10000 लीटर पानी में बच्चा नहा रहा है। सोचिए जो 5 लीटर बच्चा नहा सकता था वो 10000 लीटर में नहा रहा है। और वो ड्रिंकिंग वाटर, उसकी कॉस्ट जोड़ेंगे 20 रूपए के हिसाब से तो लाखों रूपये में बैठ रही है वो। पूरे परिवार की इनकम 10000 रूपए महीना है और पानी बहा रहे हैं 5 लाख रूपये का। तो हमने डिसाइड किया खेल खेल में कि जो भी हमारे गाँव में सबसे ज्यादा पानी बर्बाद करता है उसके घर के सामने हम जल ही जीवन लिख के आएंगे चुपचाप। वो हमारी एक्टिविटी थी और वो हम वीकेंड में करने वाले थे। जब वो एक महीना किया, दो महीना किया, बहुत सारी गालियां भी खाई, कई पेरेंट्स ने अपने बच्चे हटा लिए। हमने सोचा था अच्छा पढ़ाते हो तुम, तो इनको ऐब करना सिखा रहे हो लड़ाई करना सिखा रहे हो लोगों के साथ। तो कुछ बच्चे हट गए, कुछ हो रहा है, लेकिन कुछ ने बहुत अप्रिशिएट भी किया। नेक्स्ट फेज में हमने क्या किया कि एक जगह हम बैठ के मीटिंग करने लगे। गाँव की जो चौपाल बनी हुई है, चौपाल पे किया, हमने उसका नाम रखा जल चौपाल और हमने उस ग्रुप का नाम दिया था जागरूक युवा समूह। जब हमने मीटिंग किया और सब कुछ हुआ तो कुछ लोगों ने अप्रिशिएट किया, कुछ लोग आए। एक बार क्या हुआ, किसी ने फोटो क्लिक करके डीएम में लगाया, अखबार में आया, अखबार से डीएम साहब के पास गया। डीएम साहब ने कॉल किया उन भैयाओं के पास कि उन बच्चों को बुला के लाओ। हमको बुलाया, उन्होंने अप्रिशिएट किया और कहा कि अगली बार मैं आऊंगा। वो अगली बार आए तो हम तो 20 लोग थे, वो आए तो 500 लोग इकट्ठा हो गए। देन आई रियलाइज कि ये जो हम कर रहे थे ये कोई छोटी चीज नहीं है। जिस काम के लिए खुद डीएम साहब, कलेक्टर साहब आपके गाँव में आ सकते हैं, जिन्होंने अभी तक गाँव देखा ही नहीं हमारा और उनको पता चला, देन आई रियलाइज कि वी आर डूइंग समथिंग बिग। और वहां से ये फिर मैंने कॉलेज किया, 2 साल जॉब के साथ भी मैंने यही किया, अवेयरनेस कैंपेन चलाया, लेकिन अवेयरनेस कैंपेन थोड़ा बड़ा हो गया टाइम के साथ। और फिर मैंने सोचा कि जॉब छोड़ के फुल टाइम अभी मैं ये करूँ। वहां से निकल के धीरे धीरे यहाँ तक पॉन्डमैन की जर्नी शुरू हुई।
1: तो पॉन्डमैन की जर्नी इतनी आसान तो नहीं रही होगी, कुछ चैलेंजेस भी आए होंगे, तो किस तरह की मुश्किलें सामने आई?
0: शुरुआती दौर में क्या था, आपके पास पैसा नहीं था, रिसोर्सेज नहीं थे, आपके पास टीम नहीं थी, आपके पास नॉलेज नहीं थी, आपके पास रिसोर्सेज नहीं थे, आपके पास कोई रेफरेंस नहीं था जिसको आप ये बोल सके कि मैंने वो काम किया है जी, आपको लोग क्यों ट्रस्ट करेंगे। इंडिया में क्या है, वाटर इज ए स्टेट सब्जेक्ट। कोई भी वाटर बॉडी है, तालाब है, पोखर है, कुआं है, कुछ प्राइवेट हो सकते हैं लेकिन ज्यादातर स्टेट गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है। आप उसको बिना परमिशन के गंदा तो कर सकते हैं लेकिन बिना परमिशन के साफ नहीं कर सकते। साफ करना है तो आपको एनओसी लानी पड़ेगी। तो एनओसी के लिए हम चक्कर काटते थे। हमसे यार पूछता था एनओसी तब देंगे, पहले बताओ एक्सपीरियंस क्या है तुम्हारा। अब एक्सपीरियंस हो तो बताए, हमने तो जीरो एक्सपीरियंस, हमने कभी तालाब ही साफ नहीं किया। गांव वालों से बात करें वो कहते थे कि यार तुमने कभी किया ही नहीं कुछ, तो ये कैसे करोगे। तो हमारे पास रेफरेंस पॉइंट नहीं था जिसको हम उदाहरण के तौर पर बता सके कि हमने वहां पे किया उसको देखिए। दूसरा, आप तालाब साफ करेंगे आप मैनुअली कितना कर लेंगे, 5 किलो कचरा हटा लेंगे, 100 किलो हटा लेंगे, लेकिन बड़ा अगर आपको इम्पैक्ट करना है तो मशीन चाहिए, आपको डीजल चाहिए, पेट्रोल चाहिए, मैन पावर चाहिए, टूल्स चाहिए, उसके लिए हमारे पास फंड नहीं था। हमने क्या किया कि जितना हमारे बस की है उससे करते हैं। तो जो भी सोशल मीडिया से, कॉलेज से जितने लोग जुड़े थे अपने साथ, उन सबको हमने साथ जोड़ा और क्लीन अप ड्राइव शुरू किया। मुझे याद है जब हम पहले दिन क्लीन अप ड्राइव किया था तो हमें लगा था बहुत सारे लोग आएंगे लेकिन मैं और मेरा दोस्त दो ही रह गए कोई नहीं आया। हम दो ही लोग हो गए क्योंकि बारिश हो रही थी उस दिन, है ना। हम दोनों को तो जुनून था, सबको थोड़ी ना। हम गए वहां पे, हमने फावड़ा शुरू किया। अब बहुत सारे लोगों के साथ तो आपके अंदर हिम्मत होती, लेकिन हम तो दो ही लोग थे। और जब वहां पे हम तालाब साफ कर रहे थे, कोई भी हमसे निकल रहा था, क्यों कर रहे हो, कहां से हो, तो हमारे पास इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि हम जवाब दे सके।

0: कि हम ये कुछ करना चाहते हैं। कोई भी आता था, हाँ भाई कौन हो, क्यों साफ कर रहे हो, तो हम ये कहते थे जी नगर पालिका से है। अच्छा अच्छा वो उधर भी करके जाना। मैंने कहा हाँ जी बाबू जी करके जाएंगे।
1: अच्छा, तो रामवीर जी मैं ये पूछना चाहूंगी कि बात तो सही है कि आपको सफाई का किसी तरह का एक्सपीरियंस नहीं था, क्योंकि जो कचरा होता है वो किसी भी तरह का कचरा हो सकता है, जरूरी नहीं कि सिर्फ वो कपड़ा और पॉलिथिन बैग्स हो, उसमें मेडिकल वेस्ट भी हो सकता है, तरह तरह के केमिकल्स हो सकते हैं, कांच हो सकता है। तो किस तरह के प्रिकॉशंस आप लेते हैं और किस तरह की प्रॉब्लम्स आपको सामने आई?
0: देखिए हम शुरुआत में कोई एक्सपर्ट तो थे नहीं कि हम बता सके मेडिकल वेस्ट है, ये ऑर्गेनिक वेस्ट है, ये प्लास्टिक वेस्ट है, तो हमारे लिए तो सब एक प्लास्टिक में बंद कचरा है। हम तो सबको ऐसे ही उठा के फेंक देते। तालाब क्या है, वो सिंक होल है। आपके घर में कुछ भी निकलेगा ना, आपके रजाई, गद्दे, जूते, चप्पल, कांच, जो भी है बस उसमें डाल दो जाके, चाहे वो नाला मिल जाए उसमें डाल दो, तालाब मिल जाए उसमें डाल दो। जब हम तालाब को रिस्टोर करते हैं, और कई बार हम जब डीवॉटरिंग करके उसको खाली करते हैं पूरे तालाब को, ताकि नीचे से खुदाई कर सके वापस से, आप यकीन मानिए कई बार 1 से 1.5 मीटर की एक लेयर मिलती है, पूरी कचरे की लेयर मिलती है। मान लो यही बोतल है, आप इसको फेंकिए तालाब में, अब दो चांस हो सकते हैं, या तो ये इसमें ढक्कन लगा हुआ है और हवा भरी हुई है तो ऊपर तैरेगा, या इसका ढक्कन खुला हुआ है तो पानी भरेगा जाके नीचे बैठ जाएगा। तो जब हमने तालाब को खाली किया तो 1 से 1.5 मीटर की हमें लेयर मिली, और उस लेयर में सिर्फ बोतल नहीं है, उसमें सब कुछ है, उसमें जूते हैं, उसमें चप्पल है, उसमें कांच है, घर का बचा हुआ सामान है, बहुत सारी मूर्तियां हैं, तमाम सारी चीजें हैं जो सालों से वहीं पे पड़ी पड़ी सड़ रही हैं। और कई सारे तालाबों में तो ऐसा भी हमने देखा, क्योंकि जैसे जलकुंभी और सिल्ट और गाद और सिलज हो जाती है तो जानवर भी फंस के मर जाते पानी पीने के चक्कर में, लेकिन उसमें गाद इतनी सारी हो जाती है, उस कचरा डलते वहीं फंस जाते हैं। तो कई तालाबों में सहता हुआ हमने पानी निकाला तो नीचे ऐसे कंकाल के कंकाल खड़े हुए मिले, जो नीचे फंस गए थे, पानी में डूब गए थे वापस, ऐसे पड़े हुए मिले। बहुत दुख लगा उनको देख के हमें, क्योंकि गांव वाले को लगता था भैंस चोरी हो गई है, भैंस चोरी नहीं हुई थी, भैंस डूब के मर गई थी तालाब में।
1: जब आप कचरा उठाते हैं, आपकी टीम जाती है किसी लोकेशन पर, तो किस तरह से वो कलेक्शन करते हैं कि उन्हें हार्मफुल इफेक्ट से?
0: देखिए उसके लिए तो सेफ्टी टूल्स होते हैं, एक स्पेशली ग्लव्स आते हैं जो इस तरह के वेस्ट को एक तरह से उठाने के लिए काम आते हैं, वहाँ पे प्रॉपर मास्क, और हमारे पास ना एक ड्रेस होती है प्रॉपर जो पूरा पहन लेते हैं तो यहाँ तक आती है, वो बहुत मोटी होती है, प्लस उसमें पानी भी नहीं घुसता है, सेफ्टी किट होती है, तो उसी को पहन के वो तालाब में घुसते हैं। एक तो आपके कपड़े भी गंदे नहीं होते, प्लस आपको नहीं पता कि पानी में क्या केमिकल घुला हुआ है, तो वो भी आपके टच में नहीं आता है, और वो उसी तरह से फिर वो उठाते हैं। अब तो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की नगर पालिका गाड़ियों में भी अलग अलग बॉक्स बने हुए होते हैं, क्योंकि हम कचरे को निकाल तो सकते हैं लेकिन उसको अपनी मर्जी से डिस्पोज नहीं कर सकते, क्योंकि मैं क्या करूंगा, एक्स जगह से उठा के वाई जगह पे डाल दूंगा, बात तो एक ही हुई। तो इसलिए हम जब भी कोई तालाब करते हैं तो वो एक उसमें मल्टीपल पार्टी होती है, एक ट्राई पार्ट एग्रीमेंट होता है, एक होता है कॉरपोरेट या स्पॉन्सर, एक होता है हम एग्जीक्यूटिंग पार्टनर, एक होता है वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन। तो एडमिनिस्ट्रेशन का काम है जहाँ पे भी उनका निस्तारण एक प्लांट है वहाँ तक उसको लेके
1: पहुँचाए।
0: जी जी, लेकिन अभी क्या है, टाइम के साथ हमें भी नॉलेज हुई है तो उसको अच्छे से सेग्रीगेट करते हैं, और जिस तरह से उसका एक आधुनिक तरीका होना चाहिए उसको सेग्रीगेट करने का, निस्तारित करने का, उसी को उसी से निस्तारित किया जाता है। क्योंकि तालाबों में सिर्फ 2-3 तरह का ही वेस्ट है, ऑर्गेनिक वेस्ट है, इनऑर्गेनिक वेस्ट है। ऑर्गेनिक वेस्ट तो तालाब के अंदर चला जाता है, स्लज ले लेता है। इनऑर्गेनिक वेस्ट जूते, चप्पल, प्लास्टिक, ये सारे हमने क्या है, कुछ स्टार्टअप्स के साथ कोलैबोरेट किया हुआ है, वो प्लास्टिक उनको देते हैं, उस प्लास्टिक से हमें वो बेंच, ट्री गार्ड, मेज, उसको मोल्ड करके वापस से पिंगला के वो हमें देते हैं, और उसी बेंच को हम तालाब किनारे रख देते हैं वापस।
1: अच्छा।
0: ताकि उसी बेंच पे बैठ के लोग शाम को फिर तालाब को निहारे।
1: तो पूरा आपने एक ये सिस्टम क्रिएट कर दिया है, तो ऑटोमेटिकली वो अच्छे तरह से वो जो कचरा है वो जा रहा है, और स्टार्टअप उसे किसी अच्छे फॉर्म में लेकर वापस कर रहे हैं। तो जब आप तालाबों को पुनर्जीवन देने की कोशिश करते हैं, उनकी सफाई करते हैं, तो लोकल्स का किस तरह से सपोर्ट मिलता है या विरोध करते हैं, क्या रिएक्शन?
0: देखो लोकल दोनों तरह के ही है। जिन लोगों ने तालाब के किनारे घर बनाया हुआ है उनका हमेशा सपना रहता है कि अगले साल 100 गज और कब जाएंगे, उससे अगले साल 100 गज और एंक्रोचमेंट करेंगे। उनका जिनके ऊपर सबसे ज्यादा जिम्मेदारी है ना तालाब को बचाने की, वो सबसे ज्यादा तालाब को कब्जाने की फिराक में रहते हैं, और ये 90% सक्सेस रेट है मेरी इस बात का। आप कहीं भी जाके देखिए तालाबों को उन लोगों ने कब्जाया हुआ है जो तालाब के किनारे पे रहते हैं, क्योंकि वो उस जगह को अपनी मानने लगते हैं। उनका डायरेक्टली कोई फायदा नहीं हो रहा है तालाब से, इनडायरेक्टली तो बहुत सारे हैं भाई। पर्यावरण बच रहा है, आसपास का माहौल ठंडा होता है, ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता है, बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट मिलती है। डायरेक्टली नहीं मिल रहा है, डायरेक्टली तब मिलता था जब पानी पीते थे उस तालाब से, जब उसमें नहाते थे, जब उसमें से मटका भर के लाते थे। तो इसलिए अब उसको लैंडफिल की तरह

0: यूज करते हैं, ऐसे लोग तो हमेशा विरोध करते हैं जो उसको कब्जाना चाहते हैं, कुछ भी करके आपका काम रुकवाना चाहते हैं। दूसरे टाइप के लोग हैं जो थोड़े अवेयर हैं, वो सपोर्ट भी करते हैं, लेकिन ईश्वर की ऐसी कृपा है कि सपोर्ट करने वाले लोग अभी भी भारत में विरोध करने वालों से ज्यादा है, इसलिए शायद हमारा काम चल भी रहा है। दूसरा, जो अलग अलग टाइप के लोग मिलते, कुछ लोग हैं जैसे आज हमने तालाब पे काम शुरू किया, शाम तक आ जाएंगे, पहले ये बताइए पैसा कहाँ से मिला, क्यों कर रहे हो, वो सारे लोग हैं। कुछ होते हैं जो अच्छी सलाह भी देते हैं कि भाई यहाँ पे ये पेड़ लगाइएगा, क्योंकि मुझे लगता है हम लोगों को इसलिए उसमें पार्टिसिपेट कराते हैं, इसलिए हम जन भागीदारी करते हैं उसमें, क्योंकि मुझे लगता है कि तालाब एक दिन में तो मरा नहीं होगा, तालाब को मरने में 30-40-50 साल लगे हैं, और तालाब को मरते हुए उन्हीं लोगों ने देखा है जो उस गांव में रहते हैं, इसलिए उस तालाब के बारे में सबसे ज्यादा, चाहे उसकी हिस्ट्री हो चाहे मरने की कहानी हो, उन्हीं लोगों को पता है जो वहां पे रह रहे, इसलिए हम उसको पार्ट बनाते और हम बताते हैं कि आपको ही रेस्टोर करना है, हम तो सिर्फ आपको सपोर्ट करने आए हैं। तो दोनों तरह के लोग मिलते हैं, बहुत सपोर्ट भी करते हैं, बहुत विरोध भी करते हैं।
1: तो जैसे आपने एक बार किसी तालाब की सफाई कर दी, उसको पुनर्जीवन मिल गया, तो बाद में उसकी कौन देखभाल करता है?
0: अब मान लो अगर हम घर बना रहे हैं, या मेरा खुद का खेत है, या मेरा खुद का प्लॉट है, हमेशा वही देखभाल करेगा जिससे उसकी इनकम जुड़ी हुई है, या जो ऑनर है उस जगह का। तालाबों के साथ इश्यू क्या है, तालाबों का कोई ऑनर नहीं है, इसीलिए हम क्या करते हैं, जब तालाबों को रेस्टोर करते हैं तो हम पूरी कोशिश करते हैं कि तालाबों को सेल्फ सस्टेनेबल बनाए। सेल्फ सस्टेनेबल बनाए मतलब तालाब अपने मेंटेनेंस का खर्चा खुद निकाले, तालाब अपने लिए इनकम करे। सिंगाड़ा कहाँ से आता है? तालाबों से। लोटस कहाँ से आता है? तालाबों से। मछली कहाँ से आती है? तालाबों से। और आजकल ये बिहार में तो मखाना देखिए, तालाबों से। बहुत सारी चीजें हैं जो तालाबों से आती है। और अब दिल्ली में, गुड़गांव में तो तालाब इको टूरिज्म के लिए, आप तालाब के किनारे रेस्टोरेंट खोलिए और एक दूसरी जगह खोलिए, तालाब किनारे वाले के इनकम ज्यादा होगी। तो तालाब अपने लिए इनकम करना सीख तो तालाबों की इज्जत भी बढ़ेगी, और इज्जत बढ़ेगी मतलब तालाब के किनारे वाले जो रेस्टोरेंट है या कोई भी चीज है वो आपको मेंटेन करेंगे। तो इसलिए हम तालाबों को इस तरह से एक्वा कल्चर, इको टूरिज्म या किसी न किसी एक्टिविटी से जोड़ने की कोशिश करते हैं, ताकि उसका अगर कोई 5 लाख रुपए साल का कमा रहे हैं तो वो 50,000 रुपए तालाब के मेंटेनेंस पे खर्च करें। अदरवाइज तो फिर हम अपने ऊपर ले लीजिए, भाई अगर हम ये उम्मीद करके चलें कि मैंने तालाब को रिस्टोर कर दिया और अब जनता इसको खुद ही मेंटेन कर लेगी, तो हम भी जनता है। हम महीने में कितनी बार जाते हैं आसपास के तालाबों को मेंटेन करने के लिए? मैं कितनी बार जाता हूँ, आप कितनी बार जाते हैं, आप और जो इस तरह की बातें करते हैं वो कितनी बार जाते हैं? तो तालाबों को हमेशा वही मेंटेन करते हैं जिनको डायरेक्टली इनडायरेक्टली उससे कुछ फायदा।
1: तो जैसे आपने किसी तालाब को रिवाइव किया और कुछ समय बाद, कुछ महीनों बाद आप पलट कर जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर पक्षी आने लगे, जीव जंतु आने लगे, एक जनजीवन वहाँ पे पनप रहा है, तो देखकर कैसा फील होता है, क्या इमोशंस होते हैं?
0: बहुत अच्छा लगता है।
1: कोई एक्सपीरियंस भी हो तो बताइए।
0: हम क्या है, हमारे एक USP है तालाब रेस्टोर करने का। हम जब भी कोई तालाब बनाते हैं तो उसके बीच में नेस्टिंग आईलैंड बनाते हैं।
1: अच्छा।
0: बीच में छोटे छोटे टापू बनाते हैं, उस टापू पे वहीं की लोकल नेटिव घास भी लगाते हैं। उसका हमारा जो पर्पज है नेस्टिंग आईलैंड बनाने का, वो ये है क्योंकि हमें लगता है कि देखो पिछले 50-100 साल में टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा आई है। आजकल तो जो घरों में फिल्टर है वो भी AI वाले आ रहे हैं, लेकिन ये सारी टेक्नोलॉजी आई किसके लिए है? इंसान ने बनाई है, इंसान के लिए आई है। आज से 100 साल पहले एक तालाब जिसमें इंसान भी उतना ही डिपेंड था उस तालाब पे और एक पक्षी भी उतना ही डिपेंड था। इंसान के पास तो पानी आ गया, पाइपलाइन से आ गया, RO से आ गया, रिमोट से आ गया, लेकिन उसके लिए तो आज भी उतना ही रिलेवेंट है वो तालाब। तो जैसे ही मेरी पूर्ति हुई, जैसे ही मेरी जरूरत खत्म हुई, अब मैं तालाब को पाट दे रहा हूँ, अब मैं तालाब को मार दे रहा हूँ, अब मैं तालाब को कूड़ा घर बना दे रहा हूँ? नहीं भाई, आपके लिए ही तो टेक्नोलॉजी आई है, उनके लिए थोड़ी ना आई है। वो तो आज भी तालाबों पर उतने डिपेंड है। दूसरा, अभी पॉपुलेशन उतनी है, ट्रैफिक साउंड उतना है, तो आप उम्मीद छोड़ दीजिए, क्योंकि अब डेवलपमेंट क्या है, बिल्कुल या तो तालाब जो है वो शहर के बीच में आ गए या रोड किनारे आ गया, पक्षी तालाब किनारे पे तो बैठ नहीं सकता। तो हम क्या करते हैं, तालाब के बीच में एक आईलैंड बनाते हैं मिट्टी का, उस पर बैठने की व्यवस्था करते हैं
1: पक्षियों के।
0: बिल्कुल, आप और मैंने अभी तक 100 से ज्यादा आईलैंड बनाए। आप इस साल बनाइए आईलैंड और अगले साल देखिए, कम से कम आपको 100 बर्ड्स मिलेंगे, एक्वेटिक बर्ड्स मिलेंगे, बहुत सुंदर सुंदर बत्तखें मिलेंगे, क्योंकि बीच में फिर आप वो ना घोंसला रख सकती है, बीच में वो अपना नेस्ट बना सकती है, बीच में अपने बच्चों को पाल सकते, अपने बच्चों को ट्रेन कर सकती है। मैं अभी एक महीने पहले गया था एक तालाब पर, ग्रेटर नोएडा में हमने वो डेवलप किया था दुजाना गांव में। मैंने बीच में देखा तो मिट्टी के ना बहुत सारे छोटे छोटे होल थे नेस्टिंग आइलैंड के ऊपर, वहां बत्तखों ने अपने बच्चे छिपाए हुए थे, और पूरा तालाब एक एकदम बत्तखों से भरा हुआ है। आप सोचिए अगर वो बीच में नहीं होता, किनारे पे तो कोई नहीं रखेगा, रखेंगे भी तो कुत्ते बिल्ली खा जाएंगे, कोई बच्चा उठा लेगा। तो जब भी मैं एक ऐसे तालाब पे जाता हूँ जो मैंने 2 साल पहले रेस्टोर किया था और आज पूरा पक्षियों से भरा हुआ है, बत्तखों से भरा हुआ है, जलीय जीव

0: उसे भरा हुआ है, उसको देख के जो तसल्ली मिलती है दिल को, बुरा नहीं लगता कि मैंने जॉब छोड़ दी।
1: अब मैं इसी पे आ रही थी कि इतना मुश्किल रहा होगा कि जॉब छोड़ के आप फुल टाइम इस काम में लग रहे थे, अपने डिसीजन से ज्यादा मुश्किल रहा होगा घर वालों कन्विंस करना, उन्हें समझाना, क्योंकि आप अच्छी पढ़ाई लिखाई कर चुके थे, तो उसके बाद कैसे कन्विंस किया अपने पेरेंट्स को, अपने घर वालों को?
0: क्या है, 5 भाई बहन है अभी, मैं सबसे छोटा हूँ, और मेरी मम्मी बताती है कि हम 5 नहीं, हम 10 भाई बहन थे, 10 में से 5 नहीं रहे, 5 बचे, और 5 जो भी नहीं रहे वो गरीबी के कारण नहीं रहे। 5ों में से भी मैं ऐसा हूँ जिसने 11th क्लास में पढ़ाई की, पहली बार घर का सबसे छोटा, क्योंकि मेरे बाद तो नेक्स्ट जनरेशन शुरू होने वाली थी, हमारे बच्चे आने वाले थे, तो आई वॉज द पर्सन जिसने 11वीं क्लास में एडमिशन लिया, और मैं कॉलेज गया पहली बार, और जिसने पहली बार MNC में जॉब भी की। तो मेरे घर वालों के लिए तो कितना बड़ा अचीवमेंट था कि कोई कॉलेज गया है। जब मैं कॉलेज गया था तो मैं कॉलेज में घुसने के अगले दिन ही मेरे इतने सारे रिश्ते आने वाले थे, क्योंकि रिश्तेदारियों में कोई था नहीं जो कॉलेज
1: पढ़ा लिखा और MNC में जॉब करे।
0: जबकि जो मेरे साथ के थे वो बता रहे हैं कि मेरे दादाजी वहाँ के ग्रेजुएट थे, मेरे परदादाजी वहाँ दरोगा थे, और मैं वहाँ पहली बार कॉलेज में जा रहा हूँ। वहाँ पर मुझे शर्म लग रही थी कि हम कितने पीछे हैं, लेकिन मेरे घर वालों को लग रहा था कि हम कहाँ पहुँच गए चांद पे। प्राउड फील कर रहे घर वालों को उम्मीद थी। और जब जॉब लगती है किसी की, पहली बार कोई जॉब करता है तो अलग बात होती है। तो जब मैं जॉब छोड़ रहा था तो मैं यही सोच रहा था कि जॉब छोड़ना मेरे लिए अब कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जब आपके पास खोने को कुछ है ही नहीं तो आपको डर किस बात का, जॉब ही तो अगले साल फिर लग जाएगी, यहाँ छोड़ के कहीं और लग जाएगी। बट मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि मैं जस्टिफाई कैसे करूँ। तो उन दिनों में क्या था, ये 2016 से 18 जॉब किया था, तो 18 में जब मैंने जॉब छोड़ी तो नक्सली वाला कुछ चल रहा था इधर छत्तीसगढ़ और उड़ीसा की तरफ, झारखंड की तरफ। मैं जॉब छोड़ चुका था, और मैं जॉब छोड़ने के एक महीने तक मैं घर से उसी समय निकलता था जिस समय जॉब के लिए निकलता था।
1: अच्छा।
0: और उसी समय घर पे आता था जिस समय जॉब से आता था,
1: तो क्या बताया,
0: ताकि घर वालों को रियलाइज ना हो।
1: अच्छा।
0: और मैं करता क्या था उस बीच कि कहीं पे कोई पर्यावरण का सेमिनार हो रहा है, एक दो भैया थे जो काम कर रहे थे उनके ऑफिस पे जाके बैठता था, कहीं ऐसा प्रोग्राम चल रहा है उसको जाके सुनना है, और कई बार उधर से मेट्रो में बैठ के आता था, यहाँ एक CP में बीच में गोल चक्कर है बहुत बड़ा सा, उस पे जाके बैठ जाता था, तो वो मेरा काम था। तो मैंने फिर एक दिन ऐसे ही कहा अपनी मम्मी से कि वहाँ जो है मेरा ट्रांसफर उधर हो रहा है छत्तीसगढ़। तो मम्मी ने पूछा छत्तीसगढ़ कहाँ पड़ता है, क्योंकि मम्मी तो हमारी कभी स्कूल देखी नहीं कैसा होता है स्कूल, उन्होंने छत्तीसगढ़ क्या, उन्होंने अपने नोएडा के बाहर कभी जाके नहीं देखा। तो उन्होंने कहा, मैंने कहा छत्तीसगढ़ वही जगह है जहाँ पे आजकल नक्सली और बहुत हमले हो रहे हैं जो TV में देखा था। तो उसने कहा, नहीं नहीं बेटा वहाँ नहीं जाना, तुम जॉब छोड़ दो कहीं और ढूंढ लो।
1: अच्छा।
0: तो मैंने कहा ठीक है कल छोड़ दूंगा।
1: तो पहले आपने पूरा वो भूमिका तैयार की उसके बाद,
0: क्योंकि जस्टिफाई करने में मुझे समय लगा उसको कि उनको बताऊं कैसे, है ना, मैं बोलूंगा क्या, हाल तो मेरी जॉब मेरा डिसीजन वो वाला नहीं है, बट हम गांव के लोग हैं, हमें पेरेंट्स को भी साथ लेके चलना है, को भी बुरा नहीं फील कराना है, उनकी उम्मीदें जुड़ी हुई है हमसे हमारे। लेकिन पिताजी इस काम से बिल्कुल ना खुश थे, वो मुझसे नहीं कहते थे लेकिन मेरी मम्मी को बहुत डांटते थे, तुम्हारी वजह से ये कर रहा है, तुम बोलती नहीं हो, कुछ ही है, घर का नाश हो जाएगा, ये है वो है।
1: तो ऑब्वियसली लगता है कि बेटा इंडिपेंडेंट हुआ, जॉब कर रहा है,
0: हाँ, छोड़ के गलत डायरेक्शन में जा रहा है, है ना, उनके लिए गलत डायरेक्शन थे, और कोई भी पेरेंट नहीं चाहेगा कि बच्चा इनसिक्योर फील्ड की तरफ। तो कई बार ऐसा होता था कि न्यूज पेपर में मेरा आता था, आज इंटरव्यू देकर आया हूँ तो कल आएगा ही आएगा, तो मैं गली के बाहर खड़ा हो जाता था, न्यूज पेपर वाले को रोकता था, वो पेज फाड़ लेता था और बोलता था हाँ तुम ले जाओ इस पर, तो पिताजी तक नहीं पहुंचता था। लेकिन भाई गांव में आया तो गांव वाले खुद ही आ जाते थे, आज तो तुम्हारे लड़के का।
1: तो वो बताइए मुझे घटना कि जब मन की बात में पीएम मोदी ने आपका जिक्र किया तो फिर क्या माहौल था, आपने सुना था वो?
0: नहीं, मैं तो सुन नहीं पाया था, उस दिन मैं अपने घर पे ही था और लैपटॉप में कुछ काम कर रहा था, मेरा भतीजा आया था, मैं ऊपर था फर्स्ट फ्लोर पे, वो ग्राउंड फ्लोर पे था, तो वो भगा भगा आया था कि अंकल आपका नाम TV में आ रहा है। तो मैंने तुरंत लैपटॉप साइड में रखा और मैं भगा भगा नीचे गया, और जब तक नीचे गया तो मन की बात प्रोग्राम तो चल रहा था बट मेरा वाला जो पार्ट था वो खत्म हो गया। तो मैंने उसको बोला कि तुम मजाक क्यों करते हो, अरे नहीं अंकल अभी देखा था, सच में देखा था मैंने। तो मैं वापस गया अपने कमरे में, जब लेकिन वहां जाके देखा तो मेरा मोबाइल बज रहा था।
1: अच्छा।
0: और बार बार बज रहा था, मैंने उठा के देखा तो बहुत सारे ढेरों सारे मैसेज थे, कॉल थे, मेरे जितने भी लोग मुझे जानते थे आसपास के तो सब लोग कॉल करके बधाई देना चाहते थे। तो जब मैंने एक दो मैसेज पढ़ा तो फिर मुझे अपने भतीजे की बात पे यकीन आया कि हाँ वो सही कह रहा है। वगैरह था, उसके बाद से जो लोग कुछ मजाक उड़ाते थे क्या ये ऐसा काम करते हो, ये करते हो,
1: वही लोग,
0: तो मेरे पास एक जस्टिफिकेशन और आ गया कि जब प्रधानमंत्री जी तारीफ कर सकते हैं तो आप कौन हो मजाक उड़ाने वाले।
1: और आपके पिताजी का क्या रिएक्शन था?
0: देखो गाँव में ना

0: एक बेटा और पिताजी के बीच में इस तरह के कन्वर्सेशन होते नहीं है. उनको मनी मन खुशी हुई होगी लेकिन उन्होंने कभी कहा नहीं कि बेटा आई एम सो प्राउड ऑफ यू. ऐसा सिर्फ हम टीवियों में देखते हैं कि पिताजी कहते हैं जाके.
1: तो जब इतने बड़े लेवल पे आपकी तारीफ आ गई और सब कुछ अच्छा चलने लगा तो आपने अपने पिताजी को फिर कैसे कन्विंस किया?
0: मैं तो क्या करता था कि जैसे शुरू में जब तालाबों की बात आती थी, तुम्हारे पिताजी चाहते थे कि तुम कुछ भी करो लेकिन ऐसा काम करो जिससे पैसा आए. तो मैं इसलिए पढ़ाया ताकि तुम पैसे कमा सको. तो मेरे दिमाग में एक आइडिया आया. मैं जब भी तालाबों के बारे में पूछते थे तो मैं कहते थे मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि मछली पालन में बहुत पैसा आए.
1: अच्छा,
0: इससे मछली पालन करेंगे और करोड़ों रूपये कमाऊंगा. तो वो उस बात से खुश हो जाते थे. अच्छा, मछली पालन का काम करना है? मैंने कहा हाँ जी, मैंने सुना उसमें बहुत पैसा है, एक साल ट्राई कर लेता हूँ, हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं. तो

0: ना उसमें बहुत पैसा है, एक साल ट्राई कर लेता हूँ, हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। तो मेरे पिताजी को किसी भी काम से कोई दिक्कत नहीं है जिससे पैसा है, तो इसलिए मैंने तालाबों के काम को मछली पालन से जोड़ के मैंने उनको जब बताया तो ही सेड कि ठीक है भाई, मछली पालन में मैंने भी सुना है बहुत पैसा है।
1: तो कभी फिर ट्राई किया आपने सच में मछली पालन?
0: नहीं, मेरे साथ के करते हैं ना। अच्छा। मैंने मछली पालन कराया, अगर तालाबों को सस्टेन कराना था तो किसी न किसी तरह से एक्वा कल्चर से जोड़ना है, अदरवाइज तो आज आप तालाब साफ करेंगे अगले साल फिर उतना ही भर जाएगा। आप एक साल में तालाब ही तो रेस्टोर कर सकते हैं, लोगों का माइंड सेट थोड़ी ना रेस्टोर कर सकते हैं। जो लोग कचरा फेंक रहे हैं उनको दिमाग को थोड़ा ना अंडू कर सकते हैं कि आज से कचरा फेंकना बंद, क्योंकि आदत खराब होती है धीरे धीरे, धीरे खराब होती है तो धीरे धीरे सही भी होती है। अब हमारा हाथ चलता ही नहीं है डस्टबिन की तरफ, अब तो माननीय प्रधानमंत्री ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है और ये स्वच्छ भारत मिशन चलाया, तो थोड़ा थोड़ा आदत में आ रहा है डस्टबिन की तरफ, अदरवाइज तो फेंकने की तरफ ही चलता है। मैं तो जब कॉलेज में जाता हूँ, स्कूल में जाता हूँ, बच्चों को उदाहरण देता हूँ कि भाई अगर मैं आपको आज होमवर्क देके आऊँ, होमवर्क देके जा रहा हूँ कि आपको नेचुरल सीनरी ड्रॉ करके लानी है कल, तो मुझे पता है 90% बच्चे क्या ड्रॉ करके लाएंगे, दो पहाड़ पीछे से उड़ता हुआ, एक पक्षी आगे झोपड़ी, एक छोटा सा पॉन्ड, सूरज निकल रहा है, कहाँ से आया ये, है ना, क्योंकि वो पीढ़ी दर पीढ़ी वही बनाते आ रहे हैं। लेकिन अब वो सब झूठ है, अब ऐसे तालाब नहीं बचे हैं, अब तालाबों की असली पिक्चर बनाइए ना कि तालाब कैसे कचरे से भरे हुए हैं।
1: अब तक आपने कितने तालाब साफ किए हैं और उन्हें पुनर्जीवन दिया है?
0: अभी तक तो हम 100 से ज्यादा तालाब कर चुके हैं।
1: अच्छा।
0: और ये 100 तालाब कोई बड़ा है, कोई छोटा है, है ना, कोई 50-50 एकड़ के भी है जिसमें एक में से भी 50 तालाब निकल सकते हैं छोटे छोटे। है क्या, जैसे उत्तर भारत में आप रहेंगे तो यहाँ पे अगर 500 एकड़ की भी कोई वाटर बॉडी है ना, ह्यूज वाटर बॉडी, उसको भी तालाब ही बोलेंगे। वैसे आमतौर पर तालाब एक छोटी वाटर बॉडी है और झील बड़ी वाटर बॉडी है, लेकिन यहाँ पे उत्तर भारत में आप चाहे कितनी भी बड़ी वाटर बॉडी ले लीजिए उसको तालाब ही बोलेंगे। उदाहरण के लिए कहता हूँ भोपाल का बड़ा तालाब, आप उसको इस किनारे खड़ा होकर देखिए आपको दूसरा किनारा ही नजर नहीं आता और वो समुन्दर लगता है आपको, लेकिन नाम क्या है, बड़ा तालाब, उससे थोड़ा छोटा होता था छोटा तालाब। तो इसलिए यहाँ अपने झील भी रिवाइव करिए तो वो भी तालाब ही है। तो ऐसे कर करके हमने 100 से ज्यादा तालाब अभी तक रिवाइव किए और अभी हम 11 स्टेट्स में काम कर रहे हैं एक साथ।
1: अच्छा।
0: हमने गांव से शुरू किया था लेकिन अभी हम उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा, पांडिचेरी, कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु, एवरीवेयर वी आर वर्किंग।
1: आने वाले समय में किस किस जगह को, कौन से तालाब आपने टारगेट किए कि अब यहाँ पर काम करें?
0: नहीं, टारगेट हम नहीं करते हैं, हम क्या है अगली साल के लिए हमेशा एक नई लिस्ट बनाते हैं।
1: अच्छा।
0: और वो लिस्ट बनती है लोगों की डिमांड के अकॉर्डिंग। भाई मान लो आप स्पॉन्सर है, आप किसी गांव से निकले हैं और आप यूएस में रहते हैं और आपके पास अभी पैसे की कोई कमी नहीं है और आप बोलते हैं मुझे अपने गाँव के तालाब की बहुत याद आती है, मैं जिस तालाब में नहाया हूँ अभी वो एकदम कचरा घर बन चुका है, मैं इसको रिवाइव कराना चाहता हूँ, तो हमारी टीम जाती है उसको रिवाइव करती है, जो खर्चा होता है वो देते हैं।
1: अच्छा, तो इस तरह से फाइनेंशियल हेल्प मिल जाती है और
0: फाइनेंशियल हेल्प मिल जाती है। दूसरा है कुछ कॉरपोरेट है, मान लो मैं एक कंपनी हूँ और मैंने इस जिले में एक अपनी कंपनी लगाई हुई है और मैं पूरा मेरा प्रोडक्शन ग्राउंड वाटर से है, मान लो मैं कोल्ड ड्रिंक ही बना रहा हूँ, मैं पैक्ड वाटर बना रहा हूँ, तो मैंने ऊपर वाला प्लॉट खरीदा है उस जिले का या उस गाँव का, मैंने नीचे का पानी नहीं खरीदा है, क्योंकि जब मैं वाटर एक्सट्रैक्ट करता हूँ स्पेशली ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्ट करता हूँ तो वो उसी प्लॉट का पानी नहीं निकल के आता है, वो वहाँ से 1 किलोमीटर के दूर का भी पानी आता है, वो 500 मीटर दूर का भी, लेकिन वो तो आपने खरीदा नहीं, आपने तो सिर्फ वो प्लॉट खरीदा है। तो फिर आपकी एक कॉरपोरेट जिम्मेदारी बनती है कि जिस क्षेत्र का आप रिसोर्सिस यूज कर रहे हो, जिस पर पब्लिक का हक था, यहाँ की हवा पर पब्लिक का हक है, जितना एक कंपनी के मालिक का हक है उतना ही गांव के एक आदमी का हक है, तो आप कम्युनिटी रिसोर्सिस को यूज कर रहे हो फ्री में, तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उस सोसाइटी के लिए, उस क्षेत्र के लिए आप कुछ करें। इसीलिए CSR लाया गया, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जो बड़े कॉरपोरेट है वो अपने प्रॉफिट का 2% निकाल के अलग रखते हैं और उस क्षेत्र के लिए खर्च करते हैं जहाँ पे उनका प्लांट काम कर रहा है, और ये मैंडेटरी है, ये हर कॉरपोरेट को करना ही करना है। हम क्या करते हैं, उन कॉरपोरेट को बोलते हैं कि भाई आपकी फैक्ट्री यहाँ पे है, आपसे 20 किलोमीटर दूर एक तालाब है जो गांव वाले रिवाइव कराना चाहते हैं और हम उसको रिवाइव करने के लिए रेडी है, आपकी जिम्मेदारी बनती है हमें सपोर्ट करने की। तो वो CSR के अंतर्गत जरूरी है, सब मदद करते हैं, कुछ कॉरपोरेट हमारी मदद करते हैं और ऐसे करते करते अभी तक हमारा 60 से ज्यादा कॉरपोरेट पार्टनर बन चुके अलग अलग क्षेत्र।
1: जैसे मेरे जैसे कोई आम जन के लोग अगर जुड़ना चाहें सफाई के या रिवाइव करने के लिए तो वो क्या कर सकते हैं?
0: देखो शुरुआत तो घर से होती है, अगर तालाब में जो कचरा है वो भी हर इंडिविजुअल का ही कचरा है ना, किसी ने जाके एक ट्रक कचरा तो डाला नहीं है एक साथ, तो हमारा हर घर से एक एक बोतल निकलती है जब वहाँ पे एक ट्रक कचरा होता है। तो जब मैं स्कूलों में जाता हूँ, मैं बच्चों को बोलता हूँ, अगर आपने 5 किलो प्लास्टिक स्कूल में इकट्ठा कर लिया तो मतलब आपने 1 स्क्वायर

0: मीटर पॉन्ड आपने साफ कर लिया।
1: बेहतर है कि उसे गंदा ही ना किया जाए।
0: हाँ, तो तालाब को रिवाइव करने के दो तरीके हैं। एक, आप जाके तालाब से कचरा निकालें, एक आप तालाब में कचरा जाने ही ना दें। तो जब आप जाने नहीं देते तो वो ज्यादा एफिशिएंट होता है और ज्यादा काम का होता है। इसलिए हम स्कूल के बच्चों को जोड़ते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि बच्चे ही बदलाव ला पाएंगे। इसके अलावा और कोई, क्योंकि जब आप बड़े पेड़ को उखाड़ कर दूसरी जगह लगाते हैं और एक छोटे पेड़ को उखाड़ कर दूसरी जगह लगाते हैं, मतलब अगर आप बदलाव करना चाहते हैं तो बड़े पेड़ का सक्सेस रेट बहुत 5-10% होता है। बड़े पेड़ नहीं बच पाते, छोटे पेड़ तो आप लगाते ही रहते हैं, जंगल लगाइए, तो वो एडॉप्ट कर लेते हैं नई जगह को, उनको अंदर सीखने की क्षमता होती है। तो इसलिए हम बच्चों को जाके बहुत सारी वर्कशॉप करते हैं, हम बच्चों के साथ जाके बात करते हैं और कोशिश करते हैं कि वो तालाबों को गंदा ना हो।
1: मतलब हर बड़े काम की शुरुआत जो है वो छोटे छोटे चेंजेस, छोटे छोटे बदलाव से की जा सकती है। रामवीर जी, आप यहाँ पर आए और हमारे पॉडकास्ट में इतने सहज तरीके से आपने इतनी अच्छी बातें बताई जल संरक्षण के बारे में, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज के लिए बस इतना ही, और आप भी ये छोटे छोटे बदलाव का हिस्सा बन सकते हैं, कचरा कम फैलाएं ताकि जो हमारी वाटर बॉडीज है वो गंदी ना हो। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए नीति को, नमस्कार।
2: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे तालाबों के संरक्षण और विकास के लिए प्रयासरत पॉन्डमैन के नाम से प्रसिद्ध रामवीर तंवर के साथ विशेष बातचीत। इस संवाद का संचालन कर रही थी नीति शुक्ला। आप इस कार्यक्रम को हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं। पता है podcast.airnews@gmail.com।
3: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
4: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है सुगम संगीत का कार्यक्रम। कलाकार हैं मिताली सिंह और भूपेंद्र सिंह। रचना है आजाद जलंधरी की।

आप सुन रहे हैं सुगम संगीत का कार्यक्रम, और इस कार्यक्रम की अगली रचना है सईद राही की। कलाकार एक बार फिर से भूपेंद्र सिंह और मिताली सिंह।

अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत का कार्यक्रम। कलाकार थे मिताली सिंह और भूपेंद्र सिंह। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम रस माधुरी, और इस कार्यक्रम का पहला गीत है फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी से। आवाजें हैं अरिजीत सिंह और श्रेया घोषाल की, गीतकार है अमिताभ भट्टाचार्य और संगीत है प्रीतम का।

आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम रस माधुरी, और इस कार्यक्रम का अगला गीत है फिल्म रांझणा से। आवाजें हैं जावेद अली, कीर्ति और पूजा की, गीतकार हैं इरशाद कामिल, और संगीत है ए आर रहमान का। फिल्म

0: रसमाधुरी कार्यक्रम का अगला गीत है फिल्म
1: अच्छा चलता
0: ऐ दिल है मुश्किल से।
1: तो याद रखना, मेरे जिक्र का जुबां पे सुआद रखना।
0: आवाज है अरिजीत सिंह की, गीतकार हैं अमिताभ भट्टाचार्य और संगीत है प्रीतम का। फिल्म ऐ दिल है मुश्किल।

आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम रसमाधुरी, और इस कार्यक्रम का अगला गीत है फिल्म एनिमल से। आवाज है अरिजीत सिंह की, गीतकार हैं सिद्धार्थ गरिमा, और संगीत है श्रेयस पुराणिक का, फिल्म एनिमल।

रसमाधुरी कार्यक्रम का अगला गीत है फिल्म डर्टी पिक्चर से। आवाज है कमाल खान की, गीतकार हैं रजत अरोड़ा और संगीत है विशाल शेखर का। फिल्म डर्टी पिक्चर।

रसमाधुरी कार्यक्रम का आखिरी गीत है फिल्म जब वी मेट से। आवाज है मोहित चौहान की, गीतकार हैं इरशाद कामिल और संगीत है प्रीतम का। फिल्म जब वी मेट।

0: अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम रस माधुरी। मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलो हर्ट्स पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में आप समाचार संध्या सुनेंगे, जिसे हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा।
1: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में लगभग 25,000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। जींद से हाइड्रोजन से चलने वाली भारत की पहली रेलगाड़ी को रवाना किया। प्रधानमंत्री ने कहा, केंद्र सरकार नागरिक देवो भव की भावना के साथ सभी के जीवन को आसान बनाने और नए अवसरों के लिए प्रतिबद्ध। सरकार ने संसद के मॉनसून सत्र से पहले रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रविवार से मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की 3 देशों की यात्रा पर रवाना होंगी। नीति आयोग ने निवेश अनुकूलता सूचकांक 2026 जारी किया, गुजरात शीर्ष पर, इसके बाद महाराष्ट्र और तमिलनाडु। और FIH महिला हॉकी विश्व कप के लिए सलीमा टेटे के नेतृत्व में भारतीय टीम की घोषणा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में लगभग 25,000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने जलंधर में 5,470 करोड़ रुपए से अधिक लागत की विभिन्न रेल और सड़क अवसंरचना परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत जलंधर कैंट सहित 75 पुनः विकसित रेलवे स्टेशनों का शुभारम्भ किया। उन्होंने 20 राज्यों में स्थित पुनः विकसित रेलवे स्टेशनों का वर्चुअली रूप से लोकार्पण भी किया। इनमें SAS नगर मोहाली रेलवे स्टेशन, श्री मुक्तसर साहिब रेलवे स्टेशन और श्री आनंदपुर साहिब रेलवे स्टेशन शामिल हैं। अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत ये रेलवे स्टेशन सभी आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित हैं। श्री मोदी ने संत रविदास एक्सप्रेस रेलगाड़ी को रवाना किया। ये अमृतसर और वाराणसी को जोड़ने वाली पहली सीधी रेल सेवा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार नागरिक देवो भव की भावना के साथ सभी के जीवन को आसान बनाने और नए अवसरों के लिए प्रतिबद्ध है। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार पंजाब के विकास के लिए लगातार काम कर रही है।
2: आज भारत सरकार कनेक्टिविटी के, इंफ्रास्ट्रक्चर के अनेक ऐसे प्रोजेक्ट पर पंजाब में काम कर रही है। पंजाब में भाजपा सरकार नहीं है, लेकिन हमारा पंजाब विकसित हो इसके लिए केंद्र की भाजपा NDA सरकार कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रही है।
1: प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि पंजाब सरकार केंद्र सरकार की निधियों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने में विफल रही है और केंद्र सरकार की योजनाओं को अपनी बताकर पेश कर रही है।
2: साथियों, केंद्र सरकार अपनी तरफ से हर संभव प्रयास कर रही है कि पंजाब की जनता को केंद्र की हर स्कीम का लाभ मिले, लेकिन कट्टर बेईमान पार्टी की सरकार में यहाँ लूट का खुला खेल चल रहा है। बीते 12 वर्षों में केंद्र से पंजाब को लाखों करोड़ रुपए भेजे गए। इस पैसे से गांव के रास्ते बनते, नहरें बनती, मंडियां बनती, लेकिन पंजाब सरकार ने उस पैसे को सही जगह खर्च नहीं किया।
1: श्री मोदी ने पंजाब के युवाओं से खेलों से जुड़ने की अपील की।
2: मैं पूरे पंजाब के युवा साथियों से कहना चाहता हूँ, ये आपके लिए अवसरों का समय है। खेलो इंडिया स्पोर्ट्स पॉलिसी आपके लिए लाई गई है। आज भारत में नई स्पोर्ट्स इकोनॉमी विकसित की जा रही है। इस नई इकोनॉमी के केंद्र में जालंधर का स्पोर्ट्स मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम है। मैं सभी

0: युवाओं से कहूंगा, आप स्पोर्ट्स से जुड़िए, स्पोर्ट्स की दुनिया में अपना परचम लहराइए। हमारी सरकार हर तरह से आपके साथ है।
1: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि केंद्र सरकार पंजाब में रेलवे की कई बड़ी परियोजनाओं पर काम कर रही है।
0: आज पंजाब में करीब करीब 30,000 करोड़ रुपए के रेलवे के काम चल रहे हैं। 1,800 करोड़ रुपए की लागत से 30 स्टेशनों का नव निर्माण हो रहा है अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत। अब तक जालंधर कैंट, आनंदपुर साहिब, मुक्तसर और मोहाली स्टेशन का उद्घाटन हो चुका है। 12 वंदे भारत सर्विसेज चल रही है, 4 अमृत भारत सर्विसेज चल रही है और पंजाब में पूरा 100% इलेक्ट्रीफाई कर दिया है रेलवे के नेटवर्क को।
1: इससे पहले चंडीगढ़ में श्री मोदी ने स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सड़क अवसंरचना जैसे प्रमुख क्षेत्रों में लगभग 4,700 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने 500 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित अत्याधुनिक मातृ और शिशु देखभाल केंद्र तथा 440 करोड़ रुपए की लागत से तैयार उन्नत तंत्रिका विज्ञान केंद्र राष्ट्र को समर्पित किया। उन्होंने पीजीआई चंडीगढ़ में पीएम आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के अंतर्गत 259 बिस्तरों वाले गहन चिकित्सा कक्ष की आधारशिला भी रखी। प्रधानमंत्री ने कहा कि चंडीगढ़ के विकास का लाभ हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश के लोगों तक भी पहुंच रहा है। प्रधानमंत्री ने चंडीगढ़ को नियोजित शहरी विकास का एक मानक बताया।
2: चंडीगढ़ एक ऐसा शहर है जहाँ एजुकेशन, इंजीनियरिंग, मेडिकल साइंस और रिसर्च से जुड़े बड़े संस्थान एक साथ मौजूद है। बहुत कम शहरों के पास ऐसा सामर्थ्य होता है। आने वाले समय में यही संस्थान नई टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर, स्टार्टअप और इनोवेशन के बड़े केंद्र बन सकते हैं। आज एजुकेशन से जुड़ी कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं भी इस यात्रा को नई गति दे रही।
1: हरियाणा में प्रधानमंत्री ने जींद रेलवे स्टेशन से सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना किया। श्री मोदी ने हरियाणा में 12,470 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने 157 किलोमीटर लंबा दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे राष्ट्र को समर्पित किया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने संसद के मॉनसून सत्र से पहले रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इससे पहले आज मंत्रियों के समूह की बैठक नई दिल्ली में हुई। केंद्रीय मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, राजीव रंजन सिंह, के राममोहन नायडू और किरेन रिजिजू बैठक में उपस्थित थे। इस दौरान आगामी संसदीय सत्र के लिए रणनीति पर चर्चा हुई। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होकर अगले महीने 13 अगस्त तक चलेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 19 से 25 जुलाई तक मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा पर रहेंगी। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने कहा कि ये यात्रा मध्य और पूर्वी यूरोप के साथ भारत की बढ़ती भागीदारी को दर्शाती है।
3: ये राजकीय यात्राएं मोल्दोवा गणराज्य, उत्तरी मैसेडोनिया गणराज्य और रोमानिया के राष्ट्रपतियों के निमंत्रण पर की जा रही हैं। तीन देशों की ये यात्रा ऐतिहासिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये किसी भारतीय राष्ट्रपति की मोल्दोवा गणराज्य और उत्तरी मैसेडोनिया गणराज्य की पहली द्विपक्षीय यात्रा होगी। रोमानिया की यात्रा 3 दशकों से भी ज्यादा समय में किसी भारतीय राष्ट्रपति की पहली राजकीय यात्रा होगी।
4: इन ओवर 3 decades
1: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लक्ष्य प्रत्येक गांव और हर पात्र नागरिक तक बैंकिंग सेवाएं पहुंचाना है। आंध्र प्रदेश के पलनाडु जिले के नरसारावपेटा में श्रीमती सीतारामन ने कहा कि प्रधानमंत्री वर्ष 2014 से ही हर गांव तक बैंकिंग सेवाएं पहुंचाने के लक्ष्य के साथ काम कर रहे हैं ताकि किसानों, कृषि और हथकरघा श्रमिकों तथा अन्य व्यवसाय से जुड़े लोगों को संस्थागत बैंकिंग सुविधाएं मिल सकें। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का सफर संगठित स्वैच्छिक कार्यों की शक्ति और निस्वार्थ सेवा के चिरस्थायी मूल्यों का प्रमाण है। नई दिल्ली में श्याम जाजू और अनुपम त्रिवेदी की पुस्तक आरएसएस 800 सेवा, एकता और बलिदान की एक शताब्दी का विमोचन करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने निस्वार्थ सेवा और राष्ट्र निर्माण के माध्यम से एकता और राष्ट्रीय चेतना के आदर्शों को मजबूत

मजबूत किया है। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि आरएसएस ने हर प्रतिकूल परिस्थिति में राष्ट्रीय हितों, सेवा और लोकतंत्र की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। स्वास्थ्य राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा है कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना बन गई है। इस योजना के अंतर्गत देश भर में 1,90,000 करोड़ रुपए से अधिक के कैशलेस उपचार की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। पश्चिम बंगाल के कर्ण सुबर्ण रेलवे स्टेशन के पास आज स्कूल वैन और यात्री रेलगाड़ी की टक्कर में 2 स्कूली बच्चों सहित 3 लोगों की मौत हो गई। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दुर्घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा

0: योजना के अंतर्गत देश भर में 1,90,000 करोड़ रुपए से अधिक के कैशलेस उपचार की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। पश्चिम बंगाल के कर्ण सुबर्ण रेलवे स्टेशन के पास आज स्कूल वैन और यात्री रेलगाड़ी की टक्कर में 2 स्कूली बच्चों सहित 3 लोगों की मौत हो गई। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दुर्घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। पूर्वी रेलवे ने इस मामले में उच्च स्तरीय जांच समिति गठित करने का आदेश दिया है। कार्यस्थल पर महिला यौन उत्पीड़न की रोकथाम निषेध और निवारण अधिनियम 2013 पर राष्ट्रीय महिला आयोग का 2 दिन का राष्ट्रीय जागरूकता कार्यक्रम आज नई दिल्ली में शुरू हुआ। इस अवसर पर महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि महिला नेतृत्व वाले विकास के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए सुरक्षित, गरिमापूर्ण और समावेशी कार्यस्थल सुनिश्चित करना आवश्यक है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। गुजरात निवेश अनुकूलता सूचकांक 2026 में देश के शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य के रूप में उभरा है। इसके बाद महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गोवा और उड़ीसा भी शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्यों में शामिल हैं। नीति आयोग ने आज नई दिल्ली में निवेश अनुकूलता सूचकांक 2026 जारी किया। इसमें वर्ष 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए निवेश आकर्षित करने की दृष्टि से सबसे अच्छी स्थिति वाले राज्यों का उल्लेख है। समुद्री प्रशासन महानिदेशालय ने निर्देश दिया है कि अगले आदेश तक होर्मुज जलडमरू मध्य से होकर गुजरने वाले जहाजों पर भारतीय नाविकों की तैनाती न की जाए। इस संबंध में जहाज मालिकों, जहाज प्रबंधकों और भर्ती तथा नियुक्ति सेवा लाइसेंस प्राप्त कंपनियों के लिए नया परामर्श जारी किया गया है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार।
1: घरेलू शेयर बाजार के मुख्य सूचकांकों में आज 1% से अधिक की बढ़त देखी गई। सेंसेक्स 965 अंक ऊपर चढ़कर 78,151 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 262 अंक के उछाल के साथ 24,334 पर पहुंच गया। और अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 7 पैसे ऊपर आकर 96.28 रुपए पर बंद हुआ।
0: सरकार ने देश में खेलों के लिए कानूनी और संस्थागत ढांचे को मजबूत करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय डोपिंग रोधी अधिनियम 2022 और राष्ट्रीय डोपिंग रोधी संशोधन अधिनियम 2025 को लागू करने की अधिसूचना जारी की है। ये अधिनियम खेलों में डोपिंग को रोकने, खिलाड़ियों के अधिकारों की रक्षा करने और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत डोपिंग रोधी मानकों के अनुसार खेल प्रतियोगिताओं की निष्पक्षता बनाए रखने के लिए एक व्यापक वैधानिक आधार प्रदान करता है। वेस्टइंडीज के महान क्रिकेट ऑलराउंडर गैरी सोबर्स का आज निधन हो गया। प्रथम श्रेणी क्रिकेट में उन्होंने 1 ओवर में 6 छक्के लगाने का भी कारनामा अपने नाम किया। सर गारफील्ड सोबर्स ने वेस्टइंडीज के लिए 93 टेस्ट मैच में 8,032 रन और 235 विकेट लिए। हॉकी इंडिया ने आगामी महिला हॉकी विश्व कप के लिए 20 सदस्यीय भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। सलीमा टेटे टीम की कप्तान होंगी। ये प्रतियोगिता 15 से 30 अगस्त तक बेल्जियम और नीदरलैंड्स की संयुक्त मेजबानी में खेली जाएगी। पीवी सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु को जापान की पूर्व विश्व चैंपियन नोजोमी ओकुहारा के क्वार्टर फाइनल से हटने के बाद वॉकओवर मिला। सेमीफाइनल में सिंधु का मुकाबला विश्व की 4th नंबर की चीन की खिलाड़ी चेन युफई से होगा। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन के लिए पश्चिम बंगाल के गंगई क्षेत्र और सिक्किम में मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड में रविवार तक तेज बारिश की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ से लगभग 25,000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। जींद से हाइड्रोजन से चलने वाली भारत की पहली रेलगाड़ी को रवाना किया। प्रधानमंत्री ने कहा, केंद्र सरकार नागरिक देवो भव की भावना के साथ सभी के जीवन को आसान बनाने और नए अवसरों के लिए प्रतिबद्ध। सरकार ने संसद के मॉनसून सत्र से पहले रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रविवार से मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की 3 देश

0: Sobers passes away, and Indian team announced for FIH Women's Hockey World Cup to be held in Belgium and Netherlands next month, Salima Tete named the captain. And that is all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है। जमीर रजवी से खबरें सुनिए। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। वजीराजम नरेंद्र मोदी ने हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ से तकरीबन 25,000 करोड़ रुपए मालियत के मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज किया। वजीराजम ने जिंद से भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन को झंडी दिखाकर रवाना किया। वजीराजम ने कहा कि मरकज नागरिक देवोभव के जज्बे के साथ हर शहरी के लिए जिंदगी गुजारने में आसानी और नए मौके फराहम करने के तई अहदबंद है। हुकूमत ने पार्लियामेंट के मानसून इजलास से कबल इतवार के रोज कुल पार्टी मीटिंग तलब की है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू इतवार से मोल्दोवा, शुमाली मकदूनिया और रोमानिया के 3 रोजा दौरे पर रहेंगी। नीति आयोग ने सरमायाकारी फ्रेंडलीनेस का इशारिया 2026 जारी किया है। गुजरात आला तरीन कारकर्दगी करने वाली रियासत के तौर पर उभरी है। इसके बाद महाराष्ट्र और तमिलनाडु आते हैं। मायानाज वेस्ट इंडीज क्रिकेट खिलाड़ी गैरी सोबर्स का इंतकाल हो गया है। और भारत ने अगले महीने बेल्जियम और नीदरलैंड में मुनक़द होने वाले FIH खवातीन की हॉकी आलमी कप के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ से तकरीबन 25,000 करोड़ रुपए के मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज किया। इन प्रोजेक्टों का मकसद कनेक्टिविटी को मुस्तहकम करना, मुसाफिर सहूलतों में इजाफा करना और खित्ते में माशी तरक्की को फरोग देना है। वज़ीर-ए-आज़म ने आज शाम जालंधर में 5,470 करोड़ रुपए से ज्यादा लागत के मुख्तलिफ रेल और सड़क बुनियादी ढांचे के प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया और संगे बुनियाद रखा। जनाब मोदी ने तजीन नौ किए गए 75 रेलवे स्टेशनों का इफ्तिताह किया, जिनमें अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत जालंधर कैंट स्टेशन भी शामिल है। जालंधर में अवामी जलसे से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि भारत के हर शहरी की खिदमत करना, उनकी जिंदगियों को आसान बनाना और उन्हें तरक्की के नए मौके फराहम करना मरकज की NDA हुकूमत की तरजीह है। उन्होंने कहा कि ये NDA हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो इस बात को यकीनी बनाए कि हर कुंबा, चाहे वो गरीब हो या मुतवसित तबके से ताल्लुक रखता हो, उसे बेहतर से बेहतर सहूलतें मिलें और हुकूमत के कामकाज में नागरिक देवोभव के जज्बे की अक्कासी हो।
2: हम नागरिक देवोभव इस मंत्र पर चल रहे हैं। गरीब हो, मिडिल क्लास हो, ऐसे हर परिवार को बेस्ट से बेस्ट सुविधा मिले, ये हमारा प्रयास है। और नागरिक देवोभव का ये भाव हमारे काम में दिखता है।
1: वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि ये रेलवे स्टेशन सभी जदीद सहूलतों से लैस हैं। उन्होंने मजीद कहा कि इन स्टेशनों की कायापलट का प्रोग्राम दुनिया के सबसे बड़े स्टेशन तजीनों प्रोग्राम अमृत भारत स्टेशन स्कीम का हिस्सा है।
2: बीते वर्षों में भाजपा सरकार ने स्थितियों को बदलना शुरू किया। आज पूरे देश में रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प किया जा रहा है। अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत 1300 से ज्यादा रेलवे स्टेशन को आधुनिक बनाया जा रहा है और इनमें से कई स्टेशन पर काम पूरा हो चुका है। आज ऐसे ही 75 स्टेशन का लोकार्पण किया गया है। जब आप यहाँ जालंधर कैंट स्टेशन में जाएंगे तब आपको एहसास होगा कि वाकई हमारा देश विकसित राष्ट्र बनने की ओर बढ़ रहा है।
1: वज़ीर-ए-आज़म ने जालंधर कैंट रेलवे स्टेशन से संत रविदास एक्सप्रेस ट्रेन को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर रेलवे और इत्तिलात और नशरियात के मरकजी वजीर अश्विनी वैष्णव और दीगर सरकर्दा शख्सियात भी मौजूद थीं। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने दिल्ली अमृतसर कटरा 4 लेन ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे और 6 लेन वाले जुनूबी लुधियाना ग्रीन फील्ड बाईपास की तरक्की का संगे बुनियाद रखने जैसे कौमी शाहराहों के प्रोजेक्टों का भी इफ्तिताह किया। हुकूमत ने पार्लियामेंट के मानसून इजलास से कबल इतवार के रोज पार्लियामेंट की सभी सियासी जमातों के ऐवान के रहनुमाओं की मीटिंग तलब की है। मीटिंग के दौरान हुकूमत सभी सियासी जमातों से ताउन चाहेगी ताकि पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों का कामकाज खुश असलूबी से चलाया जा सके। पार्लियामेंट का मानसून इजलास 20 जुलाई से शुरू होगा, जो 13 अगस्त तक जारी रहेगा। मानसून इजलास के दौरान

कई अहम बिलों को बहस और मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। इस दौरान आज नई दिल्ली में वुजरा के ग्रुप की एक मीटिंग हुई। मीटिंग में मरकजी वुजरा अमित शाह, राजनाथ सिंह, राजू रंजन सिंह, किंजरापू राम मोहन नायडू और किरण रिजिजू मौजूद थे। मीटिंग के दौरान लीडरों ने आइंदा पार्लियामानी इजलास की हिकमत अमली तरतीब दी। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू इस महीने की 19 से 25 तारीख तक मोल्दोवा, शुमाली मकदूनिया और रोमानिया के सरकारी दौरे पर रहेंगी। नई दिल्ली में मीडिया को तफसीलात बताते हुए वजारत खारजा में मगरबी उमूर के सेक्रेटरी सीबी जॉर्ज ने बताया कि ये सरकारी दौरे जमहूरिया मोल्दोवा, जमहूरिया शुमाली मकदूनिया और रोमानिया के सुदूर की दावत पर किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये दौरा तारीखी अहमियत का हामिल है क्योंकि किसी भी भारतीय सदर जमहूरिया के जरिए जमहूरिया मोल्दोवा और शुमाली मकदूनिया के अव्वलीन बाहमी दौरे होंगे। उन्होंने कहा कि रोमानिया का दौरा 3 से ज्यादा दहाइयों में किसी भारतीय सदर जमहूरिया का पहला सरकारी दौरा होगा। जनाब जॉर्ज ने मजीद कहा कि रोमानिया का आखिरी दौरा साल 1994 में हुआ था। जनाब जॉर्ज ने उजागर किया कि ये दौरा वस्ती और मशरकी यूरोप के साथ भारत की बढ़ती हुई मसरूफियात की अक्कासी करता है। नीज खित्ते के ममालिक के साथ शराकतदारी को मुस्तहकम करने के भारत के अहद का इयादा करता है। जनाब जॉर्ज ने कहा कि यह दौरा यूरोप के साथ भारत के वसी तर ताल्लुकात और यूरोपीय यूनियन के साथ इसकी जामे शराकतदारी को भी उजागर करता है। सरमायाकारी फ्रेंडलीनेस के इशारिये 2026 में भारत की रियासतों और मरकज के ज़ेर-ए-इंतज़ाम इलाकों के दरमियान गुजरात सबसे बेहतर कारकर्दगी करने वाली रियासत के तौर पर उभरी है। इसके बाद महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गोवा और उड़ीसा भी आला कारकर्दगी करने वाले के तौर पर उभरे हैं। नीति आयोग ने आज नई दिल्ली में सरमायाकारी फ्रेंडलीनेस का इशारिया 2026 जारी किया, जिसमें उन रियासतों को उजागर किया गया है जो सरमायाकारी को रागिब करने में बेहतरीन मकाम पर आए हैं। ये साल 2047 तक विकसित भारत के मकसद की जानिब भारत के सफर को उजागर करता है। इशारिये में तमाम 28 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम 8 इलाकों का 8 सुतूनों का इस्तेमाल करते हुए तजजिया किया गया, जिनमें बुनियादी ढांचा, कारोबारी माहौल, वसाइल, सरकारी पॉलिसी, जाब्ता जाति सहलकारी, इदारा जाति माहौल, मालियाती बेहतरी और माहौलियाती लचक शामिल हैं। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने आंध्र प्रदेश के वजीर आला एम चंद्रबाबू नायडू के साथ 1,03,246 मुस्तफदीन को 3,216 करोड़ रुपये मालियत के कर्जे तकसीम किए। ये कर्जे आंध्र प्रदेश के पलनाडु जिले में मुनक़िद क्रेडिट आउटरीच प्रोग्राम में मरकजी हुकूमत के मुख्तलिफ स्कीमों के तहत तकसीम किए गए। जिन शोबों के लिए ये इमदाद फराहम की गई है उनमें ज़रात, MSMEs और हाउसिंग, तालीम, गाड़ियाँ और शमसी तवानाई के शोबे शामिल हैं। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। वजारत खारजा ने आज कहा कि मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट के बारे में भारत जापान के दरमियान बातचीत इत्मीनान बख्श तरीके से आगे बढ़ रही है। सोशल मीडिया पोस्ट में एक सवाल का जवाब देते हुए वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने कहा कि ये पोस्ट एक फर्द के राय की अक्कासी करती है और ये हकीकत से मुख्तलिफ है। नई दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जापान E20 ट्रेन सीरीज मुहैया कराएगा, लेकिन ये साल 2030 के अवाइल में ही होगा क्योंकि ट्रेन अभी तैयारी के मरहले में है। हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट के बारे में हुई पेशरफ्त को उजागर करते हुए जनाब जायसवाल ने कहा कि तामीराती काम तेजी से आगे बढ़ रहा है और साल 2027 में पहला सेक्शन ऑपरेशनल हो जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि फरीकैन ने एक भारतीय हाई स्पीड ट्रेन से ऑपरेशन शुरू करने से इत्तेफाक किया है। नायब सदर सीपी राधा कृष्णन ने आज कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS का सफर मुनज्जम रजाकाराना खिदमत की ताकत और अपनी जात से पहले खिदमत के पायदार जज्बे की एक वाजह मिसाल है। उन्होंने ये बात नई दिल्ली में श्याम जाजू और अनुपम त्रिवेदी की तस्नीफ करदा किताब RSS एट 100 अ सेंचुरी ऑफ सर्विस यूनिटी एंड सेक्रीफाइस के इजरा के मौके पर कही। तकरीब से खिताब करते हुए नायब सदर ने कहा कि RSS ने खिदमत, इत्तेहाद और कौमी शऊर के नजरियात को मजबूत किया है और बेलौस खिदमत और कौम की तामीर के जरिए नस्लों को मुतासिर किया है। उन्होंने इस बात को उजागर किया कि तंजीम का 100 साला सफर इस बात को जाहिर करता है कि कौम की देरपा तरक्की सिर्फ हुकूमती इदारों के जरिए ही नहीं बल्कि फाल शहरी किरदार और रजाकाराना खिदमत के जरिए भी हासिल की जाती है। ईरान के पासदारान इनकलाब इस्लामी IRGC ने दावा किया है कि उसने आज शाम कुवैत और ओमान में अमरीकी फौजी ठिकानों को निशाना बनाते

हुए जवाबी हमले किए हैं। ईरान की सरकारी एजेंसी के मुताबिक आईआरजीसी ने एक बयान में कहा कि ये हमले ऑपरेशन नसर 2 के 11वें, 12वें और 13वें दौर के दौरान किए गए। उसने दावा किया कि ईरानी फोर्सेज ने शाम के अलतनफ खित्ते में अमरीका की खसूसी कार्रवाइयों के कमान के एक मरकज पर अचानक हमला कर दिया। यूक्रेन में रात में किए गए रूसी हमलों में कम से कम 4 अफराद हलाक और दीगर 20 जख्मी हो गए। ओडेसा इलाकाई फौजी इंतजामिया के सरबरा ओले कीपर ने बताया कि ओडेसा के जुनूबी साहिली शहर पर रूस के एक मिसाइल हमले में 2 अफराद हलाक और दीगर 10 जख्मी हो गए। यूक्रेन के सदर वोलोदिमिर जेलेंस्की ने कहा कि ज़ेपोरोजिया खित्ते में एक और हमले में मजीद 2 अफराद हलाक हो गए और 5 दीगर जख्मी हुए हैं। हुकाम ने रूसी हमलों में मुल्क के दीगर 5 खित्तों में लोगों के जख्मी होने की भी खबर दी है। चीफ इंतखाबी कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि भारत का इंतखाबी कमीशन ECI दुनिया के सबसे शफाफ और मोतबर इंतखाबी इदारों में से एक है, जहां दुनिया की कई जमहूरियतें भारत के इंतखाबी अमल को एक मॉडल के तौर पर देखती हैं। इंतखाबी कमीशन की जानिब से मुनक़िद ऑल इंडिया मीडिया कॉन्फ्रेंस 2026 से खिताब करते हुए आज ज्ञानेश कुमार ने कहा कि भारत में इंतखाबात आईन के तहत आज़ादाना तौर पर मुनक़िद कराए जाते हैं, जहाँ शहरियों को अपने नुमाइंदे चुनने की आज़ादी हासिल होती है। भारत के महकमे मौसमियात ने ज़ैली हिमालय, मगरबी बंगाल और सिक्किम में आइंदा 2 दिनों के लिए शदीद से बहुत शदीद बारिश और कहीं कहीं इंतहाई शदीद बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। महकमे मौसमियात के मुताबिक अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड में इतवार तक किसी किसी मुकाम पर शदीद से बहुत शदीद बारिश होने का इम्कान है। बिहार, मध्य प्रदेश, मशरक़ी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरलम, माहे, उड़ीसा और शुमाल मशरक़ी रियासतों में कल शदीद बारिश की तवक्को है। वेस्टइंडीज के मायानास क्रिकेट खिलाड़ी सर गैरफील्ड सोबर्स का आज इंतकाल हो गया। वो 79 बरस के थे। मायानास क्रिकेटर की मौत की तस्दीक उनके फर्जंद डैनियल ने की है। मार्च 1954 से अप्रैल 1974 के दरमियान क्रिकेट के खेल में बेहतरीन ऑलराउंडर में से एक सोबर्स ने 93 टेस्ट मैच खेले और 57.78 की औसत से 8032 रन स्कोर किए। इनमें 26 सेंचुरीज और 30 निस्फ सेंचुरियां शामिल हैं। बाएं हाथ के बल्लेबाज और बाएं हाथ के फास्ट मीडियम बॉलर सोबर्स ने टेस्ट क्रिकेट में 235 विकेट हासिल किए हैं। उन्होंने एक वाहिद ODI भी खेला है, जिसमें उन्होंने एक विकेट लिया था। वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट में एक ओवर के दौरान 6 छक्के लगाने वाले पहले बल्लेबाज भी थे। ये संगमील उन्होंने साल 1968 में ग्लैमॉर्गन के खिलाफ नॉटिंगम शायर के लिए खेलते हुए कायम किया था। भारत ने आज FIH खवातीन के हॉकी आलमी कप 2026 के लिए अपने 20 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। मिडफील्डर सलीमा टेटे इस पुरवकार टूर्नामेंट में भारतीय टीम की क्यादत करेंगी, जो 15 से 30 अगस्त तक बेल्जियम और नेदरलैंड्स में मुनक़िद होगा। गोलकीपर सविता और बिचू देवी खरीबाम ने टीम में अपना मुकाम बरकरार रखा है। इशिका चौधरी, सुशीला चानू, पुरखरमरम ज्योति और शिल्पी दाबास दिफाई पोजीशन संभालेंगी। मिडफील्ड की क्यादत सलीमा टेटे करेंगी और उनके साथ निकी प्रधान, साक्षी राणा, नेहा और दीपिका सोरेंग इस पोजीशन पर खेलेंगी। भारत की फॉरवर्ड लाइन ऋतुजा, ददोसा पिसाल, नवनीत कौर, दीपिका, इशिका, बलजीत कौर और ब्यूटी डंगेरडंग संभालेंगी। भारत को पूल डी में रखा गया है, जिसमें चीन, इंग्लैंड और जनूबी अफ्रीका शामिल हैं। टीम 18 अगस्त को जनूबी अफ्रीका के खिलाफ और 20 अगस्त को इंग्लैंड के मुकाबले मैच से कबल हॉकी स्टेडियम में 16 अगस्त को चीन के खिलाफ अपनी मुहिम का आगाज करेगी। और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ से तकरीबन 25,000 करोड़ रुपए मालियत के तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज किया। वज़ीर-ए-आज़म ने जींद से भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन को झंडी दिखाकर रवाना किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मरकज नागरिक देवोभव के जज्बे के साथ हर शहरी के लिए जिंदगी गुजारने में आसानी और नए मौके फराहम करने के तई अहदबंद है। हुकूमत ने पार्लियामेंट के इजलास से कबल इतवार के रोज कुल पार्टी मीटिंग तलब की है। सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू इतवार से मोलदोवा, शुमाली मकदूनिया और रोमानिया के 3 रोजा दौरे पर रहेंगी।
नीति आयोग ने सरमायाकारी फ्रेंडलीनेस का इशारिया 2026 जारी किया है। गुजरात आला तरीन कारकर्दगी

0: का मुजाहरा करने वाली रियासत के तौर पर उभरी है। इसके बाद महाराष्ट्र और तमिलनाडु आते हैं और मायानाज वेस्टइंडीज क्रिकेट खिलाड़ी गैरी सोबर्स का इंतकाल हो गया है। इसके साथ ही आकाशवाणी से खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
1: मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय रात्रि के 9:30 हो रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम अंजुमन।

दिल की बातें आंखों से पढ़नी हो तो ठहर कर देखिए, मोहब्बत का असली चेहरा लफ्जों में नहीं एहसासों में मिलता है।

सफर आसान नहीं होता, मगर हौसले सवर जाते हैं। सफर आसान नहीं होता, मगर हौसले सवर जाते हैं जब किसी अपने के कदम हमारे कदमों से मिल जाते हैं, हमारे कदमों से मिल जाते हैं।

जहां रिश्तों की खुशबू हो वही असली ठिकाना है। जहां रिश्तों की खुशबू हो वही असली ठिकाना है। मोहब्बत से बसा हर दिल किसी प्यार भरे गांव से कम नहीं होगा, किसी प्यार भरे गांव से कम नहीं होगा।

आप आए तो लगा जैसे दुआओं को असर मिल गया। आप आए तो लगा जैसे दुआओं को असर मिल गया, और सूना पड़ा दिल भी मुस्कुराया। मौसम को नया सफर मिल गया, मौसम को नया सफर मिल गया।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम अंजुमन। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम स्वास्थ्य पत्रिका।
1: सभी को आकांक्षा सिंह का नमस्कार। श्रोताओं, स्वागत है आप सभी का स्वास्थ्य पत्रिका के इस माह के अंक में। इस अंक में सबसे पहले संपादकीय और आज का विषय है मॉनसून में स्वास्थ्य, सावधानी ही सुरक्षा। श्रोताओं, बारिश का मौसम प्रकृति को नई ऊर्जा और हरियाली से भर देता है, लेकिन यही मौसम स्वास्थ्य के प्रति अतिरिक्त सतर्कता की भी मांग करता है। नमी, दूषित पानी और मच्छरों की बढ़ती संख्या के कारण कई संक्रामक और मौसमी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे समय में स्वच्छता, सुरक्षित पेयजल, संतुलित आहार और समय पर चिकित्सकीय सलाह हमारी सबसे बड़ी सुरक्षा ढाल बन जाते हैं। छोटी छोटी सावधानियां जैसे हाथों की स्वच्छता, ताजे भोजन का सेवन और घर के आसपास पानी जमा न होने देना हमें कई बीमारियों से बचा सकता है। वर्षा ऋतु में चूंकि वातावरण में नमी बढ़ जाती है, कई स्थानों पर जल भराव होता है और इससे मच्छरों का प्रजनन बढ़ता है। साथ ही डेंगू, मलेरिया या चिकनगुनिया जैसी मच्छर जनित बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है। इसके अलावा दूषित पानी और अस्वच्छ भोजन के कारण दस्त, टाइफाइड, वायरल बुखार या डायरिया जैसे अन्य संक्रमण भी तेजी से

0: फैल सकते हैं। ऐसे में ये मौसम हमें याद दिलाता है कि छोटी छोटी सावधानियां हमें बड़े खतरे से बचा सकती हैं। श्रोताओं, स्वास्थ्य केवल व्यक्तिगत जिम्मेदारी नहीं बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी भी है। जब हम अपने घर और आसपास सफाई रखते हैं तो हम केवल अपने परिवार ही नहीं बल्कि पूरे समुदाय को सुरक्षित रखने में योगदान देते हैं। जागरूक नागरिक बनना भी स्वस्थ समाज की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। स्वास्थ्य पत्रिका में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि वर्षा ऋतु के अनुसार हमारी दिनचर्या और खानपान किस तरह का हो। क्या कहता है आयुर्वेद इस बारे में?
1: श्रोताओं, आज हमारे साथ हैं डॉक्टर रवि शंकर खत्री, जो आयुर्वेद संकाय बीएचयू से आए हैं और ये बाल रोग विशेषज्ञ हैं। सर, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
2: धन्यवाद आकांक्षा जी।
1: ये जो ऋतु है, विशेषकर वर्षा ऋतु की हम यहाँ बात करेंगे कि किस तरह की बीमारियों का सामना करना पड़ता है और इसी ऋतु में अधिक से अधिक लोग बीमार पड़ते हैं, ऐसा क्यों होता है। लेकिन सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आयुर्वेद के अनुसार हर ऋतु का क्या महत्व है।
2: देखिए, आयुर्वेद में जो है, हम लोग जो है, हमारी भारतीय संस्कृति और आयुर्वेद में 6 ऋतुओं बताई गई है, शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद और हेमंत। आचार्य चरक जो है बताते हैं कि आयुर्वेद के अंदर आदावंते च दौर्बल्यम, जो आदान काल होता है उसके अंत में जो है वो हमारे शरीर का जो बल है, यानी कि जिसको आज के परिप्रेक्ष में हम इम्यूनिटी बोल सकते हैं, वो कम हो जाता है। तो आदान काल के अंत में और विसर्ग काल के प्रारंभ में, जो वर्षा ऋतु है वो विसर्ग काल के प्रारंभ में आती है, ग्रीष्म ऋतु जो है वो आदान काल के अंत में रहती है। तो इन दो ऋतुओं में जो है दौर्बल्य होता है, वीक इम्यूनिटी होती है। इसका कारण ये है कि इस समय वात का प्रकोप रहता है और अग्निमानदेह होता है। इस समय अग्निमानदेह मतलब अपनी जो डाइजेस्टिव पावर है वो कम रहती है। दूसरा बड़ा रीजन ये है कि जो रेनी सीजन है या मॉनसून सीजन है या वर्षा ऋतु है, इसके अंदर जो है आर्द्रता बढ़ने यानी ह्यूमिडिटी हाई होने से ना, जो पैथोजन की जो ग्रोथ होती है, जो रोगाणुओं की जो ग्रोथ होती है वो बढ़ जाती है, जिसके कारण जो है एक्सपोजर ज्यादा होता है। तो वर्षा ऋतु में इसलिए जो है हम लोगों को स्पेसिफिक बहुत सारी प्रिकॉशन की जरूरत है, जिनका हम अभी बताएंगे, खान पान और जब उन सब चीजों का हमको ध्यान रखना चाहिए।
1: जी सर, और मैं ऋतुओं का महत्व जानना चाह रही थी कि आयुर्वेद के अनुसार, आयुर्वेद शास्त्र में जितने भी ऋतुओं का जिक्र किया गया है उनका क्या महत्व रहा है।
2: उनका महत्व ये है कि आयुर्वेद ने दिनचर्या और ऋतुचर्या दो प्रकार के उन्होंने बताया है। हर ऋतु के लिए उन्होंने एक परिचर्या का उल्लेख किया है कि हमको किस ऋतु में किस आहार का सेवन करना चाहिए, किस विहार का सेवन करना चाहिए। आयुर्वेद में वात आदि दोष जो हैं उनके ऊपर पूरा सिस्टम चलता है। जैसे ग्रीष्म ऋतु में वात का संचय होता है और जो है वर्षा ऋतु में वात का प्रकोप होता है। तो जो दोषों की हर एक ऋतु के अंदर, वसंत ऋतु में जैसे कफ का प्रकोप होता है, पित्त का प्रकोप शरद ऋतु में होता है, तो इस प्रकार हर एक ऋतु में जो हमारा जो शरीर का संचालन है वो दोषों के द्वारा होता है। तो आयुर्वेद में उन दोषों का समन करने के लिए विभिन्न प्रकार की जो है आहार विहार और औषध द्रव्यों का उल्लेख किया गया है। तो हमको किस ऋतु में किस प्रकार का आहार विहार लेना है, यही आयुर्वेद का वैशिष्ट्य है। वर्षा ऋतु में क्या है, जैसे आर्द्रता बढ़ी हुई है, दूषित जल, मच्छरों की वृद्धि तथा पाचन शक्ति की कमी के कारण कई संक्रामक रोग जो होते हैं उनका प्रकोप बढ़ जाता है, जिसके मुख्य रूप से जो है जल जनित रोग में जैसे टाइफाइड है, पीलिया है, अतिसार है, पेचिस है, फूड पॉइजनिंग है, मच्छर जनित रोग है, डेंगू है, मलेरिया है, चिकनगुनिया है, श्वसन तंत्र के रोग हैं, सामान्य सर्दी जुकाम है, वायरल बुखार है, इन्फ्लुएंजा है, गले का संक्रमण है, अस्थमा है, त्वचा के रोग बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं इस ऋतु के अंदर, फंगल इन्फेक्शन, दांत जिसको बोलते हैं टीनिया रिंग वर्म हो जाता है, खुजली, स्केबीज, घमोरियां, एक्जिमा, ये सब जो है बढ़ जाते हैं। इसके अलावा जो है पाचन तंत्र के रोग, अपच, अजीर्ण, गैस, पेट का फूलना, उल्टी, अम्लपित्त, ये सब व्याधियां होती है। नेत्र के रोग, कंजक्टिवाइटिस, एलर्जिक नेत्र के रोग जो होते हैं, कान के रोग जो है, कान का बहना, ओटाइटिस एक्सटर्ना मीडिया, सामान्य समस्याएं, वायरल बुखार, उल्टी दस्त, डेंगू, मलेरिया, और ये सब जो है होते हैं, क्योंकि उच्च आर्द्रता के कारण जो वायरस है वो हवा में लंबे समय तक जीवित रहते हैं वो, और उच्च आर्द्रता के कारण, जल जमाव के कारण जो मच्छर जो है उनकी जो लाइफ साइकिल है वो फास्ट हो जाती है। अंडे से मात्र 7 से 10 दिन में ही मच्छर नया बनता है, जिसकी वजह से जो है मच्छर जनित बीमारियां भी इस मौसम में बहुत अधिक
1: बढ़ जाती हैं। सर, बच्चों की समस्याओं की हम बात करें तो यही वो मौसम होता है जिसमें बच्चे डायरिया से अधिक ग्रसित होते हैं, तो बच्चों को बचाने के लिए क्या किया जा सकता है इस रोग से?
2: देखिए आपने बहुत

0: अच्छा ये क्वेश्चन किया है। इस समय अगर आप देखेंगे अस्पताल में सबसे ज्यादा जो केसेज हैं वो डायरिया या अतिसार के मिलते हैं। उसमें मेन इम्पोर्टेंट है कारण ये है कि जो बाहर का खान पान, जो बच्चे बाहर का कुछ खा रहे हैं, क्योंकि वर्षा के अंदर आप जान रहे हैं कि पैथोजन की ग्रोथ बहुत तेज हो रही है, रोगाणु बहुत अत्यधिक बढ़ रहे हैं। कच्ची सब्जियां जैसे बाहर बच्चे मोमोज चाउमीन ये सब खाते हैं, और जो अशुद्ध जल है उसको पीने से डायरिया के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो डायरिया में एक इम्पोर्टेंट चीज ये है कि उसके अंदर जो है डिहाइड्रेशन, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। डायरिया के अंदर अगर आपको जैसे वाटरी डायरिया हो रहा है तो उसमें जो है आपको बहुत ज्यादा नुकसान बच्चे को होने की संभावना रहती है, जिसमें बच्चा कोलेप्स भी कर जाता है और परेशानी हो जाती है। तो इसके लिए मैं एक श्रोताओं को बहुत अच्छा बताना चाह रहा हूं कि ORS जो है बच्चों को जरूर पिलाना चाहिए। अब ये है कि कई बार ये है कि घरों में ORS नहीं अवेलेबल है, तो हम आपको तरीका बता रहे हैं कि आप घर पे ORS कैसे बना सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, 1 लीटर उबला उबाल के ठंडा किया हुआ पानी लेना है, उसके अंदर 6 लेवल टीस्पून, मतलब 6 जो है किनारे तक, जिसमें लेवल टीस्पून का मतलब है किनारे तक उसके अंदर जो है शुगर हो वो लेना है, 1/2 लेवल टीस्पून जो है सॉल्ट लेना है, उसको 1 लीटर पानी में मिला देना है। तो ये आपका होममेड ORS तैयार हो गया। अब आप बाजार से खरीदने की जरूरत नहीं है। और बच्चे में अतिसार के अंदर सबसे खतरनाक है निर्जलीकरण, डिहाइड्रेशन, जो कि बच्चे को बहुत ही संकट में डाल सकता है। अगर आपने ORS पिलाया है तो आप एक बच्चे की लाइफ को सेव कर सकते हैं।
1: और यही उपाय बड़ों के लिए भी लगता
0: है? बिल्कुल, ORS सबके लिए सेम है। ORS का जो कंसेंट्रेशन है, दूसरा हम लोग देखते हैं, हम ORS एडवाइस कर देते हैं, लेकिन आप हमेशा जब भी ORS खरीदें तो उसको ये देखिए कि उसको कितने ml पानी में मिलाना लिखा है, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर कंसेंट्रेशन पे निर्भर करता है। कुछ लोगों को जैसे दे दिया तो वो क्या करते हैं, फाड़ के उसको कभी 200 ml में डाल दिया। जो आपने सैचेट लिया है उसको जरूर पढ़िए कि वो 1 लीटर वाला है कि 200 ml वाला है, और उसको पूरा बनाइए। उसमें ये नहीं है कि हमने 1 लीटर वाला ले लिया उसको हम 200 ml पानी में थोड़ा थोड़ा डालें। आप 1 लीटर पूरा बनाइए, जितना उपयोग में आएगा उसको उपयोग करिए, नहीं तो उसको डिस्कार्ड कर दिए, फिर से नया बनाइए।
1: वर्षा ऋतु में आयुर्वेद के अनुसार हमारी जो दिनचर्या है वो किस तरह की होनी चाहिए, जिससे बीमारी होने की संभावना कम हो?
0: बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया। सबसे पहली चीज है वर्षा ऋतु में बचाव के जो उपाय, सबसे पहली चीज उबला हुआ शुद्ध पानी पिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। ताजा और गर्म भोजन करें, बासी एवं कटे फल न खाएं, हाथों की स्वच्छता लगातार बनाए रखें, मच्छरों से बचाव करें, मच्छरदानी मॉस्किटो रिपेलेंट उनका यूज करें, घर के आसपास पानी बिल्कुल न जमा होने दें, वर्षा में भीगने के बाद शरीर को अच्छी तरीके से सुखाएं। जैसा कि आपको पता है कि वर्षा ऋतु के अंदर हमारी जो अग्नि है, डाइजेस्टिव पावर है, जिसको जठरा अग्नि बोलते हैं, वो कम होती है, इसलिए हल्का सुपाच्य भोजन करें, घी का सेवन करें, मधु का सेवन अल्प मात्रा में कर सकते हैं, शहद मिला के इस ऋतु में खाने के लिए आचार्य चरक ने बोला है कि आप खाइए, द्राक्षासव लीजिए, सुंठी, जो अपने यहाँ सुंठी बहुत ही कॉमन है, जब भी आप कुछ खा रहे हैं उसको यूज करिए भोजन के अंदर, तो वो एपेटाइट को इंक्रीज करता है।
1: सौंठ
0: जी जी जी। और आयुर्वेद में एक औषधि बताइए, पंचकोल, जिसमें पिपली मूल, चव्वे, चित्रक और सुंठी, ये 5 होते हैं। ये आपको नियमित रूप से जो है अगर आप भोजन में रहेंगे तो ये आपको अग्नि को सपोर्ट करेंगे। लघु भोजन करना है, मूंग की दाल को आपको प्रेफर करना है, जो भी हैवी दाल है, उड़द की दाल है या जो अरहर की दाल है, इससे बढ़िया है आप मूंग का दाल लीजिए। क्या ना करें, इस समय सत्तू वो नहीं लेना है, दिन में नहीं सोना है।
1: अच्छा।
0: जो है डायरेक्ट नदी का पानी या कहीं आ रहा है पोखरे का डायरेक्ट नहीं पीना है, धूप का सेवन नहीं करना है, अति व्यायाम नहीं करना है
1: जी।
0: हल्के और साफ कपड़े पहनने हैं, आप उपटन का यूज कर सकते हैं, ठीक है, मालिश का यूज कर सकते हैं, उपटन लगा के अपना स्नान करके साफ सूती और हल्के वस्त्र पहने।
1: इस मौसम में चूंकि नमी बढ़ी रहती है, आर्द्रता जिसे हम कहते हैं, और त्वचा रोग, खुजली होना, रैशेस होना, ये आम दिखते हैं, इन समस्याओं से बचने के लिए क्या किया जा सकता है?
0: इन समस्याओं से बचने के लिए, जैसे कि आपको पता है इस ऋतु में वात का प्रकोप हो रहा है, पित्त का संचय हो रहा है, तो ये जितनी बीमारियां हैं पैतृक बीमारियां हैं, ह्यूमिडिटी के कारण जो है हमारी बॉडी के अंदर कई प्रकार के दाने हो जाते हैं। तो एक सबसे अच्छा है सुहागा, अपने यहाँ बोरेक्स, जिसको आयुर्वेद में टंकण भस्म बोला जाता है, उसको आप 1 कटोरी पानी में 2 चुटकी डालिए और उसको क्लीन करिए। इसके अलावा बहुत सारे आयुर्वेदिक पाउडर अवेलेबल है मार्केट के अंदर, जो खस है या नेचुरल जो पित्त शामक द्रव्यों से जो बने हुए हैं वो बहुत अच्छे हैं। दूसरा, इस ऋतु में फंगस जो है, जिसको डर्मेटोफाइट इन्फेक्शन बोलते हैं, फंगस बहुत जल्दी, फंगस के साथ क्या है कि रूल है कि वो रिकरेंसी बार बार होती है डिजीज में। अगर एक बार किसी को हो गई तो अपना साफ टावल यूज करिए, किसी का तौलिया नहीं यूज करिए, किसी का कंघा नहीं यूज करिए, अपना पर्सनल रखिए, क्योंकि अगर किसी को एक भी घर में किसी को दाद है तो वो फैलेगा, क्योंकि इस ऋतु में इसकी प्रोग्रेस बहुत ज्यादा होती है। नॉर्मल नहीं ठीक हो रहा है तो आप किसी चिकित्सक से संपर्क करके उसके अकॉर्डिंग जो है ट्रीटमेंट आप करा सकते हैं
1: जी। बिल्कुल। और

0: जो द्रव्य आपने बताए उनका इस्तेमाल चिकित्सक की सलाह अनुसार लेना ही उचित होगा।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: सर, फिटकरी का उपयोग कितना लाभकारी हो सकता है?
1: फिटकरी का उपयोग भी आप कर सकते हैं। फिटकरी बहुत अच्छा एंटीसेप्टिक और बहुत अच्छा जो है उसको आप यूज कर सकते हैं। उसको जल में घोल के आप फिटकरी और टंकण भस्म अगर दोनों को मिला के लगाएंगे तो बहुत अच्छा काम करता है फिटकरी।
0: वायरल बुखार की समस्या इन दिनों आम देखी गई है। चिकित्सक कहते हैं कि बुखार आना शरीर के लिए अच्छा होता है, आयुर्वेद क्या कहता है?
1: देखिए, बुखार आना जो है वो एक डिफेंसिव मैकेनिज्म है। जब भी कोई वायरस या किसी भी पैथोजन या रोगाणु का शरीर पे आक्रमण होगा तो शरीर उसके डिफेंस में करता है। आयुर्वेद का कंसेप्ट बुखार के लिए अग्नि से रिलेटेड है। आयुर्वेद कहता है कि अगर आपकी अग्नि ठीक नहीं है तो आपको आम बनेगा। आम बनेगा तो ये जो है ज्वर को पैदा कर सकता है, और जो ज्वर है वो शरीर के अलावा मन को भी संताप देता है।
0: सर, तो अगर व्यक्ति बुखार से ग्रसित है तो क्या घर पे वो कोई किसी तरह का आयुर्वेदिक उपचार कर सकता है?
1: देखिए, पहले तो ये है कि आपको वो पानी से पहुंचना है, पहले कोई दवा नहीं लेनी है
0: जी।
1: पहले आप अगर आपको फीवर है तो जो है आप जो है पहले इसको पहुंचिए। पहुंचने के बाद अगर नहीं ठीक हो रहा है तो आप सुंठी का पानी, जो आम पाचन वाले जो द्रव्य हैं, सुंठी साधित जल जिसको बोलते हैं, उसको आप यूज कर सकते हैं। अगर उसके बाद भी नहीं आपको फायदा मिल रहा है तो आप किसी योग्य चिकित्सक से मिलकर संपर्क करें, क्योंकि आयुर्वेद का जो कंसेप्ट है बुखार के लिए वो हमेशा कहता है कि आम की वजह से ही बुखार आ रहा है, ज्वर की उत्पत्ति बिना आम के नहीं हो रही है।
0: जी सर, बताएं कि जो हमारे एकदम नन्हे शिशु हैं, जो नवजात शिशु हैं, इस मौसम में उनको बचाने के लिए क्या किया जा सकता है?
1: उनको बचाने के लिए देखिए, इस समय ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है तो दोनों से नवजात शिशु की त्वचा जो होती है बहुत ही सेंसिटिव होती है
0: जी।
1: पहले तो सूती कपड़ा उसको पहनाएं, दूसरा उसको बहुत ज्यादा लपेट के मालिश करके नहीं रखना है, क्योंकि जब आप मालिश करेंगे फिर जो है तेल लगाएंगे उसके ऊपर, या बहुत लोग सरसों का तेल यूज करते हैं और उसको बहुत अच्छे से लपेट दिया आपने, तो जब उसको स्वेटिंग होगी, पसीना आएगा, तो वो तेल और पसीना मिलकर उसके पूरे बच्चे के रैसेस कर देंगे। और कुछ लोग क्या करते हैं, आपको एक सम वातावरण आपको रखना है। अगर आप रूम का टेम्परेचर 28 डिग्री के आसपास रख रहे हैं तो बच्चे को स्किन से रिलेटेड परेशानियां और भी परेशानियां जो है कम हो जाएंगी। आप कुछ लोग एसी चलाते हैं, वो इतना तेज चला देते हैं तो वो भी नुकसानदायक है, वो नहीं चलाना है। अगर आप एसी का टेम्परेचर रखना है 28 से 30 डिग्री के बीच में रखिए, ज्यादा नुकसान नहीं करेगा।
0: नवजात शिशु हालांकि माँ के दूध के अलावा और कुछ भी देना उनके लिए हानिकारक सिद्ध हो सकता है, तो ऐसे में जो माँ है नवजात शिशु की, उनको क्या ख्याल रखना होगा?
1: देखिए, भारत सरकार WHO ये कह रहा है कि जन्म से 6 महीने तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करनी है। उसका मतलब यह है कि उनको माँ के दूध के अलावा कुछ नहीं देना। जैसे कुछ लोग आते हैं वो ये कहते हैं कि ग्रीष्म ऋतु चल रही है सर, बहुत गर्मी है तो हम बच्चे को जो है कुछ पानी पिला सकते हैं, तो ऐसा नहीं करना है
0: जी।
1: 6 महीने तक जो है केवल माँ का दूध पिलाना है, उसमें इतना पानी है जो बच्चे के लिए पर्याप्त है। वर्षा ऋतु में जो है एक तो जो जितने भी पत्तेदार सब्जियां हैं वो नहीं खानी है, ठीक है, भारी गरिष्ठ भोजन नहीं लेना है। दूसरा, जो पंचकोल का हमने पाउडर बताया है वो भोजन में शामिल करना है, शुद्ध हींग का तड़का लगाना है, अजवाइन और सौंफ का पानी, क्योंकि माँ जैसा आहार लेगी वो बच्चे के ऊपर इफेक्ट डालेगा। जैसे अरबी, भिंडी, जो बीज वाली सब्जियां हैं, जो गरिष्ठ भोजन है, पचने में जो भारी है, वो जो है माता को बिल्कुल नहीं ग्रहण करनी चाहिए। दूध पिलाने वाला तो मूंग की दाल का सेवन करें, जूस वगैरह पिए, सूप लें, तो उसके लिए ज्यादा हितकारी होगा।
0: तो सर, वर्षा ऋतु में एक स्वस्थ व्यक्ति को अपने आहार में क्या ध्यान रखना होगा, कि यही सारी चीजें वहाँ भी लागू होती हैं?
1: हाँ बिल्कुल, पुराण जो आयुर्वेद में लिखा है कि इस ऋतु के अंदर पुराने जो गेहूं चावल इसको खाइए, घी का सेवन करिए, और जो आप कुछ भी ले रहे हैं उसमें मधु शहद जो है वो अल्प मात्रा में यूज कर सकते हैं, द्राक्षारसव ले सकते हैं, बाकी उबला जल लघु भोजन में है कि अग्नि कम होने की वजह से आप हल्का सुपाच्य भोजन लें।
0: जी सर, चलते चलते वर्षा ऋतुचर्या से संबंधित आप आयुर्वेद के क्या नियम हमारे श्रोताओं को बताएंगे?
1: मैं श्रोताओं को ये कहना चाहूंगा कि वर्षा ऋतु का आनंद तभी है जब हम स्वस्थ रहें। थोड़ी सी सावधानी, स्वच्छ पानी, स्वच्छ भोजन, हाथों की सफाई, मच्छरों से बचाव, समय पर टीकाकरण और बीमारी के शुरुआती लक्षणों पर तुरंत चिकित्सीय सलाह, ये हमको और अपने बच्चों को अनेक गंभीर बीमारियों से सुरक्षित रख सकती है। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि टीकाकरण बहुत जरूरी है। राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के अनुसार सभी टीके समय पर अवश्य लगाएं। टीके बच्चों को अनेक गंभीर बीमारी और संक्रामक रोगों से बचाते हैं
0: जी।
1: अब हम कुछ खतरे के संकेत बता देते हैं बच्चों के लिए। स्पेशली यदि आपके बच्चे को तेज बुखार लगातार बना रहे, सांस लेने में कठिनाई हो, बार बार उल्टी हो रही हो, दस्त के साथ पानी की कमी के लक्षण हो, बच्चा दूध या भोजन न ले रहा हो, अत्यधिक सुस्त हो जाए या दौरा आ जाए, तो निकटतम स्वास्थ्य केंद्र या अस्पताल जरूर जाएं।

0: और अपनी बीमारी के जो लक्षण है अगर आप प्रारंभिक स्थिति में अस्पताल ले जाएंगे तो बचने के बड़े चांसेस है। जैसे कोलेरा होता हैजा
1: जी
0: होता है, या एक विब्रियो कोलेरी जो बैक्टीरिया है उसकी वजह से डायरिया होता है, उसको बोलते हैं हाई पर्किंग डायरिया। तो उसके अंदर एक बार स्टूल में इतना ज्यादा पानी निकल जाता है बच्चे के, तो वो बच्चे की मतलब जान पे आ सकती है।
1: जी
0: तो आप डायरिया सबसे खतरनाक डेडली है, 5 साल के बच्चों में जो डायरिया है वो मृत्यु का बहुत एक मुख्य कारण है।
1: धन्यवाद सर, आप कार्यक्रम में आए और वर्षा ऋतु से संबंधित इतनी महत्वपूर्ण बातें जो आयुर्वेद के नियम है वो हमसे और हमारे श्रोताओं से साझा की। धन्यवाद।
0: धन्यवाद आकांक्षा जी।
2: स्वास्थ्य पत्रिका में आइए अब सुनते हैं डॉक्टर प्रशांत सिंह से की गई बातचीत, जिसका विषय है हेपेटाइटिस रोकथाम और जागरूकता।
1: सभी को आकांक्षा सिंह का नमस्कार। मुझे लगता है कि हेपेटाइटिस के बारे में हमें बड़ी कम जानकारी है। ये होने के कारण क्या हैं? क्या इससे बचा जा सकता है? हमारे बच्चे इससे किस हद तक प्रभावित हो सकते हैं? क्या वैक्सीन इसके लिए उपलब्ध है? इन सभी प्रश्नों की जानकारी के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रशांत सिंह। कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
3: धन्यवाद आकांक्षा जी।
2: डॉक्टर, क्या हेपेटाइटिस के बारे में हमें सच में जानकारी है?
3: हाँ, जानकारी की अवश्य कमी है और हमें अपने जो भी श्रोतागण उन्हें जागरूक करना हमारी जिम्मेदारी है।
1: तो डॉक्टर, सबसे पहले तो ये बताएं कि ये हेपेटाइटिस ये है क्या?
3: देखिए, लीवर हमारा एक बहुत मुख्य अंग है। इंटरनल ऑर्गन की बात करें तो ठोस अंगों में सबसे बड़ा ऑर्गन है
1: हमारा यकृत।
3: यस
1: जी।
3: और इसका मुख्य कार्य अगर हम देखें तो जैसे आंतों से जब हमारा भोजन पचता है और ब्लड में उसके कंपोनेंट्स एब्जॉर्ब होते हैं, आप इस तरह समझिए आसान भाषा में, लीवर में पहले छनता है, फिर वो हमारे पूरे शरीर में सर्कुलेट होता है। तो लीवर इसलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्गन हमारा बन जाता है। और इसमें हेपेटाइटिस की जो बात है, लीवर में किसी भी कारणवश है ना, किसी भी कारणवश अगर सूजन आ जाए, लीवर अपना जो नॉर्मल कार्य है वो ना कर पाए, उस स्थिति को हेपेटाइटिस कहते हैं।
1: जी,
3: हेपेटाइटिस जो है इसके कई कारण हैं।
1: जी,
3: इन्फेक्शन मुख्य कारण है उसमें, और भी कई कारण हैं, जैसे ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस भी होता है, और शरीर में अगर हमारे रक्त कण टूट रहे हैं किसी भी कारणवश, कई अनुवांशिक बीमारियां होती हैं, नवजात बच्चे जो होते हैं तो उसमें भी पीलिया होता है। तो अब इसमें फिर देखना होता है, जैसे इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस मैंने बताया
1: जी,
3: उसके फिर अब कई कारण है, जैसे वायरस उसमें प्रचुर कारण है, और उसके टाइप्स हो जाते हैं ए बी सी डी और ई मुख्य हैं
1: जी।
3: और आजकल आप देखेंगे इस मौसम में जो कि बारिश का मौसम है हमारे देश के अधिकतर पार्ट्स में, तो डेंगू के कारण, चिकनगुनिया जैसी बीमारियां जो कि वायरल ओरिजिन है, इनमें भी अगर शरीर में इन्फेक्शन ज्यादा फैल जाता है तो उसके कारण भी लीवर में सूजन आती है और जो कि हेपेटाइटिस का रूप लेती है।
1: अच्छा,
3: तो मुख्य रूप से आज की जो जानकारी रहेगी वायरल हेपेटाइटिस के बारे में हम फोकस करेंगे, और जैसे हेपेटाइटिस ए की बात
1: जी,
3: करें,
1: यही कॉमन है।
3: यस, बहुत कॉमन है, ए कॉमन है, ई कॉमन है ना, जो कि हमारे खान पान और दूषित जल से बहुत फैलती है
1: जी।
3: तो इसीलिए बारिश के मौसम में इसकी जानकारी फैलाना अति महत्वपूर्ण हो जाता है
1: जी।
3: और इसके रोकथाम की आगे बात करेंगे, थोड़ा सा टाइप्स और डिटेल में समझ लें।
1: बिल्कुल।
3: बी और सी जो है और डी जो है वो जनरली ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिलेटेड वायरल हेपेटाइटिस होते हैं
1: जी।
3: तो मुख्य यही टाइप्स हैं, टाइप ए बी सी डी एंड ई टाइप्स होते हैं, जिसमें से ए और ई जो है दूषित पानी और खाने के कारण होता है, बी सी एंड डी जो है वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिलेटेड या इन्फेक्टेड नीडल का यूज करने से, इन सब कारणों से होता है
1: जी। आपने प्रकार भी बता दिए और बताने के दौरान ही आपने कुछ कुछ जगहों पर कारणों का भी जिक्र किया। उसके अलावा हेपेटाइटिस के कई और गंभीर मुख्य कारण क्या हो सकते हैं?
3: मुख्य कारण सबसे इम्पोर्टेंट हेपेटाइटिस ए और ई है ना, बड़े जनों में बात करी जाए या बड़े बच्चों में बात की जाए तो ये मुख्य कारण वायरल हेपेटाइटिस के
1: जी।
3: और यह हेपेटाइटिस जो है बहुत जल्दी सिम्टम्स सामने लाता है। जैसे हेपेटाइटिस का मुख्य सिम्टम्स सिम्टम्स मतलब लक्षण जो मिलेंगे, एक तो बच्चा या व्यक्ति सुस्त रहेगा, उसे बार बार मिचली या वोमिटिंग टेंडेंसी या वोमिटिंग भी होगी, फीवर रहे।

0: है ना, और आंखों में पीलापन झलकेगा या उनके मूत्र में, पेशाब में गाढ़ा पीला रंग दिखाई देगा। तो कभी भी ऐसा लक्षण किसी व्यक्ति को मिले तो उन्हें अपने नजदीकी डॉक्टर से तुरंत संपर्क करना चाहिए।
1: बिल्कुल। और डॉक्टर, जब हम बच्चों की बात करते हैं
0: जी
1: तो बच्चों में भी यही सामान्य लक्षण यही
0: हाँ,
1: दिखेंगे?
0: बच्चों में भी लगभग सामान्य लक्षण मिलेंगे। थोड़ी सी बात हम नवजात बच्चों की कर लें,
1: बिल्कुल।
0: उनमें पीलिया का कारण लीवर में सूजन नहीं होता है, लीवर उनका 100% लगभग नॉर्मल रहता है। उनमें रक्त जो है समय से पहले टूट जाते हैं, उसके कारण पीलिया बढ़ता है। वो लगभग सभी बच्चों में नॉर्मल प्रक्रिया है। कुछ बच्चों में कुछ निश्चित लेवल से ज्यादा अगर पीलिया रहती है तो उसका एक निश्चित इलाज है, फोटोथेरेपी आज के युग में बहुत आसानी से उपलब्ध है, उससे वो तुरंत ठीक हो
1: ठीक
0: जाते
1: हो
0: हैं।
1: जाते हैं जी।
0: उसमें लीवर की अलग से दवा नहीं देनी पड़ती होती है। ये नवजात बच्चों की बात हो रही है, बट अगर बड़े बच्चे या वयस्क की बात करें या बड़े में अगर पीलिया हेपेटाइटिस होता है तो हमें प्रॉपर बॉडी को दवाओं से सपोर्ट देना पड़ता है, बॉडी रेस्ट देनी पड़ती है, ताकि हमारा जो लीवर ऑर्गन है वो फिर से रीजेनरेट और हीलिंग हो सके उसकी।
1: जी, तो मुख्यतः हम ये कह सकते हैं कि हेपेटाइटिस मतलब पीलिया,
0: हाँ
1: पीलिया
0: पीलिया,
1: से ग्रसित होना।
0: बिल्कुल
1: जी
0: बिल्कुल
1: डॉक्टर, एक बात बताएं, ये हेपेटाइटिस क्या घातक भी हो सकता है?
0: हाँ
1: व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है?
0: बिल्कुल। जैसा मैंने बताया कि अगर व्यक्ति को बार बार मिचली आ रही है, उल्टी आ रही है, वो सुस्त महसूस कर रहा है या बुखार से भी ग्रसित है तो उसे तुरंत अपने नजदीकी डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए।
1: जी
0: कारण यही है, अगर पीलिया बढ़ गया तो पीलिया के गंभीर प्रारूप हमें देखने को मिल सकते हैं, खासकर जब पीलिया मस्तिष्क में चढ़ जाए तो व्यक्ति को मिर्गी आ सकती है, उसके अपने कॉन्सिक्वेंसेज हैं। और दूसरा है, पीलिया जब बढ़ जाता है तो लीवर हमारा कार्य करने की क्षमता बहुत घट जाती है,
1: जी
0: तो खून बहने की भी संभावना बढ़ जाती है, और वो खून, चूंकि कोगुलेशन फैक्टर्स हमारे लीवर में बनते हैं जो खून बहने से रोकते हैं, जो वो तत्व कम हो जाता है तो खून कहीं से भी हमारे शरीर से बह सकता है, खासकर डेंजरस एरिया ब्रेन
1: जी
0: और हमारे आंत की जो लाइनिंग है वहां से खून बह सकता है, लंग से खून बह सकता है और मरीज काफी सीरियस हो सकता है।
1: सरल शब्दों में कहें तो अगर चोट लगने पर जो खून का थक्का जमता है,
0: यस
1: जिससे
0: हाँ
1: रक्त का बहाव रुकता है,
0: हाँ
1: वो प्रक्रिया नहीं हो पाती या
0: हाँ
1: धीमी हो जाती है,
0: बिल्कुल
1: जिससे रक्तस्राव अधिक हो सकता है और
0: बिल्कुल
1: मरीज की मृत्यु हो सकती है।
0: बिल्कुल
1: जी डॉक्टर, ये बताएं कि हेपेटाइटिस से अगर कोई व्यक्ति ग्रसित है तो वो कितने दिनों में ठीक हो सकता है?
0: देखिए, कुछ हेपेटाइटिस हैं जो लगभग 7 से 14 दिन या 2 से 3 हफ्ते में काफी अच्छा रेस्पॉन्स मिलता है, अगर सही देख रेख की जाए,
1: जी
0: बॉडी को रेस्ट देना है, उसको जो सपोर्ट है वो हम दे रहे हैं, समय से आहार, पानी, तरल पदार्थ ले रहे हैं, तो लगभग 2 से 3 हफ्ते में बहुत अच्छी रिकवरी आ जाती है और ये काफी अच्छा रेस्पॉन्स मिलता है
1: जी
0: राइट टाइम पे इंटरवेंशन से, है ना।
1: बिल्कुल।
0: बट कुछ हेपेटाइटिस ऐसे हैं, जैसे हम बात कर रहे थे बी और सी, है ना, ये क्रॉनिक हेपेटाइटिस में बदल जाते हैं, मतलब ये आपके शरीर में निरंतर रहेंगे
1: जी
0: और अगर आप देखभाल अच्छे से अपने शरीर की नहीं करेंगे या डॉक्टर के देखरेख में नहीं रहेंगे तो ये सिरोसिस में भी जा सकते हैं या कैंसर भी डेवलप हो सकता
1: गंभीर
0: है।
1: रूप धारण कर सकते
0: बिल्कुल
1: हैं जी, अगर समय रहते
0: इनका इलाज ना
1: ना
0: किया गया
1: किया
0: तो।
1: गया तो।
0: बिल्कुल,
1: बिल्कुल डॉक्टर, हेपेटाइटिस की रोकथाम के लिए क्या किया जा सकता है?
0: हेपेटाइटिस की रोकथाम के लिए सबसे पहला तो यही है कि प्रिवेंशन इज बेटर
1: बेटर
0: देन
1: देन क्योर।
0: क्योर,
1: जी
0: तो उसके लिए तो पहले हम बेसिक सावधानी ही शुरू कर सकते हैं कि बरसात के दिनों में पानी उबाल कर ठंडा करके ही पिए, कुछ भी मुंह में खाने से पहले अपने हाथों को अच्छे से साबुन से जरूर धोएं और डेली स्नान करें। सबसे इम्पोर्टेंट, अब भारत सरकार की तरफ से भी वैक्सीन्स उपलब्ध हो गई हैं,
1: जी
0: खासकर हेपेटाइटिस बी जो कि निःशुल्क है हमारे भारत सरकार द्वारा, और कुछ वैक्सीन्स हैं जैसे हेपेटाइटिस ए का भी वैक्सीन उपलब्ध है, हाँ, उसके कुछ पैसे देने पड़ते हैं,
1: सरकारी अस्पतालों में नहीं है लेकिन लिए जा सकते
0: लिए
1: हैं
0: जा
1: बाहर
0: सकते
1: से।
0: हैं
1: जी
0: प्राइवेट संस्थानों से।
1: बिल्कुल
0: और थोड़ी सी बात अगर हम क्रॉनिक हेपेटाइटिस
1: जी
0: के सावधानी के बारे में बात कर लें, तो उससे बचाव ही हमारा मुख्य हथियार
1: हथियार
0: है।
1: जी
0: बिल्कुल, तो सबसे पहले तो वैक्सीन हर एक सदस्य को लगना चाहिए। भारत सरकार नवजात बच्चों को जन्म के समय से ही लगाना शुरू कर देती है। अगर कोई व्यक्ति, चाहे वो बड़ा भी

0: अगर वो छूटा हुआ है वैक्सीन से तो उसको वैक्सीन जरूर लगवानी चाहिए,
1: बिल्कुल
0: पूरी डोज कवरेज। दूसरा है, कभी भी जैसे अस्पताल में मरीज भर्ती होता है या ब्लड टेस्ट होता है तो हमेशा नई सिरिंजेस का इस्तेमाल होना चाहिए, यूज्ड की हुई सिरिंजों का कभी इस्तेमाल नहीं करना है, इस चीज का ध्यान रखें। मतलब इनको यूनिवर्सल प्रोटोकॉल बोलते हैं, उसका
1: बिल्कुल
0: पालन जरूर होना चाहिए।
1: ठीक
0: अगर किसी व्यक्ति को हेपेटाइटिस बी या सी हो गया है तो उसके लिए भी काफी अस्पतालों में शिविर चलते हैं, उनकी रेगुलर चेकअप होते हैं, कुछ दवाएं उपलब्ध हैं कि उनका जो बीमारी है वो सडन ना बढ़ जाए और उनका जीवन अवधि काफी अच्छी बढ़ जाती है, वो
1: जी
0: नॉर्मल व्यक्ति की तरह जीवन व्यापन कर सकता है, ऐसी व्यवस्था है।
1: बिल्कुल डॉक्टर, आप बता रहे हैं कि अमूमन हेपेटाइटिस की बीमारी में लीवर में सूजन आ सकती है, तो इन दिनों हमारी लाइफस्टाइल ऐसी हो गई है कि लीवर में सूजन की जो समस्या है वो हर तीसरे या चौथे व्यक्ति में देखी जा रही है,
0: जी,
1: तो क्या लीवर में सूजन आना हेपेटाइटिस माना जा सकता है?
0: पूर्णतः यह बात नहीं कह सकते। लीवर में सूजन और लीवर अपना जो मूलभूत कार्य है वो करने में अक्षम हो जाए तब
1: जी
0: हम उस बीमारी को हेपेटाइटिस बीमारी कहेंगे।
1: जी डॉक्टर, एक बात बताएं, हेपेटाइटिस के कई प्रकार हैं और कई कारण आपने
0: जी
1: बताए,
0: जी
1: क्या किसी भी तरह का नशा व्यक्ति को हेपेटाइटिस से ग्रसित कर सकता
0: हाँ
1: है?
0: बिल्कुल, जैसे कई बीमारियों में हमने देखा हेपेटाइटिस होता है, जैसे वायरल हो गया या ऑटोइम्यून हमने बात की,
1: जी
0: इसी तरह जैसे धूम्रपान या मदिरा से भी है ना, अगर वो निश्चित लेवल से ज्यादा सेवन किया जा रहा है तो उससे भी हेपेटाइटिस होता है जो कि फिर लीवर का परमानेंट डैमेज कर देता है
1: जी
0: और सिरोसिस हो
1: हो
0: जाता
1: जाता
0: है।
1: है। बढ़ती उम्र में, यहाँ हम बुजुर्गों की बात करेंगे,
0: जी
1: 60 के बाद अगर किसी भी रूप में व्यक्ति हेपेटाइटिस से ग्रसित है तो क्या उम्र आड़े आती है इलाज करने में? क्या बाधा उत्पन्न हो सकती है? क्योंकि एक 60 के बाद वैसे भी जो हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली होती है वो कम काम करती है,
0: जी,
1: तो बुजुर्गों को किस तरह का खास ख्याल रखना है?
0: खास ख्याल उनको बेसिक जरूर रखने हैं, जैसे अगर उन्होंने पहले वैक्सीन नहीं लगवाई है तो वैक्सीन अवश्य लगवाएं। दूसरा है, साफ सफाई का बेहतर ध्यान रखें,
1: जी
0: जब भी खाना खाएं हाथ धोकर खाएं, पानी बरसात के मौसम में खासकर उबाल के पिए या आरओ का पानी इस्तेमाल कर सकते हैं, फिल्टर्ड वाटर। हाँ, बाकी बुजुर्गों में भी देखा जाए कि अगर उनको भी हेपेटाइटिस होता है तो आम व्यक्तियों की तरह, वयस्कों की तरह, अगर वो सही समय से डॉक्टर की सलाह लें और उन निर्देशों का पालन करें तो वो सामान्य स्थिति में वापस आ सकते हैं।
1: जी तो जरूरत है सतर्क रहने की और सजग रहने की, अपने
0: बिल्कुल
1: स्वास्थ्य के प्रति और अपने परिवार के स्वास्थ्य के प्रति।
0: बिल्कुल
1: हालांकि हमारे पास बचाव के साधन उपलब्ध हैं, लेकिन जैसा कि आपने कहा डॉक्टर, कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर,
0: बेटर
1: तो
0: देन क्योर।
1: सावधानी रखी जाए, सतर्कता रखी जाए, बीमारी को पास आने ही ना दिया जाए। हेपेटाइटिस के बारे में जागरूकता लाना ये बेहद जरूरी है, इसीलिए 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है। सर, आप कार्यक्रम में आए और हेपेटाइटिस जैसे गंभीर और महत्वपूर्ण विषय पर श्रोताओं संग जानकारी साझा की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद आकांक्षा जी।
1: तो श्रोताओं, ये था स्वास्थ्य पत्रिका का इस माह का अंक। अगले अंक में फिर होगी आपसे मुलाकात, लेकर आएंगे आपके लिए फिर कुछ खास। आकांक्षा सिंह को दीजिए आज्ञा, नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम स्वास्थ्य पत्रिका। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 10:30 होने वाले हैं। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में प्रस्तुत है सरोद वादन। कलाकार हैं अंशुमान महाराज। तबले पर संगत कर रहे हैं राम कुमार मिश्र। राग है झींझोटी।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे सरोद वादन। कलाकार थे अंशुमान महाराज। तबले पर संगत कर रहे थे राम कुमार मिश्र। राग था झिंझोटी। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं।

मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में आप हिंदी में समाचार सुनेंगे जिसे हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: रेलवे स्टेशन और श्री आनंदपुर साहिब रेलवे स्टेशन शामिल हैं। श्री मोदी ने संत रविदास एक्सप्रेस रेलगाड़ी को रवाना किया। ये अमृतसर और वाराणसी को जोड़ने वाली पहली सीधी रेल सेवा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार नागरिक देवो भव की भावना के साथ सभी के जीवन को आसान बनाने और नए अवसरों के लिए प्रतिबद्ध है। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार पंजाब के विकास के लिए लगातार काम कर रही है।
1: आज भारत सरकार कनेक्टिविटी के, इंफ्रास्ट्रक्चर के अनेक ऐसे प्रोजेक्ट पर पंजाब में काम कर रही है। पंजाब में भाजपा सरकार नहीं है, लेकिन हमारा पंजाब विकसित हो इसके लिए केंद्र की भाजपा एनडीए सरकार कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रही है।
0: प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि पंजाब सरकार केंद्र सरकार की निधियों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने में नाकाम रही है और केंद्र सरकार की योजनाओं को अपनी बताकर पेश कर रही है। श्री मोदी ने पंजाब के युवाओं से खेलों से जुड़ने की अपील की।
1: मैं पूरे पंजाब के युवा साथियों से कहना चाहता हूं, ये आपके लिए अवसरों का समय है। खेलो इंडिया स्पोर्ट पॉलिसी आपके लिए लाई गई है। आज भारत में नई स्पोर्ट्स इकोनॉमी विकसित की जा रही है। इस नई इकोनॉमी के केंद्र में जालंधर का स्पोर्ट्स मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम है। मैं सभी युवाओं से कहूंगा, आप स्पोर्ट्स से जुड़िए, स्पोर्ट्स की दुनिया में अपना परचम लहराइए। हमारी सरकार हर तरह से आपके साथ है।
0: इससे पहले चंडीगढ़ में श्री मोदी ने स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सड़क अवसंरचना जैसे प्रमुख क्षेत्रों में लगभग 4,700 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने 500 करोड़ रुपए से अधिक इलाके से निर्मित अत्याधुनिक मातृ और शिशु देखभाल केंद्र तथा 440 करोड़ रुपए की लागत से तैयार उन्नत तंत्रिका विज्ञान केंद्र राष्ट्र को समर्पित किया। उन्होंने पीजीआई चंडीगढ़ में पीएम आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के अंतर्गत 259 बिस्तरों वाले गहन चिकित्सा कक्ष की आधारशिला भी रखी। हरियाणा में प्रधानमंत्री ने जींद रेलवे स्टेशन से सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना किया। श्री मोदी ने हरियाणा में 12,470 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने 157 किलोमीटर लंबा दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेस वे राष्ट्र को समर्पित किया। सरकार ने संसद के मानसून सत्र से पहले रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होकर अगले महीने 13 अगस्त तक चलेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 19 से 25 जुलाई तक तीन देशों मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा पर रहेंगी। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने कहा कि ये यात्रा मध्य और पूर्वी यूरोप के साथ भारत की बढ़ती भागीदारी को दर्शाती है। गुजरात निवेश अनुकूलता सूचकांक 2026 में देश के शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य के रूप में उभरा है। नीति आयोग ने आज नई दिल्ली में निवेश अनुकूलता सूचकांक 2026 जारी किया। हॉकी इंडिया ने आगामी महिला हॉकी विश्व कप के लिए 20 सदस्यीय भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। सलीमा टेटे टीम की कप्तान होंगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

میں محمد زبیر. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में लगभग 25,000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया. श्री मोदी ने जलंधर में 5,470 करोड़ रुपए से अधिक लागत की विभिन्न रेल और सड़क अवसंरचना परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया. श्री मोदी ने अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत जलंधर कैंट सहित 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का शुभारंभ किया. उन्होंने 20 राज्यों में स्थित पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का वर्चुअल रूप से लोकार्पण भी किया. इनमें एसएएस नगर मोहाली रेलवे स्टेशन, श्री मुक्तसर साहिब